अपने विवाह की पहली वर्षगांठ पर पति पत्नी ने एक नई कार खरीदी। वे उसे चलाते हुए शहर घूमने गए। समुद्र तट की सड़क पर फर्राटे से उसे दौड़ाया, एक ड्राइव इन थिएटर में फिल्म देखी और फिर घर लौट आए। चूंकि उनके पास गैरेज नहीं था, इसलिए उन्होंने वह कार घर के बाहर सड़क के किनारे खड़ी कर दी। अगले दिन सुबह जब वे उठे तो यह देखकर सन्न रह गए कि उनकी कार गायब थी। कार चोरी हो गई थी, उनकी पहली कार, उनके विवाह की पहली वर्षगांठ पर खरीदी हुई चीज, और जिसका आनंद वे बस एक ही दिन ले पाए थे। पत्नी यह सहन नहीं कर पाई। आंसू भरी आंखों से वह सोफे पर कटे पेड़ की तरह धम से बैठ गई। झटका पति को भी लगा था, लेकिन इन पलों में अपनी पत्नी के प्रति उसका प्रेम गहरा था। पत्नी को उसने प्यार से समझाया और बोला, कार चोरी हो गई है, इस बात पर तुम परेशान भी हो सकती हो और सहज भाव से भी ले सकती हो। कार तो जा ही चुकी है, तो क्यों ना इसे सहज भाव से ले। पत्नी ने उसे थोड़ा नाराजगी से देखा और समय बीत गया। 2 महीने बाद पुलिस ने कार चोरों के एक गैंग से वह कार बरामद कर ली और पति को वापस सौंप दी। उस कार को जब वह पुलिस स्टेशन से घर ला रहा था तो वह एक ट्रक से टकरा गई। इस बार पति की बारी थी। वह यह हादसा सहन नहीं कर पाया और घर आकर आंसू भरी आंखों से सोफे पर कटे पेड़ की तरह धम से बैठ गया। झटका पत्नी को भी लगा था, लेकिन इन पलों में अपने पति के लिए उसका प्रेम प्रबल रहा। पति को उसने प्यार से समझाते हुए कहा, कार टकरा गई है, इस बात को तुम सहजता से भी ले सकते हो। वो तो टकरा ही चुकी है, तो क्यों ना इसे सहज भाव से ले। एक तर्कपूर्ण प्रश्न, जब कार चोरी हो गई हो या टकरा गई हो तो कोई भला इसे सहजता से कैसे ले सकता है। लेकिन इसके अलावा आप और कर भी क्या सकते हैं। आप चाहे तो परेशान और अशांत हो लें, और चाहे तो इसे सहजता से लें। कुछ भी हो, भावनात्मक नाटक के बाद जो करना है वह तो करना ही है। पुलिस में रिपोर्ट करनी है, कार को मरम्मत के लिए भेजना है, बीमा राशि के लिए दावा करना है। अब जो करना है वह तो करना ही है। कहने का भाव यही है कि किसी भी परिस्थिति के आगे

करके हम अपने आप को कितना सक्षम बना पाते हैं वह निर्भर करता है हमारी सोच के ऊपर, उस परिस्थिति को हम किस प्रकार से लेते हैं, सहजता से या असहजता से, उस पर निर्भर करता है कि हमारी अवस्था कैसी रहेगी। कोई भी घटना जो घटनी होती है वो तो घट जाती है, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं वह तो हमें करनी ही होती है। अब बात यह है कि उस घटना के बाद की क्रियाएं हम सरल सहज भाव से करें या फिर दुखी होकर करें, करना तो है ही, लेकिन वह हमारी अवस्था पे निर्भर करता है, हमारी मनस्थिति पर निर्भर करता है कि हम उसके बाद वाली क्रियाओं को किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए हमें अपने आप को ही समझाना होता है, हमें अपने आप ही उस परिस्थिति से बाहर निकलना होता है। यहाँ पर हमें भावनाओं का समर्थन करने की जरूरत है, ना कि भावनात्मक नाटक।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन

बच्चा एक विषय में फेल हो गया है। पिता उसे 2-3 चपट लगा देते हैं। माँ कई बार अपना माथा पीट लेती है और रो पड़ती है। है ना यह भावनात्मक नाटक। तो क्या करें, अब उस बच्चे को पढ़ाते समय उस विषय पर विशेष ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि उसे उस विषय में विशेष कोचिंग की आवश्यकता हो। जो करना है वह किया जाए। आपने दूध गैस चूल्हे पर रखा छोड़ दिया। उबलता दूध बर्तन से बाहर उफनने लगता है। चीखना, चिल्लाना, हाय तौबा मचाना, तनावग्रस्त हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेना, इस भावनात्मक नाटक के बाद क्या करें? चूल्हा बंद कर दें, बर्तन को नीचे उतार लें और किचन काउंटर साफ कर दें। आखिर जो करना है वही तो किया जाना है। शेयर बाजार के धड़ाम होने से लेकर किसी बहुत महत्वपूर्ण कर्मचारी के त्याग पत्र या किसी प्रियजन की मृत्यु तक भावनात्मक नाटक के बाद भी जो करना है वही तो किया जाना है। यहाँ हम भावनात्मक न होने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि नाटकीय भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की बात कह रहे हैं। स्वाभाविक है कि अगर किसी का वाहन चोरी हो जाए तो दिल को धक्का लगता है। बच्चा जब फेल हो जाए तो आप निराश हो जाते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु पर आंसू आ जाने में कुछ गलत नहीं है। भावना का होना तो सही है, लेकिन भावनात्मक नाटक का होना सही नहीं है। भावनात्मक परिपक्वता भावनाओं से दूर दूर रहने में नहीं है, बल्कि भावनात्मक नाटक से बचे रहने में है। कुछ भी हो जाए, जो किया जाना है वही तो किया जाना है, तो फिर नाटक क्यों? आप दीवार से कब तक टकराते रहेंगे? आप खून से लथपथ हो जाएंगे, लेकिन दीवार आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेगी। आप कब तक अपने भाग्य को कोसते रहेंगे और किसी आम के पेड़ के नीचे बैठे संतरा टपकने की आशा कब तक करते रहेंगे? चाहे आप खुद खत्म हो जाएं, लेकिन आम के पेड़ से कभी संतरा नहीं टपकेगा। जो है वह है, जो नहीं है वह नहीं है। प्रबुद्ध होने का अर्थ है यह जानना कि आप क्या थामे रखें और क्या छोड़ दें। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुप्रभात में, रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य की मंगल कामना हर कोई करते आए हैं, हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं भी करते आए हैं। और तो और, भारतीय संस्कृति में हम ये देखते हैं कि हम अपने आरोग्य के लिए एक अलग से देवता भी देखते हैं। कहीं हम वेदों के समय में अश्विनी कुमारों की बात करते हैं तो फिर बाद की कथा परंपराओं में हम आरोग्य के देवता के रूप में भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं। ऐसे में जब आरोग्य की बात कही जाती है तो ये कोई नई चीज नहीं है कि व्यक्ति आरोग्य की कामना करते आ रहा है, मगर आरोग्य की कामना करते हुए भी समय समय पर हम अपने आरोग्य के क्षेत्र में बदलाव देखते आ रहे हैं। आज समय बीतते बीतते हम ये मानते आए हैं कि पहले जो बीमारियां नहीं थी, आज वो बीमारियां बहुतायत में होती जा रही हैं, या ऐसी बीमारियां जिससे लोग पहले कम बीमार होते थे, आज अधिक से अधिक लोग उन बीमारियों के ग्रास में फंसते चले जा रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए भी कुछ करने की जरूरत है या सिर्फ प्रार्थनाओं से काम चलेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसी ही उन्नतियां होती आई हैं, नई नई खोजें नई नई चीजों के बारे में हमें ज्ञान बढ़ाती हुई आ रही हैं। आइए आज स्वास्थ्य जगत से ही जुड़े के ऐसे एक्सपर्ट से हम बातचीत करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में हमें मार्गदर्शन देंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है और आज भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो हम इस बात को समझें कि हम प्राचीन काल से स्वास्थ्य की प्रार्थना करते आए हैं डॉक्टर साहब, और सिर्फ प्रार्थनाओं से काम नहीं होता, ये भी हमने चीज समझी है कि हमें भी कुछ चीजों को करने की जरूरत है, और इसी वजह से चिकित्सा के क्षेत्र में कई उन्नतियां होती हुई हम देखते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे साथ ही साथ जितने चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं, उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि लोगों की बीमारियां भी बदलती जा रही हैं, या यूं कहें कि ज्यादा संख्या में लोग बीमार भी होते हुए जा रहे हैं। डायबिटीज जैसी बीमारियों में पूरे देश में हम देखते हैं कि डायबिटीज की मरीज तो ऐसे आम जनता के रूप में कहते हैं, हाँ इनको तो डायबिटीज है, ये तो स्वाभाविक बीमारी है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आप इस स्वास्थ्य के बदलते परिवेश पर क्या कहते हैं?
1: श्री भैया, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि आपने कहा था कि हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करते हैं, और प्रार्थना निश्चित रूप से कठिन समय में लोगों की मदद करती है, वो मानसिक शांति देती है, सकारात्मकता देती है और शक्ति प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या कोई उसको बीमारी ग्रसित करती है और उसको एकाएक लगता है कि उसका कठिन समय शुरू हो गया है, अगर आपको ये भी मुझे बोलने में कोई भी परहेज नहीं होगा कि कुछ लोग जो बहुत सीरियस होते हैं या जो बहुत अधिक बीमार पड़ते हैं, वो तो बिस्तर पे लेटे रहते हैं अचेत अवस्था में, उनके परिवार वालों के लिए भी बहुत कठिन समय होता है और वो हर तरफ भगवान को याद करते रहते हैं और पूजा करते रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ भी हैं जो लोगों की चिरायु के लिए कराए जाते हैं, एवं या जो लोगों को बहुत बीमार होते हैं उनके लिए लोग ये पूजा पाठ करा। कहते ना, जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है तब हम भगवान की शरण में आते हैं। मैंने माउंट आबू में डॉक्टर्स का कॉन्क्लेव अटेंड किया है, वहां लोगों ने अपने साक्षात्कार साझा किए थे। उन्होंने बोला था कि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो हमने सिर्फ ब्रह्मा बाबा की तरफ देखा, प्रणाम किया और ये सोचा कि अब आपने स्थिति में डाला है तो आप ही स्थिति से हमें बाहर निकालें। प्रार्थना बहुत विश्वास देती है। जब डायबिटीज किसी व्यक्ति को होती है तो जैसा मैंने पहले भी लेक्चर में कहा है कि एक ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप स्वस्थ रहें, आप अपने शरीर के बारे में कुछ अच्छा सोचें। क्यों लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं? हमारा वातावरण जो दूषित हो रहा है, हमारा भोजन दूषित हो रहा है और हमारा जो शारीरिक श्रम है वो कम होता चला जा रहा है। हम शरीर से ज्यादा अब मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। और हमारे सभी मित्र बहन भाई जो हमें सुन रहे हैं वो ये समझ सकते हैं कि अब हम आपस में बात करना कम कर चुके हैं, बनस्पत हम एक मोबाइल के पीछे पागल हो चुके हैं। वो मोबाइल हमारी सोचने की शक्ति को छीन कर रहा है, हमारी समझने की शक्ति को छीन कर रहा है और हमें एक ऐसे वायुमंडल में डाल रखा है हम जिसको सच मान बैठे हैं। उसकी एक और कमी है कि हम जो भी उसमें कुछ हमें ज्ञान मिल रहा है हम सोचे समझे उसको अपने शरीर के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मेरे जितने श्रोता भाई बहने जो भी सुन रहे हैं, आरोग्य की कुंजी सिर्फ मिताहार मतलब कम खाने में, दूसरा शारीरिक श्रम करने में और अच्छे से 6 से 7 घंटा सोने में और 3 से 4 लीटर पानी पीने में है। थोड़ी गहरी सांस लीजिए, थोड़ा अपने मन के लिए भी सोचिए, अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करिए। आप देखिए ब्रह्म कुमारी का आप ये चैनल सुन रहे हैं, कितना अच्छा लगता है कि सब लोग एक सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, उससे कितनी मानसिक शांति प्रतीत होती है। तो कृपा करके अपने शरीर और मन दोनों को शांत रखिए। आपको कोई भी बीमारी हो गई हो उसका उपचार ढूंढने से जरूर मिलेगा, और कोई भी बीमारी अगर क्रॉनिक डिजीज है आपको तो उसका उपचार एक्सरसाइज, कंट्रोल्ड डाइट एंड गुड मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन में है।
0: ये बात समझ में आती है कि आज हम अपने ही आरोग्य के बारे में इतने स्पष्ट रीति से जानकारी नहीं रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अस्पतालों में जाएंगे तो आरोग्य वहां मिलेगा, और अपने दिनचर्या पर, अपने भोजन पर, अपनी इंद्रियों पर संयम न रखने के कारण हम ज्यादा बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस स्वास्थ्य की कुंजी की आपने बात की, ये बात कितनी सहज और सरल है ये बात स्पष्ट होती है। आज एक और विषय पर जो हमारे दोस्त पिछले कई दिनों से चर्चा में सुन रहे हैं उस पर मैं प्रश्न करना चाहूंगा। ये वो लोग हैं जिन्हें डायबिटीज की समस्या हो गई है, डायबिटीज की बीमारी है। तो अक्सर हम उन लोगों को कहते हैं कि भाई उनको खाने पीने पर ध्यान रखना होता है, कि भाई डायबिटीज है आपको खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, इतना बोला जाता है। ये नहीं बोला जाता कि भाई आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और पिछले दिनों हमने अनेक ऐसे विषयों पर चर्चा की। सबसे पहले तो एक व्यक्ति जो आम भोजन करता है, जो हर दिन जिसकी भोजन का रूटीन है, उसके भोजन की थाली में क्या क्या चीजें होती हैं, वैसे प्रश्न उठता है कि एक डायबिटिक व्यक्ति जिसको डायबिटीज की बीमारी है उसके भोजन की थाली कैसी दिखनी चाहिए, क्या उसके लिए नॉर्मल खाना है, ये आप बताएं।
1: बहुत अच्छा सवाल आपने श्री भैया पूछा। अगर हम अपने थाली को देखें और सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमारा जो भोजन है वो करीब आधा भोजन जो है हमारा वो फल और सब्जियों से बनना चाहिए। मतलब हमको किसी भी तरीके से ऐसी सब्जियां और ऐसा फल जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो या ना हो, जैसे इंग्लिश में जैसे बोलते हैं नॉन स्टार्ची वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, से पहले हमको आधा अपना भोजन ये करना चाहिए। 25% भोजन हमारा कार्बोहाइड्रेट से बनना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी अनाज हम खा रहे हैं या जिन भी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है वो 25%, और 25% हमारे भोजन में प्रोटीन होना चाहिए। जैसा हम लोग ने पुराने एपिसोड में बात किया कि बैलेंस डाइट में आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड फाइबर्स, मिनरल, विटामिन, ये सब होने चाहिए। तो हमको सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पूरी जो भोजन की प्लेट है उसमें बहुत अच्छा फाइबर होना चाहिए, 25% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और 25% प्रोटीन होना चाहिए। इतना करने से हमारा जो पूरा भोजन है वो ठीक हो जाएगा। आप ये समझिए कि जब हमें डायबिटीज हो रहा है तो हमारे शरीर में जो शक्करा है, जो चीनी है, उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो हमें वो भोजन करना चाहिए जिससे ये मात्रा जो है वो जल्दी ना बढ़े। हम लोग ने पिछले एपिसोड्स में ये भी बात किया था कि हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या जो भोजन में जितनी शक्कर की मात्रा है उस हिसाब से भी हम अपना डायबिटीज का या अपना डाइट जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो हमें जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, मतलब जितने भी प्रोसेस फूड्स हुए, मैदा से बनी हुई चीजें हुई, मिठाइयां हुई, चॉकलेट्स हुई, ये सारी की सारी चीजें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, इसे हम पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए और इनका सेवन नहीं करना चाहिए। थोड़ा हमें सजग होना पड़ेगा कि हम अपने भोजन में फाइबर जो है उसकी मात्रा एकदम ठीक रखें। और इसका एक बड़ा सरल सा उपाय है कि अगर आपको संतरा बहुत पसंद है तो संतरे की फाक को खाइए, न कि उसका जूस निकाल के पीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो फाइबर कंपोनेंट है वो भी सही रहेगा और आपका जो शुगर कंपोनेंट है वो बढ़ेगा नहीं। फल जैसे आपके अमरूद हुए, आपका सेब हुआ, आप जितनी भी आपकी बेरीज हैं या आपका पपीता हुआ, ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि आपको सवेरे का जो नाश्ता है वो कच्चा करना चाहिए, मतलब आपको जो फल पसंद हो वो फल खाइए और करीब 200 से 250 ग्राम वो फल खाइए। अगर आप अपने सवेरे का जो नाश्ता है वो कच्चा करेंगे और जिसमें फल जैसे कि अमरूद हुआ, सेब हुआ, पपीता हुआ, ये सारे फल अगर आप सवेरे अपने नाश्ते में इनका प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में जो शुगर है वो एकाएक बढ़ेगी नहीं। मैं एक अपने श्रोताओं की बात बोलना चाहूंगा कि सवेरे खाली पेट कोई भी चीनी से बनी पदार्थ का सेवन मत करिए। कोई भी सवेरे उठते ही, जैसे जो लोग कहते हैं ना कि हम पूजा करके प्रसाद खा के अपना दिनचर्या शुरू करेंगे, मैं उन सभी भाई बहनों को बोलना चाहूंगा कि सवेरे उठते ही प्रभु को अगर आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो कृपा करके कोई फल का प्रसाद चढ़ाइए और उससे अपने दिन की शुरुआत करिए। चबा चबा के भोजन करिए, सवेरे फल करिए, दोपहर के भोजन में आधा भोजन आपका सलाद और सब्जियों से होना चाहिए, आपका 25% भोजन जो है वो प्रोटीन से होना चाहिए और 25% में आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जो भी अनाज आपको पसंद है उसको आप ले सकते हैं। यही चीज आपको शाम को करनी चाहिए कि आप 3-4 बजे 250 ग्राम फल ले लें आप, और रात के समय फिर यही चीज पे आप कोशिश करें कि आप सब्जी, सलाद, सूप इसको ले लें। इससे आपका जो डायबिटीज है वो पूरा कंट्रोल में रहेगा।
0: ये बात समझ में आती है कि हम अपने भोजन पर अगर ध्यान देते हैं, भोजन की थाली कैसी दिखनी चाहिए, सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, रात्रि के भोजन, इन सभी चीजों पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये सब कुछ सरल हो सकता है। प्रायः जब आप ये बात कहते हैं कि सुबह का नाश्ता 250 ग्राम जितने फल होने चाहिए, कच्चा होना चाहिए, कई लोग फलों के मामले में भी लोगों को बड़ी चिंता होने लगती है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये चबाने में हमको तकलीफ होती है, जैसे अगर हम किसी को सलाद खाने के लिए कहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये चबाना पड़ता है बहुत, और खासकर उस उम्र में जब लोग डायबिटीज के शिकार होते हैं तो कई लोग अपनी बड़ी उम्र में या उम्र के बढ़ते हुए फेज में होते हैं तो वहां पर वो उन चीजों को करने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि लोग ये कहते हैं, कई लोग ये बात कह देते हैं कि अरे जिंदगी भर तो हमने नहीं खाया, अब खाने से क्या होगा, ये भी चीज कह देते हैं। तो दो प्रश्न हैं। पहले तो जो लोग इन चीजों को चबाकर खाने वाली कच्ची चीजों को लेकर जो इश्यूज कहते हैं उसके बारे में क्या किया जाए, और क्या उम्र के एक बढ़ते पड़ाव में जब व्यक्ति 50-60 की उम्र के बाद डायबिटीज से ग्रस्त हो रहा है और उस समय पर उसे ये बदलाव करने पड़ेंगे तो क्या उससे उसको उतना फायदा होता है?
1: जिस दिन हमें मालूम चलता है कि हमको डायबिटीज हो गई है, वो उम्र कोई भी हो, उस दिन से हमें अपने भोजन में, अपनी दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए। आपको घूमना पड़ेगा, आपको अपने शरीर को हिलाना डुलाना पड़ेगा। अगर आप चल नहीं सकते हैं तो प्लीज कुर्सी पे बैठ के, बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं जिसमें अपना हाथ हिलाना है, अपने कंधे हिलाना है, अपनी कोहनियां हिलानी है, अपने पैर की उंगलियों के हिलाना है, एड़ी हिलाना है, आगे पीछे चलना है। आप कुर्सी पे बैठ के बहुत सारे व्यायाम कर सकते हैं। मैं सबको एक राय देता हूं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सामने के आपके घर में कोई भी दरवाजे का कुंडा है उसमें अपनी चुन्नी या कोई रस्सी फंसाइए, और पुराने जमाने में जिस तरह से दही मथा जाता था अपना हाथ आगे पीछे करके खींचिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप 50 साल 60 साल के हैं और आपको तब मालूम चलता है कि आपको डायबिटीज हुई है तो आपको सजग रहने की उतनी ही जरूरत है जितना एक 30 साल या 20 साल के बच्चे को होगी। अगर आप 60 साल की उम्र में आपको डायबिटीज हो रही है तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा कमजोर हो सकती है, इसीलिए आपको सजग होने की पूरी जरूरत है। आपका दूसरा सवाल था श्री भैया कि जो लोग कहते हैं कि हम सलाद नहीं खा सकते या फल हम नहीं खा सकते, उनके लिए मैं एक राय दूंगा कि आप फल को या तो थोड़ी सी दही डाल के या थोड़ा सा पानी डाल के उसको चला लीजिए मिक्सी में और वो एक सूदी टाइप बन जाएगा, उसको खाना शुरू करिए। आप अगर किसी चीज को मिक्सी में चला लेते हैं, आप गाजर को ही मिक्सी में चला लीजिए, तो आप देखिएगा कि उसका थोड़ा सा रस निकलेगा और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएगा। आप देखिए जब हम गाजर का रस निकालते हैं तो रस पूरा एक तरफ आ जाता है और उसका जो खुज्जा है वो अपने आप बाहर फेंक दिया जाता है। पर हमें अगर डायबिटीज है तो उस खुज्जे की भी हमको जरूरत है। तो कोई भी आप फल खा रहे हो आप उसको मिक्सी में चला सकते हैं, आप बहुत थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा दही डाल के उसको चला सकते हैं, और ये उसमें आपको क्या होगा कि वो जो मेहनत आपके दांतों को करनी है उसको चबाने के लिए, वो मेहनत मिक्सी में चलाने के बाद हो जाएगी और वो आपके शरीर को नुकसान नहीं देगा। आप देखिए श्री भैया, जो भी रस हमको चाहिए, किसी भी चीज का हम जूस अगर निकालते हैं तो बहुत सारा खुज्जा उसमें से बच जाता है। हमको डायबिटीज में खुज्जा चाहिए अपने शरीर के लिए, क्योंकि वो फाइबर है, वो हमारे शरीर को ताकत देगा। बहुत सारे लोग सुबेरे नाश्ते में टमाटर और दही का भी प्रयोग करते हैं, वो टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और दही में मिला के उसको हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के भी खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी है। आप मतलब उस फल को आप अपने चाकू से छोटा छोटा काट के भी खा सकते हैं, मगर आप ये चाहिए कि आप प्रोसेस्ड फूड खाएं, जैसे बेकरी के प्रोडक्ट्स खाएं, व्हाइट ब्रेड खाएं, आप बिस्किट्स जो हैं वो खाएं, वो सारी चीजें आपको बहुत नुकसान करेंगी। तो अगर आपको शुगर हुआ है, और जो भी डायबिटीज रिवर्सल की बात करता है, डायबिटीज रिवर्सल में यही बात की जाती है कि आप फाइबर रिच फूड खाइए और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा को जीरो कर लीजिए। आप अगर इतना कर लेंगे तो आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका भोजन ही आपका डॉक्टर बन जाएगा। कहा जाता है ना, मेक thy फूड thy मेडिसिन, वो आपका भोजन ही आपकी दवा बन जाएगी और आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे।
0: आज ये बात समझ में आ रही है कि आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आप किसी भी उम्र में डायबिटीज के मरीज क्यों ना बन रहे हो, आप उस डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, उसे रिवर्स किया जा सकता है। सिर्फ आपको अपने भोजन ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने की जरूरत है, इन चीजों से ये चीज समझ में आती है। देखते देखते वक्त ये कह रहा है कि यहाँ रुकना होगा, मगर आज जो बातें हमने आपसे सुनी, मैं समझता हूँ उन चीजों में सबसे पहले तो अपने आहार पर, हर दिन के हमारे भोजन की थाली कैसी होनी चाहिए उस पर ध्यान देना जरूरी है। आप डायबिटीज के मरीज किस उम्र में बनते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप जिस भी उम्र में डायबिटिक बने तुरंत आपके लिए वो एक सुनहरा मौका है अपने जीवन में सुधार लाने का, कि आप अपने सुबह के नाश्ते को कच्चा करें, यानी फ्रूट्स खाएं, 250 ग्राम जितने फल खाएं उन फलों को खाएं जिसमें फाइबर की मात्रा हो, और साथ ही साथ अपने भोजन के समय पर भी किन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है, ये चीज आज हमने डॉक्टर राहुल मोदी जी से सुनी। भोजन के साथ साथ अपने व्यायाम पर भी हाथ पैर हिलाने, अपने श्रम के ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है, और कितना सरल उपाय आज हम सब लोगों के लिए ये पता चला कि अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो आप किसी कपड़े को अपने दरवाजे के खूंटे पे बांध कर अगर उसे हिलाने का भी अभ्यास शुरू करें तो वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी के रूप में आप शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका दैनंदिन अभ्यास शुरू होगा। अच्छी आदतों को लाने से हम अपने अच्छे स्वास्थ्य को भी वापस पा सकते हैं दोस्तों। और आज की चर्चा से ये बात बहुत ही सरल रीति से स्पष्ट होती है कि डायबिटीज जैसी बीमारी के साथ जिंदगी भर दवाई लेते हुए रहना ही नहीं, मगर हम बदलाव करते हैं तो बदलाव संभव है। आज हम सभी श्रोता मित्रों के लिए डॉक्टर राहुल मोदी जी ने ये मार्गदर्शन उपलब्ध कराया, इसके लिए आप सभी श्रोताओं की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में जो चीजें सुनी है वो आप अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार और अपने साथियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उस जानकारी का इस्तेमाल करें, इससे उनके जीवन को स्वस्थ बनाने का तोहफा आप दे सकते हैं। आज रेडियो मधुबन पर सहज स्वास्थ्य में यही रुकते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, आप समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर क्या पहुँचा दोगे है, कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करने का एक पूरा एहसास हमें पता चला कि टेक्निक क्या है, खुद की पहचान भी हुई। अगर पिछली कड़ी को देखें तो परमात्मा के साथ एक बहुत खूबसूरत रिश्ता, एक ऐसी आत्मा के साथ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, एक ऐसी आत्मा के साथ जो कि प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है, प्योरिटी का सागर है, और उसकी वाइब्रेशंस हमेशा मुझ तक पॉजिटिव पहुँच रही हैं। उसके साथ जब रिश्ता जुड़ा तो मैं खुद एम्पावर होती गई। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट में और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पूरी श्रृंखला को मैं एक बार फिर पीछे मुड़कर देखूं, बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं, एंड इनफैक्ट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आपके ढेर सारे सवाल जो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कि हम आगे कहाँ पढ़ें। कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में?
1: I would just say that it's lovely to see ke how everyone has this pure desire to work on themselves. You know, aaj din tak jo hum blame auron par dal dete the, to kahin na kahin har ek jo dekh raha hai usko ek bahut deep realization ho gayi hai, and an amazing sense of self confidence ke okay, it's still in my hand. To wo ek feeling jo hai wo bahut badi ek source of empowerment mil jati hai ke irrespective of कितना भी प्रॉब्लम बाहर हो, स्टिल द सोल्यूशन टू अ लार्ज एक्सटेंट इज़ इन माई हैंड। और जब ये एक रियलाइजेशन होती कि ये मेरे हाथ में है, चाहे अपना ध्यान रखना, चाहे अपने संबंधों को परिवर्तन करना, और चाहे सिचुएशंस को ठीक करना, सो दिस गिव्स अमेजिंग रियलाइजेशन। और हर एक के जो फ़ोन आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख कर के हर एक को कितना ये एक यू नो प्योर डिज़ायर है टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड देन टू सी द रिजल्ट्स। क्योंकि इतना हर एक, जैसे जस्ट यस्टरडे आई गॉट एन एसएमएस फ्रॉम अ सिस्टर एंड शी सेड टुडेज एपिसोड एंड वन प्रॉब्लम जो मेरे साथ सालों से थी वो कल सडनली ठीक हो गई।
0: ये बहुत हो रहा है, एक सूत्र, मतलब इनफैक्ट मेरे साथ हुआ, मेरे साथ होता है बार बार एपिसोड्स में, या लोगों के साथ होता है, एक सूत्र मिलता है और हमें लगता है कि अरे हल्के हो गए, यू नो, बेसिकली वी आर ऑल फीलिंग लाइट।
1: So this, I just realized from that, I said, look at the, कि परमात्मा के ज्ञान में कितनी पावर है, कि इसीलिए कहा जाता है कि ये ज्ञान, यू नो, जीवन को कैसे परिवर्तन करता, कि एक पॉइंट से हमारे सालों के से जो हमने कोई बात पकड़ी हो वो ऐसे खत्म हो जाती है। जस्ट शोज द पावर ऑफ द ज्ञान, बट ऑल्सो शोज द पावर ऑफ द सोल, कि हम आत्माओं में भी कितनी ताकत है।
0: एक सेकेंड में,
1: एक सेकेंड
0: हम हवा में उड़ा

0: सकते हैं उस चीज को.
1: तो इसका मतलब अगेन इट प्रूव्स टू मी टू ईच वन कि एवरीथिंग इज इन माय हैंड. जहां हमने इतने सालों तक उस बात को पकड़ी होगी कि मेरे ये तो मेरी गलती नहीं है, और चेंज करने में वन थॉट, इट्स ओनली अबाउट व्हेन आई क्रिएट दैट थॉट.
0: अभी तक का जो मेरा बिलीफ सिस्टम हुए मेरा ये रहा था कि वहां से मिल रहा है, मेरा बच्चे के कारण मुझे मिलेगा, मेरे हस्बैंड के कारण, मेरे ऑफिस, मेरी अचीवमेंट के कारण मुझे सक्सेस मिलेगी, वो हैप्पीनेस मिलेगी. ये रियलाइज हुआ कि इट इज ऑल इनसाइड, यू नो, यहाँ से मिलेगा. लेकिन यहाँ की भी अभी जर्नी जो थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी. तो एक तरफ तो बार बार मेरा वो जो बिलीव सिस्टम, मेरे को जो आदत पड़ी हुई है यहाँ से खुशी लेने की, कि उनके आने से मुझे खुशी मिलेगी, और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो अभी तक उतना नहीं टूट रहा है, और जो अंदर का रिश्ता मेरा अपने आप से जुड़ता हुआ जो है वो भी अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है.
1: एक्चुअली जो हम शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं वो अवेयरनेस शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं. रियलिटी तो पहले भी वही थी, रियलिटी चेंज नहीं हो रही है. जो हम कह रहे हैं कि मुझे खुशी औरों से नहीं मिलती, मुझे खुशी कुछ करने से नहीं मिलती, खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है, ये कोई नई चीज़ आज होने नहीं वाली है. दिस वॉज ऑलवेज हैपनिंग इवन बिफोर हैंड. इट इज़ जस्ट दैट आई वॉज नॉट अवेयर. अब सडनली जैसे कि हमने अवेयरनेस आई तो हमें लगा ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर ही आती जा रही है. हर चीज़ मैंने करनी है, हर चेंज मैंने लाना है, हर खुशी मुझे समवेयर आई थिंक दैट बिकम्स अ लिटल
0: वेरी ट्रू. यू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई कि अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि अरे मैं डिनर पे जाऊंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी, या मैं लोगों से मिलूंगी उससे मिलूंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी.
1: नहीं नहीं नहीं, बट सी अगेन, आप अपने आप को इन चीजों से कट ऑफ नहीं करेंगे, बिल्कुल
0: कट ऑफ नहीं कर रहे. लेकिन मुझे ये कि उनसे खुशी मिलेगी को मैं देखना तो कम से कम शुरू करूंगी, कि अब मैं उसको तो देखती हूँ कि नहीं मेरे अंदर ये थॉट क्रिएट हुआ, मुझे मेरी खुशी, मुझे खुशी मिल रही थी, वो हैं गुड, वो नहीं भी होंगे तब भी मैं वो खुशी क्रिएट कर सकती.
1: एब्सोल्युटली. तो ये तो पहले भी हो रहा था, सिर्फ ये था कि वो हैं तो मैं खुशी क्रिएट कर रही थी, वो नहीं हैं तो मैं दर्द क्रिएट कर रही थी. वो तो पहले भी यही रहा था, सिर्फ ये था कि मुझे लगा था कि उनके आने से खुशी आ गई, बट इट वॉज एक्चुअली उनको मिलने से मैंने खुशी क्रिएट कर दी. नाउ द ओनली थिंग विद अवेयरनेस इज रियलाइजिंग कि आई एम क्रिएटिंग दर्द ऑल्सो, आई एम क्रिएटिंग. दूसरे ने मुझे दर्द नहीं दिया, दूसरे ने मुझे खुशी नहीं दी, आई एम क्रिएटिंग. तो वो करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्लेम गेम भी फिनिश हो जाता है, और कहीं ना कहीं अपने आप को तुरंत फटाफट से राइट स्टेट ऑफ माइंड में फिर से लाना वो इजी हो जाता है. इट डजंट मीन हम बाहर नहीं जाएंगे, हम आउटिंग पे नहीं जाएंगे, हम लोगों से नहीं मिलेंगे, या हम पार्टी नहीं करेंगे. हम सब कुछ करेंगे बट विद द राइट इंटेंशन कि ये सब क्यों हो रहा है. इट्स अ चेंज, इट्स नाइस टू मीट पीपल, एंड व्हेन आई मीट पीपल नाउ इट इज़ विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग. वो करो, अब आप पार्टी में जाओ, डिनर पे जाओ, बट गो विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग योर वाइब्रेशंस. इट विल बी द सेम पार्टी, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसमें, आप पार्टी में जाओ, हर एक से मिलो, लेकिन किसी के भी कमेंट से या किसी की भी कोई बात से आप डिस्टर्ब अगर नहीं हो. पहले भी हम जाते थे, कई बातें अच्छी हुआ करती थी, कई बातें कोई ऐसी हो जाती थी जो मैं अपसेट ही होकर वापस आ जाती थी, तो फिर वो डिनर ने खुशी दी, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे. नाउ आई गो, आई मीट एवरीवन विद द अवेयरनेस, ये सब बाहर हैं, ये अंदर है, मुझे क्या करना है, क्या लेना है, और इसका साथ साथ ध्यान रखना है, इस अवेयरनेस के साथ अब इंटरेक्शन में आना है. तो ये नहीं है कि वैक्यूम नहीं होगा, लेकिन लीकेज बंद होने लगेगी. अभी लीकेज बहुत हो रही थी. देखो, हम चार्जिंग बहुत कम कर पाते हैं सारा दिन में. सोल कॉन्शियस रहना, दिस इज चार्जिंग, हम कितना कर पाते हैं, फिर सारा दिन वही बॉडी को. एटलीस्ट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डिप्लीशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो चार्जिंग इतनी सी होगी और डिप्लीशन इतना हो जाएगा, तो एट द एंड ऑफ द डे
0: वही थका हुआ महसूस
1: कहीं भी नहीं. तो एक है कि हम मेडिटेशन तो करते हैं, चार्ज करते हैं, बट इट विल नॉट हैपन लाइक दिस कि ओवरनाइट आप एकदम भरा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस हैं.
0: बहुत अच्छा, समय ये कि दोनों शिफ्ट बहुत बड़े हैं. एक्चुअली और दोनों को आप बहुत स्ट्रॉन्गली महसूस कर पाते हैं.
1: हमें बहुत इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो एफर्ट हम कर रहे हैं उसको एफर्ट नहीं कहें, लेकिन जो हम अपने ऊपर अटेंशन रख रहे हैं उसको कभी टेंशन मत बनने देना. यू नो, कई बार परमात्मा भी हमें ये कहते हैं कि अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सारा अटेंशन तो यही हो रहा है कि टेंशन को फिनिश करना है. लेकिन कई बार अटेंशन रखने का टेंशन हो जाता है, हाय मेरे से ये ना हो जाए,
0: ओह मुझसे ऐसा हो गया, उफ ये फिर हो गया ऐसे.
1: ट्रू. सो वो नहीं, डोंट बी, अगेन डोंट बी हार्श विद योर सेल्फ एंड ट्राई कि जो परिवर्तन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं दैट्स अगेन नॉट फ्रॉम आउटसाइड इन. हम ट्राई कर रहे हैं कि बाहर से कि मैं गुस्सा नहीं करूं, मैं ये नहीं करूं, विच इज़ इम्पोर्टेंट. वी हैव टू कीप अटेंशन, क्योंकि अगर उस पर अटेंशन नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वापस वही ऑर्डिनरी तरह में चलते जाएंगे, ये हुआ गुस्सा किया, ऐसा हुआ गुस्सा किया, एंड फिर से वहीं के वहीं पहुंचेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ करते हुए ध्यान रखना है अपना सिर्फ, यू नो, लाइक जैसे हम कहें कि अगर आप जैसे एक माँ एक बच्चे को संभालती है, ठीक है, तो बच्चा जैसे एक पालने में है, क्रेडल में है, और माँ पूरे घर का काम कर रही है, ठीक है. नाउ एज अ मदर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस कि आप घर का भी काम करते हैं
0: एंड यू नो कि व्हाट इज हैपनिंग,
1: बच्चे का भी ध्यान रखते हैं. तो एक नज़र बच्चे पर है, अब आप सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आई यू आर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. अगर बच्चा थोड़ा भी रोना शुरू करता है आप एक मिनट निकालते हैं, इधर से हटते हैं, उसके पास जाते हैं, चुप कराते हैं, वापस आ जाते हैं. तो हम दोनों काम करते हैं ना. हम ये तो नहीं कहते बच्चे को संभालना है तो मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती. नहीं, बच्चे को भी संभालना है, घर को भी देखना है. इसी तरह यहाँ ये बच्चा है, सारा काम करना है हमें, बाहर सबसे मिलना है, इंटरेक्ट करना है, सोशलाइज भी करना है, सब कुछ करना है. एक नजर
0: अपने बच्चे पे, अपने पे रखनी है. हाँ, okay.
1: कि ये कहीं भी थोड़ा सा रोने ना लग जाए या अपसेट ना हो जाए या यू नो गुस्सा ना करने लगे. सो जस्ट दैट लिटिल अटेंशन, नॉट दैट कि मुझे सिर्फ इसका ही ध्यान रखना है, मुझे और तो बाहर यू नो आई एम नॉट बीइंग एबल टू मैनेज बोथ. नो, आई एम गोइंग टू लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग दिस, कि टेकिंग केयर ऑफ दिस ओनली बाय कीपिंग अ प्रायोरिटी राइट.
0: अच्छा, लेट्स सी, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं एक पार्टी में गई, ठीक है, एक अपने फ्रेंड सर्कल की पार्टी में गई, मैरिज पे कहीं पे भी गए, रिलेटिव्स के बीच में गए, वट एवर दे आर टॉकिंग, आई नाउ अंडरस्टैंड कि दैट्स नॉट यू नो लाइक वो उसका कोई लाभ नहीं है.
1: सी, डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग आर्टिफिशियल, डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग एक्सटर्नली. बी विद देम, बी अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन. अपने आप को काटना नहीं उस ग्रुप से, लेकिन आप ये देखेंगे, यू विल एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली कि आप जो शेयर करेंगे उन्हीं के साथ उसी टॉपिक पर, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट
0: हो चुका होगा. हाँ,
1: विच इज़ ओके. एनीवेज, जब चार लोग बात करते हैं किसी एक बात को लेकर भी, तो चार लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव ही होता है ना. सिर्फ ये है कि अब हमें लगेगा कि कहीं हमारा पर्सपेक्टिव सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यू नो पीपल आर लुकिंग फॉर दैट पर्सपेक्टिव. अगर आज आप बोल रहे हो कि हम सब की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, सो यू विल फाइंड फोर पीपल टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रॉब्लम विद योर डिफरेंट पर्सपेक्टिव. यू माइट स्टार्ट शेयरिंग द सोल्यूशन. एंड जो लोग, वो चार लोग प्रॉब्लम की बात कर भी रहे होंगे, अगर वो सोल्यूशन की तरफ भी देखते तो वो सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं. अब हमें ज्ञान से समझ में आया कि सोल्यूशन तो बहुत ईजी है, मेरे पास है, तो मुझे उल्टा अपने फ्रेंड से और लोगों से विड्रॉ नहीं करना है, मुझे सबके साथ रहना है, लेकिन अपनी स्थिति और अपने पर्सपेक्टिव को मेंटेन करके. कई बार हम बह जाते हैं, या कई बार फिर हम स्ट्रांग नहीं है तो हम विड्रॉ कर लेते हैं. ईदर ऑफ देम इज नॉट गुड. बह जाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाद में लगेगा अरे मैंने क्या किया, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीजों में, मैं कहाँ कहाँ इन बातों में चली गई, और विड्रॉ हो गए, दैट्स ऑल्सो नॉट राइट.
0: इन्वॉल्वमेंट खत्म,
1: इन्वॉल्वमेंट नहीं, और अंदर से देन, क्योंकि हर एक आत्मा का पर्पज ऑफ लाइफ जो है वो है रिलेशनशिप्स, इंटरेक्शन. तो इसलिए हमें कटना नहीं है, विड्रॉ नहीं होना, सबके बीच रहना है. सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ध्यान रखना है कि मेरी स्थिति मेरे कंट्रोल में चल रही है कि नहीं.
0: अगर इसी में करते करते किसी रिलेटिव ने कुछ कह दिया जो कि मुझे कहीं हर्ट हुआ या मेरे पर्सनल उस पर कहीं हुआ, आई गो इन टू दैट हर्ट, तो फिर मेरा वो जो ज्ञान जो या सोल्यूशन मैं जहाँ तक जा पा रही थी वो नहीं हुआ। ये जो मैं कह रही हूँ कि अभी आधी आधी जर्नी जो
1: कोई बात नहीं है, दिस इज द प्रोसेस। जैसे कोई बीमार होता है यू नो फिजिकली, तो हम बीमार से ठीक हो रहे हैं ना, यही तो हो रहा है। तो थोड़े से कमज़ोर भी हैं लेकिन ठीक भी तो हो रहे हैं। अब इस ये जो बीच का फेज आएगा, इनफैक्ट द होल द जर्नी विल गो ऑन। ये ऐसा भी नहीं है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि कितने दिन में ये जर्नी पूरी होने वाली है। एवरी टाइम यू विल फाइंड योर सेल्फ एट अ डिफरेंट स्टेज। आज हो सकता है आपको बड़ी ऑर्डिनरी बात से हर्ट हो जाए, दो महीने बाद आप उन्हीं लोगों को मिलेंगे, वो ऑर्डिनरी बातें आपको हर्ट नहीं करेंगी, लेकिन उस दिन कोई थोड़ी और बड़ी बात आपको हर्ट कर जाएगी, और चार साल के बाद उससे कई गुना कोई बहुत बड़ी बात आपको हर्ट करेगी। लेकिन द जर्नी इज गोइंग ऑन एंड देन वी आर रीचिंग टूवर्ड्स अ स्टेज वेयर वी विल बी पेन फ्री। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है फ्रीक्वेंसी में,
0: बार बार नहीं हो रहे, अब छोटी छोटी बात नहीं हर्ट कर रही है,
1: तो उससे क्या होगा, पावर अक्यूमुलेट होती जाएगी। अभी अगर दिन में 5 बार हर्ट हो रहे हैं तो 2 महीने बाद आप 5 दिन में 1 बार हर्ट होंगे, फिर साल बाद आप 5 महीने में 1 बार हर्ट होंगे, एंड देन इट सो दिस इज अ साइन ऑफ रिकवरिंग। तो रिकवरिंग इज नॉट विद इन अ फ्यू डेज और अ फ्यू मंथ्स, इट्स गोइंग ऑन। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी धीरे धीरे वी विल रीच अ स्टेज के नॉट एट ऑल। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती जाती है, जिसके लिए दिन में 5 बार हर्ट होना नॉर्मल था, उसके लिए 5 दिन में 1 बार हर्ट होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। मतलब लीकेज कितनी कम हुई, कहाँ तो उससे क्या होता है कि अभी तो मैं नॉर्मली हर्ट रहती हूँ, अभी मैं कभी कभी हर्ट होती हूँ, फिर धीरे धीरे मैं बहुत कम हर्ट होती हूँ। तो पावर, तो जितनी हर्ट की फ्रीक्वेंसी कम हुई मतलब पावर अक्यूमुलेट हो रही थी। सो बट इफ आई से नहीं मुझे इसकी ही टेंशन हो रही है, देन तो आई इट इज़ लाइक सेइंग कि मुझे अपना इलाज ही नहीं कराना, आई डोंट वांट टू स्टार्ट मूविंग। तो ये फेज बीच में आएगा कि हम अटेंशन रख रहे हैं फिर भी हर्ट हो रहे हैं, फिर भी गुस्सा हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बट उससे हम पुराने बिलीफ सिस्टम में ना चले जाएं।
0: हाँ, और हम झूठ लगने लगते हैं, यू नो समवेयर वी स्टार्ट फीलिंग कि उफ मैंने अब भी तो उन्हें सोल्यूशन दिया, यू नो, और अभी मैं हर्ट हो गई।
1: ओह इट्स ओके, एंड अब हमें ये पता है कि अभी अगर मैं हर्ट हुई मुझे ये पता है कि मैंने फटाफट अपने आप को ठीक करना है, बिकॉज वी नो नाउ कि अगर हर्ट भी हुए तो वो ही ध्यान रखना है। बच्चा रोने लग गया, पहले तो वो रो रहा है,
0: रोते ही जाता था,
1: हम अपना बाहर काम ही कर रहे हैं, अब वो रोने लग गया, लेट मी टेक आउट 1 मिनट, अपने आप को फटाफट से ठीक करना, अपने साथ हार्श नहीं हो जाना कि तुमने गुस्सा क्यों किया, समझ तो आ गया था कि गुस्सा नहीं करना। समझ इज नॉट इनफ, एक है नॉलेज, दूसरी है पावर। तो एक है अब हमें सबको इंटेलेक्चुअली समझ में आ गया है कि मेरे लिए क्या राइट है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा कमज़ोर है, तो एक कमज़ोर आत्मा अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, लेकिन वो कर पाएगी, लेकिन इस आत्मा को साथ साथ पावर भी चाहिए। तो उसलिए जहाँ आप सारा दिन इतना अटेंशन रख रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में मेडिटेशन ज़रूर करें, यू नो, अपने आप को भरें, चार्ज करें, जो हमने पिछले एपिसोड में भी बात की कि ये जो वैक्यूम है इसको परमात्मा भरता है, हम उससे वो शक्ति लेते हैं जिससे आई एम्पावर माई सेल्फ। नहीं तो क्या होगा, मेरी पावर तो बहुत कम है और मैं काम बहुत बड़ा कर रही हूँ, सडनली यू नो आई एम इन पेन बट आई एम सेइंग आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल नॉट गेट एंग्री, आई विल नॉट से एनीथिंग। तो कई बार वो पेन अंदर ही अंदर फिर मुझे
0: खाने लगता है, वही जो बात ये कि
1: वो मुझे रियलाइज नहीं होता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं गुस्सा तो अब नहीं कर रही, मैं किसी को बोल भी नहीं रही, तो नाउ आई शुड बी फीलिंग वेरी नाइस।
0: और उससे क्या होता है, जहाँ मैंने जो मेरा नेचुरल प्रोसेस था अपने आप को एक्सप्रेस कर देने का, मैंने उसे रोकना शुरू किया, तो फिर वो जब निकलता है, और वो निकलता है फाइनली, क्योंकि जहाँ मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया हुआ sure. तो वो निकलता ही, एंड देन इट लीव्स मी विद नॉट अ वेरी गुड फीलिंग कि मैं आई फेल्ड, यू नो समवेयर,
1: एंड अंदर कहीं ना कहीं वो जो ब्लिस की फीलिंग या जो हैप्पीनेस की फीलिंग है वो नहीं आएगी, क्योंकि हम बाहर, हमें लगता है कि मैं बाहर से नहीं कर रही तो अंदर आई शुड बी वेरी हैप्पी, बट दैट्स नॉट कमिंग बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टिंग विद दैट सुप्रीम पावर। तो मेडिटेशन से पावर जेनरेट करना और सारा दिन में ध्यान रखना, ये भी नहीं है कि कई बार ये भी होता, मेडिटेशन तो कर ली, चार्ज भी कर लिया, लेकिन सारा दिन ध्यान नहीं रखा बिल्कुल भी, तो जितना भरा
0: उतना
1: यू नो इट्स लाइक अ बकेट, आपने उसको नल के नीचे रख तो दिया भरने के लिए, लेकिन नीचे छेद है, तो अब कितने दिन में वो बकेट भरेगी?
0: भरेगी नहीं,
1: भरेगी नहीं। और फिर उससे भी एक फ्रस्ट्रेशन बैठने लगता है कि रोज सुबह उठो, रोज मेडिटेशन करो, रोज ये सुनो, भी परिवर्तन कहाँ आ रहा है मेरे अंदर? तो परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो लीकेज है इसको नहीं बंद किया। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स, नॉलेज भरे जिससे कि समझ मिलेगी, मेडिटेशन करें जिससे पावर आएगी, एंड सारा दिन में सिर्फ थोड़ा सा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार सब कुछ भर लिया है राइट, इट्स लाइक फिजिकल अगेन, आप राइट डाइट ले ले, एक्सरसाइज कर ले, और सारा दिन थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखें कि गलत खाना नहीं खाएं, इतना ही तो करना,
0: it becomes part of your routine.
1: इतना ही तो करना है ना, कि सारा दिन में आपने कुछ गलत चीज उठाकर नहीं खा ली, जहां खाई गलत चीज तो वहां वो इन्फेक्शन हिट कर देगी। तो इसलिए सेम चीज, ज्ञान, योग और सारा दिन थोड़ा सा अटेंशन, कि मेरा डिप्लीशन ना हो, तो फिर वो भरना शुरू भी हो जाएगा, क्योंकि भर भी रहे हैं और लीकेज को भी स्टॉप कर दिया। और अगर कभी हो जाए थोड़ा, तो इट्स ओके, बिकॉज सबसे पहली बात है कि औरों को प्यार करने से पहले अपने को प्यार करना। अगर अपने आप से बहुत हार्श हो जाएंगे तो फिर वो नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो वो औरों तक भी पहुंचेगी। तो बी नाइस विद योरसेल्फ, बी वेरी लवफुल टू योरसेल्फ, बट डोंट बी केयरलेस विद योरसेल्फ। दैट्स दैट बैलेंस। एक है गुस्सा करते गए, अपसेट होते गए, खुद को कहते गए कोई बात नहीं ना, आई एम ऑन द जर्नी, कोई बात नहीं, आई एम ऑन द जर्नी, नो, देन दैट इज केयरलेसनेस। किया, अपने आप से बैठे, फिर से रिवाइज किया, समझा, ओके नेक्स्ट टाइम केयरफुल, देन मूव ऑन, नो गिल्ट ऑफ द पास्ट।
0: अभी तक क्या होता था, एंग्री जब हम होते थे ना, तो हमें गिल्ट याद आता कि हमने दूसरे को हर्ट किया, ये कभी भी नहीं याद रहा कि हमने अपने आप को हर्ट किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जिसने क्रिएट किया सबसे पहले तो वो हर्ट हुआ, तो और फिर उसके बाद अगर गिल्ट क्रिएट किया फिर और हर्ट हुआ। सपोज मैंने आपको गुस्सा कर दिया, तो पहले जैसे पेरेंट्स बच्चों में बहुत होता है, हस्बैंड में, मतलब पहले मैंने गुस्सा किया तब मैं हर्ट हुई, फिर आप तो चले गए, कोई बच्चा स्कूल चला गया, हस्बैंड, फिर उसके बाद मैं जो गिल्ट क्रिएट किया, फिर मैं और हर्ट किया,
0: और वो इतना ज्यादा देर तक रहता है वो।
1: कई बार देखो बच्चे को तो भूल भी जाता है, वो चला जाता है स्कूल अपने फ्रेंड्स में, लेकिन मदर घर पे बैठ बैठ कर इतना गिल्टी हो जाती है। सो रियलाइजेशन एंड गिल्ट में फर्क है। गिल्टी होने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, पश्चाताप करते गए, हाय मैंने क्यों किया, हाय मैं, मेरे से नहीं होना चाहिए था, ये चर्न नहीं करते कि मुझे क्या करना है या मुझे आगे से अपने आप को कैसे protect
0: and karna what hai. Was it that triggered, you know, that has helped me now,
1: yeah. So that is realization, this is guilt. So guilt is damaging, lekin realization is important, aur realization karne ke liye thoda sa samay nikal kar us pe reflect to karna padta hai, lekin reflect in the right perspective, reflect in the sense fir se us situation ko le lo aur apne aap ko udhar dekho, where did I go wrong in the response, and iski jagah aur kaun sa response हो सकता था, कहाँ मैं अपने आप को भी और दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर सकती थी। लेकिन गिल्ट वाली सिचुएशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, उन्होंने गलती ही ऐसी की, इट इज अनदर विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिविटी, रिजल्ट नथिंग। यू नो कई बार बार बार बार बार सोचते रहते हैं और कहेंगे जब तक पास्ट के बारे में सोचेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे,
0: पास्ट जो है हमारे फ्यूचर को तय करता है, पास्ट
1: रिवाइंड सब करते हैं, सीखा नहीं जाता हमसे उससे कुछ भी। रिवाइंड करके एक बार उस सिचुएशन को देख ले और अपने आप को देखे उसमें। रिफ्लेक्ट करने में भी इम्पोर्टेंट ये है कि किस पे रिफ्लेक्ट करना है। हम रिफ्लेक्ट सब पर भी कर रहे होते हैं जो जो उस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व है, नॉट एट ऑल, दे वर प्लेइंग देयर ओन रोल। रिफ्लेक्ट करना है, वेयर डिड आई डू समथिंग विच वेंट रॉन्ग, एंड वॉट कैन I do to make it
0: better. You know, that's more important than what can I do to make it better. Because what happens at times, I become so ashamed of myself. मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही होती है अगर मैं rewind करके उसको देख रही होती हूँ कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ।
1: लेकिन this is relationship with the self. अगर किसी और से कोई गलती हो जाती है, हाँ, हम उनको क्या कहेंगे?
0: It's okay.
1: कोई बात नहीं। Move. Don't sit back with that. उठो, आप कर सकते हो। Because जब कोई गलती कर देता है वो पहले दर्द में चला जाता है, तो उसको अब चाहिए प्यार एंड कॉन्फिडेंस वापस खड़े होने के लिए। तो जो हम औरों को देते हैं खुद को खुद को देना है। इसलिए रिलेशनशिप विद द सेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई बात नहीं, चलते चलते ये सब विल कम एज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, बट रुक कर अपने आप को प्यार से कि इट्स ओके, यू हैव डन वेरी वेल, पहले इतनी बार भी तो आपने नहीं किया, एक बार हो गया, नेवर माइंड, मूव, नेक्स्ट टाइम यू वोंट डू इट, यू नो दैट वे, दिस इज सेल्फ काउंसलिंग, अपने आप से प्यार, अपने आप को मोटिवेट। लेकिन अगर गिल्ट में चले गए तो खुद को डीमोटिवेट कर देंगे,
0: इट्स वेरी बैड, यू नो,
1: और फिर कहीं ना कहीं उस जर्नी को ही रोक देंगे कि ये मेरे से नहीं होता, इससे तो गुस्सा करो, खत्म करो।
0: इससे अच्छा तो मैं पहले ही थी कि मैं गुस्सा को एक्सेप्ट कर लूं कि गुस्सा ठीक है, गुस्सा जेन्युइन है, गुस्सा नेचुरल है, इट्स ओके,
1: ट्रू। सो देन कहीं ना कहीं द ओनली थिंग इज एक्सपेरिमेंट करने से पहले बहुत क्लैरिटी चाहिए कि क्या मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्या मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एंड एम आई कन्विंस्ड। चेंज जहाँ बात आती है, चेंज तो कहते तीन चीज़ें चाहिए, व्हाट टू चेंज, हाउ टू चेंज, एंड द वांट टू चेंज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, व्हाट टू चेंज, क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, लेकिन क्या मुझे चेंज करना है,
0: क्या मैं चाहती
1: हूँ। वांट टू चेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी क्या हुआ, व्हाट टू चेंज मालूम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल गुस्सा नहीं करना, व्हाट टू चेंज मालूम पड़ गया, हाउ टू चेंज वो भी मालूम पड़ गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम, लेकिन डू आई रियली वॉन्ट टू चेंज, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने सबकॉन्शियस में अभी तक भी वो पुराना बिलीफ तो नहीं पकड़ा हुआ, गुस्से से ही काम होगा, गुस्से से ही दूसरा सुधरेगा। तो जब तक वो बिलीफ नहीं हटेगा, सो दैट डीप डिजायर टू वॉन्ट टू चेंज हमें करना पड़ता है, और ये सेल्फ एनालिसिस भी मेडिटेशन में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हम सारा दिन में अपने आप को देखते हैं तो एक ऊपर की लेयर पे देखते हैं, यू नो, कॉन्शियस माइंड पर, एंड उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन जब साइलेंस में बैठकर सुबह देखते हैं तो यू नो ये कॉन्शियस लेयर साइलेंट हो जाती है, एंड सब कॉन्शियस में हमें आंसर्स मिलते हैं
0: जो रियल में निकल कर आ रहा होता है,
1: कि कहाँ कहाँ मेरे अभी भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ मैं बार बार अभी भी फेल हो रही हूँ, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे अपने ही प्रोग्रेस में, जो सक्सेस मुझे जीवन में चाहिए, वहाँ वो अभी भी रुकावट बन रही है। ये चीज़ें साइलेंस में, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बहुत अच्छी पता चलती हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन या इंट्यूशन पावर, ये उस समय एक्टिवेट होता है, तो उसमें हमें ये आंसर्स मिलते हैं व्हाट टू चेंज। फिर परमात्मा के ज्ञान से हाउ टू चेंज वो मिलता, एंड वॉन्ट टू चेंज तो हर आत्मा चाहती है, लेकिन डीपली दैट ऑल्सो आई हैव टू चेक। दिस इज कई बार लगता है हाँ आई वॉन्ट टू चेंज, लेकिन अंदर अगर वो आंसर निकल रहा नहीं, लेकिन गलती तो इनकी थी, तो देन आई डोंट वॉन्ट टू चेंज, आई स्टिल वॉन्ट यू टू चेंज। द नीड फॉर आस्किंग अदर पीपल टू चेंज इज अ वेरी डीप बिलीफ, बहुत डीप है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमें आसपास अपने दूसरे लोग गलतियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसने गलती की, इसने गलती की, इसने गलती की, तो वो बहुत फोकस सब पर है, तो अभी भी वांट टू चेंज औरों का बहुत ज़्यादा है कि इनको बदलने की ज़रूरत है। सो दीज आर थ्री क्वेश्चंस जो अपने साथ रखें, एंड इसको मेडिटेशन में इस पर वर्क करें, आंसर्स निकल कर
0: आएंगे। ट्रू, और आंसर्स वही होंगे जो सही है, जो हमें सही रास्ता दिखाएंगे। आज की इस पूरी बातचीत के लिए सर शिवानी, थैंक यू सो मच। फिलहाल आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है, लेकिन उसका हम जो है अपेक्षा भी करते हैं कि आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0999334555, 0987 99 99 7445। हमारा ईमेल आईडी है om shanti studio@bkmail.org।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में नई किरण। इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आज 21 तारीख है और 21 जुलाई की बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। 21 तारीख से मुझे याद आता है कि हम लोग जब शुरू शुरू में मेडिटेशन करने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर जाते थे तो वहाँ पर जो है एक विशेष रूप से जिन लोगों को थोड़ा सा कुछ अच्छा अपने लाइफ में या अपने स्वयं में बदलाव करना है तो वहाँ पर एक 21 दिन का जो है प्रयोग बताया करते थे। तो किसी भी आदत को बदलने के लिए मिनिमम कम से कम 21 दिन का प्रयोग आपको करना है, या किसी भी विचार को बदलने के लिए 21 दिन का प्रयोग करना है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसके बाद भी आपको कंटिन्यू करना होता है, लेकिन 21 दिन तक अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए अपनी आदत बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक ईजीनेस महसूस होता है, आप उन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी एक बात यहाँ पर समझाई गई थी। तो चलिए, मैंने अपनी बात बताई और आप भी बताइए कि कल आपने कैसे अपने समय को व्यतीत किया है, और कुछ खास नई बातें अगर हुई है। कल आपने टीवी पर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं तो उसमें भी अगर आपको कहीं विचार ऐसा लगता है कि कुछ शेयरिंग होना चाहिए, कुछ बताना चाहिए तो ज़रूर बता सकते हैं और मैं आपको सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो आइए 21 जुलाई की कुछ खास बातें आपसे शेयर करूँगा और बातें करें आज के कैलेंडर के हिसाब से। भारतीय समय के अनुसार राष्ट्रीय शके 1948 शके 30 गते 5 आषाढ़ मंगलवार आज है। विक्रम संवत 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्ष और सप्तमी मंगलवार चित्रा आज है। इस्लामी हिजरी 1448 6 सफर मंगल सिमका आज है। इसके साथ ही आज कुछ खास लोगों का जन्मदिन है, कुछ खास लोगों का पुण्य दिवस है जो हम लोग आगे बात करते हैं, लेकिन अभी कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी को मैं ले चलूँगा एक बहुत ही खूबसूरत भजन की तरफ। और जैसे कि आज खास मंगलवार है तो हम सभी मंगलवार को हनुमान जी को याद करते हैं, तो एक बहुत ही प्यारा सा हनुमान चालीसा आपको सुनाता हूँ ताकि आपका दिन रिफ्रेश हो जाए और एक पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाए। तो लीजिए हनुमान चालीसा, आपके नाम, सुनते रहो मस्त।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और हनुमान चालीसा आप सुन रहे थे और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। गुलशन कुमार और साथियों का गाया हुआ ये खूबसूरत हनुमान चालीसा आप सुन रहे थे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ आज के दिन विशेष के बारे में। जैसे आज हमारे खास गीतकार हैं जिनका नाम आनंद बख्शी है, उनका जन्मदिन है। जी हाँ, 21 जुलाई 1930 को इनका जन्म हुआ था और एक लोकप्रिय भारतीय कवि और गीतकार रहे। 1967 में एक फिल्म आई थी सुनील दत्त की और नूतन की अभिनीत फिल्म मिलन। मिलन के गाने सावन का महीना पवन करे शोर, युग युग तक हम गीत मिलन के गाते रहेंगे, राम करे ऐसा हो जाए, जैसे बहुत ही सदाबहार गानों के जरिए उन्होंने गीतकार के रूप में नई ऊंचाइयों को छू लिया था। 4 दशक तक फिल्मी जगत में बेताज बादशाह रहे आनंद बख्शी ने 550 से ज़्यादा फिल्मों में लगभग 4000 गीत लिखे। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्तित्व के बारे में बातें करेंगे आज, और आनंद बख्शी का ही लिखा एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको, जहां से उन्होंने कहानी शुरू की है, चलिए मैं उसी कहानी को फिर दोहराता हूं। उनके ही खूबसूरत गाने आज आपको सुनाने वाला हूं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए आनंद बख्शी का एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपके नाम, और आशा करूंगा आप इस गीत को सुनकर बिल्कुल अपने पुरानी यादों में खो जाएंगे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आप एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गाना, सावन का महीना पवन करे शोर। मिलन इस एल्बम का है, 1967 में रिलीज हुआ था। लता मंगेशकर का गाया ये खूबसूरत गीत, लता मंगेशकर और मुकेश ने गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा, आनंद बख्शी का लिखा ये खूबसूरत गीत, जिसे कास्टिंग किया था सुनील दत्त और न्यूटन पर, और अदूर्ति सुब्बा राव ने इसे डायरेक्ट किया था। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, बातें चल रही थी आनंद बख्शी साहब के बारे में। आनंद बख्शी जी का ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना। अगर उनका कोई गीत आपको पसंद आता है और आप जानते हो आनंद बख्शी के गीतों को, लाइक करते हो, सुनते हो, तो ज़रूर हमें फ़ोन करके आप बता सकते हैं आनंद बख्शी साहब के कोई एक गीत जो आप सुनना पसंद करेंगे। आपका पसंदीदा आनंद बख्शी साहब का गीत ज़रूर बताइए, तो हमें खुशी होगी उस गाने को प्ले करने के लिए आपके लिए। तो आइए, बातें कर रहे थे आनंद बख्शी जी के बारे में। इनका जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में आज ही के दिन 1930 को हुआ था। आनंद बख्शी को उनके रिश्तेदार प्यार से नंद या नंदू कहकर पुकारते थे। बख्शी उनके परिवार का उपनाम था, जबकि उनके प्रियजनों ने उनका नाम आनंद बख्शी रखा था। लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद आनंद बख्शी नाम से ही उनकी पहचान बनी और आनंद बख्शी के दादाजी सुगरमल वैद बख्शी रावलपिंडी में ब्रिटिश राज्य के दौरान सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। उनके पिता मोहनलाल वैद बख्शी रावलपिंडी में एक बैंक मैनेजर थे और उन्होंने देश विभाजन के बाद भारतीय सेना को सेवा प्रदान की। नेवी में बतौर सिपाही उनका कोड नाम था आज़ाद। आनंद बख्शी ने केवल 10 वर्ष की आयु में अपनी माँ सुमित्रा को खो दिया था और अपनी पुरानी जिंदगी पूरी जिंदगी मातृत्व प्रेम के लिए जिज्ञासा व्रत रहे और प्यासा रहे। उनकी सौतेली माँ ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस तरह से आनंद बख्शी अपनी दादी माँ के और करीब हो गए और आनंद बख्शी साहब ने अपनी माँ के प्यार को सलाम करते हुए कई गाने लिखे, जिसमें माँ तुझे सलाम, माँ तुझे अपने आंचल में छुपा लूँ, तू कितनी भोली है, मैंने माँ को देखा है। इस तरह से जो खूबसूरत गाने हैं अलग अलग फिल्मों में उन्होंने लिखे हैं। जो माँ की कमी है वो गीतों के जरिए उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, कैसे हो सर?
0: बढ़िया बढ़िया है सुरेश जी, गुड मॉर्निंग, आपको भी स्वागत है आपका।
1: जी, आपको भी बहुत अच्छा गाना भी सुना दिया आपने, सावन का महीना पवन सर, क्योंकि सावन की शुरुआत दोबारा हो गई है।
0: जी जी,
1: और बारिश थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, थोड़ा वातावरण भी थोड़ा चेंजिंग हो गया है, अच्छा मौसम हो रहा है। आनंद बख्शी की जो बात कर रहे हैं सर, तो एक मुझे गाना शायद याद आ रहा है कि है खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, वो गाना है। सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। हेलो,
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मैं सुना।
1: वो गाना है सर। तो हमारे सभी मित्रों को आपसे नमस्ते सर, मैं 4 दिन से राजस्थान की सफर में था, कल ही आया हूँ।
0: अरे वाह,
1: तो हम कई जगह से घूम के आए हैं। पहले तो हम गए थे श्रीनाथ जी।
0: अरे वाह,
1: श्रीनाथ जी को गए थे हम, पुष्कर गए, पुष्कर होके हम खाटू श्याम गए, खाटू श्याम से होकर हम सावरिया पेट गए, और चित्तौड़गढ़ भी गए, सारा किला भी देख लिया चित्तौड़गढ़ में, जो हमारे महाराणा प्रताप का था, तो सब कुछ देख लिया। तो 4 दिन के बाद आज आए हैं, तो बस रेडियो तो हम सुनते रहे थे इस बीच में। तो सभी हमारे मित्रों को आप नमस्ते, हमारे श्री राम जी को भी नमस्ते, हमारा पूरे राम को भी हमारा राम राम, पूरे राज जी को भी राम राम, क्योंकि दोनों मिलता जुलता एक नाम है हमारे पूरे राज जी, पूरा राम जी, तो दोनों को नमस्ते सर, ओम शांति।
0: ओम शांति सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा किया। आप 3-4 दिन राजस्थान की टूर पर थे और आज पहुंचे, रेडियो सुनकर आपको अच्छा लगा और आनंद बख्शी साहब के गाने आपको याद हैं और उनके एक गाना, बहुत सारे गाने हैं लेकिन उसमें से एक गाना आपको बहुत पसंद आता है, वो है ए खुदा तेरा हर फैसला मुझे मंजूर है। तो साथियों, बात करें हम आनंद बख्शी साहब की, तो 1972 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मोम की गुड़िया। जी हाँ, और ये मोहन कुमार की फिल्म थी जिसमें मुख्य कलाकार थे रतन चोपड़ा और तनुजा। ये बहुत कम बजट की फिल्म थी जिसमें संगीतकार थे लक्ष्मीकांत पेरेल। यही वो फिल्म थी जिसमें पहली बार आनंद बख्शी को गीत लिखने का मौका मिला। एक बार मोहन कुमार ने बख्शी साहब को एक चैरिटेबल फंक्शन में गाते हुए सुना था। उसके बाद उन्होंने श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को राजी करवाया कि वो कम से कम एक गीत बख्शी साहब से जरूर गवाएं मोम की गुड़िया में। और इस तरह वे आनंद बख्शी साहब ने एक एकल गीत गाया, मैं ढूंढ रहा था सपनों में। ये गीत सबको इतना पसंद आया कि मोहन कुमार ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए घोषणा कर दी कि आनंद बख्शी एक ड्यूट भी गाएंगे लता मंगेशकर के साथ। और इस तरह से बना बागों में बहार आई।

अन्य साथी, और ये विशेष रूप से जॉर्ज मैकबी से लिखा हुआ ये फिल्म लिखाई गई थी और संजय कान जो है इस फिल्म के डायरेक्टर थे। तो आइए सुनते हैं, ए खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और आनंद बख्शी साहब के बारे में बातें कर रहे थे और मेरे साथ मनदीप जी भी हैं, उनसे भी हेलो हाय कर लीजिए आप।

0: गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. और मनदीप जी कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया. आप सब कैसे हैं? हम देख रहे हैं कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं. आज मंगलवार का दिन है, खूबसूरत गीतों के साथ भाई जी भी आपका खूब मनोरंजन कर रहे हैं. तो ऐसे ही आप सब सुनते रहिए, अपना सहयोग देते रहिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ. और जो हमें जो हमेशा याद रहता है, और ये गीत भी जैसे किशन कन्हैया का है, बड़ा नटखट है किशन कन्हैया, ये गीत भी आनंद बख्शी साहब का ही लिखा हुआ है, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा. अच्छा चलिए, उनकी कहानी में ट्विस्ट कहाँ आती है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. तो पहली फिल्म के बारे में हमने बता दिया, और पहली फिल्म जो है उनकी, उसमें जो गीत उन्होंने गाया मैं ढूंढ रहा था सपनों में, बहुत पॉपुलर हुआ. लेकिन उसके बाद लता मंगेशकर के साथ जो गीत उन्होंने ड्यूल गाया वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि वो फिल्म थोड़ा सा लो रह गया. अब बात आती है आनंद बख्शी जो है एक गीतकार के रूप में कैसे इस्टेब्लिश हुए. आनंद बख्शी साहब बचपन से ही फिल्मों में काम करके शोहरत की बुलंदियों पर जाना चाहते थे, ये सपना उनका था. लेकिन लोगों के मजाक उड़ाने के डर से उन्होंने अपनी मंशा कभी किसी के साथ जाहिर नहीं की, और फिल्मी दुनिया में गायक के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते भी थे. हुआ ऐसे, आनंद बख्शी साहब अपने सपने को पूरा करने के लिए 14 वर्ष की उम्र में ही घर से भागकर फिल्म नगरी मुंबई आ गए. ये तो उनका रहा कि हमको जितना जिस काम को करना है उसके लिए वो भाग कर आ गए, और वो रॉयल इंडियन नेवी में कैडिट के तौर पर 2 वर्ष तक काम भी कर चुके. किसी विवाद के कारण उन्हें वो नौकरी छोड़नी पड़ी. इसके बाद 47 से लेकर 56 तक, 1947 से 1956 तक, उन्होंने भारतीय सेना में भी नौकरी की. बचपन से ही मजबूत इरादे वाले आनंद बख्शी साहब अपने सपनों को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मुंबई आ पहुँचे. उनकी मुलाकात उस जमाने के मशहूर अभिनेता भगवान दादा से हुई. शायद नियति को यही मंजूर था कि आनंद बख्शी गीतकार ही बने. भगवान दादा ने उन्हें पहले अपनी फिल्म बड़ा आदमी में गीतकार के रूप में काम करने का मौका दिया. इस फिल्म के जरिए वो पहचान बनाने में भले ही सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक गीतकार के रूप में सीने करियर में सफल होने का जो शुरुआत है वो यहाँ से शुरू हो गए. अपने वजूद को तलाशते आनंद बख्शी को लगभग 7 वर्ष तक इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं होती है करने में, उसमें टाइम लगता है. और 7 साल तक इनका संघर्ष चलता रहा. 1965 में जब फूल के लिए फिल्म रिलीज हुई तो उन्होंने परदेशियों से ना किया मिलाना ये गाना लिखा था, और उसके बाद इस फिल्म के लिए उन्होंने दूसरा गाना भी लिखा था, ये समा समा है प्यार का, एक था गुल और एक थी बुलबुल. ये गाने 1965 में सुपर डुपर हिट रहे और गीतकार के रूप में उनकी पहचान पॉपुलर हो गई 7 साल के संघर्ष के बाद. इसी वर्ष उनको फिल्म जो है और भी मिलने लगे. 1965 में हिमालय की गोद में उनके गीत चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ. इसके वजह से विशेष आनंद बख्शी साहब को काफ़ी तवज्जो मिलने लगा. और फिर 1967 में आई फिल्म सुनील दत्त की और नूतन अभिनीत फिल्म मिलन. फिर तो क्या कहानी मैंने सुनाया आपको. सावन का महीना, पवन करे शोर, युग युग तक हम गीत मिलन के गाते रहेंगे, ये सारे गाने जो हैं उनके बहुत पॉपुलर हैं. तो इस तरह से उन्होंने अपनी शोहरत को हासिल करते हुए आगे बढ़े. तो चलिए उनका एक बहुत ही प्यारा सा बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, ये गीत भी सुनते हैं अभी आपके लिए. तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही पॉपुलर गीतों के बारे में हमने बातें की और बहुत सारे गीत आपको सुना रहे हैं। और आनंद बख्शी साहब, जैसे जैसे उनके गीतों का जो है चलन बढ़ता गया, लोग उनको पसंद करने लगे, उनके लिखे गीत राम करे ऐसा हो जाए, ये सदाबहार गाने जो है गीतकार के रूप में उन्होंने ऊंचाइयों को उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी इनको मिली। 4 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में बेताज बादशाह रहे आनंद बख्शी साहब ने। बहुत ज़्यादा जो है फिल्मों के लिए गाने लिखे, कम से कम 550, और कितने गीत लिखे? 4000 गीत लिखे। आप सोचिए कि क्या आप 4000 गीत लिखना माना कितनी बड़ी बात हो सकती है ना। तो रोज़ कितने गीत लिखते होंगे उनको ही पता। तो ये सुनहरा दौर था उस समय, 1965 से लेकर 75-80 तक जो है उनका ही जो है बोलबाला था। और गीतकार आनंद बख्शी साहब ने संगीतकार लक्ष्मीकांत पारेलाल के साथ काम करते हुए फर्ज, दो रास्ते, बॉबी, अमर अकबर, एंथोनी, एक दूजे के लिए और राहुल देव बर्मन के साथ उन्होंने कुछ गाने लिखे कुछ फिल्मों के लिए, जैसे कटी पतंग, अमर प्रेम, हरे रामा हरे कृष्णा और लव स्टोरी फिल्म में उन्होंने गीत लिखे। उसके बाद 1971 में बड़ा नटखट है किशन कन्हैया, ये गीत कुछ तो लोग कहेंगे ये बहुत पॉपुलर हुआ। और फिर इस तरह से बहुत ही दिल को छू लेने वाले गीत उन्होंने लिखे। और फिर निर्माता के सापेक्ष चर्चा की जाए तो राज कपूर के लिए बॉबी फिल्म के लिए उन्होंने लिखा 1973 में, 77 और 78 के बीच 1978 में सुभाष घई के साथ में उन्होंने काम किया। और राज कपूर के साथ बॉबी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए लिखा। फिर सुभाष घई के साथ हीरो, कर्ज, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, थाल, यादें, ये सारे जो पॉपुलर हिट फिल्म थे इसके गाने स्वयं आनंद बख्शी ने लिखा। यश चोपड़ा के लिए उन्होंने लिखा चांदनी, लम्हे, डर, दिल तो पागल है, ये गाने उनके लिए लिखे। और आदित्य चोपड़ा के लिए उन्होंने लिखा था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, मोहब्बतें, और फिर 2000 में फिल्मों में जो है उन्होंने काफ़ी गाने लिखे जो बहुत पॉपुलर रहे उस समय के। दिलवाले दुल्हनिया अगर आप फिल्म देखा होगा तो ये सुपर डुपर हिट फिल्म जिसके सारे गाने जो है आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीतों की तरफ, जो गाने आपको अच्छा लगता है कि सुनना चाहिए। तो एक एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो है ये मैं आपको सुनाने वाला हूँ, मिलन फिल्म का है ये गीत है, और ये गीत शायद बड़ा ही प्यारा सा है जो आप सभी को पसंद आएगा। युग युग तक हम गीत मिलन के गाते रहेंगे, अभी आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 8:50 हो रहे हैं और आनंद बख्शी साहब के खूबसूरत सुपर डुपर हिट गाने आप सुन रहे हैं। आशा करूंगा कि आप सभी आनंद बख्शी के गीत पसंद करते होंगे और बड़े ही अच्छे गीत उन्होंने लिखे हैं और हर गीत में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है एक दिल को छू जाता है उनके गीत, और वो गाने आज भी लोग पसंद करते हैं और आगे भी पसंद करते रहेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ आनंद बख्शी साहब के और गीतों को भी सुनाने वाला हूँ अभी। और आप भी अगर आपके पसंदीदा कोई आनंद बख्शी का गीत है तो ज़रूर हमें बताइएगा और हम आशा करूँगा कि मैं आपको वो गीत सुना पाऊँ, ठीक है ना। और जब जब फूल के लिए ये गीत आप सुने ही होंगे, है ना। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ, और ये गीत जो है यूनिक है, जो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो। लीजिए आनंद बख्शी साहब का एक और खूबसूरत गीत आपके नाम।

0: नमस्कार, आप सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आनंद बख्शी साहब के खूबसूरत गीत आप एंजॉय कर रहे थे और बात करें उनके नए गानों को दिया एक नया जीवन। आनंद बख्शी साहब ने शैलेंद्र सिंह, उदित नारायण, कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति और SP बालसुब्रमण्यम जैसे अनेक गायकों को पहले गीत का बोल भी लिखा, यानी ये लोग जब आए तो इंडस्ट्री में आनंद बख्शी साहब ने इनके लिए गीत लिखा और ये पॉपुलर भी हुए। आनंद बख्शी 40 बार फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए और 4 बार ये पुरस्कार उनके खाते में आ गया और अंतिम बार 1999 में सुभाष घई की फिल्म ताल के गीत इश्क बिना क्या जीना के लिए उन्हें फिल्मफेयर से नवाजा गया था। और इसके अलावा भी उन्हें कई ऐसे पुरस्कार मिले जिनका जिक्र लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्हें काफ़ी पुरस्कार मिले उनके कार्य के लिए। अब बात आती है 30 मार्च 2002 का। 72 साल की उम्र में ऐसा हुआ कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस भी हुए थे, लेकिन एक छोटी सी आदत थी सिगरेट पीने की, और सिगरेट के अत्यधिक सेवन करने से या पीने से इसकी वजह से उनके फेफड़े जो है ख़राब हो गए और तथा दिल की बीमारी से ग्रस्त हो गए और फिर 30 मार्च 2002 को उनका निधन हो गया। और 32 साल की उम्र में अंगों ने काम करना ही बिल्कुल बंद कर दिया था। तो ये थी कुछ खास बातें आनंद बख्शी साहब के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूं अब समाचारों की तरफ। सुनते रहो मुस्कुराते रहो
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ, मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: 3 राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
3: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
1: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज MV गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
5: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
7: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, आनंद बख्शी साहब के खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं और आशा करूंगा कि आप सभी को अच्छा भी लग रहा है। और अब 9:27 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ। चलिए, बात कर रहे थे हम लोग आनंद बख्शी जी के बारे में। जीवन कहानी में माँ का अभाव और फिल्मों में माँ के प्रति प्यार उन्होंने अपने गानों के माध्यम से जतन किया। तो आइए अब एक और शख्सियत के बारे में बातें करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, और ये है उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी की अगर बात करें तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और गुजराती भाषा के बहुत ही पॉपुलर साहित्यकार, इनका उपनाम वासुकी था। उमा शंकर जोशी का जन्म गुजरात के साबरकांठा जिले के गाँव में 21 जुलाई 1911 को हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा खंडों में पूरी हुई। 1930 में असहयोग

फिर वहाँ के वाइस चांसलर भी बने। उन्हें राज्यसभा का सदस्य नामजद किया गया था और साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया था। 1979 में वे शांति निकेतन के विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए और उन्हें अनेक विश्वविद्यालयों ने डीलिट की मानद उपलब्धियों से सम्मानित भी की थी। तो ये थी कुछ खास बातें उमाशंकर जोशी के बारे में, और आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो चलिए एक और खूबसूरत गीत आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9:34 हो रहे हैं तो चलिए बातें चल रही हैं आनंद बख्शी साहब के गानों का, गाने सुनते जा रहे हैं आप और बात हो रही थी आप उमा शंकर जी के बारे में। उमा शंकर जी के बाद आते हैं हम लोग एक और शख्सियत के बारे में जिनका नाम है शंकर सिंह बाघेला। जी हाँ, शंकर सिंह बाघेला ये भी एक विशेष व्यक्ति रहे जो राजनीतिक रहे और गुजरात के भूतपूर्व 12वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। 23 अक्टूबर 1996 से लेकर 27 अक्टूबर 1997 तक एक साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद यदि कोई दूसरा लोकप्रिय नेता है तो वो शंकर सिंह बाघेला है। बापू के नाम से मशहूर शंकर सिंह बाघेला गुजरात में कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। इनका 21 जुलाई 1940 को गांधीनगर जिले के वासन के एक राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ और गुजराती विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की और शंकर बाघेला ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनसंघ से की थी। बाद में वो जनता पार्टी में चले गए और फिर विधानसभा के बाद बाघेला भारतीय पार्टी में विशेष वरिष्ठ नेता बने बीजेपी में और 1996 में भाजपा से भी अलग हो गए और राष्ट्रवादी जनता पार्टी की स्थापना की। इस तरह से राजनीति में उनका काफ़ी अच्छा मजबूत काम किया, उन्होंने अच्छी पकड़ भी रही और फिर अक्टूबर 1996 से अक्टूबर 1997 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके और उनकी पार्टी भी विशेष रूप से भारतीय विशेष बाद में विलय हुआ दूसरी पार्टी के साथ और 21 जुलाई 2017 को उन्होंने फिर से विपक्ष नेता के रूप में सारी चीज़ों को इस्तीफा दे दिया। तो शंकर सिंह बाघेला ने कुल 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और 3 बार संसद भी बने और 1977 में पहली बार संसद बने थे और इस तरह से उन्होंने यूपीए की पहली सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में भी काम किया और बाघेला को गुजरात में लोग बापू भी कहते थे और अभी भी कहते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें शंकर लाल बाघेला के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नए किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। आनंद बख्शी साहब का लिखा गीत, ऐसा समा क्षमा है सुहाना आपके नाम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9:44 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। चलिए, बातें चल रही हैं और बातें करने वाले हैं आज हम लोग। आज के दिन विशेष की कुछ अगर मैं बातें आपको शेयर करूं, 21 जुलाई की तो बात आती है 1969 में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरे थे। 2004 की बात करें तो आज के दिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने भारी बहुमत से पश्चिम किनारे के फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इसराइल को बाढ़ हटाने का प्रस्ताव पारित किया। हेलो जी, नमस्कार। हेलो,
1: नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: बोलिए मदन भाई, स्वागत है आपका।
1: क्या बात है, बहुत दिन से मिले हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हमने सुना था तुझे आर डी बर्मन आनंद बख्शी के गाने को लिखे हुए को मिलन पिक्चर का, रजनीकांत प्यारेलाल का संगीत और नुस्तन और हमारे सुलिंदर साहब को मिलन। अच्छा सुना था, और ऐसा ही मौसम है, सावन का महीना, पवन करे शोर, तो अच्छा लगा और वही गुनगुना रहा है। और बस रेडियो मधुबन को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, रमेश जी को बहुत शांति और हमारे सभी शो को सुन रहे हैं रोज हमेशा की तरह, अच्छा लग रहे हैं। पर कोई मौसम के हिसाब से कभी कभी ही सुनते हैं तो वो बात तो अलग ही होती है, समय को कौन सामना कर सकता है। हाँ, कर सकते हैं मगर उसकी बचत करनी पड़ती। तो आपको नमस्कार करते हैं और क्या सुनाएगी आज, आपने सुनाया है आज गाना सुनाएंगे, सुना था अच्छा। हाँ चलो सुना देते। हाँ सुना देते हैं इससे गाना जल्दी आ, चलो सुना देते। अरे मैंने देखा तूने देखा क्या देखा, क्या देखा, एक दुश्मन तो दोस्त से प्यारा है, दुश्मन तो दोस्त से प्यारा है। मैंने देखा कभी ने देखा, क्या देखा, क्या देखा, एक गांव वो शहरों से प्यारा है, एक गांव वो शहरों से भी प्यारा है। सबने माफ किया पर कब टूटेगी होठों की ये खामोशी, मुझे माफ करे तो जानू, इंसाफ करे तो जानू, मुझे माफ करे तो जानू, अरे जानू, मेरा नहीं ठिकाने की ठिकाने का नहीं, ये तो है तकदीर के मारों का, दुश्मन तो प्यारा है। अभी तुम्हें माफी मांगना और समय करने का ही है, बिल्कुल सही है गाना। और नमस्कार करते हैं आपको और पूरे रेडियो मधुबन की दिल से।
0: जी जी,
1: बहुत दिन से एक दिन नहीं सुनते तो भी हमको बहुत ऐसा लगता है, फिर भी उसी वही खुशी में चलते हैं और फिर दूसरे दिन का आगे सुना वही चलाते, रिपीट करते हैं हम। ये रमेश जी आए थे, ये गाने सुना था, ये सब दोस्तों ने फोन किया था, तो बस आज मंगलवार है तो बस अच्छा लगा। और भी बहुत बातें हैं मगर समय बड़ा कम है और बरसात कहीं है कहीं नहीं है, कहीं बाहर है तो कहीं बहुत कुछ है, तो चलता रहेगा ये सफर फिरता हुआ है, कब क्या हो जाए और कब कहीं बारिश ज्यादा है तो कहीं कम है और कहीं कहीं तो बिल्कुल ही नहीं है। तो नमस्कार करते हैं, ओम शांति। गुजरात राजस्थान में जरा कम है, बाकी और जिले में तो कहीं बाढ़ आ जाती है सब कुछ है बात है। और बस चलते हैं, नमस्कार, ओम शांति, दिल से नमस्कार, रेडियो मधुबन की पूरी तलेटी को नमस्कार करते हो, हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार करते हो, आज जिनका भी जन्मदिन है इन सभी को नमस्कार करते हो, ओम शांति, नमस्कार, ओम शांति,
0: ओम शांति, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच याद करने के लिए मदन जी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आज के महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डाल रहे थे हम लोग। वाशिंगटन में चार दिनों तक चले विचार विमर्श के बाद अमेरिका परमाणु समझौता का प्रारूप तैयार किया गया 2007 में। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय मूल के राम बरन यादव को नेपाल का पहला राष्ट्रपति चुना गया आज ही के दिन 2008 में। इनसेट 1C के इम्पैक्ट प्रणाली को पूर्ण रूप से सक्षम बनाने के लिए 93.5 डिग्री सेल्सियस पर पूर्व स्थिति के लिए कोरू से 21 जुलाई 1988 को प्रमोचित किया गया था आज ही के दिन 1999 में। तो ये थी कुछ खास बातें आज के दिन के इतिहास के पन्नों से लेकर। और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और आनंद बख्शी का गीत की तरफ। सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ। और इस बीच हमारे मदन जी भी याद कर रहे थे बड़े प्यार से, और आप सभी को याद करके उन्होंने भी एक अच्छा गीत भी गाया। आइए, अब वक्त हो गया है जन्मदिन का। जिनका जन्मदिन है उनके बारे में बातें करते हैं, उन लोगों के बारे में। तो आज जो है विशेष 21 जुलाई को आनंद बख्शी साहब के बारे में हमने बता दिया कि उनका जन्मदिन है, और साथ ही साथ वाघेला जी का भी जन्मदिन है, जिनके बारे में हमने आपसे बातें की थोड़ी देर पहले। और अब बात करते हैं उन सभी लोगों का जिनका आज विशेष रूप से जन्मदिन है। और तो आप भी बता सकते हैं हमें कि आपके यहाँ जिनका भी आज जन्मदिन है। तो चलिए, आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ। जो पॉपुलर लोग हैं उनके बारे में बता देते हैं। और वरुण संदेश, इनका भी जन्मदिन है, जो बहरमपुर से हैं, इंडियन एक्टर हैं। भारत जो त्रिची से हैं, इंडियन एक्टर हैं, इनका भी जन्मदिन आज है। आदित्य श्रीवास्तव, जो इंडियन एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, प्रयागराज से, 1968 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और संदेश जिंगजान, इंडियन एसोसिएशन फुटबॉल के ये प्लेयर है, चंडीगढ़ से हैं, 1993 में इनका जन्म हुआ था। संग्राम सिंह, 1985 में इनका जन्म रोहतक से हुआ है, और ये प्रोफेशनल विस्लर हैं। और इसके साथ में आनंद बख्शी, जो रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, 1930 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ, और ये गायक और लिरिसिस्ट गीतकार रहे। मधु शालिनी, ये भी एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है और मॉडल है, 1989 में इनका जन्म हुआ, और ये हैदराबाद से बिलोंग करती है। कर्नाटका से मल्लिकार्जुन खारगे हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन 1942 को हुआ, और एक राजनीतिक है। उमाशंकर जोशी, जिनके बारे में हमने बातें की, और ये बम्मा है, बर्मा से बिलोंग करते हैं, गुजरात पोएट है और स्कॉलर है और राइटर है। सत्यजीत दुबे बिलासपुर से है, 1990 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ, छत्तीसगढ़ से, इंडियन एक्टर है। और इसके साथ ही विशेष शंकर सिंह वाघेला, गांधीनगर से बिलोंग करते हैं, 1940 में इनका जन्म हुआ था, इंडियन पॉलिटिशियन। और रचना मयूरी, इंडियन एक्ट्रेस हैं, मुंबई से है, 1987 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। और राजकुमार सुत्तुपट्टी, इंडियन एक्टर हैं, जो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, 1954 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और इसके साथ आर कनन, जो कांचीपुरम से बिलोंग करते हैं, इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, 1971 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आप आगे शाम 4 बजे सफ़र कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर दर्द और बॉडी पेन है तो देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। और बच्चों को जैसा माहौल मिलेगा वो वैसे ही बनेंगे, तो इस पर चर्चा जरूर करेंगे। और आज बनाएंगे टमाटर पनीर पिज्जा, तो आप सभी तैयार हो ना बनाने के लिए, तो जरूर आप सीखेंगे और हम आपको सिखाएंगे। प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, जरूर सुनेंगे आप। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। पुनः दोहरा रही हूँ आज के विचार को कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। एक राजा की 3 लड़कियां थी। वह तीनों ही बहुत ही लाड़ प्यार से उनको पालना मिली थी। धीरे धीरे तीनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन भोजन करते समय राजा ने तीनों से पूछा कि आप किसके भाग्य का खा रही हो, किसके द्वारा आपको यह भाग्य वैभव आदि प्राप्त हो रहा है। प्रथम और द्वितीय लड़की ने कहा कि यह सब प्राप्तियां हमें आपके आधार पर ही हो रही है। लेकिन तीसरी लड़की ने उत्तर नहीं दिया। राजा ने उससे पुनः प्रश्न किया, तब उसने कहा कि मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ, मेरे भाग्य में जो सुख संतोष वैभव आदि है उन्हें ही मैं भोग रही हूँ। मेरे कर्म अच्छे हैं और मेरे जीवन में पुण्य कर्मों का फल जो निश्चित है वही मुझे प्राप्त हो रहा है, अर्थात मेरे भाग्य का फल ही मैं खा रही हूँ, ना कि अन्य किसी के भाग्य का। यह उत्तर सुनकर के राजा बड़े क्रोधित हुए। राजा ने कहा कि यदि आपकी प्राप्तियों में मेरा सहयोग नहीं है तो आपका इस राजभवन पर कोई अधिकार नहीं है। आपका विवाह एक गरीब व्यक्ति के साथ कराएंगे, तब आप क्या करेगी? लड़के ने उत्तर दिया कि मेरे भाग्य में वही है तो मैं उससे छूट नहीं सकती। यदि भाग्य श्रेष्ठ है तो झोपड़ी में भी खुशी से रह सकती हूँ। इस प्रकार का उत्तर सुनकर के राजा को और भी क्रोध बढ़ गया। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक गरीब बुढ़े व्यक्ति के साथ करवा दिया। लड़की ने राजभवन छोड़कर के जाते समय राजा से कहा कि पिताजी, मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है, किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपनी छोटी बेटी को नहीं भूलना। जिस गरीब बुढ़े व्यक्ति से राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह किया था, वास्तव में वह एक राजकुमार था। वह बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धनी एवं धैर्यवान व्यक्ति था, परंतु शापग्रस्त होने के कारण गरीब और बुढ़ा हो गया था। कुछ समय बाद राजभवन में राजा का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हुआ। चिकित्सकों ने जंगल से एक बूटी ले आने की सलाह दी। छोटी लड़की के पति ने बहुत ही कष्ट उठा करके राजा को जंगल से वह बूटी ला करके दी, जिससे राजा का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया और छोटी लड़की का पति श्राप से मुक्त हो गया एवं राजा बन करके पुनः राजा ही करने लगा तथा छोटी लड़की रानी बन गई। राजा को अपनी गलती की अनुभूति हुई और उसने अपनी छोटी लड़की से क्षमा मांगी। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए सुन लेते पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: पर भद्रा भाडार जड़नी गेड़ो

ओ तो सूरज जी से राम भगवत उतरियो, मरे दो सूरज जी से राम भगवत उतरियो। ओ तो पर

ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਬਤਰ ਫਾਟਾਰ ਜਲ ਨੀ ਖੇੜੋ ਮਰਦੋ ਪਰਬਤਰ ਫਾਟਾਰ ਜਲ ਨੀ ਖੇੜ।

ओदम भगति के बस आजा भगवान बावारा देव जन मलियो ओदो कंदन तो सुबरण जी है जी डूंगे हरिया मरदो कंदन तो सुबरण जी है जी डूंगे।

0: मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा शुभ प्रेम ओम शांति।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, अगर दर्द और बॉडी पेन हो तो क्या करेंगे, कितनी बार देखिए अभी तो दीपावली का काम चल रहा है, साफ सफाई करते हैं तो साफ सफाई करते करते बॉडी पेन होने लगता है, थकान आ जाती है, ऐसा लगता है कि अरे रे रे कब दीपावली का काम पूरा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप है ना रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पीजिए, सारी थकान भी दूर हो जाएगी, बॉडी पेन भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप रोज ही हल्दी वाला दूध पीजिए। जब तक भले आपको भाता हो चाहे नहीं भाता हो, चाहे आप पीते हो नहीं पीते हो, लेकिन जब तक आप ये जो दीपावली की साफ सफाइयाँ कर रहे हैं, भाई त्यौहार आते हैं तो त्योहारों के वेलकम, दीपावली तो ऐसा त्यौहार है कि उसके वेलकम करने के लिए पहले से हम अपने पूरे घर को चमका देते हैं, तो थकान तो आती है स्वाभाविक है। भले हम माइयों से काम लेते हैं लेकिन माइयाँ भी तो एक इंसान है ना, वो भी थक जाती है। तो सभी के लिए हल्दी वाला दूध बहुत ही फायदेमंद है, रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पी लीजिए, इससे बॉडी पेन ठीक हो जाएगा। अगला नुस्खा सुनेंगे आप ध्यान से, दांतों में सुराख हो तो क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, कपूर को महीन पीस करके दांतों पर उंगली से लगाइए, ठीक है, और उसे थोड़ा सा मलिए हल्के हल्के, सुराख हो कि आप अच्छी तरह मतलब साफ करिए पहले सुराख को, ठीक है, फिर मलिए उस पर, फिर सुराख के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबा करके रख दीजिए, दांतों का दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर दांत में सुराख है तो कपूर को महीन पीस करके दांत पर उंगली से हल्के हल्के से आप मलिए लगा करके, ठीक है, और तो इस तरह सुराख अच्छी तरह साफ हो जाएगा। फिर सुराख में कपूर को कुछ समय तक दबाइए, ठीक है, दबा करके रख दीजिए, इससे दांतों का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको और भी अगला नुस्खा सुना रही हूँ। देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं, मीठा मीठा खाना पसंद करते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे, साल भर के सवा साल के बच्चे, कोई कोई बच्चे इतना मीठा खाते हैं कि फिर कभी कभी उनको वो खरवा भी खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खरवा क्या होता है, तो गुदे की जगह पर ऐसी मीठी मीठी खुजली चलती है कि बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि बच्चे को क्या हो रहा है, क्योंकि वो बोल तो नहीं सकता है ना, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन मीठा ज्यादा खाते हैं ना तो इस तरह गुदे की जगह पर खुजली चलती है मीठी मीठी। तो बहुत ही सरल उपाय है इसके लिए कि आप केरोसिन का फोहा भर करके वहां पर लगा दीजिए, थोड़ा सा दबा करके, फोहे को नहीं लगाना है, वहां घिस करके फिर फोहे को हटा दीजिए, तो खुजली तुरंत ही बंद हो जाएगी। केरोसिन का फोहा भर करके गुदे पर और थोड़े से अंदर की साइड में लगा करके फोहे को निकाल दीजिए, केरोसिन लगा दीजिए, तो तुरंत ही खुजली ठीक हो जाएगी। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो धतूरे के पत्ते का रस निकाल करके उसे गर्म करके गुदा पर लगाइए, इससे भी जो चुन्नी काटते हैं ना, क्योंकि खुजली क्यों चलती है, मीठी मीठी खुजली क्यों चलती है, चुन्नट काटते हैं है ना, मीठा ज्यादा खाया है तो चुन्नट काटते हैं, इसलिए मीठी मीठी खुजली चलती है। तो धतूरे का पत्तों का रस निकाल करके उसे गर्म करके गुदा पर लगा दीजिए, इससे भी बच्चों को आराम मिलेगा, ठीक है। और अगर पेट के केचुए और कीड़े हैं तो एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद बराबर मात्रा में मिला करके सुबह सुबह और दिन में और शाम को पीजिए, केचुए तथा कीड़े 4-5 दिन में ही मर करके बाहर निकल जाएंगे। देखिए बच्चों का है ना पेट भी बड़ा दर्द होता है, अब बोल नहीं पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चों के क्या हो रहा है, तो इस तरह केचुए काटते हैं, कीड़े काटते, बच्चे चिल्लाते रहते हैं। तो एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद दोनों बराबर मात्रा में मिलाइए और सुबह दिन में और शाम को पीजिए, मतलब बच्चों को पिलाइए, ठीक है। बड़ों को काटते हो तो भी कर सकते हो आप, और बच्चों को इस तरह काटता है पेट दर्द करता है तो भी पिला सकते हो, तो इसे केचुआ कीड़े 4-5 दिन में मर करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत अच्छे हैं, आजमा सकते हो और अपने बच्चों का स्वास्थ्य, स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हो। चलिए प्रश्न पूछ लेती हूँ आज का। बहुत सुंदर प्रश्न है कि धात्री माता किस तरह का खाना खाए और अपने बच्चों को भी खिलाए। धात्री माता जिसके समझ लीजिए साल भर का बच्चा है, स्तनपान करता हो, तो स्वयं किस तरह का भोजन करे और बच्चे को किस तरह का खिलाए, ये प्रश्न है। जवाब आपको देना है। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर, बने रहिएगा आशियाना में। यूं गई और यूं आई, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आप खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे कि भाई बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि बहन जी।
1: जी जय माता दी, जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
2: बराबर स्वागत तो बराबर किया है, और दीपावली भी आ रही है
1: जी,
2: ऐसे मौके पे तो पटाखे छूट रहे हैं तो स्वागत तो होना ही चाहिए
1: जी। बोलिए आज के।
2: सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगा, आपने सुविचार भी बहुत सुंदर दिया आज का,
1: धन्यवाद,
2: इसके लिए थैंक्स तो बनता ही है, बहुत ही सुंदर सुविचार था
1: जी, थैंक यू।
2: और देखिए वो तो चलो विषय चला गया, अभी ये आपने बच्चों की बात रखी है ना, तो बचपन याद आ गया है बिल्कुल
1: जी।
2: देखिए घर में जैसा होता है ना, और आस पड़ोस में मतलब जैसा माहौल होता है ना, वैसे बच्चे ग्रहण करते हैं
1: जी।
2: जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले ही एक बात बताई थी, बच्चों माता पिता और बच्चों की
1: जी,
2: तो मतलब जैसा आप अपने माता पिता के साथ में कर रहे हो, वो अपने बच्चे देख रहे हैं, तो वही सलूक अपने साथ में होने वाला
1: जी,
2: क्योंकि प्रभु ने भी यही कहा है कि देखिए जैसा तुम खुद आचरण करो, जैसा तुम अपने परिवार के साथ में सलूक करोगे ना, वैसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला है
1: जी।
2: तो इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि तुम अच्छा कर्म कीजिए और अच्छा किसी के साथ में सलूक कीजिए, ताकि आपके साथ में भी बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा सब
1: जी।
2: तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा देखिए सबसे पहला बच्चों की गुरु होती है माँ
1: जी,
2: सबसे पहली गुरु वो है
1: जी।
2: तो घर में जो

0: ना
1: जी,
0: क्योंकि उस समय उसकी माँ ने रोक दिया होता
1: जी,
0: तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर आभार
0: तो
1: आपका।
0: बस यही मैं कहना चाहता हूँ सभी को कि अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए, ताकि वो बड़ा होके आपका नाम रोशन कर सके।
1: जी जी,
0: बहुत ये उसका बच्चा है
1: जी। बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर विषय है और बहुत ही अच्छे बात सुनने को मिली है कि देखिए प्रथम गुरु तो बच्चों की माँ ही होती है, घर का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप भी इस विषय में चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। बहुत ही सुंदर विषय है कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिला, जैसा माहौल मिलेगा वैसे बच्चे बनेंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है, प्रश्न का भी जवाब जरूर दीजिएगा कि धात्री माता को किस तरह का खाना खाना चाहिए और अपने बच्चे को भी खिलाना चाहिए। हमारी बहनें सुन रही हैं तो भी जरूर जुड़े, भाई लोग जो अनुभवी है वो भी जरूर जवाब देवे। और विषय बहुत अच्छा है, उसमें आप चर्चा कर सकते हो कि किस तरह बच्चों को माहौल मिलना चाहिए। हेलो
2: हेलो, नमस्कार उषा बहन जी, प्रणाम।
1: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली।
2: हाँ काफी दिन हो चुके हैं बहन जी, जो पहले कार्यक्रम चलता था तब कॉल किया था, और अभी जो हमारे रेडियो मधुबन में कुछ तकनीकी वजह की प्रॉब्लम आई थी, उस वजह से कॉल भी नहीं लग रहा था, बात भी नहीं रही हो पाती थी, रेडियो मधुबन की कवरेज भी पूरी सही तरह से नहीं आ पा रहा था। तो 4-5 दिन से अब बिल्कुल सही रेगुलर आ रहा है, तो अब सुनाई अच्छी दे रहा है हमें।
1: क्या बात है, और
2: जी और सवाल भी बहुत ही अच्छा किया है, और बातें भी खुशनुमा जीवन की अच्छी की है। और रेडियो मधुबन में सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई मेरे, उसको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और काफी दिनों के बाद रेडियो में आया हूँ, तो इसलिए मेरे भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ। बहन जी आपको प्रणाम, पूरे रेडियो परिवार को।
1: थैंक यू भैया, आपको भी नमस्कार।
2: प्रश्न का जो आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं मेरे हिसाब से उसका जवाब देता हूँ।
1: जरूर,
2: जो सही है गलत है वो तो आप ही
1: कोई नहीं
2: जानते हैं।
1: अरे नहीं, ये तो जनरल बात है।
2: महिलाएं जो धात्री बच्चे जो बच्चा सुनी से जो ऊपरता होता है, उसको दूध पिलाने वाली महिलाओं को हरी पत्तेदार सब्जियों खानी चाहिए, और पीले फल भी खाने चाहिए, और घी और तेल में जो बनाई अच्छी सी पकवान है वो भी खानी चाहिए, और बच्चे को बड़े प्यार से भी खिलानी चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया है।
1: जी जी,
2: और नमस्कार सभी श्रोताओं को। फिर से
1: विषय में आप चर्चा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि उनके ऊपर अच्छा असर पड़े, क्या कहेंगे आप?
2: बच्चों के साथ तो माता पिता और उनके घर में ऐसा कि प्यार से रहना चाहिए, बच्चों से प्यार देना चाहिए, बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी देनी चाहिए। जैसे शाम का समय जो पहले माताएं होती थी, दादी होती थी, वो अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाया करती थी, अच्छी अच्छी बातें भी, तो बच्चे उनके अच्छी वो समझ पाते थे, उनमें सोच भी अच्छी होती थी। तो अब तो क्या है, तो माता पिता जो बच्चों की तरफ को ज्यादातर तो ध्यान ही नहीं देती है, या ये मोबाइल इंटरनेट का युग आ गया है, तो वो मोबाइल लेके बच्चे बैठ जाती है, तो नहीं तो वो भी कोई ऐसी अच्छी जानकारी उससे भी मिलती है नहीं ले पाती है, तो ज्यादातर तो गेम ही खेलती है या वीडियो देखती है, तो माता पिता को और किसी रिश्तेदार का कॉल भी फोन के अंदर आता है तो वो भी नहीं उठाती है, जैसे घंटी साइलेंट कर रख देती है बच्ची। तो ऐसे माता पिता होते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, अच्छी से अच्छी जानकारी दे, अच्छी कोई बातें बनाए, अच्छी कहानियों उनको सुनाए, और अपने घर में और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार है तो बच्चे अपने अच्छे बनेंगे, और सुदृढ़ और संस्कारी बच्चे है तो वो स्कूल में माता पिता का और टीचर का, अपने गांव का, सभी का नाम रोशन करेंगे और अच्छा बनेगा।
1: बहुत खूब आभार आपका दयाराम जी, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है इस विषय को, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर विषय है, और बच्चों को किस तरह का माहौल देना चाहिए ये हमारे हाथ में है। हम चलो बच्चे नहीं हुए उसके पहले आप किसी भी तरह रह रहे हो, लेकिन बच्चे होने के बाद आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी होगा।

0: क्योंकि अगर आप पहले की तरह झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला कर बात कर रहे हैं, पड़ोस पड़ोस के साथ अगर झगड़ा कर रहे हैं, तो उसका असर तो बच्चे पर पड़ना ही है। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग कंचन जी।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार कंचन भाई जी। तो आज का प्रश्न है कि धात्री माता किस तरह भोजन करे और अपने बच्चे को भी कराए। साल सवा साल का बच्चा है, माँ का दूध भी पीता है और ऊपर से भी उनको देना पड़ता है, तो वो धात्री माता किस तरह का भोजन करे और कैसे अपने बच्चे को भी कराए। प्रश्न है ये, फिर विषय बाद में बता।
1: तो ये हरे सब्जी का और प्रोटीन इसमें ज्यादा भोजन करे तो बच्चे को भी, दूध का सेवन करे, ये सब करे तो बच्चे को भी इसमें से जो ये दूध तो माता का पिलाना ही चाहिए, बाहर का खुराक लेकिन माता का दूध जरूरी है।
0: अच्छा, और आज का विषय, आज का विषय ये है कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि बच्चे संस्कारिक बने।
1: बच्चों के तो माता पिता के संस्कार होंगे तो बच्चों में आएंगे बहन
0: जी। जी,
1: जो बुरी कमाई करके घर में लाएंगे तो बच्चे, बड़े बच्चे देखेंगे, उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सी कमाई आई है। और दूसरी एक बात करूँ तो मोबाइल,
0: जी
1: मोबाइल का माता पिता ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो बच्चे भी जरूर करेंगे।
0: जी,
1: ये एक आजकल का माहौल है तो इसमें खास माता पिता को ध्यान रखना है। और जैसी बात करनी है घर में, बच्चे न सुने, ऐसे कोई संस्कार इससे न आए, ऐसी हमें घर में रहना है।
0: जी
1: जी
0: जी, चले, बहुत बहुत आभार कंचन भाई आपका।
1: जी जी, दोस्तों का
0: जी। तो देखिए, विषय बहुत ही अच्छा है कि बच्चों को किस तरह का माहौल देंगे। जरूरी नहीं कि घर का माहौल ही खराब हो, कितनी बार अड़ोस पड़ोस का माहौल भी खराब होता है। हमारे घर में अच्छा माहौल है लेकिन अड़ोस पड़ोस में अगर माहौल खराब है तो उसका भी असर बच्चों पर पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे तो बच्चों में ही खुश रहते हैं तो कंपनी ढूंढते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं। और जब बच्चे जब उनके घर पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि झगड़े हो रहे तो भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे किसको कहते हैं, बच्चे तो महात्मा की उपाधि बच्चों को मिली हुई है, इनोसेंट होते हैं, उनके ऊपर जल्दी से असर होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो घर पर भी आकर के, क्योंकि बात तो पूरी समझ नहीं पाता है, अधूरी बात करता है। तो माहौल सिर्फ अपने ही घर का नहीं, अड़ोस पड़ोस का भी अच्छा होना चाहिए। हेलो,
2: हाँ दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: बहुत अच्छे दीदी, बहुत अच्छी बातें भी सुन रहे हैं
0: जी।
2: और पहले तो मैं बताऊँ दीदी, जो आपने कर्मों का विचार दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा लगा
0: जी, थैंक यू।
2: क्योंकि वो हम देखते हैं कई बार
0: जी,
2: इसी विषय पर जरूर एक बार चर्चा जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है
0: जी।
2: एक बार वो विषय जरूर लीजिए
0: जी,
2: अच्छा विचार वाला,
0: जरूर जरूर।
2: और आप दो बात बहुत अच्छी बताई आज, तो बच्चों की बात बताई, तो बच्चों के तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि बच्चे जैसे पड़ोस में कई बार दीदी क्या होता है कि पड़ोस के बच्चे इतना तूफानी, मैं बताऊँ हमारे मोहल्ले की बात कर रहा हूँ मैं
0: जी।
2: एक बच्चा इतना दीदी तूफानी, इतना तूफानी की बहुत हमारे, तो दूसरा बच्चा बहुत सीधा था, अच्छा था, लेकिन इसके साथ मिल गया तो आज वही भी ऐसा हो गया है
0: जी, जी,
2: तो माँ बाप बोलते हैं तो कुछ समझते नहीं है, बस ऐसे करते बोलते रहते, छोटा सा बच्चा है फिर भी, तो जैसा माहौल वैसा बच्चा होता है। आज हम देखते हैं
0: जी,
2: कई परिवार ऐसा है कि अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे को हम अच्छे बच्चे के साथ रखेंगे तो ही अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बच्चा ऐसा हो तो इसके पास रहेगा तो वो भी ऐसा हो जाएगा
0: जी। जी, और आज का प्रश्न भी है कि धात्री माता को किस तरह का भोजन करना चाहिए और अपने बच्चे को भी कराना चाहिए।
2: तो धात्री माता को वो समझा नहीं देती, मैं करते समझना
0: जैसे नन्हे बच्चे होते है ना, नन्हे बच्चे होते है वो माँ का फीड करते है ना, आठ महीने के, साल भर के बच्चे माँ का दूध लेते हैं वो, तो माँ को किस तरह का भोजन करना चाहिए ऐसे समय में, और अपने बच्चे को भी कराना चाहिए?
2: वो तो दीदी क्या भोजन में तो उसको जरूरत है, कोई जो हमारे यहाँ दाल भात बोलते हैं, अच्छे खुराक जो हल्के खुराक,
0: जी जी,
2: ज्यादा भारी खुराक खाना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे के लिए भारी पड़ता है।
0: जी जी,
2: हल्के खुराक खाए, लीला शाक भाजी खाए, दूध मात्रा में लेना भी जरूरी है क्योंकि दूध से भी बच्चा थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो बच्चों को भी दूध पिलाना जरूरी है। अभी तो क्या दीदी पाउडर आ गया है, मैंने बताया कई लोग को पाउडर पिलाते हैं बच्चों को, तो बच्चा इतना मोटा हो जाता है। मैं मेरे परिवार की बात करूं
0: जी,
2: तो इतना पहले दुबला पर किया था, वो पाउडर का एक डब्बा उससे पिला दिया था, आज देखो तो इतना बॉडी का हो गया था, मैंने बोला तो इतना बारीक हो गया कि हमने पाउडर पिलाया।
0: जी जी,
2: ऐसा पाउडर तो नहीं पिलाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। जी
2: नहीं, बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, इससे शरीर भारी हो गया है बहुत।
0: जी
2: तो कभी कभी माता ऐसे पिलाती है, तो लेकिन नहीं पिलाना चाहिए उसको। अच्छा दूध पहले तो दीदी क्या था, हम तो जब छोटे थे तो हम तो बकरी के दूध पीते थे,
0: बहुत अच्छा है बकरी का दूध तो सबसे बेस्ट है।
2: हमारे घर पे ही बकरियां थी जब हम छोटे थे, तब हमारा दो बकरियां थी, तो हम सभी भाई बहन बकरी का दूध पीते बड़े हुए, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बकरियां का दूध सभी वनस्पति के मिला हुआ आता है।
0: जी
2: तो वही अच्छा रहेगा, लेकिन आजकल वो नहीं है, आज तो बस जो आता है वही जो चिलाता है खेली जाता है वो खाते थे।
0: जी जी,
2: बस लेकिन हल्का खोरा खाएंगे तो बच्चा भी अच्छा रहेगा और माता पिता भी, माँ भी अच्छी रहेगी।
0: जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार जी। चलिए यहीं पर सुनेंगे एक गीत, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। जुड़िएगा, नंबर हमारे है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो, आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हो। आइए सुनते हैं एक गीत।

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: बचपन में पैसा जरूर कम था, बचपन में पैसा जरूर कम था, पर यकीन मानो उस बचपन में दम था, पर यकीन मानो उस बचपन में दम था। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि जैसा माहौल होगा वैसे ही बच्चे उसमें ढलेंगे और उस अनुसार ही वो बनेंगे। क्या कहेंगे आप? आपका विचार क्या है, किस तरह का माहौल बच्चों को मिलना चाहिए? जुड़िएगा, इस विषय में चर्चा जरूर आप करिएगा। हम भी आपकी राय सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और इस सुंदर से विषय में आप भी अपनी चर्चा अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। बात चल रही थी माहौल की कि बच्चों को माहौल कैसा मिलना चाहिए। देखिए, घर की बात तो पहले ही होती है, और आप सभी ने कही ही है कि भाई सबसे पहले तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, उसके बाद बाहर का। लेकिन बच्चे क्या है, या तो अपने अड़ोस पड़ोस के साथ खेलेंगे, या अपने रिश्तेदार जो काका ताऊ इनके बच्चों के साथ खेलेंगे। तो कितनी बार क्या है कि भले भाई भाई है, लेकिन एक भाई के घर का माहौल अलग और दूसरे भाई के घर का माहौल अलग। अब बच्चे तो खेले बिना नहीं रहेंगे, जाए बिना नहीं रहेंगे, उसका भी असर पड़ता है। जैसे कुछ शिकायतें सुनने को मिलती है कि ताऊ के बच्चे हैं, अंकल के बच्चे हैं, अब वो आपस में खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, फिर उसको अकेला कर देते हैं कि जा तू यहाँ से, हमारे घर से जा। जैसे बच्चे जाते हैं अपने बड़े पापा के यहाँ पर, तो बड़ी मम्मी है बाहर निकाल देती है, गेट बंद कर देती है कि जाओ तुम यहाँ से, अभी नहीं आओ। बच्चे मैंने देखा है, बच्चों को रोते हुए भी देखा है। अब 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे क्या समझते हैं, वो तो अपने भाई बहनों के साथ खेलेंगे। लेकिन महिलाएं पुरुष इस तरह का व्यवहार भी करते हैं, नहीं आना है अभी, जाओ यहाँ से, भले बच्चा रो रहा है लेकिन फिर भी दरवाजा बंद कर देते हैं कि नहीं आना है, जाओ यहाँ से। तो वो बाल मन पर बहुत असर पड़ता है बच्चों का। वो रोते रोते भले अपने घर में आता है, भले उसके मम्मी पापा प्यार से उसको समझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के कहीं ना कहीं अंदर से लग जाता है। फिर भी बच्चा तो बाल मन होता है ना, फिर जैसे जाने देते हैं तो खुश हो जाते हैं क्या, अरे वाह आज तो मुझे आने दिया घर में, क्योंकि अब एक भाई के एक ही बच्चा है, बड़े भाई के 2-3 बच्चे हैं, तो अब वो अकेला बच्चा क्या करेगा, अपने भाई बहनों के साथ ही खेलेगा ना, बड़े पापा के उधर ही जाएगा। तो इस तरह का माहौल भी बच्चों को मिलता है, इससे बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। और आजकल हर माता पिता यही चाहते कि एक बच्चा या फिर ज्यादा से ज्यादा दो, दूसरे का भी कम सोचते हैं। एक बच्चा हो गया बहुत हो गया, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, बहुत हो गया। लेकिन जब उनको कंपनी चाहिए तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बड़े जब हम बाहर जाते हैं तो हमको भी हमारे बरोबरी के चाहिए कि भाई हमारे को भी कोई कंपनी मिले तो अच्छा लगे। बच्चों का भी वही हाल है, बच्चे भी बच्चे के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि पड़ोस में हो चाहे अपने ही परिवार में हो 2-3 बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे को आने ही नहीं देते हैं, तो क्या मतलब उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए माहौल अच्छा बना के रखना है, सिर्फ अपने बच्चे का ही नहीं सोचना है, हमारे अड़ोस पड़ोस के बच्चों का भी सोचना है कि अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं वो भी है तो एक परमात्मा के ही संतान है ना, तो उनको भी प्यार दो और घर में उनको आने दो। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। गोपाराम जी कैसे हो?
2: बहुत अच्छे विचार आपके सुन रहे हैं
1: जी।
2: घर बैठे वो गंगा आती है
1: जी,
2: वो वाली बात है। अलग अलग भाइयों की बहनों के सुझाव आते हैं, सुनते रहते हैं
1: जी जी जी।
2: और मेरे पास एक बहन आई थी थोड़े दिन पहले
1: जी,
2: वो कुछ ये कॉफी पीने की ऐसा कोई रखते है
1: जी,
2: वो लोग मालूम तो पड़ ही जाता है
1: जी।
2: फिर मैंने उनको कहा मैं बाबू तुम्हारे दालदर मेरे को दूर हो जाएंगे, अब पैसों की कमी नहीं रहेगी
1: जी।
2: तो उसने क्या जवाब दिया था, नहीं नहीं एक कॉफी के पीछे के 10 रुपए मिलते हैं।
1: अच्छा
2: एक अच्छा एक बात, दूसरी बात, अभी मैं एक दुकान पे बैठा, एक स्कूल ड्रेस में लड़का 10वीं 11वीं का होगा,
1: जी,
2: उसने पूछा कि भाई सिगरेट है अंदर?
1: ओहो,
2: क्या पता था, व्यापारी ने मुझे देख के मना किया, वो जाना फिर वो तो गया। मैंने कहा मार साहब के लिए लेने आया क्या? नहीं नहीं, ये तो क्या पीते है, और को मौका मिले तो वो पी भी लेते है। ऐसा माहौल भी बन रहा है
1: जी।
2: और दूसरा संस्कार का आपने बात बताई, तो बच्चों में क्या होता है कि दो प्रकार के संस्कार होते हैं। अब उसके माता पिता के यहाँ तो अलग संस्कार होते हैं, और ननियाल मामा की माँ के अलग होते हैं
1: जी।
2: ये दोनों का तालमेल बिठा के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। पहले ऋषि जो थे ना
1: जी,
2: वो ये विचार देने का ही काम करते थे, गाँव में घूमते और जगह जगह जा करके
1: जी।
2: आज भी कई कई है, ऐसी बात नहीं है
1: जी,
2: लेकिन ये बहुत कम हो गया है
1: जी।
2: वो माँ बाप कमाने में लगे कि बच्चा पढ़ रहा है मेरा और अच्छी स्कूल में एडमिशन लेगा, वो मालूम नहीं कि सिगरेट पी रहा है ना
1: जी,
2: और क्या क्या कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उसका ध्यान नहीं रखते जी। तो थोड़ा हंसी मजाक जैसा भी बताऊँ आपको, एक भाई नया नया शादी करके आया, उसके घर वाली अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करने लगी
1: जी।
2: लोग आके उसको बोलने लगे, अरे तुम्हारी घर वाली ऐसी क्या झगड़ा करती है? तो उसने कहा भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो, मेरे सासू जी के पास में जाओ ना।
1: अच्छा क्या बात है बहुत अच्छी बात है कि भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो, सास ने शिक्षा संस्कार दी है बेटी को तो उनके पास जाओ। सही है, जब कुछ बातें हो जाती है तो माँ तक, चाहे बेटा बिगड़े चाहे बेटी बिगड़े, पिता के पास कोई नहीं भेजेंगे, माँ के पास ही भेजेंगे कि जाओ अपनी माँ के पास, जबकि माँ तो अच्छी शिक्षा संस्कार ही देती है अपनी बेटियों को चाहे अपने बेटों को, लेकिन फिर भी नाम माँ का आता है। और जब कोई अच्छे नंबर से पास होता है या फिर कोई अच्छा काम करता है तो उस समय पिता बड़े फक्र से कहते कि वाह मेरा नाम रोशन कर दिया, और बिगाड़ा है तो माँ का नाम कि तुम्हारा बेटा है तुम्हारी बेटी है तुम जानो, ऐसा भी होता है। खैर बात चल रही थी बच्चों के संस्कार की, तो ऐसे देखो एक घर की बात नहीं कह रही हूं मैं, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो चाहे परिवार वाले हो, बच्चे को आने नहीं देते हैं घर में, तो उसका भी बच्चों बाल मन पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए देखिए अपने बच्चे हैं वो ही पड़ोस के बच्चे हैं, वो ही अपने परिवार के बच्चे हैं, तो उनको भी आने दीजिए। जबकि देखिए आप दूसरा के घर में बच्चे जाएंगे ना तो बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने जो भाई बहन है अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चे उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि अरे वाह मेरे दोस्त है या मेरे भाई है, ये फीलिंग उनके अंदर आएगी। अपने घर में चाहे कितने भी मस्ती करती हो करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है माताएं परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरों के घर में वो चुपचाप बैठे रहते हैं। हेलो
3: हेलो बहन जी, परिवार के?
1: हाँ जी कंचन भाई।
3: ऑफलाइन ऑनलाइन?
1: ऑन एयर।
3: परिवार के जो बच्चे के वो साथ अपना बच्चा खेले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहन जी क्या है कि जो परिवार के बच्चे है ना वो परिवार के पड़ोसी जी हर रोज झगड़ा करते हैं, ये संस्कार बच्चों में आया है
1: जी।
3: और बच्चे भी गालियां, ये बच्चा गालियां देना शुरू कर देता है
1: जी।
3: तो ये अभी मैं ही बताऊं, मेरे बेटे का बेटा था दिव्यांशु, तो ये हमारे यहाँ आया तो कुछ गालियां देने लगा, तो मैंने बोला कि ये कहाँ से सीखा
1: जी।
3: तो ये बोले, मेरी बेटी बोली कि भाई ये पड़ोस वाला एक है वो बच्चा वो रोज खेलने के लिए आता है, इससे सीखा है
1: जी।
3: तो ये थोड़ी सावधानी रखने की थोड़ी जरूरत
1: है, बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सही बात है।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है
1: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। तो ऐसा भी होता है कि जब अपनी उम्र के बच्चे गाली गलौज करते हैं तो बच्चे सीखते ही हैं, इसलिए ये माताओं को पिताओं को चाहिए कि भाई अपने बच्चे को किस तरह का माहौल देवे। बहुत सारे देखो बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि माहौल अच्छा नहीं होता है ना तो माता पिता वो घर छोड़ करके दूसरे घर में भले किराए पर चले जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य देखते हुए वो लड़ाकू माहौल झगड़ा वाले माहौल में रहना पसंद नहीं करेंगे। वो यही सोचते कि हमारा तो जीवन बीत गया लेकिन हमारे बच्चों को ऐसा माहौल नहीं देंगे। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे माता पिता उस माहौल को छोड़ करके अच्छे माहौल में चले जाते हैं, चाहे भले वो किराए पर रहेंगे, खुद का घर हो फिर भी वो छोड़कर चले जाएंगे, किराए पर चढ़ा देंगे या बेच देंगे, इसलिए देखिए बच्चों को माहौल देना बहुत जरूरी है। एक अच्छा माहौल मिलेगा तो बच्चा का मन स्वस्थ रहेगा, संस्कारिक बनेंगे और उनके ऊपर सकारात्मक असर पड़ेगा और वो बच्चे भविष्य में कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, आगे बढ़ेंगे और आपका नाम भी करेंगे। इसलिए माहौल अच्छा दीजिए, घर का भी, अड़ोस पड़ोस का, साथ का, उन किस तरह के बच्चों के साथ बच्चे रह रहे हैं ये भी ध्यान देना जरूरी है। संग का रंग जरूर लगता है, बड़े होने के बाद वो कहते ना कि जब घड़ा पक जाता है फिर उस पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन कच्चा घड़ा होता है तो उसको जिधर आप मोड़ेंगे उधर वो मुड़ जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल दीजिए और हमेशा घर का माहौल अच्छा बना के रखिए, यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए सुनते हैं गीत, परंतु प्रश्न आज का है कि धात्री माता किस तरह का आहार लेवे और किस तरह का आहार अपने बच्चे को देवे। प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। और आइए सुनते हैं गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आशियाना के किचन में आज बनाएंगे टमाटर पनीर पिज्जा। भाई पिज्जा तो बच्चे बड़े पसंद करते हैं। खैर कहते हैं कि पिज्जा है, ब्रेड की कोई भी चीज है वैसे बहुत कम खानी चाहिए, लेकिन कभी कभार खाने में कोई नुकसान नहीं। 6 महीने में 5 महीने में एक बार तो आप बना करके खा सकते हो और बच्चों को भी खिला सकते हो। और ऐसी चीजें तो बच्चे बड़े ही पसंद करते हैं। घर में नहीं मिलते तो फिर बच्चे लोग क्या करते हैं, बाहर जा करके खा लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम घर में ही बना करके खिला देवे, ताकि हमारे नजरों के सामने तो बच्चे रहे और हमें पता तो चले कि बच्चे कितना पसंद करते हैं या नहीं करते इन चीजों को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर क्या है कि माताएं कंट्रोल करती है या बनाती नहीं है, कोई कोई को आता भी नहीं है बेचारे को कैसे बनाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चे बाहर जा करके खा लेते हैं, जो स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ जाएंगे, 5 साल के 6 साल के बच्चे भी ये चीजें बहुत पसंद करते है। देखते है बाहर तो या फिर अड़ोस पड़ोस में तो जिद करते है कि हमें भी पिज्जा खाना है। तो पिज्जा भी तरह तरह के बनते हैं, लेकिन आपको क्या है पौष्टिक पिज्जा बनाना सिखा रही हूँ टमाटर और पनीर का। ठीक है, तो जरूर बना करके खाइएगा और जरूर अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। माताएं अक्सर क्या है कंफ्यूज हो जाती है, हर एक के घर में तो ओवन नहीं होते ना, तो माताएं कैसे बनाएगी। फिर वो यही सोचती है कि कैसे बनाऊं, ओवन ही नहीं है घर में। तो बच्चे जिद करते तो यही कहते जाओ बाहर जाकर के खा लो। लेकिन अगर ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, वाटिका कुकर तो हर एक के घर में होता है ना। भाई राजस्थान है, राजस्थान में तो दाल बाटी का ज्यादा ही क्रेज है, तो कुकर तो घर घर में रहते हैं। बस उस कुकर में भी आप बना सकते हो, ओवन की जरूरत नहीं। ठीक है, और है अगर ओवन तो फिर ओवन में बनाइए, साधन है तो यूज करिए, नहीं है तो कंफ्यूज मत होइए। अगर बाटी का कुकर भी नहीं है तो छलना तो सभी के घर में रहता है ना, बस नीचे तवा और ऊपर छलना रख दो और जो भी आप जैसे बेकरी आइटम बनाते हो उसमें बना दीजिए। तो अब मैं आपको सामग्री बता रही हूँ टमाटर पनीर पिज्जा के, कि आप लीजिए 1 बड़ा चम्मच तेल, ठीक है, 2 बड़ा चम्मच लेना है मक्खन, 6 टमाटर ले लीजिए, 200 ग्राम पनीर ले लीजिए गोल गोल कतले में कटा हुआ, ठीक है, 1 बड़ा चम्मच सोया साग की नरम पत्तियां लेनी है, और फिर स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च या लाल मिर्च जो भी आपको पसंद है ले सकते हो। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा, अगर रिफाइंड तेल है तो वो लीजिए, नहीं तो कोई सा भी जो भी तेल आप घर में खाते हो ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच। फिर 2 बड़े चम्मच ले लीजिए मक्खन, 6 टमाटर लेना है, 200 ग्राम पनीर लेना है और 1 बड़ा चम्मच सोया साग की नरम पत्तियां लेनी है। फिर स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च या फिर लाल मिर्च, वो आप पर छोड़ा है कि आप क्या पसंद करते हैं, काली मिर्च पसंद करते हैं लाल मिर्च। ठीक है, अब बनाने का तरीका भी मैं आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, ओवन गरम करिए, अगर ओवन है तो, नहीं है तो कुकर रख दीजिए गैस पर। फिर आप पहले पिज्जा का बेस इसके ऊपर तेल चुपड़ करके 5 मिनट इसको आप कुकर में थोड़ा सा बेक करें, ओवन है तो ओवन में बेक करें, नहीं तो कुकर में। फिर निकाल दीजिए बेक करके, ठीक है। अब टमाटर और पनीर को बेस पर सजा करके ऊपर से पिघला हुआ मक्खन फैला दीजिए, सब के ऊपर ये नमक काली मिर्च व सोया साग की पत्तियां को बुरक करके पिज्जा को इतनी देर तक आप बेक करें कि पनीर पर सुनहरापन आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीका है, आप बाटी के कुकर में ये रख सकते हैं या छलने पर रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई चिपके नहीं, और दूसरी बात है कि ये जले नहीं, आंच इस तरह आपको रखना है। ठीक है, ओवन में तो हमको पता होता है भाई 80 डिग्री में कर ले तो हो जाएगा, लेकिन गैस पर आप अगर आप बाटी के कुकर में या छलने में बना रहे हैं तो आंच हमेशा मध्यम रखिए और बीच बीच में देखते रहिए कि सुनहरा हुआ या नहीं, तैयार हुआ या नहीं, फिर इस तरह आप निकाल सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा तरीका है कुकर और छलने में बनाने का, लेकिन छलना डायरेक्ट नहीं रखना है गैस पर। ठीक है, नीचे तवा जरूर रखिएगा, तवा थोड़ा सा मोटा होता है ना, तो आग को इतना डायरेक्ट पहुंचाता नहीं है, नहीं तो फिर वो तो बनेंगे ही नहीं, जल जाएंगे। डायरेक्ट छलना रखेंगे तो डायरेक्ट आग पहुंचेगी तो वो जल जाएगा, और कुकर तो वैसे ही हाइट पर होता है, तो कुकर रखने के बाद तो कुछ भी रखने की जरूरत नहीं होती, स्लो कर दीजिए गैस को और आप डायरेक्ट इस तरह बेक कर सकते हो। ठीक है, फिर से दोहरा रही हूँ विधि, ध्यान दीजिएगा,
कि आपके पास कुकर है, छलना है, जो भी है रखिए गैस पर और गैस चालू करिए। अगर छलना रख रहे हैं तो नीचे तवा, फिर छलना रखिए, कुकर रख रहे हैं तो डायरेक्ट कुकर रखिए, ओवन है तो ओवन को गर्म करिए। पहले पिज्जा बेस पर आप तेल चुपड़िए और तेल चुपड़ करके 5 मिनट तक इसको बेक करिए, ठीक है। फिर निकाल करके आप टमाटर और पनीर को बेस पर सजा करके ऊपर से पिघला हुआ मक्खन फैला दीजिए। सब के ऊपर से आप नमक, काली मिर्च और सोया साग की पत्तियां भी बुरक करके पिज्जा को इतनी देर तक बेक करिए कि पनीर पर सुनहरापन आ जाए। इतनी देर आपको बेक करना है लेकिन झलाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, टमाटर पनीर पिज्जा तैयार है, तो देर किस बात की, भोग लगा देते हैं भाई, बच्चे तो भाई इंतजार कर रहे हैं और कंट्रोल नहीं होता है। तो आइए लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप टमाटर पनीर पिज्जा रखिए और भी जो कुछ बनाया है आपने वो रखिए, और तुलसी पत्र रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो, कौन से पिज्जा का, पनीर टमाटर पिज्जा का, ठीक है। और देखिए, आपको भी अगर रेसिपी आती है सात्विक रेसिपी तो जरूर आप भी दे सकते हो, और एक दिन पहले आप बता सकते हो कि रेसिपी आप देंगे, ठीक है। आइए सुनते हैं गीत, परंतु प्रश्न बड़ा अच्छा है कि धात्री माता किस तरह का भोजन करना चाहिए, धात्री माता को और अपने बच्चे को भी किस तरह का आहार देना चाहिए, जवाब जरूर देंगे। नंबर है 94-14-15-14-15 और सुनेंगे गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
0: जी वो अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम काफी अच्छे रहे हैं और बहुत ही सुंदर आपको विचार भी दिया है कर्मों के ऊपर, और नुस्खे भी बहुत अच्छे दिए हैं। छोटे बच्चों का अगर चुन्नट काटते हैं तो क्या करना चाहिए, तो बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, जरूर आप करिएगा। और रेसिपी भी बहुत अच्छी आपको सिखाई है, पिज्जा, पनीर टमाटर वाला पिज्जा जरूर बनाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बड़ी अच्छी हुई है कि बच्चों को माहौल अच्छा देंगे तो बच्चे संस्कारिक बनेंगे, और जरूरी भी है क्योंकि पहले के समय में तो तीन तीन चार चार बच्चे होते थे, पांच पांच छः छः बच्चे होते थे, तो चलो वो नहीं, वो कपूत निकला तो दूसरा सपूत निकल जाएगा। माता पिता निश्चिंत थे कि कोई न कोई तो हमारी सेवा कर ही लेंगे, लेकिन आज के समय को देखते हुए तो बच्चे एक या दो ही होते हैं। और पहले का और अभी के माहौल में बहुत फर्क है। पहले कैसा भी था लेकिन माहौल अच्छा मिलता था, आज हम कितने भी स्टैंडर्ड का जीवन जीते हैं फिर भी माहौल अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल देवे तभी बच्चे संस्कारिक बनेंगे, ठीक है। और आज का प्रश्न यही था कि धात्री माता किस तरह का खाना खाए और बच्चों को भी खिलाए, तो जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, दयाराम जी लाखनी से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई झोटाना से और कुपाराम जी कोजरा से। किसी ने कहा कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो उससे खून बढ़ेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। फिर किसी ने कहा है कि भाई लगभग तो सभी ने यही कहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाए। फिर किसी ने कहा कि भाई महिलाएं तो नहीं जा सकती है, पति ला करके देंगे तभी तो महिलाएं खा सकेगी, तो पतियों को चाहिए या जो भी सब्जी लेने जा रहे हैं उनको चाहिए कि वो कंजूसी ना करे और फल फ्रूट हरी पत्तेदार सब्जियां लाए। तो देखिए सभी का जवाब सही है, सभी के लिए मैं एक बार तालियां बजवाना चाहूंगी। तो बिल्कुल जरूरी है कि जो धात्री माता है, जो बच्चा स्तनपान कर रहा है और बच्चे को भी खुराक की आवश्यकता है, क्योंकि साल भर के बच्चे, 9 महीने, 10 महीने के, 12 महीने के बच्चे खाली माँ के दूध से अगर पेट नहीं भरता है तो उनको भी हल्का आहार देना पड़ता है। और अगर माँ के दूध से चल जाता है तो फिर तो ऊपर से कुछ नहीं देना चाहिए साल भर के बच्चों को, क्योंकि वो माँ के जो खुराक है, माँ का जो फिट करता है बच्चा, उस दूध में सारे ही पौष्टिक तत्व आ जाते हैं। इसलिए माँ को अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है धात्री माता को, कि वो हरी पत्तेदार सब्जियां खाए, थुल्ली खिचड़ी ज्यादा खाए, उसमें अच्छा सा घी डाल करके खाए, है ना, और थोड़ा सा नवसेका खाए, ठंडा होने के बाद नहीं खाए, नहीं तो सर्दी खांसी की तकलीफ होगी तो बच्चों पर भी असर होगा। और दूध जरूर पिए और फल फ्रूट भी खाते रहे। और अगर बच्चे फिर भी आपके दूध से बच्चों को पूरा नहीं पड़ता है तो बच्चों को भी आप, जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनके दांत तो नहीं है, तो आप उपमा अगर बना रही है तो उपमा में कुछ मत डालिए, खाली घी में सेक करके हल्का सा नमक और हल्दी डाल करके एकदम ढीला ढीला बनाइए। चाहे तो आप उसमें थोड़े से छाछ या नींबू डाल सकते हैं और ढीला ढीला बना करके एकदम राबड़ी की तरह, राजस्थान में राबड़ी बोलते हैं, ऐसे ढीले ढीले राबड़ी की तरह बना करके बच्चों को चम्मच से खिलाइए तो आसानी से खा लेंगे और सूजी नुकसान भी नहीं करती है। फिर आप जैसे कि फ्रूट, बच्चों को फ्रूट के जूस पिला सकते हो थोड़ा बहुत, और अगर जैसे बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे केला है तो केले को तो आप हाथ से मैश करके भी खिला सकते हो, ड्रैगन फ्रूट है उसको भी आप मैश करके खिला सकते हो, तो जो मैश हो जाते हैं हाथ से उसको आप हाथ से खिलाइए। और अगर बच्चे नहीं खा सकते जैसे अनार के दाने नहीं खा सकते क्योंकि दांत नहीं है तो चबेंगे नहीं, तो उसका जूस पिला करके आप दे सकते हो। तो इस तरह धात्री माता को भी ध्यान रखना है और अपने बच्चे का भी खाने का पूरा ध्यान रखना है, संतुलित आहार खाना है, ना कि ऐसे भारी भारी भोजन, ऐसे समय में दाल बाटी या मक्की की रोटी इस तरह भारी खाना नहीं खाना है क्योंकि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, हो सकता है उनके पेट में दर्द शुरू हो जाए। ठीक है, और अब मैं आपको एक प्यारी सी बच्चों पर ही कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। कविता का शीर्षक है झूला। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नबको छूले। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नबको छूले। हे बहार सावन की आई, हे बहार सावन की आई, देखो शाम घटा नब छाई। अब फुहार पड़ती है भाई, अब फुहार पड़ती है भाई, ठंडी ठंडी अति सुखदाई। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर के नब को छूले। कुहुक कुहुक कर गाने वाली, कुहुक कुहुक कर गाने वाली, प्यारी कोयल काली काली, बड़ी सुरीली भोली भाली, गाती फिरती है मतवाली। हम सब भी गाकर झूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले। मोर बोलता है उपवन में, मोर बोलता है उपवन में, मस्त हो रहा है नर्तन में। चालक भी चातक भी बोला वन में, चातक भी बोला वन में, आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी क्या हर पल एंजॉय की जा सकती है? क्या जिंदगी को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? कितने सारे सवाल आते हैं ना मन में, लेकिन उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे कार्यक्रम लव यू जिंदगी में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, जो कि सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू से। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से डायरेक्ट मिलकर उनसे बातें करके, अपनी बातें शेयर करके। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
0: दीदी, मुझे ना एक गाने की लाइन याद आ गई थी और उसमें कहते हैं कि बताना भी नहीं आता और छिपाना भी नहीं आता। कई बार भावनाओं के साथ ऐसा ही होता है कि समझ में नहीं आता कैसे एक्सप्रेस करें, और कभी कभी हमें लगता है हम बड़ा अच्छा छुपा ले रहे हैं, लेकिन वो किसी और तरीके से एक्सप्रेस होके बाहर आ जाती है। और हम लोग भावनाओं के बारे में ही, इमोशनल अवेयरनेस के बारे में पिछले कुछ एपिसोड से बातचीत कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले

0: को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक प्रश्न आया था मेरे सामने, वो मैं आपसे पूछती हूँ। उन्होंने ये बोला कि उनको जब एक्सप्रेस करने का वक्त आता है, वैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मेरी भावनाएं अगर मैं किसी के भी सामने ले आऊंगी तो वो मुझे समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि नोबडी विल अंडरस्टैंड। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल सही समझा उन्होंने अपने आप को, कि एक तो होता है भावनाओं को समझना कि मेरी क्या फीलिंग है। मैं खुशी फील कर रही हूँ, मैं गुस्सा फील कर रही हूँ, मैं उदास फील कर रही हूँ, मैं जेलस फील कर रही हूँ, मैं कंपटीशन फील कर रही हूँ, दूसरे के साथ कंपैरिजन की फीलिंग मुझे है, मुझे क्या मेरी भावनाएं हैं, इसको पहचानना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तब हमें एक अडल्ट होने के नाते फिल्टर लगाना होता है ना?
0: Okay.
1: हाँ, फिल्टर क्यों लगाना है कि अगर हम एज इट इज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देंगे तो लोगों को वो शायद समझ में भी नहीं आए और शायद पसंद भी ना आए।
0: Right.
1: ये भी हो सकता है ना?
0: जी।
1: सो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा 9 साल का मेरे पास आता है। उसके माँ बाप उसको लेकर आए इसलिए कि आप इसे थोड़ा सुधारिए। ये जब बड़ों से बात करता है, बड़े कुछ भी पूछते हैं तो ब्लंटली जवाब देता है, जो उसकी फीलिंग है वैसी ही वो एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहन ने उससे पूछा कि कैसे हो आप, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। सो अब उसको सवाल समझ में नहीं आया, तो उसने कहा क्यों नहीं दिखाई दिया, आप इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, क्या आपको दिखाई? सो उसके जवाब बहुत ब्लंटली होते हैं, फिल्टर किए बिना वो किसी को भी जवाब दे देता है। तो उसके पेरेंट्स को ये चिंता है कि ये एज इट इज अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर देता है, जो कभी कभी सामने वाले को हर्ट
0: अनकंफर्टेबल होते हैं,
1: अनकंफर्टेबल। किसी बच्चे से हम इस तरह के जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं
0: जी।
1: तो आजकल वो रोज बच्चा मेरे पास आ रहा है। सो मैंने जो ऑब्जर्व किया, ही इज वेरी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें वो समझता है, सोचता है, लेकिन छोटी छोटी व्यावहारिक बातें समझने में वो उसमें दिमाग नहीं लगाता है।
0: ओके।
1: वो जिस तरह से समझता है वैसे ही जवाब देता है, उसमें वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन अगर कोई किताब में से उसको कोई बहुत अच्छा पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ, उसका वो एज इट इज एक्सप्लेनेशन देगा, उसके बारे में बताएगा, वो बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेगा। पढ़ाई में होशियार है, हर चीज में, लेकिन उसको छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि व्यवहार में कैसे जवाब देना है। सो हम सभी ने डिस्कस किया, उसके पेरेंट्स और हम सभी ने मिलके सोचा कि अभी इसकी उम्र छोटी है, ये बिना फिल्टर के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा उसे टाइम देना चाहिए।
0: ओके।
1: जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, तो उसको समझ में आएगा कि जवाब कैसे देना है। सो वो समझ रहा है इस बात को, और उसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक कहानी मुझे याद आती है, किसी साइंटिस्ट की है। तो वो साइंटिस्ट बहुत बड़े रिसर्च करते थे, तो जिस कमरे में वो रिसर्च करते थे वहां एक बिल्ली थी और एक बिल्ली का बच्चा था, है ना? सो वो देखते थे कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के लिए आने जाने का रास्ता उनको बनाना था। तो रिसर्च में इतना बिजी रहते थे कि इस छोटी सी बात को सोचने के लिए इन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने सोचा मेरे पास 2 बिल्लियां हैं तो मुझे 2 होल्स बनाने हैं, एक बड़ा होल और एक छोटा होल।
0: ओके।
1: तो उन्होंने 2 होल बना दिए, एक बड़ा होल एक छोटा होल। सब लोग आके पूछते थे ये आपने 2 होल क्यों बनाए हैं। कहा बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा होल, छोटी बिल्ली के लिए
0: छोटा होल।
1: बट वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सके कि अरे बड़े हॉल में से छोटी बिल्ली भी जा सकती है ना, उसके लिए अलग हॉल बनाने की जरूरत
0: नहीं है।
1: तो जब कई लोग एक अलग लेवल पर, एक जीनियस लेवल पर होते हैं, तो वो कभी कभी छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते
0: क्योंकि ब्रेन कहीं और ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जैसा आपने बताया, वो बच्चा भी बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो और बहुत ऑनेस्ट भी है, जैसा आपने कहा अपनी फीलिंग्स के साथ, उसे वही फील हो रहा था तो उसने वही कह दिया। यहाँ मेरे पास एक और सवाल आता है।
1: नहीं, आपका सवाल में से मुझे लगता है कि मैंने एक आधा जवाब दिया।
0: जी जी,
1: जो सवाल था आपका, उसमें आपने कहा कि कोई मुझे समझेगा नहीं।
0: हाँ जी, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं करते।
1: नहीं करते हैं, तो एक्सप्रेस करो या नहीं करो, लेकिन एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी।
0: ओके, कैसे?
1: मेरी किस तरह की फीलिंग है, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मेरी इस समय कौन सी भावना है, अगर मुझे अच्छी तरह से पता हो। और मैं किसी के सामने इसलिए नहीं व्यक्त करती हूँ कि वो मुझे नहीं समझेंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करना है। वो कैसे हो सकता है? आप कोई चित्र बना दो।
0: ओके,
1: हो सकता है आप कहीं किसी डायरी में लिख डालो। ना, लिखना सबसे अच्छी एक्सप्रेशन है। हो सकता है आप गार्डनिंग करते समय पेड़ पौधों को वो बात सुना दो। जैसी है वैसी, क्योंकि वो जज नहीं करेंगे आप, है ना। या फिर हम जो करते हैं मेडिटेशन में, हम जब ईश्वर से बात करते हैं, परमात्मा से बात करते हैं, या यूनिवर्स से बात करते हैं, तो हम अपनी बात एज इट इज यूनिवर्स को सुना देते हैं।
0: ओके,
1: क्योंकि
0: इंटरेस्टिंग है।
1: हाँ, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, केवल सुनेगा, है ना,
0: संभाले
1: और एक्सेप्ट भी करेगा। परमात्मा भी ऐसे ही है, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपको रिमार्क नहीं देते आप ऐसे हो आप ऐसे हो, जो आपको गलत नहीं समझते हैं। तो जब हम अपनी फीलिंग्स को, जैसे कहा जाता है ना, लेटर टू गॉड, हम ये प्रैक्टिस भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ।
0: okay.
1: कि राइट अ लेटर टू गॉड, गॉड इज योर फादर, सो राइट अ लेटर टू गॉड। उसमें शिकायत हो सकती है, उसमें अपने दिल की बात हो सकती है एज इट इज, एंड वो इतने उदार दिल है कि वो कभी भी आपकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस, हमको एक्सप्रेस करना जरूरी है।
0: ओके, तो ये मतलब जैसा आपने कहा कि भले हम लोगों से शेयर करने में अभी अनकंफर्टेबल हैं एट प्रेजेंट, तो हम ऐसे भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
1: कर सकते,
0: बट एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, भावनाओं को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है।
1: एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट वर्ड है सप्रेस। तो क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि महिलाएं और गर्ल्स, फीमेल है, फीमेल्स है, उनको अक्सर कहा जाता है कि चुप रहो, बोलो मत। या कोई बहू है, बेटी है, या किसी भी रोल में है फीमेल्स, तो उनको दबाया जाता है, उनकी फीलिंग्स को शेयर करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो सप्रेशन में चली जाती है। और सप्रेस की हुई फीलिंग्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप अगर एक छोटी सी स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा के रखेंगे, प्रेशर दे, तो वो दबी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप हाथ उठाएंगे
0: तो एकदम से बाहर आती है,
1: उछल कर कूद कर
0: चलती है,
1: कहीं और चली जाएगी। तो वैसे ही जब हम अपनी भावनाओं को सप्रेस करते हैं, तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ते। उसको वेंट आउट नहीं हुई ना हमारी फीलिंग्स। उसको कई बार कहते हैं, आप बहुत अच्छा खाना खा लेते हो, पर थोड़ा ज्यादा खा लेते हो, तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है,
0: वॉमिटिंग हो जाती है,
1: या आपको वॉमिटिंग करनी पड़ती है, वो हजम भी नहीं हो रहा है और मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है। तो वो उल्टी करना एक्सप्रेशंस के साथ भी ऐसा ही होता है, फीलिंग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। दबा दबा दबा दबा के, सप्रेस कर कर करके, फिर एक टाइम आता है कि आपको उल्टी करना पड़ता है। तो वो अगर उल्टी ना हुई, निकला नहीं आपके दिमाग से वो बातें, तो फिर वो आपको ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाए। क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं के साथ रिपीट करते रहोगे उन थॉट्स को, उन विचारों को,
0: और वो बिल्कुल भी अच्छा दृश्य नहीं होगा। जैसा आपने कहा, इट इज लाइक सब कुछ एकदम से बाहर आना हैंडल भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त, शायद इतना कुछ एक साथ डील भी नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, जो बहुत बार होता है सच में, हमें से बहुत लोगों के साथ होता है, एट एनी पॉइंट शायद हुआ है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मिलता जुलता ही था ये सवाल, लेकिन मैंने सोचा आपसे थोड़ा अलग से पूछती हूँ, क्योंकि एक डिफरेंट केस था। उन्होंने ये कहा कि वो एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा उनसे फाइनेंशियल स्टेटस में अलग है, एंड उसमें उनको कई बार ऐसा लगता है मैं अगर ओरिजिनली एक्सप्रेस करूंगा तो थोड़ा मजाक उड़ाया जाएगा या ऐसा कहा जाएगा, जो उनके साथ एक दो इंसिडेंट्स हुए भी हैं, एंड उन्होंने ये कहा आई एम ट्राइंग टू चेंज, तो मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, एंड आई विल वन डे, अभी मुझे थोड़ा सा हाइड करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को या अपनी चीजों को, मैं अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ, बट मैंने ये प्लान किया है कि मैं अपने आप को इतने समय में एक न्यू मी बना लूंगा, एक नया मैं बन जाऊंगा, जो बाकी लड़कों की तरह है, जो कॉन्फिडेंट है, जो मस्ती मजाक करता है ज्यादा, अभी वो वैसे नहीं है, बट ही सेड कि वो उनका प्लान है, तो इस बारे में क्या लगता है आपको?
1: बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी इन चीजों से गुजरी हूँ। जब स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड फाइनेंशियल स्टेटस से बच्चे आते हैं, तो हम तो मुंबई के स्कूल में थे तो हमने देखा हमारे स्कूल में गवर्नर के बच्चे भी थे, तो बड़े बड़े घरों से बच्चे थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके पास पैसे होते थे, वो रिसर्च में जाकर कुछ खरीद कर खा लेते थे, परंतु उनके बीच में रह के हमारे पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी, तो जो हमें उनके साथ रहते हुए भी गिल्टी फील नहीं कराता था या लो फील नहीं कराता था, वो चीज थी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट।
0: ओके,
1: हाँ, सो वो कैसे बना, तो मैं आप एक उदाहरण देना चाहूंगी, मेरे ही बचपन का उदाहरण है। सो मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जीवन का काफी अनुभव था उन्हें, पुराने लोगों को था जीवन का अनुभव, तो एक घटना के माध्यम से उन्होंने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया। तो एक बार क्या हुआ, बहुत छोटी उम्र थी, 4-5 साल की, और सभी आसपास पड़ोस के दोस्तों ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे लेके आ जाओ, हम बहुत अच्छी चॉकलेट्स लेंगे, और हमारी वो छोटी सी चॉकलेट पार्टी होने वाली थी। दोपहर का समय था, मैं भी अपने घर में गई, देखा सब लोग सो रहे हैं, अब मुझे तो पैसे चाहिए थे, तो मैंने देखा कि टेबल पर कुछ चिल्लर पड़ी है, हमारे जमाने में 10-5 पैसे हुआ करते थे। और वो 25 पैसे का वो कॉइन होता था
0: जी।
1: तो वो चिल्लर मैंने उठाई और मैं चॉकलेट खा के खत्म भी कर लिया, मतलब एंजॉय किया हमने वो दोपहर में। अब शाम हुई तो मम्मी पापा ने देखा कि इधर पैसे कुछ थे वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो सबको अनाउंस किया गया कि किसने लिए, क्या यहाँ कहाँ गए पैसे, तो मैंने आगे आके कहा कि मैंने लिए और मैंने चॉकलेट्स खाए। सो मम्मी पापा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सब लोग इधर उधर हो गए, फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा आपने पूछा था किसी से पैसे उठाते समय, तो मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने पहली शिक्षा दी कि देखो चाहे आपके घर की चीज है, चाहे आप पड़ोस में खेलने जाते हो, उनके घर में कोई चीजें पड़ी है, छोटी है बड़ी है, पैसे है, चीज वस्तु है, कोई भी चीज आपको पूछे बिना हाथ नहीं लगाना है ना, किसी के भी परमिशन लिए, क्योंकि आपकी नहीं है ना, तो आपको परमिशन लिए बिना उसको यूज नहीं करना है। उसी का मौका लेकर उन्होंने दूसरी बात समझाई, देखो बच्चा हमारी जो हैसियत है उसके अनुसार हम आपको सब कुछ देना की कोशिश करते, तो आपको उस बात की खुशी होनी चाहिए जो हम देते हैं उसमें आपको खुश रहना है। जब आप पड़ोस में देखते हो कि उनके मम्मी पापा उनको अच्छी अच्छी गुड़िया देते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी पुरानी है, थोड़ी छोटी है, आपको वही अच्छी लगनी चाहिए, आपकी नजर उनकी चीजों पर नहीं जानी चाहिए, और अपने आप को आपको कम नहीं समझना चाहिए, जो आपको मिला है वो भगवान का दिया हुआ एक बहुत सुंदर गिफ्ट है, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है, लेकिन दूसरों की चीजों को देखकर अपने आप को छोटा नहीं समझना है। ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने और एक बात कही कि इस समय हम आपको जो बता रहे हैं बातें वो शायद आपको समझ में ना आए, पर आप इसको याद रखना और इसी को यूज करना। सो उस छोटी सी उम्र में वो बात याद रह गई कि दूसरों के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना, उनकी सोने की चैन होगी, स्टील की होगी, पीतल की होगी, मुझे उस पर नाज होना चाहिए, उनके कपड़े बहुत ब्रांडेड होंगे, बहुत फैशनेबल होंगे, मेरे सिंपल होंगे लेकिन स्वच्छ होंगे, मुझे उस पर नाज होना चाहिए। सो वो चीज दिमाग में इतनी बैठी थी। तो इतने बड़े घरों के लोग होने के बावजूद भी हमें कभी अपने लिए गिल्टी फील नहीं हुआ या कम फील नहीं हुआ, हम उनके साथ उतना ही कॉन्फिडेंस से बात करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ रहना और अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखना, वो बहुत पैसे खर्च करते थे लेकिन हमारे पास जो थोड़े होते थे उसमें से हम थोड़ी चीज लेते थे और हम शेयर करके खाते थे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब मुझे ये पता चला कि वो बड़े घर के बच्चे मेरे टिफिन से खाना खाते थे और उनको मेरे घर का खाना अच्छा लगता था, तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात है जो आपको मेरे घर का, तो वो कहते थे आप हमारा टिफिन ले लो, आपका हमें दे दो। तो मैं कहती थी मेरा तो इतना सिंपल है, आपको मेरा क्यों अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें तुम्हारी मम्मी कितना प्यार से बना के दे रही, उसका टेस्ट हमें पता है, इसलिए तुम्हारा टिफिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब मुझे महसूस हुआ कि अपने छोटे से घर में उन्हें ले जाने में मुझे शर्म नहीं आई।
0: प्यार मतलब उससे भी ऊपर है। कई बार हम भावनाओं को कम रख लेते हैं, पैसों से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर जब ओरिजिनलिटी रहती है तो ओरिजिनली लोग पसंद करने लगते हैं। कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया दीदी आपने, और मुझे लगता है कितना प्रैक्टिकल है ये।
1: लोग क्या करते हैं स्कूल कॉलेज में शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं
0: जी,
1: कपड़ों से, अपनी बातों से, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों? आप जो हो जैसे हो वैसे ही प्रेजेंट रहो, तो वो भी एक भावनाओं की सच्चाई जो है
0: जी,
1: वो सामने वाले के दिल को छू जाती है।
0: ये जो न्यू मी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने ये वाला शब्द सुना उनके मुंह से न्यू मी, तो ये न्यू मी बनने के लिए क्या हम अपनी भावनाओं को फेक करना या फिर कुछ और बनने के लिए अगर कहीं हमें जो चीज सही नहीं लग रही है वो भी फील करना, जैसे उन्होंने बताया ग्रुप में कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं किसी का, तो उनको इनिशियली वो नहीं होता था उनसे, क्योंकि शायद उनको गिल्टी लगता होगा, ये वर्ड तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बाद में वो कोशिश करने लगे कि मैं भी उड़ाऊं मजाक थोड़ा, मैं भी उस प्रकार से करूं। तो ये अपनी भावनाओं को खुद ही हम कुछ और समझ रहे हैं, क्या कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है ऐसा लग रहा है।
1: देखिए, एक मजाक उड़ाने की जहां तक बात है
0: जी,
1: तो मुझे आप बताओ, उनको ही पूछना चाहिए हमें कि आपको किसी का मजाक उड़ाते हुए अच्छा लग रहा है क्या।
0: वो इनिशियली नहीं लग रहा था, बट उन्हें लगा कि ठीक है नहीं लगना चाहिए मुझे गिल्टी, बिकॉज ये ऐसा ही कूल होता है या ऐसा
1: ग्रुप में अच्छा शामिल होने के लिए हम भी मजाक करना शुरू कर देते
0: जी,
1: है ना, कि मुझे उस ग्रुप में शामिल होना है। कई बार है ना पीयर प्रेशर इस तरह का होता है कि जैसे कुछ बच्चे गलत काम करते हैं, कहीं चोरी करना, कहीं कुछ सिगरेट पी लेना, कहीं शराब का घूंट लगाना, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनको ये पसंद भी नहीं है, वो अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए उनकी जैसी आदतें डालने की कोशिश करते हैं,
0: अपनी फीलिंग्स को ही नेगलेक्ट कर देते हैं।
1: यस यस, ये फेक मी है,
0: इसमें न्यू मी नहीं है।
1: ये न्यू मी नहीं है, ये फेक मी है, और ये फेक मी के साथ लंबा समय जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो असली मी को समझना, न्यू मी करो बट वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। सो यहाँ हम नेगेटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स, जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं हमें कि नेगेटिव फीलिंग्स क्या है, कि किसी के बारे में मुझे ईर्ष्या होना, उसको देख के मुझे अपने आप में कमी महसूस होना, ये नेगेटिव फीलिंग्स है ना,
0: मुझे अच्छा फील नहीं कर रहा, अच्छा बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है।
1: लोग बड़े बड़े शौक रखते हैं, मुझे भी ऐसे लगता है मैं क्यों नहीं रख सकती, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सो हमें लगता है कि मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये कंपैरिजन होता है। हाँ, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, फिर हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं हूँ। तो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ फोकस जो है खुद से निकलकर दूसरों के अराउंड घूमता रहता है ना। तो अब अपने सेंटर ऑफ फोकस को जब मैं अपने पास वापस ले आती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अरे उनमें अगर ये चीज अच्छी है तो मुझ में ये चीज अच्छी है, वो ये काम कर सकते हैं तो मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करते हैं वही मैं करूं।
0: सेम जरूरी नहीं है,
1: नहीं है। मुझे जो आता है, मेरी जो फीलिंग्स है, मैं उसके साथ चलूं, उसके साथ जिंदा रहूं, वो है रियल एंड न्यू मी।
0: बहुत सुंदर डेफिनेशन है। और कई बार हम सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स डिपेंडेंट ही रहती हैं। सेम ही बनना चाहते हैं, वैसे यूनिक बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स सेम करना चाहते हैं किसी ना किसी के साथ, ग्रुप के साथ, आइडेंटिफाई जिनके साथ हम करते हैं। बहुत सुंदर है। मेरे मन में और भी सवाल है, मुझे लगता है अभी तो हमें समय इजाजत नहीं देगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि और हम पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ कैसे जाएं, या फिर कई बार हमें रॉन्ग स्टिमुलस यानी मान लीजिए किसी को चिढ़ा कर या गिरा कर अगर स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है तो फीलिंग तो मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बट उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ तो एक्शन और फीलिंग में क्या रिलेशन है, ये भी थोड़ा आपसे क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है दीदी कि कुछ अगर आप मेडिटेशन या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराएं जो हम अपनी पॉजिटिव फीलिंग से और अटैच हो पाए और मी, जो हम न्यू मी या रियल मी की बात कर रहे हैं, उसको रियल ही रखें।
1: जी, मैं श्रोताओं से कि वो 2 मिनट के लिए अपने आप को कहीं सेटल कर ले, किसी एक शांत, स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएं, रिलैक्स करें अपने माइंड और बॉडी को, गहरी और लंबी सांस लें और उस सांसों को ध्यान लगाते हुए, सांसों पर ध्यान एकाग्र करते हुए इमेजिन करें कि आप अपने आप से अलग हो रहे हैं। आई एम डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम मी। मैं थोड़ा सा दूर जाकर दूर से अपने आप को देख रही। गहरी और लंबी सांस ले और देखिए कि मुझे एक जो शरीर मिला है, इस शरीर के साथ मैं हर जगह पर एक अलग अलग रोल प्ले कर रही हूं। घर में मेरा रोल बेटी का है, बेटे का है, भाई या बहन का है। सो देखिए अपने आप को उस रोल में प्ले करते हुए, एक्ट करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए 10 सेकेंड्स के लिए देखिए अपने आप को रोल प्ले करते। मैं अपने हर रोल में ओरिजिनल हूं, रियल हूं। मैं एक बेटा या बेटी के रूप में माता पिता के साथ अपने ट्रू रियल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट हूं। माता पिता के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, शुक्रगुजार हूं। गहरी और लंबी सांस लें। स्कूल कॉलेज में अपने रोल को देखें, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ अपने रोल को दूर से ऑब्जर्व करें और उसमें रियलिटी डालें। आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें। उस ओरिजिनलिटी के साथ लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए अपने आप उस रियलिटी के साथ, लोग आपकी पहचान करते हैं। चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, होशियार हैं, कम होशियार है, एवरेज है, आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। लोग सच्चाई की, ईमानदारी की, रियलिटी की कद्र करते हैं, इसलिए गहरी और लंबी सांस ले, अपने आप से वादा करें, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे अपने आप को बहुत लाइक करती हूं। अपनी अच्छाइयां और कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती हूं। मैं अपने आप को, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे ही प्रेजेंट करती हूं। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच दीदी। मुझे लगता है कि रियलिटी चेक है ये हमारे लिए, और अपने आप को वो करते देखना जैसा मैं हूँ वैसे ही पेश करना, अगर अभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कर लेंगे, पर उसके लिए मैं ना पकड़ू। बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल्स के साथ हमें प्रैक्टिकल एक हमारी वर्जन की ओर लेके गए। मैं आशा करती हूँ हमारे दोस्तों को बहुत फायदा हुआ होगा इससे। दोस्तों, अगर आप कभी भी थोड़ा भी लो महसूस कर रहे हैं या परेशान लग रहा है आपको कि मैं अलग हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, तो दोस्तों बस ये कहना चाहेंगे कि आप अकेले रहिए और आप जुड़े रहिए हमारे

0: साथ इस सफर में, इस कार्यक्रम में। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें गाइड करने के लिए।
1: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का, मुलाकात होगी लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में। तब तक आइए दिल खोल के कहे लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। देखिए, वंदे मातरम नाम से ही मन पुलकित हो जाता है कि वंदे मातरम मात्र शक्तियाँ किसी से कम नहीं है। किसी के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आता है, किसी के जीवन में क्या प्रेरणाएं हम ले सकते हैं, उनके जीवन से बहुत सारी बातें होती है जो घर की चार दीवारी में दबी रहती है, खुल करके बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन रेडियो मधुबन में वंदे मातरम जो कार्यक्रम चलता है, इसके जरिए आप नारी शक्ति की विशेषताओं को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और क्या आपने जीवन में किया है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है, छोटी छोटी बातों में ही हम प्रेरणा लायक बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हमने क्या किया और हमारे से कैसे लोग प्रेरणा ले रहे हैं। तो बहुत ही ये खूबसूरत कार्यक्रम वंदे मातरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मिलवाने वाली हूँ, देखिए इसमें दो जनरेशन है, एक 85 साल के है रतन माता जी जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान कपासन से पधारे हैं, और एक आज की युवा जनरेशन मयूरी शाह जो अहमदाबाद से आई है, 32 साल की उम्र है। तो जनरेशन गैप के अनुसार काफ़ी विचारों का मतभेद भी होता है, लेकिन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। एक तो इतरा बहू है, एक नानी सास है। तो आपका आश्चर्य हो रहा होगा कि ये क्या, कहाँ तालमेल बिठाया है दीदी ने, लेकिन इसी को कहते हैं जीवन। क्योंकि देखिए, उम्र के डिफरेंस के बावजूद भी कैसे रिश्तों में मधुरता आती है, कैसे प्यार से रहा जा सकता है घर परिवार में। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम वंदे मातरम आज आप सुनने वाले हैं, जिसमें अभी हम आपको मिलवाएंगे रतन माता जी से। रतन माता जी, राम राम।
1: राम राम।
0: और तबीयत अच्छी है?
1: अच्छी है।
0: अच्छा, आप भजन सुनाओगे?
1: ना।
0: हाँ तो सुनाइए।
1: छोटे से है नाव अपने जादू भर पाम, मुझे डर लगे राम कैसे बेटा हूँ तो।

0: में एक पत्थर के बन गई नारी, एक
1: पत्थर की बन गई नारी।
0: मेरे लकड़े की नाव पुरानी, मेरे लकड़े की नाव पुरानी। मैं तो पालू परिवार, मैं तो पालू परिवार, मेरो यो रुजगा, मेरो यो रुजगा। सुनो सुनो जे सरका, रे कैसे बेटा तुझे।

0: लगे रहा मैं कैसे बेटा तुझे नाव में नाव में। एक बात मानो तो बैठा हूँ एक बात मानो तो बैठा हूँ आपके चरणों की धूल हटाऊँ आपके चरणों की धूल हटाऊँ तब करा मंजूर तब करा मंजूर मेरा संदेह होगा दो मेरा संदेह होगा दो रे सुनो सुनो जी जो रे आओ जी बैठा तुझे नाव में मेरे छोटे सी है नाव अपने जादू भर पा मुझे डर लगे रहा मैं कैसे बैठा हूँ तुझे नाव में। एक प्रेम सहित पग धोया एक प्रेम सहित पग धोया पाप जनन जनन का खोया पाप जनन जनन का खोया तब हुआ परसन तब हुआ परसन कर राम दर्शन कर राम दर्शन संग सीता लक्ष्मण संग सीता लक्ष्मण ओहो आओ जी बेटा हूँ तुझे नाव में मेरे छोटी सी है नाव पर जादू भर पाँव मुझे डर लगे रहा मैं कैसे बेटा तुझे नाव में धीरे धीरे तो नाव चलावे धीरे धीरे तो नाव चलावे एक गीत खुशी का गावे एक गीत खुशी का गावे यूं चेता मन ने यूं चेता मन ने सूरज डूबे छन ने सूरज डूबे छन ने नहीं जावे वन ने नहीं जावे वन ने ओहो बेटा रवे जी मेरे नाव में मेरे छोटे सी है नाव अपने जादू भर पा मुझे डर लगे राम कैसे बेटा तुझे नाव में तू ले ले रे मल्ला उतराई तू ले ले रे मल्ला उतराई मारे पास है कछु नहीं भाई मेरे पास है कछु नहीं भाई एक में केवट आप रघुराई एक में केवट आप रघुराई भाई भाई से लेना शरम है भाई भाई से लेना शरम है मैंने किया गंगा पार मैंने किया गंगा पार आप करना भव सागर पार आप करना भव सागर पार यही केवट की पुकार ओहो बेटे आया जी तेरी नाव में मेरे छोटे सी है नाव अपने जादू भर पाम मुझे डर लग रहा मैं कैसे बेटा तुझे नाव में ए पकवान।
1: बहुत खूबसूरत गीत आप सभी ने सुना है। कितना सुंदर श्री राम जी और केवट के बीच संवाद चल रहा था। केवट कह रहा था कि मैं कैसे बिठाऊं आपको, आपने तो एक पत्थर की नारी को सजीव कर दिया और एक वास्तविक रूप में उसको नारी के रूप में बना दिया, कहीं मेरी एक जो नाव है जो लकड़ी की नाव है उसको आपने कुछ कर दिया तो मेरे तो आजीविका ही चली जाएगी। तब श्री राम जी के चरण धो करके फिर इस तरह केवट ने उनको नाव में बिठाया। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ भावना झलकती है इस भजन में। तो रतन माता जी बहुत ही सुंदर आपने गीत सुनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रेडियो के श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे? आप 85 साल के हैं, आप अभी भी काम कर लेते हैं, क्या क्या काम करते हैं?
0: घर पे तब सभी काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन बासन चौकारा सब काम करते हैं। बाबा की प्रतिज्ञा बोलो
1: बोलो सुनो, भगवान की प्रतिज्ञा भी सुनाने के इच्छुक है तो सुन लेते हैं हम, सुनाओ
0: बाबा। क्या देखो अब तेरी मारी मत्ती पे चल होगा तो थांगा अच्छा सुधार होएगा। कम से कम मेरी याद मेरे ज्ञान का मनन चिंतन करके तो देख, तुझ में ज्ञान के मोती न भर दूँ तो चेना, तो मेरे राजयोग के राहों पर चल कर तो देख, तुझे राजा का महाराजा न बना दूँ तो चेना, तो मेरे ज्ञान के मनन चिंतन के जन तो वरदाता विदाता को अपना बना के देख, तेरे भाग्य द्वार न खोल दूँ तो चेना, तो मेरे लिए लोगों से कड़वे वचन सुन के देख, उसे अमृत वचन न बना दूँ तो चेना, तुम गले देने वाले को गले लगा के देख, उसे विश्व शांति का दूत न बना दूँ तो चेना, तो मेरे लिए तन मन धन खर्च करके देख, तेरे कुबेर के भंडार न खोल दूँ तो चेना, तो कम से कम निर्बल को हिम्मत का सारा दे के देख, तेरी डूबी नया पार न लगा दूँ तो चेना, तो प्राणी मात्र पे दया करके देख, तुझे कौड़ी से अमूल्य हीरा न बना दूँ तो चेना, तो वरदाता विदाता को अपना बना के देख, तेरे भाग का द्वार न खोल दूँ तो चेना, तो दे दुनिया से नष्टो मो बनकर देख, तुझे विदय फरिश्ता न बना दूँ तो चेना, तो मुझे खुदा दोस्त से दिल लगा देख, तेरे दिल के दर्द न मिटा दूँ तो चेना, ओम शांति, योगी बनो, पवित्र बनो।
1: क्या बात है रतन माता जी, बहुत बहुत आभार आपका। रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आप पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए इसके लिए कार्यक्रम के। आपको अभी कार्यक्रम तो चल रहा है, लेकिन रतन माता जी बस इतना ही बोलेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं 85 साल की उम्र है, इतना बोल लिया वो भी बहुत कुछ है। तो इस उम्र के तकाजे से आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोता बंधु को? चलिए पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो,
2: नमस्कार दीदी, पालमपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
1: हाँ जी, ओम शांति, नमस्ते फिरोज भाई, कैसे हो आप?
2: बस एकदम अच्छे। और वो जो नाव वाला गीत भी अच्छा सुनाया दीदी ने।
1: हाँ जी, रतन माता जी ने। जी
2: जी जी जी। और जो अभी भी जो बात सुनाया कि जो प्राणी मात्र पे जो भी इसके ये करेगा तो उसको भी मैं धनवान बनाऊंगी।
1: जी जी जी
2: जी जी
1: जी।
2: बहुत अच्छा सुना, इतनी उम्र है 85 की, बहुत अच्छा कहवा है।
1: जी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया फिरोज भाई। बाकी बढ़िया?
2: जी जी जी, एकदम बढ़िया।
1: हाँ जी, थैंक यू। तो चलिए रतन माता जी का आभार व्यक्त करते हुए एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
4: जी आई माँ जी।
3: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
4: जी माँ जी, आ गई, चलिए।
3: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
5: नमस्ते नमस्ते, बैठिए, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है।
3: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
5: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
3: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
5: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू, क्या तुम भी यही चाहती हो?
3: जी वो न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
5: देखिए, भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
6: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

नाजुक सी दिखती है वो हिम्मत में सबसे आगे है। नाजुक सी दिखती है जो वो हिम्मत में सबसे आगे है। बेटी जब ठान ले कुछ कर गुजरना तो दुनिया उसके पीछे पीछे है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में जैसा कि

0: आप सभी ने रतन माता जी का सुना, 85 साल की उम्र और इस उम्र में भी बहुत ही सुंदर आपने भजन भी सुनाया और भगवान की प्रतिज्ञा भी सुनाई। हमारे श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं कंचन भाई मंडाली से। नमस्ते कंचन भाई।
1: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
0: हाँ जी सुप्रभात, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, अच्छे है, दुकान पे बैठे है और माता जी के जो बात सुनी अभी राम की, जो पूरी सुनाया अभी, जो आदर्श जो बातें बताई तो सुन रहे थे तो बहुत अच्छा लगा थे
0: जी।
1: क्योंकि अनुभव से ये बात कर रहे हैं माता जी,
0: जी।
1: जो कही थे ना कि भाई कुआ माँ हो तो हवाड़ा माँ आवे।
0: हाँ ये सच्ची बात है, बिल्कुल।
1: इसी तरह माता जी का काफी अनुभव है और आध्यात्मिकता में पूरे डूबे हुए हैं
0: जी। जी
1: ये बातें आई है, जैसे हमने भी, हमको भी बहुत आनंद हुआ, खुशी हुई
0: जी।
1: और क्या बात करो, उम्र के हिसाब से ये सहारा की कोई जरूरत है
0: जी,
1: तो ये साथ में रहना पड़ता है
0: जी। जी जी जी
1: बिल्कुल
0: जी जी। चलिए बहुत बहुत आभार जी।
1: काफी समय के बाद आप भी आए हैं, अब क्या की सभी संभालना पड़ता है
0: जी। जी जी अभी जैसा कि रतन माता जी का आपने सुना है, वो हमारी मम्मी है, लौकिक में माता जी है, तो उनके संभाल करना भी जरूरी है।
1: अब उम्र हुई तो सहारा की जरूरत है। जब हम छोटे थे तो हमको संभाला था माता जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो अब हमारी बारी आई,
0: बिल्कुल। वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया
1: करना पड़ेगा
0: जी। चलिए बहुत बहुत आभार कंचन भाई।
1: माता पिता ने जो संकेत दिए हैं
0: जी,
1: कई तो क्या करते हैं कि भाई कोई नहीं ऐसा संभालते हैं भैया, माता पिता की तो ऐसा नहीं ये करते
0: जी,
1: लेकिन
0: जी, जी।
1: संस्कारों की जो भरपूर संस्कार दिए हैं माता जी ने, पिताजी ने, तो ये आगे जरूर आएंगे और ये हमें ये ऐसी स्थिति में हमें भी ये करना पड़ेगा
0: जी। जी जी बिल्कुल
1: बस और,
0: जी बहुत बहुत आभार कंचन भाई।
1: हाँ जी
0: जी, तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है, माता पिता का तो सेवा करना अपना फर्ज नहीं बोल सकते, उसको अधिकार है। जैसे माता पिता बच्चों को बड़ा करते हैं तो वो फर्ज नहीं समझते, वो अधिकार से करते हैं, ऐसे ही जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके ध्यान रखना ये बच्चों का अधिकार है, और इन अधिकारों को सभी ध्यान में रखे तो और भी अच्छा रहेगा। और चलिए वंदे मातरम कार्यक्रम की तरफ आइए, अभी रतन माता जी को सुन रहे थे, आइए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि देखिए आज बहुत ही जनरेशन गैप है, कहाँ 32-33 साल की उम्र और कहाँ अपने 85 साल की उम्र के अनुभव सुने। तो अब मयूरी शाह हमारे सामने आ चुके हैं, आपके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी आपका। आपने MBA किया हुआ है और आपको गरबा बहुत अच्छा आता है, हर स्टेप आपको आते हैं, बहुत ही सुंदर आप गरबा करते हैं, भजन कीर्तन में आपको शौक है, अध्यात्म में गहरी रुचि है और मिलनसार आपका व्यवहार है। तो चलिए और भी आपकी विशेषताएं आपके द्वारा ही सुनेंगे। मयूरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच।
0: तो थोड़ा आपके बचपन की तरफ बढ़ते हैं।
2: नमस्ते सबको।
0: हाँ जी, तो आपका बचपन के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे आपका बचपन बीता, कैसे आपने पढ़ाई की?
2: मेरा बचपन उस टाइम पे थोड़ा अपने पैसे, मतलब सब अपने ये क्या
0: थोड़ा टिपिकल बीता था, ऐसा
2: हाँ मतलब उस टाइम पे हमारे पास मतलब हम क्या मिट्टी से जुड़े हुए रहते थे, बाहर खेलना कूदना फ्रेंड्स बनाना. अभी आजकल तो बच्चों को फोन दे दो टीवी दिखा दो तो अच्छा है, मजा आता है उनको.
0: मतलब आपके कहने का मतलब है कि स्वच्छ वातावरण में आपका बचपन बीता, क्योंकि जहाँ टीवी मोबाइल इन सभी से जब दूर है तो एक वातावरण स्वच्छ कह सकते हैं उसको.
2: सही बात है. तो हम घूमने भी जाते थे, मजे भी करते थे. हमारा बचपन बहुत अच्छे से बीता है. फिर पढ़ाई करी.
0: पढ़ाई में कैसे थे आप?
2: पढ़ाई में पहले तो मैं थोड़ी वीक थी, उसके बाद धीरे धीरे अच्छी हो गई और फिर नंबर भी आने लग गए, पेपर में फोटो भी आया.
0: और क्या बात है,
2: कॉलेज में भी मैं टॉपर रही थी.
0: तो बहुत बढ़िया.
2: और उसके बाद मुझे बस एक है कि मुझे मेरे माता पिता ने कभी बाहर नहीं भेजा पढ़ने के लिए कि ये ऐसे ही शादी करके.
0: तो आपको शिकायत है आज भी कि मुझे बाहर भेजते तो शायद मैं और भी आगे
2: और
0: जा
2: भी
0: सकती.
2: आगे जा सकती थी
0: जी. तो हमारे श्रोता बंधु पहले बात करना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे. हेलो जय श्री हरि. नमस्कार, कैसे हैं सुरेश भाई आप?
3: हम अच्छे हैं
0: जी.
3: नाम नहीं बताना था.
0: अच्छा. आपकी आवाज सभी जानते हैं कि आप ही है, पहचानते हैं आपकी आवाज को?
3: सभी जानते हैं मगर हमारे गेस्ट हैं ना, उनको प्रश्न रखना चाहता.
0: अच्छा.
3: नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार.
3: पहचाना?
0: हाँ पहचान लिया ना आपको. हाँ पहचान लिया, ऐसे बोल रहे पहचान लिया आपको.
3: पहचान लिया?
0: हाँ पहचान लिया आपको.
3: नहीं पहचाना.
0: सुरेश भाई जी.
3: ओ दीदी, ओम शांति. कैसे हो?
0: ओम शांति ओम शांति.
3: कैसे हो?
0: अच्छे हैं, आप कैसे हो?
3: बस हम अच्छे हैं. और सब बच्चे वगैरह सब अच्छे
0: हैं? हाँ सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है.
3: और आप रेडियो मधुबन में आए तो बाहर आ गए.
0: थैंक यू थैंक यू.
3: चार चांद लग गए ना, दो और दो चार.
0: ये सब उषा माता जी की मेहरबानी है. ऊपर वाले की.
3: आपको लेके आए है ना?
0: हाँ ये हमको लेके आए, हमको मौका दिया.
3: तो बोल रहा दो भी दो और दो चार जान लग गए ना, नहीं हाँ, तो दो ही लगते थे.
0: हाँ, सही बात है.
3: और बस बहुत अच्छी बातें भी हो रही है तो हमें भी बहुत अच्छा लगा सुन के.
0: अच्छा.
3: और बस आप यूं कभी कभी आते रहिए.
0: पक्का पक्का आएंगे, हम आते ही रहते है इधर. और माता जी मौका भी देते रहते हैं हमको.
3: हाँ माता जी तो माता जी है.
0: सही बात है.
3: ये इनसे माता जी को मौका देती है.
0: हाँ
3: आपको भी तो आपके माता जी.
0: सही बात है.
3: सही है ना?
0: हाँ सही बात है, सही है.
3: और माता पिता का तो बच्चों के हाथ हो तो बच्चों को और कोई जरूरत.
0: सही है सही है, ये तो सही बात है. उनके आशीर्वाद से ही सब है.
3: आजी?
0: उनके आशीर्वाद से ही, माता पिता के आशीर्वाद से ही हम इतना कर पा रहे हैं सब.
3: वो लोग जो मूर्ख होते हैं जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ के आते हैं या तकलीफ देते हैं.
0: सही बात है सही बात है.
3: क्योंकि वही दिन कल अपने भी आने वाला.
0: हाँ वो तो है ही है.
3: हाँ, क्योंकि सुई के पीछे ही धागा तो निकलने वाला है ना.
0: हाँ सही बात है, वो तो है ही है.
3: इतना सोच के चले तो जिंदगी है.
0: अच्छा वही आज जब अपन को जरूरत थी तब वो खड़े थे, तो जब उनको जरूरत होती है तो अपन को भी खड़ा रहना है.
3: हाँ बस वही तो बोलो, इतना सोचे तो जिंदगी है, वरना तो गंदगी तो है ही है.
0: हाँ सही है सही बात.
3: हेलो दीदी, आप आए बहुत खुशी हुई.
0: धन्यवाद धन्यवाद
3: जी. बाकी सब ठीक है?
0: हाँ जी बिल्कुल, आप सभी की दुआएं.
3: दुआएं ऊपर वाला जी, बाबा जी.
0: बिल्कुल, कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मेहरबानी और परिवार की दुआएं मिल जाए, बस इससे बढ़कर और कुछ चाहिए ही नहीं.
3: नहीं बाबा का सबसे हाथ हो ना, तो बस बाकी तो सब अपने पीछे खींचे आएंगे.
0: जी
3: बस उनका साथ चाहिए, बाकी उनके लिए तो पूरी जिंदगी से लड़ सकते हैं, कभी परिवार से लड़ सकते हैं, बाकी

0: उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया।
1: अच्छा।
0: और शादी के बाद तो मैंने थोड़ा बहुत मेरे चेंजेस आए, जैसे मुझे ये
1: शादी की बात तो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी आपके बचपन की बातें चल रही है, तो कभी ऐसी कोई बात आज भी आपको याद आती हो कि बेटे बेटे हंसी आ जाती, क्योंकि बचपन हमारा इतना इनोसेंट होता है कि कभी हम कुछ ऐसी बात कर बैठते हैं उसका मीनिंग बाद में पता चलता है जब हम मैच्योर होते हैं।
0: हाँ।
1: तो अपने आप हंसी आती है कि ये क्या हो गया।
0: ये ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, पर एक जो है वो मेरा फेवरेट है, वो ये है कि जब मेरे और मेरे भाई के बीच में 5 साल का गैप है, तो जब मेरा भाई हुआ तब मुझे खुशी हुई कि चलो मेरा भाई हुआ, मेरे घर में एक मतलब बच्चे आए हैं, छोटा सा ये वो। फिर 2 दिन मैंने देखा, उसके होने के बाद 2 दिन मैंने देखा सब उसको ही ले रहे, पैम्पर कर रहे ये कर, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो मैंने फिर मेरी बुआ को बोला, तू इसको ले जा, हमको नहीं चाहिए ये, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, सब उससे ही प्यार करते हैं, सब उसी को पूछ रहे। मैं बहुत रोई उस टाइम पे।
1: अच्छा।
0: तो वो आज भी हमको हंसी आती है कि उस टाइम मैंने ऐसा रिएक्शन दिया था। तो वो एक बहुत
1: जी, जी।
0: होना भी जरूरी है। आज भाई बहन एक, आज पहले तो चलो इतने सारे होते थे, अभी एक ही भाई एक ही बहन है, तो आज सपोर्ट भी रहता है, तो वो थोड़ा फनी है पर जरूरी भी है।
1: जी जी जी।
0: तो
1: इस तरह की नादानियां हो जाया करती है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो स्वाभाविक है केयर उसके ज्यादा करेंगे, और हर कोई गोदी में लेंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो गोदी में तो नहीं लेंगे, बोल सकते हैं उसके साथ, बात कर सकते हैं। तो ऐसा एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ होता है, और अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग बातें होती है,
0: सही
1: है ना। लेकिन आज भी जब सोचते हैं तो अपने आप ही हंसी आती है कि कैसे हम मूर्ख थे।
0: और मैं एक और किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि मैं 10 महीने की थी, तो मेरी मम्मी मुझे खिड़की पे लेकर खड़ी थी, मतलब खिड़की के पास। हाँ, वो क्या है कि उसकी तबीयत भी थोड़ी नरम थी, बहुत फीवर था उसको भी और वीकनेस भी थी। तो हम 3rd फ्लोर पे रहते थे, तो मैं क्या एकदम उनसे, मतलब मैं क्या कूद रही थी उनकी गोद में ही, तो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं 3rd फ्लोर से नीचे गिर गई।
1: ओहो।
0: तो और तब मैं 10 महीने की थी।
1: 10 महीने के बच्चे जब 3rd फ्लोर से नीचे गिरते हैं तो क्या हालत हो जाती है, बचना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने आपको मतलब बचाया है। हाँ। तो उस समय फिर क्या कंडीशन रही आप?
0: उस समय जैसे ही मैं गिरी तो मेरे मुंह से फीन निकल गए और बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद पूरे मतलब 2-3 दिन सुबह, मतलब मैं अगर दिन में गिरी थी तो मुझे रात को 12 बजे होश आया। उसके बाद मेरी 2-3 बार MRI करी, सब करा, पर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई।
1: क्या बात
0: है। तो ये बस भगवान की और बाबा की मेहरबानी है।
1: वो गुजराती में कहावत है, राम राखे ने कौन चाखे, तो वो ईश्वर को बचाना था। इसलिए आप सुरक्षित रहे, नहीं तो 10 महीने के बच्चा जब 3rd फ्लोर से नीचे गिरता है तो आप सोचिए कि क्या हालत होती होगी। 1st फ्लोर से गिरने पर ही हड्डियां टूट जाती है।
0: और उस टाइम पे मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि बोलने वाले ये भी बोल रहे थे कि लड़की है तो उसको ऊपर से उन्होंने फेंक दिया। एक दो जने ने मम्मी को ये भी बोल दिया, तो वो मैं बच गई, तो उनका नसीब अच्छा है और मेरा भी अच्छा है कि मुझे इतना अच्छा जीने का मौका मिला, इतना अच्छा सब देखने का मौका मिला।
1: बिल्कुल। वो कहते हैं कि आप लिखा हुआ था, और चलिए अच्छा रहा कि आप बचे हैं तो आज रेडियो में भी बोल पा रहे हैं। बिल्कुल। तो कभी कभी इस तरह के हादसे हो जाते हैं, बड़े हादसे भी, वो कहते हैं ना कि पहाड़ सुई की तरह हो जाता है वो हिसाब किताब, और कभी कभी छोटी परिस्थितियों में भी बहुत बड़ी समस्याएं
0: आ जाती है।
1: जी, तो चलिए मयूरी जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मयूरी जी के अनुभव बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सुनने बाकी है, तो बने रहिएगा इस कार्यक्रम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बेटी की हंसी में ईश्वर बसता है, बेटी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो बेटी का मान रखे, जो बेटी का मान रखे, उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी, भाई कहते हैं ना कि किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, तो किसी की बीवी है, तो किसी की माँ है, लेकिन नारी आखिर नारी ही है। और ऐसी नारी शक्ति हमारे साथ बनी हुई है मयूरी शाह, जो आप अहमदाबाद गुजरात से पधारे हैं और आपके अनुभव हमने सुने हैं बचपन के। पुनः स्वागत करते हैं मयूरी जी आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद आपका
0: जी। तो आज आप मतलब हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही रहते हैं या आज विशेष खुश है आप?
1: नहीं, ऐसे ही रहते हैं हम ज्यादातर।
0: जी जी जी। और यहाँ पर देखिए मयूरी जी का बेटा जो 6 साल का है, नन्ना मुन्ना बच्चा, तो वो भी उतावला हो रहा है बोलने के लिए। तो ये आप कहते हैं ना कि ये सब गॉडली गिफ्ट है, बोलने का भी हर किसी के अंदर नहीं होता है, लेकिन ये बच्चा कभी का कह रहा है हमें तो अवसर दीजिए, हमें तो अवसर दीजिए। तो चलिए पहले कहते हैं ना बच्चे फर्स्ट, आ जाइए। नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: आपका शुभ नाम बताएंगे?
2: हाँ
0: बोलिए।
2: टेंगरी।
0: अभी पोयम नहीं, आपका नाम बताइए।
2: मेरा नाम है ध्रुवांश।
0: आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं?
2: सीनियर केजी ओल्ड।
0: ओके। और आपको रेडियो मधुबन में आकर के कैसा लग रहा है? आप पहले भी बोल चुके हैं यहाँ पर पोयम, कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत बढ़िया।
0: बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप अपने मम्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके मम्मी आपसे प्यार करते हैं?
2: बहुत।
0: और क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं आपको? होमवर्क कराते हैं?
2: हाँ।
0: और आप क्या करते हैं?
2: और ड्राइंग सिखाती है, ABCD भी सिखाई, सब मम्मी सिखाती है हमको।
0: अच्छा, फिर आपके टीचर क्या करते हैं?
2: मुझे पढ़ाई करवाते हैं।
0: अच्छा, पढ़ाई करवाते हैं। और आपने पोयम कहाँ से सीखी?
2: मेरी मम्मा ने सिखाई, मेरे स्कूल में से नई राइम्स बुक आई थी ना, इसलिए मेरी मम्मी ने सिखाई राइम।
0: अच्छा, तो आप सुनाइए, कौन सी पोयम सुनाएंगे?
2: टेन ग्रीन वाटर।
0: सुना दीजिए।
2: टेन ग्रीन वाटर हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, नाइन ग्रीन वाटर हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, एट ग्रीन वाटर हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, सेवन ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, सिक्स ग्रीन वाटर हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, फाइव ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, फोर ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, थ्री ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, टू ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, ताली बजानी चाहिए आपके तो, बहुत सुंदर। इसका अर्थ बताएंगे, क्या अर्थ है? चलिए हमारे श्रोता बंधु पहले जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, ओम शांति।
3: बच्चे ने बहुत अच्छा सुनाया ये
0: पोयम। थैंक यू बोलिए।
3: ग्रीन बोल सुनाया
0: जी।
3: और आवाज भी अच्छी थी बच्चे की
0: जी।
3: और माँ के लिए मेरे को एक गीत बोलने का है
0: जी। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा सुनाइए।
3: नहीं छोटा सा, बस एक बोली थी।
0: हाँ जी हाँ जी सुनाइए।
3: माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो के आज मेरा कोई नहीं जी।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया है। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, और ध्रुवांश हमारे समक्ष बैठा है। अच्छा ध्रुवांश, आप हमारे सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अच्छी सी पोएम बोल के सुनाई है, आपके जैसे बच्चे बहुत सारे जुड़ते हैं, सुनते भी है कार्यक्रम, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे फ्रेंडशिप करोगे?
2: हाँ।
0: और उनको क्या कहना चाहोगे? जैसे बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, और आपने अच्छे से बोल के सुनाई, अभी फिरोज भाई भी बता रहे थे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? वो उनको भी सीखना चाहिए ना। हेलो। हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप? ओम शांति। अच्छा जी जी, आप सफर में है ना?
4: हाँ नहीं सफर में नहीं, हम देख रहे हैं सभी, अभी हम पूरा किला देख के आए हैं, और अभी अच्छा जो
0: जी चलिए है, बहुत अच्छी बात
4: तो
0: है।
4: हाँ ये दुकान में हम खड़े हैं अभी, और साल भी है, साल का है, या फिर वो देखेगा जो चद्दर आती है
0: जी,
4: तो वहाँ है, और वहाँ सभी जो चद्दर लेती जाती है ये सबको समझा रहा है, तो इस दुकान में हम खड़े हैं अभी
0: जी जी।
4: पूरा देख के आए, हल्दी घाटी भी देख के आए, वहाँ के लोग भी देख के आए।
0: अरे वाह क्या बात है, वहाँ की मिट्टी आपने ली हल्दी जैसा कलर की है?
4: हल्दी जैसा कलर की है दीदी
0: जी।
4: तो ये सब देख लिया, हमारे पास गाइड था, तो गाइड ने पूरा समझा दिया हमको।
0: अच्छा
4: तो अभी चित्तौड़गढ़ में ही है, अभी हम खड़े हैं दुकान पे।
0: अरे वाह क्या बात है, आप हमारे एरिया में पहुँच गए।
4: चित्तौड़गढ़ में तो बहुत सारे मशहूर देखने के लिए लायक है
0: जी,
4: महाराणा प्रताप का जो जगह थी वो भी देख ली
0: जी जी जी जी,
4: वहाँ भी देख लिया
0: जी जी जी,
4: तो अभी हम
0: चित्तौड़गढ़
4: में जी, और सुना दे रहे हैं
0: जी। चलिए बहुत बहुत आभार सुरेश भाई आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे, जो नहीं बोल पाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों को? आपने कैसे सीखी कविताएं?
2: मेरी मम्मी ने सिखाई।
0: ऐसे हर एक की मम्मी को सिखाना चाहिए है ना।
2: हाँ।
0: और कहीं नहीं बोले तो रेडियो मधुबन में आना चाहिए। एक रेडियो मधुबन के मंच से शुरुआत करनी चाहिए, तो फिर वो बड़े मंच पर पहुंच सकते हैं, है ना?
2: हाँ।
0: आप भी बड़े मंच पर रेडियो मधुबन के जरिए पहुंचे हैं ना, स्कूल में बोलते हैं?
2: हाँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही सुंदर पोयम सबको सुनाई इसके लिए।
2: मुझे मिलने का मौका मिला।
0: क्या बात है, बोलने का मौका मिला तो बहुत खुशी हो रही है आपको?
2: हाँ।
0: तो ऐसे मौके मिलेंगे तो आप आएंगे बोलेंगे?
2: हाँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और अब देखिए कार्यक्रम भी समाप्ति की तरफ है, मयूरी जी से हम जरूर बात करना चाहेंगे। मयूरी जी बता रहे थे कि शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, तो अब आप बता सकते हैं आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आए।
1: पहले तो क्या है, शादी के बाद अपने जिम्मेदारियां बढ़ जाती है
0: जी।
1: पहले तो क्या है, निकल जाओ ऐसे ही, कोई टेंशन ही नहीं है पीछे का, अभी तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है
0: जी।
1: तो फिर भी मैंने पहले तो एक साल जॉब करी
0: जी,
1: क्योंकि मैं अकेले जॉइंट फैमिली से आई थी, इधर अकेली हो गई थी, तो आते ही तो मैंने जॉब करी। उसके बाद लगा कि जॉब में इतना मज़ा है नहीं, इसीलिए फिर मैंने मेरा छोटा मोटा घर पे ही सब स्टार्ट कर दिया
0: जी।
1: जैसे मैं सेंटर कैंडल्स बनाने लग गई, छोटे छोटे हैम्पर्स बनाने लग गई
0: जी।
1: तो अब जैसे ऑर्डर्स आते हैं वैसे सब चीज़ें बना के
0: जी जी सेल
1: छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं
0: जी।
1: पेंटिंग का भी बहुत शौक है, पेंटिंग्स भी करते हैं
0: जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को व्यस्त कर दिया थोड़ा।
1: हाँ,
0: इधर सिंगल फैमिली है तो जॉइंट फैमिली और सिंगल में तो बहुत फर्क पड़ता है। जॉइंट में तो चलिए बातचीत और काम में समय बीत जाता है, लेकिन सिंगल फैमिली में करे क्या, बातचीत किससे करे और काम भी इतना नहीं रहता है। तो अपने आप को व्यस्त करने के लिए जो आपके अंदर हॉबीज थी, जो आप बनाते हैं, उस पर फोकस डालना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा। और आपको गरबा बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ा सा आप गरबा खैर सिखा तो नहीं सकते क्योंकि ये तो रेडियो मधुबन है, यहाँ से ऑडियो ही जाता है, लेकिन आप अपने पसंद के चंद लाइनें सुना सकते हैं कि कौन सा गरबा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है।
1: वैसे तो बहुत सारे पसंद है, पर ये मेरा फेवरेट वाला है। इसके इस पे गरबा करने का बहुत मज़ा आता है।

0: रे, बहुत सुंदर ये गीत है। तो आजकल ये भजन भी गरबा के रूप में चलने लग गया।
1: हाँ।
0: तो इसमें दो ताल होती है या फिर एक ताल, क्या होता है
1: इसमें? तीन ताली खेलते हैं लोग।
0: तीन ताल होते हैं। हाँ। अच्छा, और हाँ। आप गरबा सिखाते भी है तो हाँ। थोड़ा सा इसकी प्रोसेस बताएंगे कि हमारे कोई श्रोता बंधु अगर गरबा सीखना चाहे तो क्या प्रोसेस है इसमें?
1: पहले तो अपन पैर के स्टेप्स सीखते हैं
0: जी,
1: उसके बाद थोड़े हाथ के, पैर के साथ हाथ के तालमेल बिठाने का होता है, तो वही पहले दो ताली, फिर तीन ताली, फिर डांडिया। तो और गरबा तो मेरा स्ट्रेस बस्टर है। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं गरबा सुन लेती हूँ या एक राउंड खेल भी लेती हूँ।
0: जी जी, तो इससे स्ट्रेस दूर हो जाता है।
1: मैं मतलब स्कूल टाइम से ही मेरे हर बार मुझे गरबा में प्राइज मिलता है, अभी तक मिलता आया है लास्ट ईयर तक
0: जी।
1: अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि दो बच्चे हो गए हैं,
0: जी
1: शरीर
0: जी,
1: में
0: तो
1: इतनी ताकत नहीं, पर फिर भी खेल लेते हैं, फेवरेट है गरबा।
0: और खुद के एंजॉय के लिए
1: हाँ,
0: भी जरूरी है
1: हाँ,
0: चाहे हमें प्राइज मिले या ना मिले, खुद की खुशी के लिए भी करना हाँ। बहुत जरूरी है। तो बहुत सुंदर। और कार्यक्रम के

0: में हमारी जो बहनें सुन रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी बहनें जैसे आप बता रहे कि दो बच्चे हो गए हैं, अब शरीर की ताकत भी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी उमंग उत्साह वही है। और हमारी बहुत सारी बहनें क्या है कि बच्चे होने के बाद जिम्मेदारियों में इतनी उलझ जाती है कि फिर वो अपनी एंजॉय, जो अपने आनंद के लिए क्या करना है वो छोड़ देते हैं। परिवार के लिए भले वो दिन रात लगी रहेगी, लेकिन खुद के लिए नहीं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
1: चाहती हूँ कि खुद के लिए भी थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर अपन अपन अपन खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तो बच्चे भी देखेंगे और अपन से सीखेंगे कि अपन को भी खुद, मतलब मम्मी की भी वैल्यू करनी चाहिए। नहीं तो आज जो होम मेकर है, जो घर पे बैठी रहती है, हाउसवाइफ है, बच्चों को लगता है मेरी मम्मी करती क्या है। तो आज आप घर बैठे भी खुद के लिए अगर कुछ टाइम निकाल लें तो बच्चों को भी लगेगा कि हाँ मेरी मम्मी कुछ कर रही है। उनके लिए भी आप एक मोटिवेशन बन सकते हो कि इतनी जिम्मेदारियां है फिर भी मेरी मम्मी मेरे उसके लिए टाइम निकाल लेती है, कुछ क्रिएटिव कर रही है। जो आपको पसंद हो, जो आपकी हॉबी हो, वो आपको करना ही चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप एक बार आप खुद के भी फोकस करो और जिम्मेदारियां भी निभाओ, उससे तो अपन
0: नहीं सकते,
1: छोड़ भी नहीं सकते और पीछे भी नहीं हट सकते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनको भी मत छोड़ो और खुद को भी पकड़ के रखो, खुद की भी इतनी रिस्पेक्ट करो।
0: जी चलिए मयूरी जी, बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने शॉर्ट रूप में अनुभव सुनाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सभी का लिया, इसलिए हाँ। समय तो कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है।
1: सही
0: तो
1: है।
0: और भी आपके कोई इच्छा हो या कोई संकल्प हो या कोई बात हो तो आप रख सकते हो जाते जाते।
1: बस इतना ही के, और सभी श्रोताओं को थैंक यू सुनने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए, और सबसे बड़ा थैंक यू उषा माता जी को जिन्होंने हमको मौका दिया बोलने का और हमारी बात रखने का, हमारे अनुभव सुनाने का।
0: जी हम तो सबसे बड़ा श्रेय ईश्वर को ही देंगे कि ये सब बना बनाया ड्रामा था, बस वो खाली रिपीट करना बाकी था जो हो गया। कहते हैं ना कि हम क्या सोचते हैं और वो क्या सोचता है वो बात ही अलग है। खैर बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़े, उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और आपने भी अनुभव अच्छे सुनाए हैं, बच्चे ने भी बहुत ही सुंदर पोएम सुनाई है, आपने बहुत ही अच्छा सिखाया। तो इसी तरह हर माताएं अपने बच्चों को इस तरह एक्टिव रखे और आगे बढ़ाते रहे। और आइए अब मैं भी उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। और आज की नारी शक्ति मयूरी बहन आपको और रतन माता जी को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है।

0: भी कभी सोचा न था कि हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां आ जाएंगी। फूलों की दुनिया में आपको हम ले जाते हैं हर सप्ताह। फूल माना खुशी, फूल माना पॉजिटिविटी, फूल माना हर दम आशावादी बने रहना। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हसीन लम्हों को हम आज बिताएंगे। ख्वाबों को सच करने का हम एक सुनहरा अवसर देते हैं आप सभी को। गीतों और बातों के माध्यम से खूबसूरत ऐसे फूलों भरी बातें जिसमें सिर्फ और सिर्फ होती है पॉजिटिविटी। पल पल एक दूजे से बातें करेंगे, कार्यक्रम है गुलदस्ता। दोस्तों, फ्रेशनेस उस ओस की बूंदों जैसी होती है। जी हाँ, फ्रेशनेस उस ओस की बूंदों जैसी होती है जिसकी झलक मुश्किल से मिलती है। तो अपने जीवन को तरोताजा बनाने के लिए ट्यून इन रेडियो मधुबन और ट्यून इन कीजिए कार्यक्रम गुलदस्ता। रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हसीन लम्हे, शरीर लम्हे, शर्मीले लम्हे, झिझकते लम्हे, पिघलते लम्हे, धड़कते लम्हे, मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं

0: जरा जरा सी बातें याद आती हैं। बेशक अगर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है, किसी भी पर्टिकुलर लक्ष्य को हासिल करता है और उसके बाद जब अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता है तो उसको सारी बातें, सारी वो लम्हे याद आती हैं जो बेश कीमती हैं। और आज हम ऐसी मल्लिका, सुरों की मल्लिका के बारे में आपसे बातें कर रहे हैं। आपको उन हसीन लम्हों में लेकर जाएंगे जो उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर, अपने किरदार को निभाकर, जी हाँ, गायकी का जो स्पेशल किरदार आपने निभाया उसे निभाकर हमें जो कीमती तोहफे दिए गीतों के रूप में, उसे हम पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं आपके साथ। रेडियो मधुबन 107.8 FM कार्यक्रम है गुलदस्ता और पूरे जोश के साथ और खुशी के साथ आपके साथ हूँ मैं स्वर्णलता।
1: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
2: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
1: चलो चलते हैं।
2: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
3: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
2: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
4: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
2: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
5: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
6: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: मीठी आवाज और मीठी मुस्कान की मल्लिका मेलोडी क्वीन अलका जी की आवाज में हम सुन रहे हैं कीमती तराने, कीमती गीत, जिन्हें सुनकर आपको महसूस होगा कि इन्हें क्यों ना दोबारा सुन लिया जाए। वैसे अलका जी की वॉइस में क्लैरिटी है। अलका जी की वॉइस में गीतों को, सुरों को समझाने का एक स्पेशल तरीका है और उनकी वॉइस में महीनता है, जिस महीनता को आज हम महसूस करेंगे हर एक गीतों में। दोस्तों, अलका जी के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। आपकी वॉइस को सुनकर, आपके गाए हुए गीतों को देखकर, जानकर, समझकर हमें ऐसा लगता है कि कैसे आप हर तरह के गीत बखूबी निभा लेते हैं, कैसे आप गजलों को भी गा लेती हैं बहुत ही सरलता से, कैसे आप भक्तिमय भजन भी गा लेती हैं, कैसे आप प्रभु प्रेम में युक्त गीत सुना देती हैं। तो ऐसे गीतों को आज हम सुनेंगे और आपको ढेर सारा गुड विशेस देंगे ताकि आप आने वाले समय में ऐसे ही गीतों को हमारे लिए गाते रहें।
1: दिस इज आदित्य राज कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू ब्रह्म कुमारीज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन। कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग।

0: गुलदस्ता में अलका जी की आवाज में आपने सुना एक मराठी सॉन्ग जिसके बोल थे घर एकाकी। वैरायटी गीतों को प्रस्तुत करता है कार्यक्रम गुलदस्ता। वैसे तो हम मोस्टली आपको हिंदी फिल्मी गीत या गैर फिल्मी गीत दोनों ही प्रकार के गीत आपको सुनवाते हैं, पर आज अभी इस वक्त हमने आपको सुनवाया एक मराठी सॉन्ग फॉर अ चेंज। वैसे अन्य भाषाओं के गीत भी समय प्रति समय हम प्ले करते रहते हैं। भारतीय सिनेमा की दिग्गज पार्श्व गायिका हैं अलका जी। 4 दशक लंबे करियर में उन्होंने 22,000 से अधिक गीत गाए हैं। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित और काजोल जैसी अभिनेत्रियों की आवाज रही अलका याग्निक जी, जिन्होंने 7 फिल्मफेयर और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। 2026 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वैसे साथियों, आज हमने खास इस सुरों की मल्लिका को क्यों चुना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए कार्यक्रम गुलदस्ता में। आपके लिए आ रहा है बहुत ही सुंदर गीत अलका जी की वॉइस में।
1: हेलो, आई एम अलेक्सेंडर, डिप्लोमेट फ्रॉम रशिया, एंड यू आर लिसनिंग FM Radio Madhubar. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomadhuban.in on internet, even Russia, even everywhere.

ही मीठी गजल आपने सुनी अलका जी की वॉइस में, जिसके बोल थे किसके शानों पे वो अशकों को बहाता होगा। धुन थी नदीम श्रवण जी की। रेडियो सुनने वाले हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में, आप हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते हुए मुस्कुराते हुए हमेशा कायम रहते हैं स्वर्णलता के साथ। दोस्तों, पद्म भूषण से सम्मानित अलका जी इन दिनों कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना कर रही हैं, तभी आज का प्रोग्राम उनके लिए एक गुड विशेस के तौर पर है। हम सब उनके लिए अनकंडीशनल गुड विशेस सौंपें, उनको याद करके कि वो आने वाले दिनों में और भी मधुर गीत हम तक पेश करें। दोस्तों, कलाकार जो हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, क्योंकि वो साधना करते हैं और हमारे लिए एक से बढ़कर एक गीत पेश करते हैं, ताकि हम उन्हें एंजॉय करें, उनसे कुछ सीखें, उनसे शिक्षाओं को अर्जित कर अपने जीवन को भी संभालें, है ना। तो बने रहिएगा और सुनिए अगला गीत, जो बंगाली में हम आपको सुनवाना चाहते हैं अलका जी की वॉइस में।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सुनते हुए मुस्कुराते हुए हम सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। और इस कार्यक्रम में आज हम खास सुन रहे हैं अलका जी की वॉइस में बहुत सारे ऐसे खास गीत जिन्हें शायद ही हमने कभी सुने हो। एक आध हमने बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक बजाए, बाकी सब बिल्कुल हटके गीत सुन रहे हैं। ब्यूटीफुल म्यूजिक है, ब्यूटीफुल सॉन्ग कलेक्शंस हैं अलका जी की वॉइस में। दोस्तों, अभी हमने एक बंगाली में गीत सुना जिसके बोल हैं शेई पाखीटार के जाने की नाम। इसका अर्थ ये है, क्या कोई हमें बता सकता है कि सुबह सुबह जो पंछियां गीत गाकर हमें जगाती हैं, जो पंछियां हमें मधुर गीत सुनाती हैं, क्या उनका नाम आपको पता है? क्या उनका पता आपको पता है? क्या वो किस घोंसले में रहती हैं? क्या आपको पता है ना, बहुत सुंदर मीनिंग। दोस्तों, आज हमने अलका जी की आवाज में आपको बहुत सारे गीत सुनवाए और उनके बारे में हम बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वे एक कठिन दौर से गुजर रही थी। उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज थे जिनसे वो अभी उबर रही हैं। तो हम सबकी ढेर सारी गुड विशेस हैं उनके प्रति कि वो जल्द से जल्द पूरा ठीक हो जाएं और पहले की तरह हमारे लिए बहुत सारे अनगिनत गीत सुनवाएं। वैसे उनका कहना है कि पद्म भूषण मिलने के बाद भावुक हुई सिंगर अलका याग्निक। उनका कहना है कि मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ, 2 साल पहले अचानक सुनाई देना बंद हुआ, सिंगिंग छोड़ी। सिंगर अलका याग्निक को मंगलवार यानी 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सम्मान लेने से पहले सिंगर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लिया और फिर अवार्ड लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ कदम बढ़ाए। सम्मान मिलने के बाद अब सिंगर ने एक भावुक पोस्ट शेयर कर बताया है कि वो पिछले 2 साल से मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। तो उस पोस्ट के बारे में और उनकी दिल की जो भी भावनाएं हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, पर अभी सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत उनकी आवाज में रेडियो मधुबन पर।
1: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
2: रेडियो मधुबन

0: अलका जी हमेशा श्रोताओं के दिल में बसी रहेंगी उनकी बेजोड़ संगीत के कारण। दोस्तों, अलका जी का कहना है कि जब मैं स्वास्थ्य संबंधी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, ऐसे समय में आपका यानी कि श्रोता बंधुओं का, फैंस का, उनके चाहने वालों का प्यार, दुआएं, संदेश और अटूट समर्थन हर कदम पर मेरे साथ रहा, यानी उनके साथ रहा। यह पल मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह सिर्फ मेरे काम की पहचान नहीं बल्कि प्यार, उम्मीद और हौसले से मिलने वाली ताकत की याद भी है। मैं धीरे धीरे फिर से अपने जीवन की राह पर लौट रही हूँ और आज यहाँ आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए भी जो इस सफर का हिस्सा रहे हैं। वो पद्म भूषण से जो सम्मानित हुई, उन्होंने वह पद्म भूषण का जो सम्मान है, प्रेस्टिजियस पुरस्कार है, वह अपने श्रोताओं के नाम करते हुए यह सब बातें उन्होंने कही, तो हमारे लिए यह बहुत ही खास पल है क्योंकि आप जो हैं हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने अपनी आवाज से सभी को बहुत प्यार दिया। सो फ्रेंड्स, आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए और जाते जाते हम उनकी आवाज में दो ऐसे प्रभु प्रीत के गीत सुनवाना चाहेंगे जो उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम किया, जो हम सब सुनते हैं और प्रभु की याद में खो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह एक बेहतरीन विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए रेडियो मधुबन पर।
1: दिस इज ट्रिपल गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर गजल श्रीनिवास एंड यू आर लिसनिंग टू ब्रह्म कुमारीज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू रेडियो मधुबन।

0: सच सच बताना दोस्तों, कैसा लगा मेरा गाना?
1: क्या कहा, बिल्कुल बेसुरा।
0: खैर, संगीत की बात बाद में करेंगे, पहले मिलते हैं मीना से। मीना, मीना लो, हम मीना को यहाँ ढूंढ रहे हैं और वो अपनी सहेली रीटा के साथ स्कूल में है।
2: रीटा, ये देखो नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है।
3: ये तो एक नंबर है, 10-9-8।
4: 10-9-8 याद कर लो जैसे बात।
2: रीटा, इस नंबर के नीचे क्या लिखा है? अपनी रक्षा स्वयं करें। अगर कोई बच्चा मुसीबत में हो तो 10-9-8 पर फोन करके बताएं, तुरंत कार्रवाई होगी। ये सेवा निशुल्क है।
3: मीना, ये देखो नोटिस बोर्ड पे एक और कागज लगा हुआ है, इस पे क्या लिखा है? इस 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पे स्कूल में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है।
2: रीता, तुम और मैं इस कार्यक्रम में भाग जरूर लेंगे।
3: लेकिन मीना, हम करेंगे क्या?
2: हम दोनों मिलके एक गाना गाएंगे। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा।
3: ठीक है, चलो गाते हैं।
5: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा था दौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, घोड़ा तो दबा के दौड़ा।
4: तुम दबा के दौड़ा, तुमने हर एक सुर को तोड़ा।
2: हमें कुछ और सोचना होगा, क्या करें क्या करें।
3: मीना, क्यों ना हम एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करें, अलग अलग पक्षियों और जानवरों की आवाजें निकाल के।
2: हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे बिल्ली, कौवे और शेर की आवाज निकालनी आती है।
3: मैं कोयल, उल्लू और कुत्ते की आवाज निकाल सकती हूँ। ये सुनो।
2: अब तुम सुनो। रीता, शिक्षक दिवस 6 दिन बाद है, हमें रोज ये आवाजें निकालने की तैयारी करनी चाहिए।
3: तुम ठीक कह रही हो, अब हम रोज शाम को एक साथ तैयारी किया करेंगे मेरे घर में।
2: ठीक है रीता, हम अपने नाटक का नाम रखेंगे जंगल की आवाज।
3: हाँ, चलो बहन जी को बता के आते हैं।
0: और उस शाम जब मीना नाटक की तैयारी करने के लिए रीटा के घर के बाहर पहुँची तो
2: रीता, ये गाड़ी किसकी है? क्या तुम्हारे घर कोई मेहमान?
3: मेरे मामा जी और मामी जी आए हैं शहर से। बताया मीना, मामा जी मेरे पिताजी से कह रहे थे,
6: जीजा जी, अब हमें कोई अच्छा सा लड़का देख के रीता की शादी करा देनी चाहिए।
2: रीता, याद नहीं बहन जी ने उस दिन क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि लड़कियों की शादी 18 और लड़कों की शादी 21 साल से पहले करना कानूनी अपराध है।
3: हाँ, मुझे याद है मीना, तभी तो मैंने पिताजी से कह दिया, पिताजी अभी मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, मेरी शादी के बारे में तब सोचिएगा जब मैं 18 साल की हो जाऊँ। ठीक कहा ना मैंने?
2: बिल्कुल ठीक कहा। चलो अब अपने नाटक की तैयारी करते हैं।
0: अगले दिन शाम को मीना फिर से रीटा के घर पहुँची। रीटा के मामा जी की गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी।
2: क्या हुआ रीता, तुम कुछ परेशान लग रही हो?
3: मेरी तबीयत ठीक नहीं मीना, मैं आज नाटक की तैयारी नहीं कर पाऊंगी।
2: कोई बात नहीं रीता, नाटक की तैयारी तो हम कल भी कर सकते हैं, तुम बस अपना ख्याल रखो।
4: अपना ख्याल रखो, ठीक है तो मुंह पे रुमाल रखो।
7: मीना
2: जी, बहन जी,
7: तुम्हें अपने नाटक के लिए कोई और साथी ढूंढना पड़ेगा। आज सुबह रीता मेरे घर आई थी ये कहने कि वो नाटक में भाग नहीं ले पाएगी।
2: ओहो, इसका मतलब उसकी तबीयत काफी खराब है।
7: तबीयत खराब है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक थी, बल्कि वो तो कुछ दिनों के लिए कहीं जाने वाली है।
2: रीता कहीं जाने वाली है? फिर ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई?
0: उसी दिन जब मीना स्कूल से घर वापस लौट रही थी तो उसने रीटा को बाजार में कुछ खरीदारी करते हुए देखा। रीटा ने अपनी कलाइयों में रंग बिरंगी चूड़ियां और पैरों में चमचमाती पायल पहन रखी थी। मीना भाग के रीटा के पास गई।
2: रीता,
3: मीना,
8: मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नाटक में भाग नहीं ले पाऊंगी।
2: बहन जी ने मुझे ये बात बता दी है। बहन जी ये भी कह रही थी कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हो।
8: हाँ, वो मैं अपने मामा जी मामी जी के साथ शहर जा रही हूँ।
2: रीता, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ घबराई हुई सी।
8: नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। घर पे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हमें अभी शहर के लिए निकलना है।
2: रीता सुनो तो सही। रीता, रीता चली गई। हो ना हो रीता किसी मुश्किल में है, कहीं उसके मामा जी उसकी शादी तो कुछ करना होगा। क्या नंबर था वो चाइल्ड हेल्पलाइन का? 10-9-8।
0: मीना भाग के एक पीसीओ पे पहुंची और उसने 10-9-8 पे फोन मिलाया।
9: हेलो चाइल्ड हेल्पलाइन।
2: जी नमस्ते, मैं मीना बोल रही हूँ।
9: जी बोलिए।
2: जी मैं बड़े मैदान के पास वाले पीसीओ से बोल रही हूँ। मेरी एक सहेली है रीता, 13 साल की। मुझे लगता है कि उसके मामा जी उसकी शादी करवाने के लिए उसे शहर ले जाने वाले हैं।
9: आप घबराइए मत, हम अभी बाल विवाह निषेध अधिकारी को वहाँ भेजते हैं। उन्हें आने में थोड़ा समय लग सकता है, तब तक आप एक काम कीजिए।
2: जी कहिए।
9: आप तुरंत किसी सीपीसी मेंबर या फिर किसी बड़े व्यक्ति जैसे अपने माता पिता या टीचर को ये बात बताइए, ताकि रीता को गाँव से निकालने से रोका जा सके।
2: जी ठीक है।
0: मीना जल्दी से बहन जी के पास पहुंची और उन्हें पूरी बात बताई। बहन जी ने तुरंत सुनील के पिताजी को फोन किया और वो अपना ट्रैक्टर लेके बड़ी पुलिया पे आ गए। बहन जी मीना को लेके वहाँ पहुँच गयी।
7: आप रीता के मामा जी हैं?
10: जी हाँ, लेकिन आप?
7: मैं रीता की टीचर हूँ, आपको हमारे साथ स्कूल तक चलना होगा।
0: बहन जी सब को लेके स्कूल में आई। थोड़ी देर में बाल विवाह निषेध अधिकारी भी वहाँ पहुँच गए और रीता के माता पिता से बोले,
11: क्या ये सच है कि आप अपनी बेटी रीता की शादी के लिए उसे शहर ले जा रहे थे?
10: जी वो
11: आपको पता है कि 18 साल से कम की उम्र में लड़की की शादी करना एक कानूनी अपराध है।
10: साहब, हम लोगों ने रीता पे कोई दबाव नहीं डाला, हम तो बस इसकी भलाई का सोच रहे थे।
11: भलाई? भलाई नहीं भाई साहब, बुराई। बुराई करने चले थे आप अपनी बेटी के साथ?
10: ये आप क्या कह रहे हैं साहब?
11: ठीक कह रहा हूँ, 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी के लिए ना तो शारीरिक रूप से तैयार होती है और ना ही भावुक रूप से। रीता तुम ही बताओ, क्या तुम पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र में शादी करना चाहती हो?
8: नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। माँ पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती।
4: शादी नहीं करना चाहती? आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती?
11: भाई साहब, जरा गौर से देखिए अपनी रीता की तरफ। आपको लगता है ये मासूम इस छोटी सी उम्र में शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? अभी ये बच्ची है, शरीर से भी और मन से भी, और आप अभी से इसको।
10: मुझे माफ कर दीजिए साहब, आज मेरी आंखें खुल गई हैं और आज मैं सबके सामने ये वादा करता हूँ कि रीता की शादी कराने के बारे में मैं तभी सोचूंगा जब ये 18 साल की हो जाएगी, और वो फैसला मैं रीता से पूछकर ही करूंगा। साहब, अगर आज आप हमें न रोकते तो हमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
11: भाई साहब, धन्यवाद मुझे नहीं, मीना को कीजिए, ये सब मीना की समझदारी का परिणाम है।
0: भाई वाह, मीना की समझदारी ने तो सचमुच कमाल कर दिया। वैसे कमाल तो रीटा ने भी किया, मीना के साथ शिक्षक दिवस पे एक मजेदार नाटक प्रस्तुत करके। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू ने कैसी कविता रची है।
2: जब भी किसी बच्चे को मुश्किल में फंसा पाए,
4: फौरन अपने फोन से 10-9-8 घुमाए।
0: मीना और मिट्ठू की कविता सुन के तो दिल बाग बाग हो जाता है। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया। चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो आज का शब्द है समीप। समीप का मतलब पता है बच्चों?
3: समीप का मतलब होता है पास यानी नजदीक।
1: शाबाश रानो। चलो बच्चों अब समीप के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
4: बहन जी समीप का पहला अक्षर है स और स से होता है सुनार।
1: अब सुनार से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
3: स सुनार की एक लोहार की। इस मुहावरे का मतलब होता है सबल का एक वार निर्बल के 100 वार के बराबर होता है।
1: बिल्कुल ठीक सुमी। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
5: स के बाद समीप में आता है म और म से होती है मक्खियाँ।
1: सही जवाब कृष्णा। और मुहावरा?
5: मक्खियाँ मारना मतलब निकम्मे बैठ के समय गवाना।
3: बहन जी अगला शब्द मैं बताऊं?
1: हाँ रीता बताओ।
3: स और म के बाद समीप में आता है प और प से होता है पानी।
1: शाबाश रीता। और पानी से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
3: पानी पानी होना और इसका मतलब होता है लज्जित होना।
1: हाँ मीना बिल्कुल ठीक। शाबाश बच्चों। कैसा लगा आज का खेल?
2: बहुत मजेदार।
0: मजा तो आपको भी खूब आया होगा है ना? फिर ठीक है जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: दोस्तों चिट्ठी जरूर लिखना, मैं आपके पत्रों का इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया यूनिसेफ पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड HPO नई दिल्ली 1100 3।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: तेनालीरामा पात्र परिचय। राजा सैंडी, तेनालीरामा आकाश, सुखराम वेदांत, सेवक आदित्य, आम आदमी शशिकांत, नरेटर कृष्णा। एक गरीब आदमी था, नाम था सुखराम। उसके बारे में यह बात फैल गई कि सुबह सुबह जो व्यक्ति उसका मुंह देख ले उसे पूरा दिन खाना नसीब नहीं होता।
2: सुखराम का मुंह क्या देख लिया, सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा।
1: बात फैलते फैलते राजा के कानों में पड़ी।
2: भला ऐसा भी हो सकता है?
1: राजा ने रात में सुखराम को राजमहल में बुलाया, उसे भोजन करवाया और अपने सोने के कमरे में ही एक बिस्तर पर उसे सुलाया। प्रातःकाल उठते ही राजा ने सुखराम का मुंह देखा। सुखराम ने भी राजा को नमस्कार किया। तभी गुप्तचरों ने आकर खबर दी।
2: महाराज महाराज, पड़ोसी राजा विजयनगर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है।
1: राजा जल्दी जल्दी नित्य कर्म से निपटे और नाश्ता किए बिना ही दरबार में पहुंचे। लंबे समय तक विचार विमर्श होता रहा। भोजन का समय हो गया।
3: महाराज भोजन का समय हो गया।
1: लेकिन राजा एक के बाद दूसरे काम में मग्न रहे। सेवक फिर आया, उसने डरते डरते पूछा,
3: महाराज आपका भोजन?
2: ठीक है, मेरा भोजन यहीं ले आओ।
1: सेवक भोजन की थाली लेकर आया। तभी रानीवास से समाचार आया,
3: महाराज महारानी की तबीयत ठीक नहीं है।
1: महाराज तुरंत रानीवास में पहुंचे। वहां राजवैद्य महारानी का उपचार कर रहे थे। महारानी का बुखार उतरा तब दोपहर डलने लगी थी। राजा बहुत विहल हो गए थे।
4: आज सुबह मैंने सुखराम का मुंह देख लिया, इसलिए मुझे खाना नसीब नहीं हुआ। ऐसे अभागु को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए।
1: व्याकुल महाराज ने आदेश दिया,
4: सुखराम को जेल में डाल दो और सूर्यास्त से पहले उसे फांसी पर लटका दो।
1: तेनालीरामा को इस बात का पता चला।
5: निर्दोष मनुष्य को फांसी लगे, ये गलत है।
1: तेनालीरामा जेल पहुंचे, सुखराम के कान में कुछ कहा और जेल से लौट गए। सूर्यास्त का समय हुआ, फांसी का तख्ता तैयार हो चुका था। फांसी पर जाने से पहले जिम्मेदार अधिकारी ने सुखराम से पूछा,
3: मरने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?
6: मेरी अंतिम इच्छा है कि पूरे नगर में सभी को बता दिया जाए।
3: क्या बता दिया जाए?
6: सुखराम अभागा है, सुबह सुबह जो उसका मुंह देख ले उसे पूरे दिन खाना नहीं मिलता। लेकिन महाराज तो सुखराम से भी अभागे हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो उनका मुंह देख ले उसे शाम को फांसी पर लटका दिया जाता है।
1: अधिकारी को बहुत गुस्सा आया। अधिकारी ने दौड़ते हुए जाकर महाराज को सुखराम की अंतिम इच्छा बताई।
3: महाराज अब हुकुम करें तो उसकी यह अंतिम इच्छा पूर्ण किए बिना ही इसी समय उसे फांसी पर लटका दूं।
1: महाराज सोच में पड़ गए।
2: मैंने जरूर जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लिया है।
1: उन्होंने सुखराम की फांसी की सजा माफ कर दी और सुखराम को बुलाकर पूछा,
6: आज्ञा महाराज।
2: ऐसी अंतिम इच्छा की बात तुम्हें कहाँ से सूझी?
6: महाराज मुझ मूर्ख को कहाँ से सूझता, ऐसा कहना तो मुझे तेनालीरामा ने सिखाया था।
1: महाराज को लगा कि तेनालीरामा ने उसे कोई पाप करते हुए रोक दिया। उन्होंने तेनालीरामा का आभार मानकर कहा,
4: वाह तेनालीरामा, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं,

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: यूनिवर्सिटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, छठा पाठ, कबाड़ी वाली, पृष्ठ 60। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर दो चित्र बने हैं। बाईं ओर वाले चित्र में कुछ टायर रखे हैं और साथ ही एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है किरण सुमित्रा कबाड़ी की दुकान। और दाहिनी तरफ एक दूसरे चित्र में एक महिला को बैठे दिखाया गया है। क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हो जो कबाड़ खरीदती और बेचती है? ये किरण की सच्ची कहानी है जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है। किरण ने कहा, मैं गांव के एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूं। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ें। मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन गणित से मुझे नफरत थी। परंतु आज गणित ही मेरे सबसे ज्यादा काम आता है। मैं स्कूल में ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है? तुम्हें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है? रिक्त स्थान। तुम्हें उसमें सबसे आसान पाठ कौन सा लगता है? रिक्त स्थान। किरण ने कहा, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इसलिए मेरी मां को दूसरों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे। मुझे कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी मां ने मेरी शादी कर दी। मेरे पति का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। उनके दो भाई और एक बहन स्कूल नहीं जाते थे। मेरे पति की चाय की एक दुकान थी। पृष्ठ 61। पता लगाओ एक कप चाय की कीमत। लोगों से पूछकर एक कप चाय की कीमत मालूम करो। एक चाय की दुकान पर रिक्त स्थान और होटल में रिक्त स्थान। चींटी बोली,
1: अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपए कमाता है तो वो 10 दिन में कितना कमाएगा? रिक्त स्थान। एक महीने में? रिक्त स्थान। तुमने ये जवाब कैसे निकाला? बातचीत करो।
0: किरण ने कहा,
2: मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची। कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी दर्जी की दुकान। लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज्यादा कमा सकते हैं। 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। हमने दुकान के लिए 8,000 रुपए उधार लिए।
0: पता लगाओ उधार क्या है? क्या तुमने कभी किसी से उधार लेने के बारे में सुना है? किस लिए? रिक्त स्थान। कितना उधार लिया गया था? रिक्त स्थान। कितना पैसा वापस किया गया? रिक्त स्थान। हरिया और बाबू 300 रुपए में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं।
3: मैंने एक बैंक से 300 रुपए उधार लिए। 6 महीने तक मैं 51 रुपए प्रति माह बैंक को लौटाऊंगा।
4: बाबू ने कहा, लेकिन मैंने चुन्नी लाल से 300 रुपए लिए। 6 महीने बाद उसे 360 रुपए लौटाऊंगा।
0: किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे, हरिया को या बाबू को? रिक्त स्थान। पृष्ठ पर सबसे नीचे बाईं ओर हरिया का चित्र और दाईं ओर बाबू का चित्र बना है। पृष्ठ 62। यहां पर किरण का चित्र है। किरण ने कहा,
2: लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक उड़ाया। उन्होंने इसे गंदा काम कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी। अब हमारे पास एक पक्का मकान है जहां बिजली भी है। हमारे पास फ्रिज है, टीवी है और गैस स्टोव है। मेरे पति के भाई बहन और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है।
0: यहां पर एक घर के अंदर का चित्र बना है जहां पर विभिन्न वस्तुएं दिखाई गई हैं, और साथ ही इसके नीचे एक अन्य चित्र बना है जहां पर रिक्शे, बोरियां, पेटियां इत्यादि वस्तुएं दिखाई गई हैं।
2: मेरे अपने 9 रिक्शे हैं। मैं इन रिक्शों को 20 रुपए प्रतिदिन प्रति रिक्शा के हिसाब से किराए पर देती हूं, लेकिन मैं रविवार को किराए का एक भी पैसा नहीं लेती।
0: किरण 9 रिक्शों से रोज कितना कमा लेती है? एक रिक्शे से उसे 20 रुपए मिलते हैं, इसलिए वो 9 रिक्शों से रिक्त स्थान रुपए कमाएगी।
2: तुम ये कैसे करोगे?
0: छींटा बोला।
3: देखो, मैं इसे इस तरह करूंगा, 9 बार 2 हो तो 18 होता है, इसी तरह 9 बार 20 हो तो 180 होगा।
0: दूसरा चींटा बोला,
3: लेकिन मुझे इसका एक आसान सा तरीका मिल गया है। 10 रिक्शों के लिए उसे मिलेंगे 20 रुपए गुणा 10 बराबर 200 रुपए। उसके पास 9 रिक्शे हैं तो उसे कुल रुपए 200 घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान रुपए मिलेंगे।
4: क्या तुम्हारे दिमाग में इसको करने के लिए कोई और तरीका आता है?
0: शिक्षकों के लिए निर्देश, छात्रों को प्रेरित करें कि वो अपने ढंग से इसको करें। इस पर भी चर्चा करवाई जा सकती है कि वो उत्तर तक कैसे पहुंचे।
5: इसी पृष्ठ पर सबसे आखिर में 2 चींटों का चित्र बना है। पृष्ठ 63।
0: किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है? अपने दिमाग में करें और उत्तर लिखें। अब आप इन्हें स्वयं करके देखें। 2 × 6 बराबर रिक्त स्थान, 20 × 6 बराबर रिक्त स्थान, 2 × 60 बराबर रिक्त स्थान, 3 × 42 बराबर रिक्त स्थान, 4 × 80 बराबर रिक्त स्थान, 4 × 81 बराबर रिक्त स्थान, 9 × 25 बराबर रिक्त स्थान और 31 × 9 बराबर रिक्त स्थान।
2: यहां पर एक चींटी का चित्र है। वो कह रहा है, 4 × 80 से 4 × 81 4 अधिक है, क्या ये सही है?
0: यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें किरण खड़ी हुई दिखाई दे रही है और साथ में कुछ अन्य व्यक्ति काम करते दिख रहे हैं।
2: किरण ने कहा, मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकान है। मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूं। वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करते हैं। मैं उनसे खरीद कर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूं।
0: इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाएं?
2: किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा।
0: आज की कीमत देखने के लिए मूल्य सूची देखो। कबाड़ की कीमत मालूम करने में किरण की सहायता करो।
2: 31 किलोग्राम अखबार के लिए किरण कितने रुपए देगी?
0: यहां पर सबसे नीचे एक चींटे का चित्र बना है। वो कहता है,
3: 1 किलो अखबार 5 रुपए में बिकता है। 30 किलो की कीमत हुई 5 × 30 बराबर 150 रुपए। 31 किलो अखबार के लिए उसे देने होंगे रिक्त स्थान रुपए।
2: शिक्षकों के लिए निर्देश, ये अभ्यास बच्चों को गुणा करने की अलग अलग विधियों, मानक विधि के अतिरिक्त का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
0: पृष्ठ 64। यहां पर एक रेट लिस्ट है। रेट लिस्ट, कबाड़, कीमत प्रति किलो 1, बेकार कागज 4 रुपए, 2, अखबार 5 रुपए, 3, लोहा 12 रुपए, 4, पीतल 170 रुपए और 5, प्लास्टिक 10 रुपए।
2: किरण को 42 किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा?
0: नीचे लिखी वस्तुओं की कीमत पता करो। क, 22 किलो प्लास्टिक, ख,
5: 23 किलो बेकार कागज और ग 12 किलो लोहा। क्या तुम इसे बिना लिखे कर सकते हो? यहां पर एक चींटी का चित्र है जो कह रहा है,
3: सोचो किरण ने कबाड़ी वाले को कुल कितने पैसे दिए होंगे, 600 रुपए से ज्यादा या 600 रुपए से कम।
5: सयानी किरण का कबाड़ बेचना। किरण अपना सारा कबाड़ बड़ी दुकान पर बेच देती है। पहले वो मोबाइल फोन से कीमत पूछती है और तभी बेचती है जब उसे अच्छी कीमत मिलती है। यहां पर एक चित्र में किरण को फोन पर बात करते दिखाया गया है। आज फिर वो दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक, अखबार, लोहा और पीतल बेचने गई। दीनू ने 32 किलो लोहा, 4 किलो पीतल, 152 किलो अखबार और 63 किलो प्लास्टिक तोला। यहां पर सबसे नीचे दो चित्र हैं। बाईं ओर के चित्र में दो ठेले दिखाए गए हैं और कुछ व्यक्तियों को दिखाया गया है। दाहिनी तरफ वाले चित्र में कुछ सामान रखा है। पृष्ठ 65। क, दीनू ने 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया? यहां पर एक रेट लिस्ट है जिस पर लिखा है दीनू की रेट लिस्ट, कबाड़ और कीमत प्रति किलो। 1 अखबार 6 रुपए, 2 लोहा 14 रुपए, 3 पीतल 180 रुपए, 4 प्लास्टिक 12 रुपए और 5 बेकार कागज 4 रुपए 50 पैसे। 1 किलो प्लास्टिक की कीमत 12 रुपए है, इसलिए 63 किलो प्लास्टिक की कीमत 63 × 12 रुपए होगी। याद करो कक्षा 3 में तुमने गुणा करने के लिए बॉक्स का प्रयोग किया था। यहां पर एक बॉक्स दिखाया गया है जिसमें दो खाने हैं। पहले खाने में सबसे ऊपर 60 लिखा है और दूसरे खाने में 3 लिखा है और बाईं तरफ 10 और उसके नीचे 2 लिखा है। आइए गुणा करके देखते हैं। पहले हम 60 को 10 से, उसके बाद 3 को 10 से गुणा करेंगे और फिर 60 को 2 से और 3 को 2 से गुणा करेंगे। आइए पहले 60 को 10 से गुणा करते हैं। 60 × 10 = 600 और 3 × 10 = 30। उसके बाद 60 × 2 = 120 और 3 × 2 = 6। चींटा बोला, 63 × 12 का मतलब हुआ 63 संख्या 12 बार। 12 बार 60 हुआ 720, अतः उत्तर 720 से ज्यादा होगा और 800 से कम होगा। बता सकते हो क्यों? दीनू ने बॉक्स में अंकों को जोड़ा, 600 + 120 + 30 + 6 = 756। इसलिए 63 किलो प्लास्टिक के लिए दीनू 756 रुपए देगा। किरण ने 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपए का खरीदा, लेकिन 1 किलो प्लास्टिक 12 रुपए में बेचा। 1 किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे? रिक्त स्थान रुपए। फिर 63 किलो बेचने के बाद वो कितना पैसा कमाएगी? रिक्त स्थान। पृष्ठ 66। किरण ने 32 किलो लोहा बेचा। दीनू 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा? रिक्त स्थान। किरण 1 किलो लोहा 12 रुपए में खरीदती है, लेकिन 14 रुपए में बेचती है। यदि किरण 32 किलो लोहा बेचे तो वो कितना पैसा कमाएगी? रिक्त स्थान रुपए। ग, 152 किलो अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने पैसे देगा? 1 किलो अखबार की कीमत है 6 रुपए, अतः 152 किलो अखबार की कीमत होगी 6 × 152 रुपए। दीनू ने लिखा, यहां पर भी एक बॉक्स है जिसके 3 खाने हैं। पहले खाने में सबसे ऊपर लिखा है 100, दूसरे के ऊपर 50 और तीसरे के ऊपर 2 लिखा है। और खाने के बाईं तरफ 6 अंकित है। आइए अब हम गुणा करते हैं। अब हम 6 को पहले 100 से, उसके बाद 50 से और सबसे बाद 2 से गुणा करेंगे। तो आइए अब हम गुणा करते हैं। 100 × 6 = 600, 50 × 6 = 300, 2 × 6 = 12। यहां पे एक चींटी का चित्र बना है जो कह रहा है
3: 6 × 100 = 600, इसलिए उत्तर 600 से अधिक होगा। क्या उत्तर 1000 से कम आएगा? तुमने अंदाजा कैसे लगाया?
5: उसने फिर बॉक्स में अंकों को जोड़ा। 600 + 300 + 12 = 912। यहां पर सबसे नीचे दाहिनी तरफ किरण का चित्र है जो सोच रही है,
3: मैंने 1 किलो अखबार 5 रुपए में खरीदा लेकिन 6 रुपए में बेच दिया। मैंने 152 किलो अखबार बेचकर कितने पैसे कमाए?
5: इसलिए 152 किलो अखबार के लिए वो किरण को 912 रुपए देगा। घ, दीनू ने पीतल के लिए कितना पैसा दिया? 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे? रिक्त स्थान। यहां पर एक चींटी का चित्र है। चींटा बोला,
3: पहले उत्तर का अंदाजा लगाओ।
5: पृष्ठ 67। पहले अंदाजा लगाओ फिर गणना करो। क, 37 × 18 = रिक्त स्थान। ख, 45 × 24 = रिक्त स्थान। ग, 69 × 52 = रिक्त स्थान। घ, 77 × 55 = रिक्त स्थान। ळ, 142 × 5 = रिक्त स्थान। च, 382 × 3 = रिक्त स्थान। छ, 2 × 175 = रिक्त स्थान। और ज, 4 × 206 = रिक्त स्थान। अब तुम दिए गए इन रिक्त स्थानों को भरो, मेरी डायरी भरो। किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा। उसने उन्हें 841 रुपए दिए। उसने दीनू की बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के दिए। यहां पर एक चित्र में कुछ नोट और एक सिक्का दिखाया गया है जिन पर लिखा है 100 रुपए के 6 नोट, 20 रुपए के 7 नोट, 5 रुपए के 8 नोट, 50 रुपए के 3 नोट, 10 रुपए के 6 नोट और 1 रुपए के 4 सिक्के। किरण ने अपनी डायरी में कुछ इस तरह लिखा। यहां पर डायरी का एक पेज का चित्र है जिस पर दाईं तरफ सबसे ऊपर लिखा है 11 मार्च 2007 और उसके बाद लिखा है, मैंने दिए 841 रुपए, मुझे मिले 600 रुपए + 150 रुपए + 140 रुपए + 60 रुपए + 40 रुपए और + 4 रुपए, कुल बराबर 994 रुपए। मैंने कमाए 994 रुपए - 841 रुपए = 153 रुपए। पृष्ठ 68। उसके बाद उसने कबाड़ी वालों को 919 रुपए दिए। जब उसने इस कबाड़ को बेचा तो दीनू से उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के मिले। यहां पर कुछ नोटों और एक सिक्के का चित्र बना है। ये इस तरह से हैं, 5 रुपए के 28 सिक्के, 100 रुपए के 5 नोट, 50 रुपए का 1 नोट, 10 रुपए के 18 नोट और 20 रुपए के 9 नोट। अब तुम उसकी डायरी में लिखो, मालूम करो कि इस बार उसने क्या कमाया। यहां पर भी डायरी का एक पेज दिया गया है। डायरी के इस पेज पर दाहिनी तरफ सबसे ऊपर लिखा है 18 मार्च 2007। अब तुम डायरी के इस पेज पर लिखो कि उसने कितने रुपए कमाए। इसी के साथ छठा पाठ कबाड़ी वाली अब यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।
2: और कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक बार सब आप लोग अपना नाम बता दो, यहाँ से शुरू करेंगे, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो वो भी बताना। पहले आप बताओ।
3: मयंक वाधवानी क्लास फोर्थ।
4: नीर मौलानी थर्ड पे गया हूँ।
2: आप बताओ।
5: नीर मौलानी वन पे गया, केजी वन पे गया। केजी वन पे।
6: नेम बीके सानिया क्लास सेवेंथ।
7: बीके राशि क्लास सेवेंथ।
2: क्लास सेवेंथ। अच्छा, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है?
7: ये।
2: हाँ,
7: ये एर्थ में, उसने सेवेंथ बोल दिया। उसने
6: अभी एर्थ में जाऊंगी। अभी
2: एर्थ में जाओगे? अभी एग्जाम्स खत्म हो गए ना, लेकिन अब एर्थ में पढ़ाई शुरू करोगे। और सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? देव। जीवन। अच्छा, आप लोग का सबसे फेवरेट काम क्या है करने के लिए? सबसे ज्यादा क्या करने में आपको बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है जो करने में? बहुत। स्कूल में, घर में खेलना कूदना, क्या करना अच्छा लगता है?
8: खेलना।
2: हाँ, पेंटिंग करना, फ्रेंड्स के साथ बातें करना, क्या अच्छा लगता है?
8: पेंटिंग।
2: ड्राइंग। और
8: मेहंदी।
2: आपको?
8: मेरे को ड्राइंग।
2: और आपको?
5: मेरे को भी ड्राइंग
2: अच्छी लगती है। तो हाँ, आपको क्या अच्छा लगता है देव?
8: ड्राइंग।
2: किसी को डांस करना नहीं अच्छा लगता है यहाँ पे?
8: मुझे।
2: क्या, कौन से गाने पे डांस करते हो?
8: बाबा के गीत।
2: कोई भी? ओके, वंडरफुल। अच्छा, एक बात बताओ, लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं कि लड़के?
8: लड़कियां।
2: दोनों या लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं?
8: दोनों।
2: अच्छा, लड़के लड़कियों में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस होता है लगता है आपको?
8: क्या पता?
5: बालों से।
2: हाँ, अंतर है ना, उनकी लंबी चोटी और आपके शॉर्ट हेयर है ना। और कोई डिफरेंस होता है?
8: ड्रेस।
2: हाँ, ड्रेस भी अलग अलग पहनते हैं।
8: नेचर
2: अलग अलग होते हैं। क्या अलग होता है? अच्छा, स्पोर्ट्स कौन खेलता है, लड़के या लड़कियाँ?
8: दोनों।
2: ज्यादा अच्छा कौन खेलता है?
8: दोनों अच्छा
2: खेलते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप लोग अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करते हो?
8: यस।
2: और कुछ गलती करते हो फिर भी बता देते हो? फिर डांट नहीं पड़ती?
8: पड़ती है।
2: तो फिर डर नहीं लगता है?
8: अगर खुद बता देते हैं तो कम डांट पड़ती है।
2: हाँ, और बाद में पता चलता है तो ज्यादा पड़ती है ना।
8: हाँ,
2: इसलिए बता देते हो सब। कभी ऐसा झूठ नहीं बोला?
8: नहीं।
2: कभी नहीं?
8: नहीं।
2: ओके, बोला है? नहीं बोला। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो? कोई सपने, ड्रीम्स आती हैं आपको?
8: हाँ, बिल्कुल।
2: आती है?
8: आती है।
2: कोई बताओ, क्या ड्रीम आती है? क्या ड्रीम आई बताओ, आपकी कोई ड्रीम बताओ।
8: अरे, हम तो उठते हैं और भूल जाते हैं।
2: भूल जाते हो? और किसी को याद है अपनी ड्रीम?
8: भूतिया।
2: क्या दिखता है उसमें?
8: भूत।
2: क्या
8: भूत दिखते मुझे?
5: भूत दिखते सब है। भूत वाली मूवी दिखता है, भूत कब आता है।
2: हाँ, फिर क्या करता है भूत आता है तो?
5: चिल्लाता है
2: कैसे? ऐसे रहता है। ये तो खास बच्चे, खांसी हो गई उसको, कब से रब दे रहे हो? बोला भूत भैया आप ठीक हो?
5: आजकल हमारा दवाई का दुकान है, हमने देंगे।
2: दवाई की दुकान है, भूत को दवाई दे दिया करो, है ना। बोला आपके पेट में दर्द है, ये लो दवाई। कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हो आप।
4: तो पेट पर गुल गुल हो रही है, थोड़ा काला भी दे लेंगे
2: है ना।
1: तो खाला तो पानी भी दे दूंगा पीने के लिए।
2: पानी भी दे, कितना अच्छा है देव, देखो सेवा करता है भूत की।
1: दीदी
2: और आप लोग को किसी को ड्रीम याद है अपनी, कोई सपना याद है?
8: सपना आता ही नहीं है।
2: आता नहीं, याद है आपको? हम सब सुनाएंगे। नहीं, कोई ऐसे रात को सपना दिखता है आपको कि जब सो रहे होते हो तब? जैसे मुझे पहले बचपन में सपना आता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बिल्डिंग है और मैं उससे ऐसे नीचे नीचे नीचे नीचे
6: मैं पहाड़ से गिर रही हूँ,
2: ऐसा सपना आता है है ना? मुझे
6: जैसे नींद से परखते ऐसा लगता है गिरने वाले, फिर नींद खुल जाती है,
2: अचानक से नींद खुल जाती है ना। ये मेरे साथ भी होता था बहुत।
4: मेरा तो थोड़े तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि मैं बिल्डिंग से गिर रहा हूँ।
2: आपको भी ऐसे आता है?
4: और मैं सोता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कोई खींच रहा है।
2: फिर क्या कर?
4: फिर मैं उठता फिर से सोने की कोशिश करता,
2: फिर आपको क्या लगता है?
8: बस।
2: तो आप क्या करते हो फिर जब ऐसा लगता है कोई खींच रहा है आपको, तो क्या करते हो फिर?
4: मैं कोई भी भूतिया वो ड्रीम आते है तो मैं स्वमान बोलता हूँ।
2: क्या बोलते हो, कौन सा स्वमान?
4: मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। हाँ।
2: और आपको कोई ड्रीम आया है? कभी ड्रीम आया आपको कोई? क्या
8: याद नहीं है,
2: भूल गए ना सारे? तो डर लगता है ड्रीम में या नहीं लगता कि अच्छा ड्रीम आता है?
8: बहुत डर लगता है।
2: तो आप लोग फिर मम्मी को पापा को किसको बताते हो घर पे जब ऐसा ड्रीम आता है? तो
8: हम भूल ही जाते हैं।
2: भूल जाते हैं। आप किसको बताते हो? हाँ,
8: किसी को भी नहीं।
2: किसी को भी नहीं,
8: बस किसी से बात करता हूँ तो उसको बता देता।
2: अच्छा, किसी को भी बता देता। आप लोग किसको बताते हो?
8: किसी को नहीं।
2: किसी को नहीं, किसी को शेयर नहीं करते कि अरे मैंने देखा ऐसा सपना देखा आज, ऐसा नहीं बताते? नहीं, फिर डर नहीं लगता?
1: और मैंने आज सपना देखा।
2: क्या देखा?
1: भूत आ रहा है मेरे पास।
2: भूत ही आता रहता है आपके पास? इतने सारे भैया लोग हैं उनको बुलाया करो, भूत को क्यों बुलाते हो आप?
1: मैं भूत आ जाता है तो मैं किसी को नहीं बताता।
2: किसी को नहीं बताते? ओहो। अच्छा, अभी तक का आप लोगों का बेस्ट मोमेंट क्या था? आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी? बहुत अच्छा लगा हो जब आपको बहुत मजा आया हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो।
4: मैं जब ड्रीम एसे गया था। ड्रीम एसे वाटर पार्क गया था।
2: अच्छा, घूमने गए थे?
4: हाँ।
2: वो बहुत अच्छा लगा था।
4: वाटर पार्क,
2: उदा पार्क,
4: वाटर
2: पार्क,
4: ड्रीम एसे वाटर पार्क।
2: आप भी गए थे?
4: हाँ।
2: बहुत मजा आया था?
1: हाँ। के लिए ऐसे कूद गया मैं नदी में,
4: मजा आया।
2: हाँ।
4: से।
2: आप लोगों को क्या अच्छा लगा था? मतलब ऐसे ही कभी कभी हमारी बहुत अच्छी
1: स्लाइड तो ऐसे ही डूब गया।
2: स्लाइड में डूब गए?
4: हाँ, मैं स्लाइड में गिरा।
2: हाँ।
4: मेरी मामी ने पकड़ लिया, मजा आया था बहुत।
1: मैं पकड़ ली थी तो सीधा पानी में खिल गया।
2: सेफ्टी के साथ पानी में खेलना चाहिए, बड़ों के साथ लेके जाना चाहिए बड़ों को, है ना?
1: मैली ने मामी का नाम बताओ।
4: दिया मामी, खुशबू मामी।
1: दिया मामी, खुशबू मामी।
2: वेरी गुड। और आपको सबसे अच्छा क्या लगा था बताओ?
8: मेरे को मेरे को तो नहीं पता।
2: जब क्लास में अच्छे मार्क्स आए हो या आप कहीं गए हो, कुछ भी अच्छा लगा होगा?
8: लगा है।
2: क्या लगा?
8: मेरी क्लास में अच्छे नंबर आते हैं।
2: तो आपको बहुत अच्छा लगता है? टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं आपको, बोलते हैं कि अरे वाह, ऐसा?
8: वो हमको गिफ्ट भी देते हैं।
2: हाँ, क्या मिलता है गिफ्ट में?
8: ट्रॉफी।
2: अरे वाह, ट्रॉफी लेके तो बड़ा अच्छा लगता होगा ना? चलो तालियां बजाते हैं हम सभी। वेरी गुड। आप लोगों को क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा?
6: जब हम माउंट आबू पहली बार आए थे
2: तब अच्छा लगा था। और क्या अच्छा लगा?
8: एग्जाम देने जाते थे तब बाबा को लेके जाते थे, बाबा एग्जाम देते थे।
2: और क्या मजा आता है करने में, और अच्छा क्या लगता है? कोई फ्रेंड से मिलना या फिर कहीं घूमने और जाना?
3: नहीं, फ्रेंड्स तो बनाते नहीं है।
2: नहीं फ्रेंड्स नहीं? आप लोग आप दोनों फ्रेंड्स हो कि नहीं? बस आप दो फ्रेंड्स हो तो एक दूसरे के साथ रहना भी तो अच्छा लगता होगा, लगता है थोड़ा कि बहुत?
3: बहुत
2: बहुत। स्माइल कर रही है। कुछ खेलना अच्छा लगता होगा? बहुत नहीं, कुछ खेलना अच्छा नहीं लगता। क्या करना अच्छा लगता है फिर? खाना बनाना अच्छा लगता है, पढ़ाई करना अच्छा लगता है,
3: डांस करना।
2: डांस करना अच्छा लगता है, लगता है?
3: पेंटिंग करना।
2: पेंटिंग करना अच्छा लगता है, वेरी नाइस। सबको अलग अलग चीजें अच्छी लगती है ना। अच्छा तो आप में से कौन ये बताएगा कि इंडिया की राजधानी क्या है? क्या है बताओ, पता है किसी को?
4: मुझे तो पता ही नहीं है जी के।
2: बताओ भारत की राजधानी कौन सी है? अच्छा मैं हिंट देती हूँ, ठीक है? उसका नाम एन से शुरू होता है, मतलब उसके और क्या हिंट दूं मैं? चलो मैं बता ही देती हूँ, बता दो फिर उसके बाद याद रखोगे आप लोग सब लोग?
3: हाँ
2: पक्का।
3: हाँ पक्का।
2: इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली।
3: ओ हाँ रे,
2: न्यू दिल्ली है ना?
3: न्यू दिल्ली,
2: दिल्ली
4: मतलब कैपिटल।
2: कैपिटल।
4: अच्छा मुझे भी पता था राजधानी, मतलब हाँ। मुझे भी पता नहीं था
2: राजधानी शब्द, नहीं पता था ना आपको?
4: हाँ।
2: कैपिटल
3: न्यू दिल्ली तो पता है।
4: ये पता है कि इसका कैपिटल राजधानी है।
2: अच्छा हिंदी में पूछा ना मैंने, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए। कैपिटल को हिंदी में राजधानी। अच्छा गाना आप लोग का फेवरेट कौन सा है?
4: तेरे नादिया, गिरीश का गाना।
3: गिरीश का
2: गा के सुनाओगे?
4: दिल ना दिया, ओ इत्ता दिल ना दिया, दिल ना दिया वो

0: आके दुनिया
1: में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने तो। अच्छा, आप लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है? जैसे मान लो अगर बड़े लोग, जैसे बच्चों में लड़ाई होती है, होती है, बड़े लोगों में होती है, होती है, तो बड़े लोगों को लड़ाई कैसे सॉल्व करनी चाहिए, क्या करना चाहिए अगर उनकी लड़ाई हो जाए तो?
2: सॉरी बोलना चाहिए।
0: क्या लगता, सॉरी बोलना चाहिए,
2: माफी मांग लेनी चाहिए,
0: माफी मांग लेनी चाहिए ना? और क्या करना चाहिए बताओ? अगर आपके पास हम आए, मेरी लड़ाई हो गई तो क्या बताओगे मुझे, कैसे हेल्प करोगे, क्या करूँ अगर मेरी लड़ाई हो गई तो?
3: नहीं पता,
0: कुछ तो पता होगा,
2: किसी बड़े को बुला लेना चाहिए।
0: हाँ, जो बड़े हैं उनको भी अपने बड़ों को बुला लेना हाँ। चाहिए, है ना? और क्या करना चाहिए अगर लड़ाई हो जाए तो? हैं देव, क्या करना,
3: माफी मांगना चाहिए।
0: सॉरी करने से सॉरी माफी कर देते हैं लोग, मांग देते हैं। मैं बोलूँ सॉरी देव, मैंने आपका टॉय तोड़ दिया, आप मुझे माफ कर दोगे? कर दोगे पक्का? अरे हाँ देव तो बहुत अच्छा। और नील क्या कर सकते हैं और? अगर मान लो लड़ाई हो जाए तो, मैंने आपका कोई
3: चीज टूट गया तो उसको वापस दे देना, खरीद के वापस दे देना है।
0: खरीद के वापस देना चाहिए ना, कंपनसेट कर देना चाहिए, मतलब सोल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए, है ना?
3: यस।
0: वेरी नाइस, वेरी वेरी इंटेलिजेंट आप लोग, तो बहुत समझदार हो। अच्छा, आप लोग का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है?
3: कार्टून कैरेक्टर ऑगी
2: द कॉकरोचेस, नहीं डोरेमोन,
0: सिंचन भी। आपका?
3: रुद्रा।
0: वाओ, आप लोग का?
2: डोरेमोन।
0: आपका?
3: एंजल का पैटर्न देखती
0: हाँ। क्या सुपर पावर क्या होती है, मतलब वो क्या करते हैं जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है, उसमें अच्छा क्या लगता है आपको?
3: इनके पास सुपर पावर्स होती है और हमेशा वो उड़ते रहते हैं।
0: ओके, और आपका डोरेमोन क्या करता है?
3: उड़ता है, सारे चीज का गैजेट होता है कि इसको कैसे सुधारे।
0: हाँ, तो क्या सुपर पावर क्या अच्छी लगती है उनकी?
3: डोरेमोन बहुत हंसाता है,
2: कॉमेडी।
0: और रुद्रा क्या करता है?
3: रुद्रा एक मैजिशियन है,
0: जादू करता है।
2: और डोरेमोन के पास हर चीज का सॉल्यूशन रहता है,
0: हर चीज का सॉल्यूशन रहता है। और आपका था एंजल, एंजल का तो आपने बताया। क्या बात है, बहुत सारी सुपर पावर्स आप लोगों के पास भी है लग रहा है मुझे, है क्या?
2: हाँ
0: है। क्या सुपर पावर है आप लोग? अगर आपको मान लो एक विश मिले और आपको बोला जाए एक एक सुपर पावर सबको मिले, तो कौन सी सुपर पावर चाहिए आपको?
3: एंजल की।
0: एंजल की सुपर पावर। आपको कौन सी सुपर पावर?
3: सॉल्यूशंस,
0: सबको सॉल्यूशन कर देने की। आपको क्या सुपर पावर?
3: मैजिशियंस की।
0: क्या जादू करोगे?
3: जादू करूंगा।
0: क्या करोगे जादू से? क्या करोगे
3: जादू से? पूरा पुरुषार्थ कर लूंगा।
0: क्या होता है पुरुषार्थ? मतलब आपको मान लो मैजिक करना है, कुछ ठीक करना है, क्या करोगे? जैसे इसको बड़ा कर दोगे, इसको छोटा कर दोगे,
3: इसको पतला कर दोगे, इसको मोटा
0: कर दोगे, किसी को क्या करोगे?
2: किसी की दुकान
0: उड़ लोगे मैजिक से?
3: उड़ूंगा हाथ से, मुंह से आग निकालेगा।
0: हाँ, ऐसा करोगे क्या?
3: नहीं।
0: उड़ो, उड़ के कहीं भी पहुंच जाओगे ना। और आपको कोई एक सुपर पावर मिले तो कौन सी चाहिए? सुपर हीरो बन के क्या करोगे? उड़ोगे, भागोगे,
2: सबकी हेल्प,
0: लंबे हो जाओगे, क्या करोगे?
3: लंबे हो जाओगे, भागूंगा, उड़ भी जाओगे,
0: सब कुछ कर लोगे।
3: फ्रेश बनूंगा, फ्रेश से ऐसे भागूंगा, कहीं भी चले जाऊंगा, बहुत तेज भागूंगा, फ्रेश से ऐसे, और मैं भी फ्रेश से भागूंगा।
0: चलो, अपनी अपनी सुपर पावर खुद हमें बनानी है, और उसके लिए ढेर सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे। चीकू भी खाना पड़ेगा।
2: हाँ। है?
0: और कौन कौन से फ्रूट्स खाने पड़ेंगे?
3: केला, कीवी
0: और
3: ऑरेंज,
0: और
3: मैंगो, ग्रेप्स,
0: और
3: वाटरमेलन, ग्रेप्स, वाटरमेलन।
0: खाते हो आप लोग?
3: एप्पल, मैंगो,
0: ऐसे तो नहीं बोलते मैं नहीं खाऊंगा ये फ्रूट।
3: मेरे को तो सारे फ्रूट पसंद है।
0: अरे,
3: और ये वाटरमेलन
0: नहीं खाती? कोई और तो खाती होगी ना?
3: मैंगो
0: सिर्फ, और
2: कीवी, पपाया,
0: और
2: एप्पल, बनाना,
0: फ्रूट्स खाने चाहिए, उससे हम हेल्दी हो जाते हैं। जो आप सुपर पावर बोल रहे हो ना, सब मिल जाएंगे, ठीक है? समझे थे? चलो, अभी हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं बाय बाय। सब लोग बोल दो बाय बाय।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का दूसरा पाठ कहानी सपेरों की पृष्ठ 15। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या, मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुरी पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जबानी। पृष्ठ 16। यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव में घूमते। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांपों का नाच देखने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे लगता कि जहां डॉक्टर नहीं है वहां भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले कभी लोग हमें अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहां किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है। पर ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। पृष्ठ 17। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों

क्यों? तुम्हें क्या लगता है, सभी सांप जहरीले होते हैं? तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा, या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? पृष्ठ 18। अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांप को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी हैं, जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी ये कहानी सुनाना, अपनी जिंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। पृष्ठ 19। लिखो। क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? कब और कहां देखा? किस जानवर का खेल देखा? जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे? वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे? मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है। अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। एक, मुझे डर लगता है जब, रिक्त स्थान। दो, मेरी इच्छा है कि मैं, रिक्त स्थान। तीन, मैं उदास होता हूं जब, रिक्त स्थान। चार, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं, रिक्त स्थान। पांच, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं, रिक्त स्थान। पृष्ठ 20। क्या तुम जानते हो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल चार तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये हैं नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांतों में से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई यानी सीरम

दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। लिखो, सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। सर्वे, जानवर पालने वालों का। अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां आदि। कौन सा जानवर है? कितने जानवर पाले हैं? क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है? उनकी देखभाल कौन करता है? वे क्या खाते हैं? क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं? तब पालने वाला क्या करता है? इसी तरह अपने मन से और प्रश्न भी पूछो। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। पृष्ठ 21। बनाओ एक अनोखी कठपुतली। एक पुरानी जुराब लो, उसे अपने हाथ पर पहन लो जैसा चित्र में दिखाया गया है। आंखों के लिए दो बिंदी या बटन चिपकाओ। जीभ बनाने के लिए लाल कागज की पट्टी काटकर चिपकाओ। पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगाओ। लग रहा है ना सांप? अब मजे से इस कठपुतली से खेलो। हम क्या समझे? सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। कहानी सपेरों की। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का दूसरा पाठ। प्रस्तुति CIET NCERT।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सबके पास लुक से ब्राइट स्किन टोन है।
1: ज्योति के डार्क स्किन टोन की वजह से उसके फ्रेंड्स हमेशा उसका मजाक बनाते और वो दुखी हो जाती थी।
0: मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ?
2: ज्योति चल यार, लोगों की बातों को इतना भी दिल पे नहीं लेना चाहिए।
1: ज्योति अपनी दोस्त की बात से खुश हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका फ्रेंड्स ग्रुप दोबारा देखता है और उसे देख जोर से हंसते हैं और ज्योति फिर से नाराज हो जाती है। ये समस्या सिर्फ ज्योति की नहीं है। जैसे ज्योति का स्किन टोन डार्क है, वैसे ही हम सब के शरीर में कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्या होती है। किसी के कम उम्र में ही बाल सफेद हो गए हैं, या कोई गंजा है, कोई जरूरत से ज्यादा लंबा है, तो किसी की हाइट बहुत ही कम है, कोई अपने वेट से परेशान है, और इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी बीमारियों से लोग परेशान होते हैं। देखा जाए तो आज के समय में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है।
3: You are precious just the way you are. It is more important how you see yourself than what others think. Har insaan ki apni khasiyat hoti hai. You have a lot that makes you special. Learn to accept and love yourself.
1: Kyunki ye hamara kaliyug ka shareer hai, jise humne apne pichle janmon ke karmon ke aadhar par paya hai. इसीलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग आत्मा है। इसे आत्मिक स्मृति या सोल कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। जब हम खुद को शरीर से अलग आत्मा महसूस करते हैं, तो हमारे शरीर को कोई भी कुछ भी कहे, हमें बुरा नहीं लगता। यहाँ तक कि शरीर की बीमारियां भी हमें दर्द का एहसास नहीं कराती। ये एक बहुत ऊंची अवस्था है जिससे हम शरीर के भान को भूल जाते हैं। आइए अब समझते हैं हाउ टू प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस। हमें खुद को चलते फिरते या दिन भर के काम करते समय बीच बीच में याद दिलाना होगा। क्या याद दिलाना होगा?
4: विजुअलाइज योर लिटिल पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। ये लाइट मैं हूँ।
1: परमात्मा से मुझ आत्मा में शक्ति भर रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। इस तरह जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और समस्याएं छोटी लगने लगती है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें हमेशा स्टेबल और पावरफुल बनाए रखेगी। चेंज योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम बॉडी टू सोल एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम सोल टू अनलॉक योर ट्रू स्ट्रेंथ एंड पावर।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे 1107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए 21 जुलाई की बातें आपसे शेयर करूंगा। और आज आनंद बख्शी साहब, उमा शंकर जोशी, चेतन चौहान, शंकर सिंह बाघेला, जयराम दास, दौलतराम, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ योमेश चंद्र बैनर्जी, लालाजी टंडन, शिवाजी गणेशन, गंगूबाई हंगल, सादत हुसैन, इन सभी का पुण्य दिवस है। आइए आज के शो को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर, और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहते हैं, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को, और शाम के समय में आप हमारे साथ हो, और चाय और रिफ्रेशमेंट का टाइम हो गया है तो आप रिफ्रेशमेंट के साथ साथ रेडियो मधुबन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और सुनिए 94-14-15-14-15। इस नंबर पर आप अपनी विचार, अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं। इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहे, साइबर सुरक्षित रहे।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं उमाशंकर जोशी के बारे में। और उमाशंकर जोशी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और गुजराती भाषा के बहुत ही पॉपुलर साहित्यकार हैं। इनका उपनाम वासुकी है और उमाशंकर जोशी का जन्म गुजरात के साबरकांठा जिले के एक गाँव में 21 जुलाई 1911 को हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा खंडों में पूरी हुई। 1930 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए विद्यालय छोड़ दिया था और बाद में 1936 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा पूरी की। उमाशंकर जोशी प्रतिभावना कवि और साहित्यकार थे। 1931 में इनकी काव्य संकलन विश्व शांति से उनकी ख्याति एक समर्थ कवि के रूप में हो गई। काव्य के अतिरिक्त उन्होंने साहित्य के अन्य अंगों यथा कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध आदि को भी पोषित किया है। आधुनिक और गांधी युग के साहित्यकारों में उनका शीर्ष स्थान है। जोशी जी अध्यापक और संपादक रहे हैं। वे गुजरात विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष थे, फिर वहाँ के वाइस चांसलर भी बने। उन्हें राज्यसभा का सदस्य नामजद किया गया था और साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया था। 1979 में वे शांति निकेतन के विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हो गए। उन्हें अनेक विश्वविद्यालयों ने डीलिट की मानद उपाधियाँ दी हैं। इसके साथ ही उमाशंकर जोशी की मुख्य कृतियाँ विश्व शांति 6 खंडों में गंगोत्री, निशित, गूले पोलैंड, प्राचीना, अतिथि और वसंत वर्षा, प्रसाद, महाप्रस्थान, काव्य ग्रंथ, अभिज्ञा, एकांकी, इस तरह के कई निबंधों का भी उन्होंने किताब लिखी। कविताओं का संग्रह भी उनका है और विश्व शांति में अहिंसा और शांति के लिए किए गए गांधी जी के प्रयत्नों की महिमा का वर्णन इसे गुजराती काव्य में नया युग का परिवर्तक माना जाता है। और इन्हें 1987 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। तो ये थी कुछ खास बातें आज के उमाशंकर जोशी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और 19 दिसंबर 1988 को इनका मृत्यु हुआ मुंबई, महाराष्ट्र में। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और उमा शंकर जोशी ने, उनके बारे में सुनकर आपको बड़ा आनंद आएगा, कविताओं के माध्यम से भी देशभक्ति और गांधी विचारों का प्रसार किया जा सकता है, ये वासुकी जोशी जी से समझ सकते हैं। तो आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं, चेतन प्रताप चौहान के बारे में। उन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक थे। जिस तरह चेतन चौहान हमेशा अपने परिधान को संभालते थे, उसी तरह वो अपना व्यवहार भी बेहद संतुलित रखते थे। एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी पहचान भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के सलामी जोड़ीदार के रूप में होती रही। चेतन चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से 1991 में अमरोह में चुनाव लड़ा और वे वहीं से संसद चुने गए। और भारत के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 40 टेस्ट मैचों में 2084 रन बनाए और उनका सर्वाधिक स्कोर 97 रहा है। तो भूतपूर्व सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान का जन्म आज ही के दिन 21 जुलाई 1947 को जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। अपना करियर एक क्रिकेटर के तौर पर शुरू किया था। सुनील गावस्कर के साथ उनकी जोड़ी बेहद लोकप्रिय थी। भारत के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 40 टेस्ट मैचों में 2084 रन बनाए और उनका सर्वाधिक स्कोर 97 रहा। इसके अलावा उन्होंने 7 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले थे। करियर में बिना शतक लगाए 2000 रन बनाने वाले वह दुनिया के पहले क्रिकेटर थे। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हो चुके चेतन चौहान भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे। इसके अलावा वह 1991 से लेकर 1998 तक संसद भी रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद वह यूपी की सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा मंत्री बने थे। चेतन चौहान उत्तर प्रदेश के अमरोह से ही संसद रहे। वर्तमान में वह अमरोह की नौगांव शहादत सीट से विधायक भी थे। ये था उनका परिचय। और राजनीतिक जो सफर है वो 1991 से अमरोह में उनको सौभाग्य मिला और वहां से वो जीते और इस तरह से मैदानी चुनाव जंग के लिए उतरे, लेकिन इस बार वे हार गए थे 1996 में। और फिर 1998 में चेतन चौहान का एक बार फिर संसद चुनने का मौका मिला और वहीं से वो 2004 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और 1999 में भी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। चेतन चौहान का निधन दिल का दौरा पड़ने से 16 जुलाई 2020 को गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। कोरोना से संक्रमित होने के बाद चेतन चौहान गुरुग्राम में मेधांता अस्पताल में भर्ती थे। उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और फिर बाद में कई रंगों में भी काम करना बंद कर दिया। वह अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान को 11 जुलाई 2020 को कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद लखनऊ के संजय गांधी PGI हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और 15 जुलाई 2020 को उन्हें लखनऊ के PGI से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। फिर चेतन चौहान के निधन पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया था। PM मोदी ने कहा था, चेतन चौहान जी ने खुद को पहले एक शानदार क्रिकेटर और बाद में बेहतरीन राजनेता के रूप में साबित किया है। उन्होंने जनसेवा के साथ साथ यूपीए में बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। उनके निधन से ही काफ़ी दुख हुआ है। उनके परिवार को समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। तो ये थी कुछ खास बातें चेतन चौहान के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए एक और गीत आपके लिए अभी सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं शंकर सिंह वाघेला। जी हाँ, भारत के राजनीतिक हैं जो गुजरात के भूतपूर्व 12वें मुख्यमंत्री रहे। तो आइए, ये दूसरे मुख्यमंत्री की बातें हम लोग कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे वो 23 अक्टूबर 1996 से 27 अक्टूबर 1997 तक। गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद यदि कोई दूसरा लोकप्रिय नेता है तो वह शंकर सिंह वाघेला है। बापू के नाम से मशहूर शंकर सिंह वाघेला गुजरात में बड़े नेता रहे। और शंकर सिंह वाघेला का जन्म आज ही के दिन 21 जुलाई 1940 में गांधीनगर जिले के वासना के एक राजपूत परिवार में हुआ था। गुजरात विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की और शंकर सिंह वाघेला ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनसंघ से की थी और बाद में वे जनता पार्टी चले गए थे। जनता पार्टी के विभाजन के बाद वाघेला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बने और 1996 से वे भाजपा से अलग हो गए और फिर राष्ट्रीय जनता पार्टी की स्थापना की और इस तरह से वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी बन रह चुके 1996 से 97 तक। बाद में उनकी पार्टी का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। फिर 21 जुलाई 2017 को उन्होंने फिर से कांग्रेस छोड़ दिया और विपक्ष के नेता के पद में इस्तीफा दे दिया और फिर बापू नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकर सिंह वाघेला ने कुल 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 3 बार संसद बने थे। वो साल 1977 में पहली बार संसद बने और 84 से लेकर 94 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और 2004 से 9 के बीच यूपीए की पहली सरकार में वो मंत्रिमंडल में मंत्री बने। वाघेले को गुजरात में लोग बापू भी कहते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें शंकर सिंह वाघेला के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधवन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और गांधीनगर गुजरात से शंकर सिंह बिलोंग करते हैं। इनकी पत्नी गुलाबो है और इनके 3 संतान 3 पुत्र है। तो चलिए, इसके साथ ही मैं आपको जोड़ना चाहूँगा एक और खूबसूरत गीत के साथ। आप सुनाए हैं रेडियो माधवन 107.8 एफएम पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं आनंद बख्शी साहब के मेहमान में बात करेंगे। और आनंद बख्शी साहब की बात अगर करें तो एक लोकप्रिय भारतीय कवि और गीतकार है। आनंद बख्शी को उनके रिश्तेदार प्यार से नंद या नंदू कहकर पुकारते थे। बख्शी उनके परिवार का उपनाम था, जबकि उनके परिवारजनों ने उनका नाम आनंद प्रकाश रखा था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद आनंद बख्शी के नाम से इनकी पहचान बनी। तो वही इनके बारे में कुछ खास बातें आपसे शेयर करूँगा। निश्चित तौर पर आप जब उनकी बातें सुनेंगे और ख़ास करके उनके जीवन कहानी से जुड़ी हुई कुछ बातें, उनके लिखे कुछ गीत और कुछ बातें, फिल्मी गीत जो उनके हैं, बहुत बड़े खूबसूरत गीत हैं। आपको अगर मैं सुनाऊं तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उनके बारे में पूरी कहानी को सुना पाऊं।
1: सॉन्ग नंबर वन, टेक वन, रेडी, वन टू थ्री फोर।
2: ये दास्तां है भारतीय सिनेमा के महानतम गीतकारों में से एक की, जिन्हें हम आनंद बख्शी के नाम से जानते हैं।

उनका जन्म हुआ 21 जुलाई सन 1930 में, जगह रावलपिंडी, जो कि भारत के विभाजन के बाद अब पाकिस्तान में है। ऐसा बताया जाता है कि इनका परिवार दरअसल कुरी इलाके से ताल्लुक रखता है, हालांकि जड़ें कश्मीर में पाई जाती हैं। बख्शी साहब ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तब से ही इन्हें शायरी का शौक लग गया। ये अक्सर कविताएं लिखा करते थे। इस बात पर भी गौर करना होगा कि इन्होंने रॉयल इंडियन नेवी ज्वाइन करी थी, इनकी उम्र मात्र 14 बरस थी, और एक नेवी विद्रोह के दौरान नौजवान आनंद बख्शी को पकड़ लिया गया था। पर चूंकि इनकी उम्र बहुत कम थी तो इन्हें सजा न हुई, पर इन्हें रॉयल इंडियन नेवी से निकाल दिया गया। इन्होंने आगे जाकर आर्मी ज्वाइन की बतौर सिग्नल मैन। वहां पर ये अपने फौजी दोस्तों को गाने गा के, जिनका नाम सुमित्रा रहा, वो बहुत जल्द गुजर गई थी। तब बख्शी साहब तकरीबन 5 बरस के रहे होंगे, और जब भारत का विभाजन हुआ तो इनका परिवार किसी तरह से अपनी जान बचाकर रावलपिंडी से हिंदुस्तान की सरहद में आ गया। इनके बड़ों ने इनसे पूछा कि आनंद,

तेरी जान बची, बहुत अच्छी बात है, पर तू ये पोटली क्या लेकर आया है, इसमें तस्वीरें क्या हैं? तब आनंद बख्शी साहब ने जवाब दिया कि मेरी माँ तो बचपन में गुजर गई थी, पैसा तो मैं फिर कमा लूंगा, लेकिन माँ की तस्वीरें दोबारा कहाँ से लाता, इसलिए मैंने माँ की तस्वीरें बटोर ली और उन्हें अपने साथ ले आया। इसे सुनकर इनके परिवार के बड़े जन गदगद हो गए।

तकरीबन 2 से 2.5 बरस इन्होंने आर्मी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स के लिए काम किया। उसके बाद 50 की दहाई में इन्होंने आर्मी की नौकरी छोड़ी और मुंबई की तरफ रुख किया। ये बात भी गौर करने लायक है कि जब ये मुंबई शहर में संघर्ष कर रहे थे तब इनके पास ट्रेन का टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं थे और तब इनकी मुलाकात हुई एक रेलवे कर्मचारी से जिनका नाम रहा छतरमल। उन्होंने नौजवान आनंद बख्शी से पूछा, हालत बहुत खस्ता है, क्या करना चाहते हो? तो आनंद बख्शी साहब ने बड़ी सहमी से आवाज में कहा कि मैं दरअसल एक कवि हूँ, मैं गीतकार बनना चाहता हूँ, गायक बनना चाहता हूँ। और आनंद बख्शी साहब ने अपनी कुछ कविताएं छतरमल साहब को सुनाई। वो सुनने के बाद छतरमल साहब इन्हें अपने घर ले गए। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे हुनर पे पूरा यकीन है, बहुत जल्द तुम कामयाब होंगे।

इस बीच इनकी मुलाकात हुई भगवान दादा से, जो उस दौर में फिल्म भला आदमी बना रहे थे। भगवान दादा ने इन्हें चुनौती दी और कहा, तुम झटपट कुछ गाने लिख दो तो बात बन जाएगी, क्योंकि जिस गीतकार से भगवान दादा ने बात कर रखी थी वो समय पर ना पहुंच सका था। आनंद बख्शी साहब ने चंद गाने लिखे। भगवान दादा को इनके गाने बहुत पसंद आए और धीरे धीरे बख्शी साहब का नाम होने लगा।

0: इस बात पर भी गौर करना होगा कि अपने जमाने के मशहूर और मारूफ गीतकार शैलेंद्र और साहिल लुधियानवी ने भी आनंद बख्शी साहब को बहुत प्रोत्साहन दिया। 50 की दहाई में आनंद बख्शी खासा संघर्ष करते रहे और उसके बाद इन्हें बड़ी फिल्में मिलने लगी। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म जब जब फूल खिले को कौन भूल सकता है, फिर तो मिलन, मशहूर मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंता की फिल्म आराधना का संगीत दिया था SD बर्मन साहब ने। तमाम गाने सुपरहिट साबित हुए थे और आनंद बख्शी साहब ने फिर कभी पलट के ना देखा।
1: नाच मेरी जान, फाथा।

इस बात पर भी गौर करना होगा, ये दरअसल एक गायक बनना चाहते थे और इन्होंने फिल्म मोम की गुड़िया में गाना भी गाया था, पर एक राय ये भी बन गई थी कि जिस फिल्म के लिए आनंद बख्शी गाना गाते हैं वो फिल्म चलती नहीं है। अक्सर इस बात को लेकर मजाक भी हुआ करते थे। बख्शी साहब ने और भी फिल्मों के लिए गाने गाए, जैसे कि फिल्म चरस।

आनंद बख्शी साहब ने उस दौर में अपना नाम बनाया जब एक से बढ़कर एक गीतकार जबरदस्त गाने लिख रहे थे, चाहे वो शैलेंद्र साहब रहे या फिर साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी रहे या फिर शकील बदायूनी और हसरत जयपुरी। इनके लिखे गाने रफी साहब ने गाए, किशोर दा ने गाए, लता जी ने गाए, आशा जी ने गाए, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी गाए।

जहां एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में इनका बोलबाला रहा और बदलते दौर के सिनेमा में भी इनके लिखे गाने बड़े मशहूर हुए। राज कपूर साहब जब फिल्म बॉबी बनाना चाहते थे तो उसके गाने भी आनंद बख्शी साहब ने ही लिखे। आनंद बख्शी साहब की एक और बड़ी जबरदस्त आदत थी, वो अक्सर गाने लिखते वक्त उनकी धुन भी बना दिया करते थे। और शक्ति सामंता साहब ने अपने कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया है, कुछ गानों के मुखड़े की धुन आनंद बख्शी साहब द्वारा बनाई गई, बाद में उसी धुन को रख भी लिया गया।

भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर फिल्मों के गाने आनंद बख्शी साहब द्वारा ही लिखे गए, चाहे वो बॉबी रही कि अमर प्रेम, जीने की राह रही कि मेरा गांव मेरा देश, या फिर गदर एक प्रेम कथा, मोहब्बतें, ताल और दुश्मन, शशि कपूर रहे कि ऋषि कपूर, राजेश खन्ना रहे कि शाहरुख खान, हर बड़े सुपरस्टार ने आनंद बख्शी साहब के लिखे गाने स्क्रीन पे गाए।

0: रुको।
1: इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह हुआ था कमला मोहन बख्शी से, इनकी बेटी सुमन दत्त और दूसरी बेटी कविता बाली। इनके दो बेटे हुए राजेश बख्शी और राकेश बख्शी। इनके नाती आदित्य दत्त एक फिल्म डायरेक्टर बने और आगे जाकर इनके बेटे राकेश आनंद बख्शी भी लेखक बने, हालांकि वो पहले बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे। 72 साल की उम्र में 30 मार्च सन 2002 में इनका इंतकाल हो गया मुंबई शहर में ही।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करूंगा कि आपको आनंद बख्शी साहब के गीतों को सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा। और हर एक गीत में कहीं ना कहीं एक नई कहानी झलकती है और एक संवेदना जो है उनके काव्य रूप में, गीतों के रूप में आप सभी के बीच में मिलता है। तो आशा करूँगा कि आप सभी को उनकी कविताओं को सुनकर बेहद खुशी हुई होगी और इसी तरह आप खुश रहें, ऐसे शुभ आशा के साथ। चलिए एक विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को। चलिए मित्रों, आज के इस सफ़र कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और दोस्तों है आज तारीख 21 जुलाई और आप लोगों के लिए है एक बहुत ही जरूरी सूचना। दोस्तों एक निमंत्रण है आप सभी के लिए, यानी कि समस्त आबू रोड के आसपास के सभी ग्रामीण निवासियों के लिए। प्राकृतिक चिकित्सा से हर बीमारी का इलाज संभव है। जी हाँ, ये कहना है विश्व विख्यात प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर रमेश टेवानी जी का। अब भोपाल के संत हिरदाराम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के उपाध्यक्ष हैं और केंद्र में ही वो अपनी सेवाएं देते हैं। जी हाँ, वो आने वाले हैं कल यानी कि 22 जुलाई को और स्थान होगा ग्रीन हॉल तपोवन। वहां पे आपको पहुंचना है सुबह 10 बजे से, कार्यक्रम रहेगा 12 बजे तक और आप वहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं। अपने परिजनों को भी इस विशेष क्लास में आप लेकर आ सकते हैं। जो रोग दवा से दूर नहीं होते वे प्राकृतिक तरीके से ठीक हो सकते हैं और ऐसी शख्सियत यहाँ पधार रही हैं, तो चलिए भाई हम भी इसका पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों फिर से बता दें, निःशुल्क निमंत्रण है कल यानी कि 22 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, स्थान होगा ग्रीन हॉल तपोवन आबू रोड। चलिए दोस्तों फिलहाल अगले गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, लौट कर आएंगे कार्यक्रम युवा मंच पर।

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पैसे भी आ जाए, मैं नहीं फंसू, और दूसरा जिससे जो विक्टिम है, विक्टिम आसानी से उसका शिकार हो जाए। कहने का मतलब मेरे को ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ा और विक्टिम जो है अपने आप फंसता चला जाए। तो इसी के लिए देखिए, मतलब ये ब्रॉड टॉपिक जिसको हम लोग सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत रीसेंट एग्जांपल मैं दूंगा, बिकॉज ये लगभग आप मान के चलिए 1 महीने पहले ही ये केस का डिटेक्शन हुआ है। तो एक डॉक्टर साहब यहीं पे धनबाद के थे, तो उनके साथ तकरीबन 1,15,000 का साइबर फ्रॉड हो गया। नाउ व्हेन वी ये एग्जैक्टली आपका मार्च 28 से 29 का घटना था, जब आपका ये था रामनवमी थी उसी दिन की, मतलब ये घटना हुआ। अब इशू इसमें ये हो गया कि अब देखिए, डॉक्टर साहब को अपना पीएनबी में केवाईसी अपडेट कराना था या कुछ कराना था, तो इन्होंने किया क्या कि भाई गूगल पे गए, गूगल पे पीएनबी कॉन्टैक्ट इन्फो करके इन्होंने वो डाला, गूगल सर्च किया अपना, तो जो एड लैंडिंग पेज था, तो लैंडिंग पेज पे एड आया कि भाई ये है कस्टमर केयर पीएनबी का, इन्होंने उस पे क्या कॉल किया, एंड देन एंटायर मतलब द इंसिडेंट स्टार्टेड। तो हुआ क्या कि व्हाट्सएप पे इसने कॉल किया कि सर मैं यहाँ पे कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपको हमारा जो ऑफिशियल ऐप है, ऑफिशियल ऐप पे आपको अपने डिटेल्स वगैरह सबमिट करने होंगे और उससे आपका जो केवाईसी अपडेट वाला चीज है वो हो जाएगा। इन्होंने वही किया, उस बंदे ने मतलब एपीके भेजा इनको व्हाट्सएप के माध्यम से, इन्होंने इंस्टॉल किया, और देखते ही देखते बिलीव मी और नॉट 3:50 की ये घटना थी। लगभग 3:30 के आसपास कॉल वॉल हुआ, 3:50 पे व्हाट्सएप ये लोग कनेक्ट किए, और विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स 4:10 तक द एंटायर ट्रांजेक्शन वॉज डन इन 2 और 3 स्टेजेस, राइट। 1 लाख

0: लाख रुपए लगभग ऐसे ही आपके वो निकल गए। तो अब देखिए फेक एड्स, फेक एप्स और ये जो एड्स वगैरह है ये क्यों बढ़ते आ रहा है, क्योंकि ये सीधा सीधा है, मतलब एनी अनसस्पेक्टिंग कस्टमर, एनी अनसस्पेक्टिंग विक्टिम जो है यहाँ पे, भाई हम लोग आसानी से जो भी काम हो जाए उसी के पीछे दौड़ते हैं या भागते हैं। यहाँ पे मान लीजिए घर बैठे बैठा है मेरे को कुछ काम कराना है, कोई एपीके मिल गया मेरे को, उसी के माध्यम से मैं काम कराऊंगा, तो मैं इसका शिकार हो जा रहा हूँ। और जो बंदा उस साइड बैठा हुआ है, जो फ्रॉडस्टर है, जो स्कैमस्टर है, उसके लिए तो आसान है कि भाई कुछ कराना ही नहीं है, यहाँ बैठे बैठा है, इसके पूरे फोन का एक्सेस मेरे पास मिल जा रहा है, जो भी ओटीपी वगैरह का है वो मेरे पास आ जा रहा है। तो मे बी दैट इज द रीजन वाई एपीकेज हैव इंक्रीज। और दूसरा चीज है कि देखिए जो एपीकेज होते हैं उनका एनालिसिस थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, और इट्स नॉट वेरी इजी, कहने का मतलब एक तो आप जो पैसे के फ्लो जहाँ पे हो रहा है, पैसे का फंड्स जहाँ पे मतलब ट्रांसफर हो रहा है, जिस भी बैंक अकाउंट वगैरह में, आप उसका एनालिसिस करेंगे, है ना। लेकिन एपीके डेवलपर कौन है, तो उसके लिए हम लोग को एक दो और लेयर में अंदर घुसना पड़ता है। तो इवन फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज केसेस आर अ बिट डिफिकल्ट टू ट्रैक।
1: सर, फिर साइबर क्रिमिनल सोशल मीडिया पर दिखने वाले एड्स को जेन्युइन कैसे बना देते हैं कि लोग उन पर आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं?
0: देखिए इसके तो बहुत सारे टेक्निक्स वगैरह है ना। अब मोटा मोटी फिर जो मैं पहले प्रश्न पे जो आया था कि यू नो इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ दैट सोशल इंजीनियरिंग का पूरा जो टूल किट हम बोलेंगे। देखिए सबसे पहले मतलब द अदर पर्सन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो मेरे सामने बैठा हुआ है या जिससे मैं चैट कर रहा हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसको मेरा ट्रस्ट जीतना है, ठीक है। तो ट्रस्ट कैसे, अब मान लीजिए जब भी मैं क्या होता है, इफ इफ आई एम अ विक्टिम, इफ आई एम अ कंज्यूमर, इफ आई एम अ कस्टमर, मेरे को कोई ना कोई चीज की दरकार होगी, आई विल बी इन द नीड ऑफ समथिंग, राइट। इन द सेंस जैसे मान लीजिए क्या होता है, अगर किसी के साथ चेन स्नैचिंग हो जाता है तो वो पुलिस के पास आता है। अब किसी को मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे कोई क्या होता है उसका वो हुआ, लेट्स से इफ इफ दैट पर्सन्स ये गॉट मिसप्लेस्ड, द कुरियर गॉट मिसप्लेस्ड फॉर एग्जांपल, या फिर मान लीजिए कोई आरटीओ चालान वगैरह मतलब आया, ठीक है। तो अब मान लीजिए मेरा नीड है, पहला मेरा नीड हुआ, नीड क्या है भाई, कि समथिंग हैज हैपेंड विद मी, एक या तो चलिए डिलीवरी में इशू हुआ, या दूसरा एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि भाई गाड़ी में ओवर स्पीडिंग कर रहा था, या गाड़ी का नंबर प्लेट या जो भी है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह दे आर नॉट अप टू द मार्क, दे आर नॉट अप टू डेट वगैरह, मेरे को वही अपडेट करना है, तो मैं उसका करूंगा, अगेन आई एम इन नीड, है ना। पहले मैं डिलीवरी में, दूसरे में इंफॉर्मेशन वगैरह से रिलेटेड, है ना, कि मेरे विरुद्ध कोई चलान वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तीसरा जैसे मैंने ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया कि भाई कोई भी ये ऐप वगैरह जो है जिसपे फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग एप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये जो नीड है मेरा इसी को ये लोग वो कर रहे हैं। और देखिए इन लोग के लिए इतना आसान ये हो गया है कि इसके लिए तो कोई ट्रेनिंग चाहिए नहीं। मान लीजिए कभी भी बैंक वगैरह जाती हैं, खुद भी आप अगर बैंक मतलब जब भी जाती होंगी, तो वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट रहती हैं या फिर रिसेप्शनिस्ट रहता है, जो भी वहां पे प्योन वगैरह रहता है, प्योन वगैरह मतलब बहुत ज्यादा तो ये नहीं होता है कि दे आर एक्सट्रीमली मतलब दे हैव स्टडीड रॉकेट साइंस वगैरह, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। वो सिंपल मेरे और आपके जैसे लोग हैं कि भाई वो सीधा प्यार से दो शब्द बात करेंगे और उसी में हम लोग मतलब समझ जाएंगे कि ठीक है। और दूसरा चीज है देखिए ट्रस्ट जीतना, तो ट्रस्ट कैसे जीत रहे हैं, एक गूगल के थ्रू। अब गूगल पे हर एक लिंक सही है कि नहीं वो तो मेरे को नहीं पता है ना, वो ऑब्वियसली बात है, जो नॉर्मल जो विक्टिम है, जो नॉर्मल कस्टमर है, उसको भी नहीं पता होगा। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे, आप अगर गूगल गूगल के थ्रू आपको मेरा नंबर मिला है, तो आप यही यकीन करेंगे कि भाई ये तो नंबर सही होगा, ये कभी किसी के जहन में आएगा ही नहीं कि भाई ये नंबर फर्जी हो सकता है। तो सीधा सीधा मतलब ये जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है थ्रू गूगल, या फिर आप जैसे बात कर रही हैं कि क्या थ्रू फेसबुक एड्स वगैरह, तो वी हैव सीन सर्टेन केसेस वगैरह जहाँ पे मान लीजिए किसी सर्टेन आइटम की डिलीवरी, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अनदर केस, यहाँ पे हुआ क्या कि ये बंदा जो था ये फर्नीचर वगैरह का काम करता था, फेसबुक वगैरह में इसने एक होलसेलर का ऐड देखा कि, और ये जो होलसेलर था आपका शायद जहां तक मेरे को याद है फर्नीचर वगैरह का काम था, इसने होलसेलर का ऐड देखा, इसने भाई उसको मतलब वो किया कि भाई मेरे को इस आइटम की जरूरत है और इतने क्वांटिटीज वगैरह, उसने बोला हाँ भाई ठीक हो जाएगा, और भाई वो बकायदा मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको दिखाया कि ये देखो ये मेरा गोडाउन रहा, ये मेरा शोरूम रहा, और यहाँ पे ये पीसेस पड़े हुए हैं। उससे आपका ट्रस्ट भी सीधा सीधा बिल्ड हो गया है ना, एक तो पहले मतलब फेसबुक या जिस भी माध्यम से आपका नंबर मेरे को है, दूसरा आप मतलब वीडियो के माध्यम से वो भी दिखा रही हैं कि भाई देखो मतलब है, कोई फ्रॉड वॉड नहीं हो, मेरे पास हर एक चीज सामान पड़ा हुआ है। और जैसे ही ट्रस्ट एस्टेब्लिश हुआ मतलब इमीडिएटली द साइबर फ्रॉड बिगिंस टू हैपन राइट देन एंड राइट देयर।
1: आई थिंक लोग इतने डिपेंडेंट है दैट इमीडिएटली जो अगर सर्च इंजन पे डिपेंडेंट है तो वो ट्रस्ट भी करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को. व्हेनेवर दे सर्चिंग फॉर समथिंग दे वो ट्रस्ट कि जो दिख रहा है वो सही है, जैसे आपने बोला,
0: बिल्कुल
1: तो इमीडिएट उनका वेरिफिकेशन के टुवर्ड्स तो जाता ही नहीं है थॉट प्रोसेस. उनको लगता है जो इन्फॉर्मेशन को दिख रही है वो सही ही होगी.
0: इसमें मैं एक और मतलब चलिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही ऐड करूंगा। तो दिस वाज बिफोर व्हेन आई जॉइंड आईटीएस, है ना। तो मैं 2021 में ज्वाइन किया हूँ, तो 2020 मतलब कोविड के जस्ट बाद की बात ही है। तो मैं उस समय बाहर रह रहा था, आई वॉज इन एट माई हाउस, और मेरे घर पे कुछ सामान होना चाहिए था। तो मैंने वही सर्च किया कि भाई क्या था, घर पे डिलीवरी करानी थी सामान की मेरे, मतलब तो ग्रोसरी वगैरह ही था, नॉर्मल ग्रोसरी वगैरह था। मैंने सर्च किया अपनी होम टाउन की, क्या होता है ये, उस समय ब्लिंकिट वगैरह का जमाना नहीं था, नाउ दैट वी हैव ब्लिंकिट एंड अदर सर्विसेज वगैरह। 2020 वगैरह का था तो उस समय ब्लिंकिट वगैरह नहीं था। मैंने सर्च किया कि भाई मतलब देयर इज समवन, कोई डिलीवरी वगैरह, और आप मानिए चाहे नहीं मानिए, द वेरी फर्स्ट मतलब जो गूगल पे आता है, द वेरी फर्स्ट जो लिंक वगैरह था, एक बिजनेस का नाम था, बकायदे से उसने एड्रेस दिया हुआ था कि सेक्टर 1, सेक्टर 1 में मतलब नियर दिस दिस दिस पर्टिकुलर प्लेस, और उसका वो नंबर था। अब भाई ना कोई पर्टिकुलर जा रहा है वहां पे, है ना, मतलब कि ये पर्टिकुलर जगह है ना, एंड दैट प्लेस एग्जिस्ट, है ना, ऐसा तो नहीं कि भाई कोई फर्जी हवा में नाम था, वो जगह थी वहां पे। मैंने कॉल किया और भाई मतलब ठीक है, मैं खुद भी इसका शिकार हो चुका हूँ, मतलब वो 4,500, ज्यादा अमाउंट नहीं था लेकिन 4,500-5,000 रुपए का उस समय हुआ था। तो दैट इज द टाइम मैंने बिकेम अवेयर कि अरे यार मतलब नॉट एवरी नंबर विच यू सी हैज टू बी ट्रस्टेड। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, मैं पुलिस वगैरह में गया, तो फिर पता चला कि जो बंदा था मतलब ही वॉज नोवेयर रिलेटेड टू माई होम टाउन, आसपास भी नहीं था, उसको पता भी नहीं था उस बंदे को। वो बंदा बैठा था आपका वहां पे अलवर वगैरह के पास कोई जगह था, भरतपुर अलवर के बीच में, दैट प्लेस वाज देयर, है ना। तो बताइए मतलब यू नो स्पाइट ऑफ थिएटर,
1: तो फेक मोबाइल एप्स लोगों के फोन्स और बैंक अकाउंट्स के लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं?
0: देखिए बिलीव मी व्हेन आई से दिस, मतलब ये जो यू नो वी कैन नॉट रियली क्वांटिफाई दिस कितने डेंजरस हो सकते हैं। बिलीव मी व्हेन आई से कि क्या था, कोई भी एपीके व्हिच यू आर रिसीविंग आइदर थ्रू गूगल या फिर थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू टेलीग्राम, इट शुड नेवर बी इंस्टॉल्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस व्हाट्सएवर। मैं आपको थोड़ा सा मतलब आई गो थ्रू द हिस्ट्री एज वेल हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो देखिए जो एपीके से जो फ्रॉड वगैरह था ये 2022-23 के आसपास से चालू हुआ। तो शुरू में फर्स्ट वेव जब आया, फर्स्ट वेव मतलब जब ये फ्रॉड होना चालू हुआ था, तो जो एपीके होते थे वो बहुत बेसिक होते थे। बेसिक मतलब क्या कि आपको भाई मतलब व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से ये एपीके आया है, आपने इंस्टॉल किया और वो करेगा क्या, आपका मात्र दो परमिशन लेगा, रीड एंड राइट एसएमएस और दूसरा फोन का बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह। इसमें होता क्या है कि आपके फोन पे जो भी एसएमएस वगैरह गिर रहे हैं, दे गेट फॉरवर्डेड टू कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, जिसको हम सी2 सर्वर बोलता है। वहां से जैसे ही ये एसएमएस वगैरह जो है वो द अटैकर द हैकर कैन सी इट लाइव ऑन स्क्रीन ऑन इस पैनल, ठीक है, उसके थ्रू आपके यूपीआई क्या होता है वो बाईपास कर लेगा पहला। दूसरा आपका जो भी क्या होता है ये बैंक एप्स है, फॉर एग्जाम्पल SBI हो गया या फिर दूसरे मतलब बैंकिंग एप्स हो गए, उनका भी पासवर्ड वगैरह रीसेट कर लेगा, एंड दैट इज वेयर द गेम बिगिंस, राइट। यूपीआई बाइंडिंग जो है और जो बैंकिंग एप्स का बाईपास जो है वो आसानी से लोग कर ले रहे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, मतलब तो एक एक पिछले साल एक और यू नो अ स्लू ऑफ फ्रॉड्स हैड स्टार्टेड टू अकर इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। अब मैं धनबाद में हूँ, तो धनबाद इफ यू लुक ऑन द मैप, इट्स जस्ट नेक्स्ट टू जामताड़ा, हम लोग का जो बॉर्डरिंग मतलब वो है डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज जामताड़ा, जामताड़ा के देवघर और इस साइड गिरिडीह आता है।
1: जी
0: ये पूरा एक जैसे आप जो साइबर फ्रॉड ट्रायंगल बोलते हैं, तो देयर टू ट्रायंगल्स, एक आपका अलवर भरतपुर वाला एरिया हो गया और दूसरा मतलब आपका ये वाला एरिया है। तो ये जो भी एपीकेस वगैरह रहते हैं, मतलब पिछले साल हुआ क्या कि मान लीजिए आपका कोई भी फोन है ना, आप जो भी फोन इस्तेमाल कर रही हैं वो मान लीजिए इफ इफ यू गॉन टू अ लोकल हाट, कोई भी आप बाजार वगैरह गई हुई है, वहां पे आप अपना फोन लेके गई, कोई आपका फोन चोरी कर लिया, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है कि भाई आपका फोन चोरी हुआ है तो इसका आपका बैंकिंग एप्स वगैरह सेफ है, बिकॉज ऑब्वियसली योर फोन इज प्रोटेक्टेड बाय वी आई योर पासवर्ड, कहने का आपका या तो फिंगरप्रिंट होगा या फेस आईडी होगा, जो भी हो, है ना। अब हो क्या रहा था पिछले साल कि ये फोन वगैरह चोरी हो रहे थे और विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स हम लोग के पास आ रहा है कि भाई मेरे बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए मतलब निकाल लिए गए, 3 लाख रुपए निकाल लिए गए, एंड वी वर परप्लेक्स्ड कि भाई ये कैसे संभव है, तो संभव ही नहीं है। बिकॉज इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू योर फोन या इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू योर बैंकिंग एप्स, बैंकिंग अकाउंट, यूपीआई वगैरह, आई नीड टू गेट इन टू योर फोन। पहला तो मैं भाई आपके फोन के अंदर जाऊंगा तभी ना मैं आपको मतलब यूज करूंगा। नाउ बिलीव मी और नॉट, यू नो व्हेन वी स्टार्टेड डिगिंग इनटू इट, मतलब द थिंग इज एक्सट्रीमली सिंपल। आपका मोबाइल मैंने चोरी किया, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपका जो सिम है सिम को निकालूंगा, एक दूसरा फर्जी फोन मेरे पास रहेगा मैं डालूंगा, एंड देर आर टेक्निक्स थ्रू विच आई कैन यू नो रीसेट योर पासवर्ड ऑफ यूपीआई, एज सिंपल एज दैट। व्हेन दिस केम इनटू लाइट वी ब्रॉट इट इन फ्रंट ऑफ 54C एंड द अदर NPCI वगैरह, तो देर आर सर्टेन सेफगार्ड्स व्हिच हैव नाउ कम इनटू प्लेस। बट बिलीव मी इवन नाउ इस टाइप के मतलब फ्रॉड हो रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द सेफगार्ड्स व्हिच हैव बीन पुट इन प्लेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं जानबूझ के उन मतलब टेक्निक को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई और भी देख रहा होगा तो वो लोग भी समझ जाएगा कि यार मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो यस
1: सो लॉन्ग सर, आईड लाइक टू ऐड, अगर कोई स्कैम
2: यस
1: शिकार होते होते बच जाता है, फॉर इंस्टेंस एपीके फाइल जैसी स्कैम से, सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोटिफाई द पुलिस इमीडिएटली. सो वी रिक्वेस्ट द व्यूअर्स कि अगर कभी भी उनको लगता है कि कोई स्कैम कॉल आया बट दे वर अवेयर, दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू गो ऑन द एनसीआरपी विच इज cybercrime.gov.in, एंड वहाँ पे एक रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट का सेक्शन में दे कैन फाइल फॉर दैट कंप्लेंट. लेकिन फाइल द एपीके फाइल का नंबर बता सकते हैं जो स्कैम का नंबर है, सो दैट एटलीस्ट अदर पीपल डोंट गेट स्कैम्ड इफ दे ऑल्सो गॉट सेव्ड.
0: राइट। और दूसरी चीज जो है कि क्या होता है, एपीके वाले फाइल में इफ इफ लेट्स से समवन हैज बीन स्कैम्ड, अगर कोई भी एपीके फाइल इंस्टॉल किया है अपने फोन में, तो इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल उसका जो वो है आपका, मतलब यू पुट इट इन एयरप्लेन मोड एंड रश टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वगैरह, क्योंकि वंस पुट दैट मतलब बेसिकली द एंटायर जो स्कैम है वो डिपेंड कर रहा है कि भाई आपके जो एसएमएस दे रहे हैं आपके फोन पे ट्रांसमिटेड टू सर्टेन डिफरेंट प्लेस वगैरह, है ना, टू अ कमांड एंड कंट्रोल सर्वर। तो आप एज सून एज यू पुट योर फोन इन फ्लाइट मोड वगैरह, आपका जो एसएमएस है वो गिरना बंद हो जाएगा, तो यू कैन बी सेफ, और इन दैट टाइम मे बी यू कैन रश टू अ पुलिस स्टेशन, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चले जाइए और वहाँ उस पुलिस स्टेशन वगैरह में आपके क्या होते हैं एपीके फाइल को रिमूव करने की वो होगी, मतलब जितनी प्रक्रिया होती है वो की जाएगी।
1: सर अक्सर अक्सर फ्रॉडस्टर्स ट्रस्टेड कंपनीज, बैंक्स या गवर्नमेंट स्कीम्स का नाम का मिस यूज करते हैं. सिटीजन
0: बिल्कुल।
1: फेक प्रमोशंस वो कैसे पहचान सकते हैं?
0: देखिए, इसको पहचानने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह हो गया, या फिर कोई भी आपका क्या होता है जो कंपनी वगैरह होगी, जैसे एसबीआई हो गई, या फिर कोई भी मतलब आई विल नॉट टेक नेम्स ओवर हियर, वो आपको कोई भी एपीके वगैरह जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कोई इस टाइप के माध्यम से कभी नहीं भेजेंगे, ठीक है। दे विल ऑलवेज मतलब आइदर उनका जो वेबसाइट होगा वेबसाइट पे वो लोग होस्ट करेंगे, या फिर उनका जो एपीके वगैरह होगा मतलब जो भी उनका ऐप होगा वो प्ले स्टोर पे होगा या फिर ऐप स्टोर पे होगा, अगर एप्पल के केस में कोई भी अपना एपी मतलब जो ऑफिशियल ऐप है वो कभी भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू नहीं भेजेगा सबसे पहला, नो मैटर वॉट एवर इंस्टीट्यूशन इट इज, क्योंकि आप अगर आप प्ले स्टोर पे अपने ऐप को वो कर रहे हैं होस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप अपना मतलब यहाँ पे कर रहे हैं ऐप स्टोर पे कर रहे हैं, तो होता ही है कि देर आर एन नंबर ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस वगैरह कि भाई ये मेलवेयर तो नहीं है, इसमें कहीं बैकडोर तो नहीं है, है ना, तो गूगल और एप्पल दोनों चेक करते हैं। जबकि यही जो भी फ्रॉडस्टर वगैरह होता है, जैसे मेरे को मान लीजिए आप ही को टारगेट करना है, तो मैं करूंगा क्या, मतलब फर्स्ट सबसे पहला वो जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है, आई विल एस्टैब्लिश अ ट्रस्ट रिलेशनशिप विद यू, यू स्टार्ट ट्रस्टिंग मी, उसके बाद आई गेट दैट एपीके इंस्टॉल्ड ऑन योर फोन। और इसी में मैं एक और चीज ऐड करूंगा, तो देखिए जब पहला जो ये वेव था देन द एपीकेज वर वेरी सिंपल इन नेचर कि बस ये भाई एसएमएस वगैरह को फॉरवर्ड करते थे, ऑफ लेट एंड मोर वरिंगली दिक्कत ये आ गई है कि जो एपीकेज अब हम लोग देख रहे हैं व्हिच आर आउट देयर इन द वाइल्ड, या फिर जो अब हम लोग मतलब यू नो व्हिच वी आर डीलिंग विद ऑन अ डेली बेसिस नाउ, यू नो दे आर एटलीस्ट वन और टू स्टेप्स अहेड ऑफ व्हाट मतलब एक एक एक एक बोला जाता है ना कि भाई मतलब ठीक है इस चीज को ये प्रॉब्लम है तो इसको मैं टैकल कर सकता हूँ, बट ये प्रॉब्लम है और इसको देख के आपका खुद हालत खराब हो रहा है कि अरे यार ये लोग मतलब किस लेवल पे चल रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगी बीटी मॉब करके, बीटी मॉब रैट रिमोट एक्सेस ट्रोजन कैंपेन है विच फर्स्ट इमर्ज समवेयर अराउंड अर्ली लास्ट ईयर 2025 के शुरुआत में ये इमर्ज हुआ था, कहाँ, साउथ लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका और पोर्टुगल मतलब वो सदर्न यूरोप वाले एरिया में, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ऐप था रैट मतलब रिमोट एक्सेस ट्रोजन हम लोग बोलते हैं, तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था टू एक्सफिल्ट्रेट पासवर्ड्स एंड यूजर आईडीज फॉर बैंकिंग एप्स वगैरह, ठीक है। इंटरेस्टिंगली इस साल की शुरुआत से ये सेम मैलवेयर ग्रुप, मतलब देखिए तो मैलवेयर को आप आइडेंटिफाई करने का भी अलग अलग तरीका होता है, उनके सिग्नेचर्स होते हैं, एंड्रॉइड सिग्नेचर्स होते हैं, या फिर मान लीजिए आप अगर उनका सोर्स कोड अगर आप देख सकती हैं तो यू विल गेट टू नो कि किस तरह के पैकेजेस वगैरह है उसमें। दिस सेम मैलवेयर इज बीइंग यूज्ड बाय आर गाइज एज वेल, आर गाइज मतलब यहाँ पे एक दो बहुत बड़े केसेस हुए हैं, है ना, जिसमें जो फ्रॉड की अमाउंट है दैट हैज गॉन इनटू नियरली 100 CR, राइट, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु बीन डिफ्रॉडेड आर इन थाउजेंड्स। ये लोग इस ऐप को क्या होता है वो कर रहे हैं। अब यही चीज जब मैं पहली बार देखा तो हम लोग को भी अब देखिए वी आर सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो महीना डेढ़ लगता है इसको पूरा क्रैक करने में कि हो क्या रहा है। नाउ व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द सिग्नेचर्स आपका खुद एकदम हालत खराब हो जा रहा है कि भाई क्या चल रहा है ये, है ना, तो ऑल ऑफ दिस इज देयर। या
1: सब कौन से वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग्स हैं जो किसी फेक ऐप, फेक वेबसाइट या सस्पिशियस एडवर्टाइजमेंट की तरफ इंडिकेट करते हैं?
0: देखिए, सबसे पहला कोई भी फर्जी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि उसका आप मतलब व्हेन यू गो टू द यूआरएल, उसके सबसे पहले वाले जो हेडर रहता है यूआरएल का, उसमें एचटीटीपी या एचटीटीपीएस को देख लिया जाए, वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं। ठीक, मान लीजिए एचटीटीपी है, मतलब नॉर्मल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो भी हम लोग बोलते हैं, इट्स नॉट सिक्योर। कहने का मतलब द कम्युनिकेशन आर नॉट इनक्रिप्टेड, मतलब वो नहीं हो रहा है, मतलब उनको सिक्योर नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा पहला वार्निंग फ्लैग है कि भाई जो भी क्या होता है यूआरएल वगैरह है वो आपका फर्जी हो सकता है, क्योंकि ये एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए मैं आपको एक खुद ही दिखाता हूँ। अब मेरे को टारगेट नहीं किया जा रहा है,
2: तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी अनाउंस किया था, एक बार फिर से ज़रूरी आवश्यक सूचना आप सुन भी सुन लें कल के लिए, यानी कि 22 जुलाई 2026 को आप सभी को निशुल्क निमंत्रण है समस्त आवूरोड के आसपास के ग्रामीण निवासियों के लिए। प्राकृतिक चिकित्सा से हर बीमारी का इलाज संभव है, ये कहना है विश्वविख्यात प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर रमेश तिवानी जी का। भोपाल के संत हिरदाराम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के उपाध्यक्ष हैं और वहीं पे आप सेवाएं देते हैं। वे कहते हैं कि जो रोग दवा से दूर नहीं होते, वो प्राकृतिक तरीके अपनाने से जल्द ठीक हो जाते हैं। तो आप, ये विशेष क्लास होने वाली है उनकी 22 जुलाई को, कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, स्थान रहेगा ग्रीन हॉल तपोवन। जी हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसका ग्रीन हॉल तपोवन, तपोवन जरूर पहुंचे कल सुबह 10 बजे। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर है 7014354443। नंबर मैं फिर से दोहरा देती हूँ, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7014354443। और फिलहाल लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी युवा मंच के अगले एपिसोड में। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ये सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ये भारत है और भारत का युवा जागरूक है। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ खूबसूरत शाम गुनगुनाते जरूर आ चुके हैं और आप दोस्तों के बीच लेकर आऊंगी कुछ कहानियां, प्यारी कविता, साथ ही साथ पूछा जाएगा आप दोस्तों से सवाल भी। हमारे साथ जरूर जुड़े रहना, सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।
1: उसका सपना था कि वह अपने परिवार की गरीबी खत्म करे और अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन दे। उसने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया लेकिन हर जगह उसे असफलता मिली। उसने एक छोटा व्यापार शुरू किया पर कुछ ही महीनों में वह भी बंद हो गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। रिश्तेदार कहते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सफलता उसके लिए बनी ही नहीं है। एक दिन वह निराश होकर शहर के बाहर बने एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आए। उन्होंने अर्जुन की उदासी देखी और उससे उसकी परेशानी पूछी। अर्जुन ने अपनी सारी असफलताओं की कहानी उन्हें बता दी। वृद्ध कुछ देर मुस्कुराते रहे, फिर अपनी जेब से 100 चाबियों का एक भारी गुच्छा निकालकर अर्जुन के हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा, इस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत पुराना दरवाजा है। इन 100 चाबियों में से केवल एक चाबी उस दरवाजे को खोलेगी। अगर तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है तो पहले इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करके देखो। अगली सुबह अर्जुन उस पहाड़ी पर पहुंचा। उसने पहली चाबी ताले में लगाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने दूसरी चाबी लगाई, फिर तीसरी, चौथी, पांचवीं, लेकिन हर बार वही नतीजा मिला। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और अर्जुन लगातार कोशिश करता रहा। 20 चाबियां खत्म हो गईं, फिर 40, फिर 50। उसके मन में शक पैदा होने लगा कि शायद उस वृद्ध ने उसके साथ मजाक किया है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और एक एक करके चाबियां आजमाता रहा। जब 90 चाबियां भी बेकार साबित हो गईं तो उसका धैर्य जवाब देने लगा। उसके हाथ थक चुके थे और मन पूरी तरह टूट चुका था। उसने 99वीं चाबी भी लगाई लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। गुस्से और निराशा में उसने पूरा चाबियों का गुच्छा जमीन पर फेंक दिया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। तभी उसे वृद्ध की एक बात याद आई, जिंदगी में हारने वाले लोग आखिरी चाबी कभी नहीं आजमाते। अर्जुन कुछ पल के लिए रुक गया। उसने गहरी सांस ली, वापस लौटा, जमीन से आखिरी चाबी उठाई और धीरे से ताले में लगाई। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, टक की आवाज आई और वर्षों से बंद पड़ा वह दरवाजा खुल गया। अर्जुन की आंखों में खुशी चमक उठी। उसे लगा कि अब उसके सामने कोई बड़ा खजाना होगा। लेकिन दरवाजे के पीछे न सोना था, न हीरे, न कोई धन दौलत। वहां सिर्फ एक लकड़ी का बोर्ड रखा था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जिंदगी में ज्यादातर लोग सफलता से सिर्फ एक कोशिश पहले हार मान लेते हैं। उस एक वाक्य ने अर्जुन की पूरी सोच बदल दी। उसे समझ आ गया कि असली खजाना दरवाजे के पीछे नहीं बल्कि उसके अंदर पैदा हुआ नया विश्वास था। उस दिन के बाद उसने कभी असफलताओं से डरना बंद कर दिया। उसने फिर से मेहनत शुरू की, अपनी गलतियों से सीखा और हर असफलता को सफलता तक पहुंचने वाली एक नई चाबी मान लिया। कई साल बाद वही अर्जुन एक सफल उद्यमी बन गया। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज्य पूछते तो वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं था, मैं बस आखिरी चाबी लगाने से पहले रुका नहीं। दोस्तों, हो सकता है कि आपकी सफलता भी सिर्फ एक कोशिश दूर हो, लेकिन अगर आपने आज हार मान ली तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपकी आखिरी चाबी कौन सी थी। याद रखिए, हार तब नहीं होती जब आप असफल होते हैं, हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।

0: क्या होता है?
1: अरे टिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: प्यारे से गीत के बाद मैं मोना वापस आ गई और आज के सवाल को आप दोस्तों के बीच रखने के लिए तैयार होकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल है, एक ऐसी प्रकार क्या जॉब या अपनी सेवा जिसमें जिसका संबंध सीधे कह सकते हैं मेरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, मेरी अपनी सेवाओं से जुड़ा हुआ है। ऑप्टिशियंस आम तौर पर अपनी दुकानों में किस प्रकार के उत्पाद बेचते हैं, किस प्रकार की चीज़ें बेचते हैं? ऑप्टिशियंस आमतौर पर अपनी दुकानों में किस प्रकार की चीज़ों को बेचते हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए जूतों को, बी लैपटॉप को, सी चश्मा। सही जवाब सिर्फ एक है, देना आप 9414151415 पर। तो चलिए अगले गीत की तरफ लेकर चलते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे उड़ान और मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की कविता आप तक पहुंचाते हैं। नाक कान में मैं टिकता हूँ, नाक कान में मैं टिकता हूँ, कांच प्लास्टिक में बिकता हूँ, जैसे ही हुई किसी की नजर कमजोर, आ जाता हूँ तुरंत सेवा में अपने हुजूर। लोगों को दुनिया दिखाता हूँ, धूप धाप से बचाता हूँ, रखो मेरा हमेशा ख्याल, धुंधला दिखने पर भी कर देता हूँ कमाल। बात कर रहे हैं हम नेत्र विशेषज्ञ या नेत्र चिकित्सकों विशेषज्ञों के भी। एक ऑप्टिशियन वह विशेषज्ञ होता है जो आपकी आंखों की जांच के बाद पर्चे के अनुसार लेंस तैयार करता है। सही फ्रेम चुनकर सटीक लेंस फिट करके आपकी दृष्टि को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेलिस कविता के साथ साथ आज का सवाल, ऑप्टिशियंस आमतौर पर अपनी दुकान में किस प्रकार की चीजें बेचते हैं? ए जूते बेचते हैं, बी लैपटॉप बेचते हैं, सी चश्मा बेचते हैं। सही जवाब जरूर देना दोस्तों 9414151415 पर। सीधे चलते हैं आज की कहानी पर।
2: ये तो बहुत बदतमीज है।
3: अरे अरे आप क्या कर रहे हैं?
2: मक्खी मार रहा हूँ।
3: सुबह से इस बेचारी मक्खी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप बताइए?
2: ये बेचारी नहीं, काफी खतरनाक है।
3: अरे अरे अरे रे रे रे रे रे, मेरे मायके से आए हुए मेरे मनपसंद शीशे को तोड़ दिया आपने।
4: अरे ओ कैलाश, अरे तुम घर में हो क्या?
3: आप आइए आइए ना मुखिया जी, आइए अंदर आइए।
4: कैलाश कहाँ है बहू?
3: मक्खी मार रहे हैं, आइए ना अंदर आकर देखिए, आइए।
4: ये क्या कैलाश, ये क्या हाल है तुम्हारा?
2: दरअसल मुखिया जी, मुझे मक्खियाँ पसंद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है।
4: ये क्या कह रहे हो, तुम्हें सच में मक्खी से डर लगता है?
2: मुझे डकैत भूत चुड़ैल किसी से डर नहीं लगता, पर मक्खी, बाप रे बाप। एक बार मैं एक मक्खी के चक्कर में पड़ गया था मुखिया जी।
4: कैसे?
2: एक दिन मैं मछली खरीद कर घर लौट रहा था।
4: मछली की महक, ताजी मछली की महक, खाऊंगा खाऊंगा, इसे डरा कर मछली लेनी होगी मुझे।
2: आज तो मैं मछली का कालिया बनाने के लिए कहूंगा कविता से।
4: आऊं आऊं काऊं, दे मछली दे।
2: जा जा जा जा यहाँ से, जब देखो तब भूतों की धमकी।
5: अब तुझे क्या हो गया?
4: महाराज जी मुझे बचा लीजिए, कैलाश ने मुझे बैग से मारा है।
5: बैग से?
4: हाँ, मैं उसे डराकर मछली खाना चाहता था, लेकिन
5: जानता हूँ हमसे बिल्कुल नहीं डरता है कैलाश।
4: आप कुछ तो कीजिए महाराज, उसकी गर्दन मरोड़ दीजिए।
5: अरे गर्दन मरोड़ दूंगा तो हमारे ही झुंड में शामिल हो जाएगा।
4: तो फिर अब क्या होगा?
5: उसे इस तरह से मारना होगा ताकि वो हमारे समाज में आकर तहलका ना मचा दे। नीला भूत, नीला भूत।
6: जी महाराज जी।
5: सुन, तुझे एक काम करना होगा, तुझे कैलाश के पेट के अंदर घुसना होगा और तेरे जहर से ही उसकी मौत हो जाएगी।
6: नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, वो जहर निकाल देगा।
5: अरे तू सीधा थोड़ी जाने वाला है।
6: तो फिर?
5: तू मक्खी बनकर खाने के जरिए अंदर जाएगा और बाहर नहीं आएगा। खाते समय कैलाश को कुछ ध्यान नहीं रहता और इसी मौके का फायदा उठाना होगा हमें।
6: ठीक है, जो आ गया महाराज जी।

0: बहुत मीठा है।
1: आ, जरा धीरे धीरे खाइए ना, मेरे काटने से पहले ही आपका खत्म हो जा रहा है। धत तेरी की, पूरे घर में मक्खियाँ भिन भिना रही हैं।
2: ओ देख आम खा रहा है, जा जा जा जा जा, मक्खी बनकर घुस जा।
3: अच्छे से नजर रखनी होगी, उसके बाद मौका देखकर कैलाश के पेट में चला जाऊंगा।
1: सुनिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं पंखा लेकर आती हूँ, मक्खी भगाइए फिर खाइए।
4: ये खट्टा खट्टा क्यों लग रहा है मुझे, ये आम अच्छा नहीं है क्या?
3: देखो मैं मक्खी बनकर घुस चुका हूँ।
2: अब मरेगा, जरूर मरेगा। जाता हूँ, जाकर महाराज जी को ये खबर सुनाता हूँ।

0: अरे क्या बात है कैलाश, ये क्या हो गया तुम्हें?
1: पेट में बहुत दर्द है।
0: हाँ, देखो देखो जरा,

0: जैसा मैंने कहा था, नीला बूट ठीक वैसे ही जहर फैला रहा है पेट के अंदर।
1: अरे बाप रे बाप, अब तो मैं मर ही जाऊंगा।
2: कितनी बार कहा मैंने कि सुनिए जी, जरा सोच समझ कर खाइए, जरा सोच समझ कर खाइए, पर मेरी बात कान में घुसे तब ना। हाय हाय हाय हाय, अब कितनी तकलीफ हो रही है आपको, देखिए।
1: भाग्यवान हो भाग्यवान, जरा देखो मेरे हाथ पाँव कैसे नीले पड़ रहे हैं। तुम अभी इसी वक्त वैद्य जी को बुलाओ, शायद मैं मर जाऊंगा।
2: चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, मैं अभी बुला कर लाती हूँ वैद्य जी को।
3: कितना भी बुला लो वैद्य को, ये विष अब कैलाश के शरीर से बाहर नहीं आएगा। तू जारी रख अपना काम, जारी रख नीला भूत, तुझे सड़ा हुआ झींगा खिलाऊंगा।

0: क्या हुआ कैलाश? पेट दर्द कम नहीं हुआ?
1: नहीं कम नहीं हुआ, बल्कि दुगना बढ़ गया। बाप रे बाप, पूरा शरीर जल रहा है।
0: पर कैलाश, इस तरह शरीर नीला पड़ना तो विष क्रिया के लक्षण है।
2: क्या विष?
3: मरेगा कैलाश, जरूर मरेगा।
2: ए जी सुनिए ना, अजी उठिए ना आप। वै जी, जरा देखिए, ये जवाब नहीं दे रहे हैं।
0: नहीं रहा।
2: क्या? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अजी उठिए ना। ए जी सुनिए ना, आप उठ क्यों नहीं रहे हैं?
1: अरे रे रे, ये क्या है? ये कौन सी जगह है और आप सब कौन हैं?
4: मैं हूँ भूतों का राजा।
1: मैं यहाँ क्यों आया हूँ?
4: मर गए हो और मरने के बाद इंसान पहले हमारे पास ही आते हैं।
1: क्या? मैं मर गया हूँ?
4: हम झूठ मूठ का डराते जरूर हैं, पर कभी झूठ नहीं बोलते। ये देख लो, तुम्हारी बीवी रो रही है।
1: लेकिन मैं मरा ही क्यों?
5: मेरी वजह से।
1: ये क्या कह रहे हो?
4: एक नीली जहर वाली मक्खी जो तुम्हारे पेट में है, उसके जहर से ही तुम्हारी मौत हुई है।
0: बहुत अच्छा हुआ। पता है, इसकी वजह से मैं कोई भाव नहीं देता था और ताव भी नहीं देता था।
4: इसीलिए प्लान करके तुम्हारे पेट में मक्खी घुसाकर तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ।
1: ओह, इसका मतलब ये सब कुछ तुमने प्लान किया था। अब मजा चखाऊंगा। सुनिए महाराज जी, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी बीवी से मिलकर आने दीजिए।
4: अरे नहीं, एक बार यहाँ आने के बाद फिर वापस नहीं जा सकते बेटा।
1: मान लीजिए कि ये मृत्यु के रास्ते जाने वाली यात्री की आखिरी इच्छा है। एक बार मेरी बात मान लीजिए, मुझे अपनी बीवी से मिलने दीजिए ना महाराज जी। उसे बताऊंगा धन संपत्ति कहाँ रखी है।
0: महाराज देखिए, चालाकी कर रहा है, इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। जब मैं मर ही गया हूँ तो आपसे चालाकी करने का क्या फायदा?
4: सुन, इसके पेट में नीली मक्खी है। अब तक जब तक वो बाहर नहीं आएगी, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तुम तो पहरा देते ही रहोगे ना। जाओ, सिर्फ 5 मिनट है।
1: चल जाएगा। जल्दी से कुछ कटहल के टुकड़े लेकर आ जाओ और एक शीशी भी।
2: मैं जानती थी।
1: मेरे कान के पास शीशी लगा दो, मक्खी के बाहर आते ही इस शीशी को अच्छे से बंद कर देना।
2: अरे बाप रे, निकल गया।
1: ये क्या? एक मछली के लिए इस कैलाश को तुम जमीन पे लेटा दोगे क्या? ये गलत कर रहे हो, ये गलत है।
2: नहीं, छोड़ दो।
0: अरे सच में कैलाश, तुम्हारे किस्से कहानियों की कोई तुलना नहीं है।
1: वही तो, इस शीशी में मक्खी दिख रही है आपको?
0: हाँ दिख रहा है।
1: जो भी इसे खोलेगा वो मक्खी उसी के अंदर घुस जाएगी। जाइए, खोलिए खोलिए मुखिया जी, जाइए।
0: बस रहने दो, मैं चल

0: एक काम करो, शाम को चौपाल आ जाना, ठीक है?
1: देखा, मजेदार ये कहानी सुन लिया ना? तो आगे ऑप्टिशियंस आमतौर पर अपनी दुकान में कौन सी चीज या कौन किस प्रकार के उत्पाद बेचते हैं? क्या जूते बेचते हैं ऑप्टिशियंस, या लैपटॉप बेचते हैं, या चश्मा बेचते हैं? भाई, इस चीज से आप पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो। ये था हिंट। आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन गीत आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं उड़ान के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं सर?
1: ओम शांति दीदी, मैं अलीगढ़ यूपी से ज्ञानेंद्र बोल रहा हूँ।
0: ज्ञानेंद्र जी, कैसे हैं आप सर?
1: बढ़िया हैं, आप तो बढ़िया हैं।
0: बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए।
1: चश्मा है आंसर
0: इसका। आज का चश्मा है आपका आंसर। थैंक यू, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। बहुत बहुत खुश रहिए, मुस्कुराते जरूर रहिए। थैंक यू।

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: बिल्कुल, किसी भी प्रकार की चोरी से सावधान जरूर रहे। यदि आपका फोन गुम गया है तो जरूर कॉल करके या किसी न किसी तरीके से पुलिस तक इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं। साथ ही साथ यदि आपको कोई फॉल्स कॉल करता है तो ब्लॉक करने की कोशिश करें, अपने विषय पर ढेरों जानकारियां ना दें। लेकिन हाँ, आज के सवाल का जवाब तो आप दे ही सकते हो और जवाब देंगे आप 9414151415 पर। ऑप्टिशियंस आमतौर पर अपनी दुकान में किस प्रकार के उत्पाद को बेचते हैं? ए जूते को, बी लैपटॉप को, या फिर सी चश्मे को? भाई लेंस कार्ट या कोई भी चीज़ें हों जैसे बॉर्शलॉम, ये सभी दुकानें इसी एक चीज़ के लिए काफ़ी मशहूर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले गीत को आप तक पेश करते हैं, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। इस खूबसूरत गीत के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और रेडियो मधुबन दिव्यांगों की सेवा के लिए जुड़ा हुआ है, जुटा हुआ।
1: तो बच्चों सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
2: मैम यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
1: रोहित बोल नहीं सकता परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
3: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
0: बिल्कुल सही कहा, मन की आंखों से इस सुंदर संसार को देखिए और इन दो नेत्रों में यदि नंबर ज़्यादा है या कम है तो इसे ठीक करने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। सही वक्त पर हॉस्पिटल ज़रूर पहुँचे। ऑप्टिशियंस आम तौर पर अपनी दुकान में जूता नहीं बेचते और न ही लैपटॉप, बल्कि लैपटॉप से वो काम कर लेते हैं और जूता पहन के वो ऑफिस या ऑप्टिकल शॉप तक पहुंचते। तो ऑप्टिशियंस चश्मा बेचते हैं या चश्मे का नंबर निकालते हैं। तो सही जवाब ऑप्टिशियंस है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहती हूँ, आप दोस्तों से कहती हूँ गुड बाय। लेकिन जाने से पहले पूरे आबू रोड वासियों से एक और आग्रह करना चाहती हूँ। ये आग्रह खास है, आग्रह है निशुल्क निमंत्रण का। ये समस्त आबू रोड के आसपास के ग्रामीण निवासियों के लिए है। प्राकृतिक चिकित्सा से हर बीमारी का इलाज संभव है दोस्तों। जी हाँ, ये कहना उचित रहेगा कि विश्वविख्यात प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर रमेश टेटवानी जी, जो भोपाल में संत हरदीराम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के उपाध्यक्ष भी हैं एवं केंद्र में अपनी सेवाएं भी प्रदान करते हैं, तो वो बुधवार 22 जुलाई 2026 में तपोवन ग्रीन हॉल में आप सभी के लिए विशेष क्लास आयोजित किया है और इसके लिए आप ज़रूर पहुँचे। कृपया आप अपने परिचित एवं विशेष परिजनों को भी इसके विषय पर ज़रूर जानकारी दें। ये जो रोग दवाई से दूर नहीं होते, वे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जल्द ठीक हो सकते हैं। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में ऐसी शख्सियत पधार रहे। तो ब्रह्मा कुमारी द्वारा ये आयोजित है, तो प्लीज़ आप सभी को निशुल्क निमंत्रण दिया जाता है कि सभी समस्त आबू रोड के ग्रामीण निवासी ज़रूर इस प्राकृतिक चिकित्सा से हर बीमारी का जो संभव इलाज है उसे समझने, जानने और इनसे परामर्श लेने के लिए 22 जुलाई 2026 बुधवार को ग्रीन हॉल तपोवन ज़रूर पहुँचे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कितना खुशी लगता है अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गांव और जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि गांव को स्वर्ग कहते हैं। गांव को लेकर ही हमारा राज्य बनता है और तो राज्य को लेकर हमारा देश विदेश बनता है, इसलिए गांव को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। और जब गांव का जो शुद्धता, जो भोलापन और जो विशेषता, जो हुनर, जो प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन आज हर दिन की तरफ आज हम भी आए हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगथला में, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास में उनका अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो भाव है, जो भावना है, जो विशेषता है, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच, एक स्टेज मिलता है। तो आज ये बच्चों को कौन भूल पाएंगे। बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, और बच्चे कुछ करने के लिए ठान लेते तो करके दिखाते हैं, और एक को देख कर दूसरे भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कदम पर कदम चढ़ते हैं तो चल जाते आगे तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए संस्था के संस्था प्रधान और सभी स्टाफ को नाम का सा धन्यवाद देते हैं। एक इशारे से हमें सहयोग दिए, कोई सूचना नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी बच्चे तुरंत अचानक में अचानक एवर रेडी रहते हैं और तुरंत भाग लेने के लिए तैयार होते, क्योंकि उनका जो राष्ट्रीय पर्व January 26 और August 15 में भाग लेते हैं, और जो कला है वो कभी भी कहीं पर भी मौका मिलता तो उसको जन जन तक पहुंचाते। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ सभी छात्राएं हैं और दो छात्र भी हैं, सभी मिलकर बारी बारी उनका आवाज सुनने को मिलेगा। जब इस आवाज को जब आकाशवाणी में सुनेंगे, रेडियो पर सुनेंगे, तो उनका मम्मी पापा हो, चाहे परिजन हो, चाहे उनका दोस्त लोग हो वहाँ, और उनके टीचर्स लोग सुनेंगे तो बोले अरे ये तो हमारा गुड़िया का आवाज है, हमारे बेटी का आवाज है, तो कितना खुशी होगा। रास्ता में उसको चलने नहीं देंगे, अरे वाह तुम्हारा आवाज क्या सुंदर था, और कितना सुरीली आवाज से स्वर लय और ताल का साथ भाव से आपने प्रस्तुति किए। तो देर किस बात की, सभी को धन्यवाद देते हुए एक प्रस्तुति लेंगे जो कि प्रार्थना सत्र में हर विद्यालय में गाते हैं। तो शुरुआत कार्यक्रम को प्रार्थना से ही शुरू करेंगे, तत्पश्चात बच्चों का जो हुनर है, ढोलक मंजीर सब रेडी हुए और सभी बच्चे तत्पर है और उमंग उत्साह का साथ बढ़ चढ़ कर आज आए हैं। तो सब मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि सुनते रहो और मुस्कुराते रहो, ये तो हमारा टैगलाइन है, कीप लिसनिंग कीप स्माइलिंग। तो स्माइल रहेगा तो मतलब कुछ पैसा दे चाहे नहीं दे, लेकिन स्माइल एक बार होना चाहिए, क्योंकि जब हर्षित मुक्ता रखते हैं, हर्षित चेहरा रहता है तो लगता है कुछ प्राप्ति है, और झुका हुआ रहेगा तो कुछ लॉस मतलब कुछ हार दिए मैंने कुछ चला गया ऐसे सोचते हैं। लेकिन हमारा बच्चा आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक प्रस्तुति जो कि प्रार्थना के रूप में, और सभी अपना अपना नाम और स्कूल का नाम और कौन सा क्लास में बताएंगे।
1: मेरा नाम दिव्या है और मैं बीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगथला में पढ़ती हूँ, मैं कक्षा 8वीं में हूँ।
2: मेरा नाम दक्षा है, मैं PMC राज्य का उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम दीपिका है, मैं PMC राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगथला में पढ़ती हूँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ।
0: श्रोता मित्र और ग्रामवासी, खासकर मैंने बोल दिया था राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय, लेकिन सभी जगह में राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय रहता है, लेकिन ये PMC कब से हो चुका है, और बहुत खुशी लगा ये प्रमोशन होकर यहाँ पर क्रमोन्नति हुआ, और बच्चों का जो टैलेंट है और स्टाफ का जो देन है उसको देखकर सरकार उसको PMC में कन्वर्ट किया है, तो खुशी है। तो इस तरह कार्यक्रम में हमें PMC से आज बच्चों का आवाज सुनेंगे, सभी बच्चे अपना अपना परिचय दिए। तो एक प्रस्तुति होगी जो कि प्रार्थना के रूप में, लीजिए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति की, और खासकर प्रार्थना सत्र में बच्चे अपना दिल का भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो दिव्या नाम कितना सुंदर है, दिव्या दिव्य ज्ञान जिसका, दिव्यता जिसमें भरपूर है ना, दिव्यता मतलब जानते हैं ना पूरा वैल्यू है दिव्यता, आत्मा को दिव्यता कहते हैं, आत्मा में दिव्यता रहेगा तो बहुत चमकेगा सब चीज उसका ओरा जैसे, दिव्यता मतलब ओरा पूरा, जो कोई भी आएगा उसको वाइब्रेशन मिलेगा अच्छा चीज का। तो दिव्या हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे, उनका अच्छा दोस्त का नाम बताएंगे। दिव्या तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है?
1: दक्षा और दीपिका
0: दोनों। क्यों इतना बच्चे फिर दोनों को क्यों दोस्त बनाया? तो खास होगा राज विशेषता है, कुछ गुण है
1: सर, जो पढ़ाई में अच्छा होता है उनसे ज्यादातर दोस्ती होती है। और वैसे तो दोस्त तो किसी को भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पढ़ने वाले को बनाए या फिर कम पढ़ने वाले को बनाए।
0: लेकिन खराब दोस्त को बनाएंगे तो क्या करेगा वो खराब में ले लेगा दोस्त, किसी को भी बना देंगे ऐसे नहीं होगा दोस्त, वो भी तो दोस्त चोर भी बोला मेरा दोस्त बनो तो बनेंगे
1: नहीं,
0: क्योंकि वो जैसे संग ऐसे रंग, उनका संग का रंग लग गया है ना, हाथी का पूछ पकड़ेंगे तो पहाड़ भी उठा देगा, देगा कि नहीं, क्योंकि उसके पास ताकत है, बोले उसको जांच करना चाहिए कि नहीं। हाथी का पूछ पकड़ेंगे उठने के लिए पर्वत वो पार करा देगा कि नहीं, क्योंकि उसके पास ताकत है। लेकिन जो कुत्ता को पकड़ेंगे तो क्या करेगा वो आपको दूसरा जगह में गटर में गिरा देगा। तो कैसे दोस्ती होना चाहिए, हाथी का साथ दोस्ती करना चाहिए ना सुअर का साथ दोस्त करेंगे, किसका साथ? हाथी का साथ, मतलब जिसके पास शक्ति है जो हमें फायदेमंद होगा उससे हमें संग करना चाहिए, हर चीज में हमें सहयोग मिलना चाहिए, जो चीज हमें आवश्यकता है। जैसे हम स्कूल में आते हैं, कभी स्कूल में ऑप्शन किस कारण से हम जा नहीं पाते, तो आपका दोस्त बता देगा भाई आज क्या क्या पढ़ा है मुझे थोड़ा नोट्स दे दो, तो ये हो गया सहयोग, ये एक विशेषता है कि नहीं। इसलिए हम अच्छा दोस्त को जैसे श्री कृष्ण और सुदामा नाम सुने होंगे, गरीब अमीर का बात नहीं, लेकिन भाव भावना दोस्ती में है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खास कर ये था PM श्री विद्यालय मुंगथला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए ब्रेक का पहले आप सब सुन पा रहे थे प्रार्थना का रूप में माँ सरस्वती का वंदना और बच्चों का भाव और भावना को लेकर हम पहुंचते हैं और दिव्या इस कार्यक्रम को सजाए, उनका दोस्त कौन है और क्या क्या चीज पढ़ते सब चीज बताए और आगे बढ़ते हुए और छोटे छोटे नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं तो उनको भी स्वागत करते हैं, अपना नाम बताएंगे और ढोलक मंजीरा का साथ स्कूल के जो पीएम श्री स्कूल का आवाज है, अभी तो बच्चे रेडी हो रहे हैं तो ढोलक का साथ मंजीरा और खंजन सब चीज आज सुनने को मिलेगा और हमारा तीन बच्चियां तो सुनाएंगे अपना आवाज। पहले अपना अपना नाम बताएंगे प्लीज।
1: मेरा नाम डिंपल है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुथला।
2: मेरा नाम खुशबू है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुथला है।
3: मेरा नाम अनिता है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुथला।
0: और ढोलक और मंजीरा के साथ जो है उनसे भी ले लेंगे, ये तो गीत गाएंगे तीनों छात्र और तीन गुड्डा है जो भी अपना नाम बताएंगे।
4: मेरा नाम कमलेश कुमार है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगला है।
5: मेरा नाम महिपाल है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और हमारे स्कूल का नाम है पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगला।
6: मेरा नाम महिपाल है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम है पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगला।
0: वाह, क्या देखा, बच्चे रेडी है और हमारा महिपाल महिपाल दो महिपाल है और सुनेंगे सुंदर प्रस्तुति और सुर लय का साथ माँ सरस्वती को वंदना जब किए तो उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं, शुरू।

0: क्या बात, क्या बात सुंदर प्रस्तुति के लिए, और ढोलक मंजीरा का साथ, और इस कार्यक्रम को तो चार चांद लगा दिए, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और सीख जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 7th क्लास 8th क्लास का बच्चे, लेकिन उनका अंदर में जो संगीत प्रति रुचि है सही में देखने को मिल रहा। और ऐसे संगठन में जब होते हैं तो संगठन में बल मिलता है ना, एकता का बल मिलता है, इसलिए सभी ने अपना अपना आवाज को सुना पा रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी को खुशी लग रहा है इस तरह रेडियो मधुबन में अपना आवाज को सुनाने के लिए। सभी बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, बड़े होकर क्या बनेगा तू?
1: डॉक्टर
0: हाँ देखो, ऐसे होना चाहिए ना, ऊंचा इच्छा रखना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आईएएस ऑफिसर, जब ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो हमारा लक्षण भी ऊंचा दिखाई देगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। बढ़ पाएंगे कि नहीं? तो इसलिए सबको लक्ष्य रखना चाहिए, जैसे लक्ष्य रखेंगे उस तरह लक्षण दिखाई देगा, और आपका परिवार वाले और आपका सहयोगी, जो भी आपका दोस्त लोग भी सहयोग देंगे, और भामाशाह लोग भी है सहयोग देंगे, जो अच्छा पढ़ाई करेगा सहयोग मिलता है। सरकार तो सहयोग देता ही है, लैपटॉप देता है, साइकिल, स्कूटी, क्या क्या नहीं देता, और खाना पीना तो मिलता ही है सभी बच्चों को, चाहे पीएम श्री हो चाहे राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। तो तुम क्या बनेगा रे? तुम तो ढोलक अच्छा बजा रहा था, तो ढोलक ढोलिया बजेगा, क्या बनेगा?
1: इंजीनियर
0: ढोलक बजाते बजाते इंजीनियर तो पहुंच जाएगा हमारा महिपाल जी, है ना। और तुम्हारे स्कूल में, विद्यालय में कितना महिपाल है? एक तो महिपाल तुम्हारा साथ दे रहा है, कितना महिपाल? कितना
1: 3 महिपाल है।
0: महिपाल है? वाह, महिमा ने पृथ्वी का जो देख रेख करते हैं, जो तुम्हारा नाम रखा ना, कौन नाम रखा?
1: भगवान ने
0: भगवान ने रखा। अरे वाह, बहुत अच्छा, भगवान आकर नाम रखा ना, तुम्हारा चाचा हो चाहे दादा हो चाहे पापा, कौन नाम रखा है पूछना? आज पूछेंगे
1: हाँ।
0: मेरा नाम कौन रखा है? मम्मी रखा है ना, चाचा जी रखा है, कोई तो रखा होगा ना,
1: दादी ने रखा है।
0: उसका दादा, उसको याद है? तुमको याद नहीं, लेकिन याद करना, क्योंकि फिर तुमको जब अभी महिपाल नाम सुना है, महिमा ने पृथ्वी, पृथ्वी का पूरा रक्षा करने के लिए महिपाल भगवान का नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सिंगल एक बहन है, वो अपना आवाज को देंगी, वो भी श्री कृष्ण का भजन सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

कुछना आता नजर, सुखा सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले

थमी दिया तूने हमें जो जनम, तुई जेले गा हम सभी के गम। नेकी पर चले और बदी से टले,

ही पर चले और बंदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल

0: पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम।
1: हाय, दिस इज ग्रेसी सिंह एंड यू आर लिसनिंग टू ब्रह्मा कुमारीज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन। कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग।

0: ब्रेक का बाद हम पुनः मिल रहे हैं और पुनः पुनः मिलते मिलते आज तृतीय लिंक में पहुंच चुके हैं और इसका पहले ढोलक मंजीरा का साथ हम अच्छा से एक भजन सुने, तत्पश्चात और एक भजन के लिए हम बढ़े तो अगला कड़ी में और एक छात्रा उपस्थित है तो अपना परिचय देंगे और कहां से और बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उनका भाव और भावना, पढ़ाई में कितना रुचि है और कितना घंटा मेहनत करती है। स्कूल में 5 घंटा तो पढ़ाई, 6 घंटा पढ़ाई होती है और जब घर जाते हैं तो कितना घंटा और मेहनत करती है वो भी बताएगी। पहले अपना परिचय देंगे।
1: मेरा नाम भावना है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ, PM Sari स्कूल में पढ़ती हूँ।
0: और बड़े होकर क्या बनेगी भावना? मान लीजिए तुमको कलेक्टर बनने के लिए मौका मिलेगा तो बनेगी? हाँ बोलो, बोल हो कि नहीं, हाँ तो बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे?
1: हाँ
0: हाँ करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना भावना? और घर में कौन कौन है?
1: मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादी, मेरे भाई, मेरे बहन।
0: भाई को ज्यादा प्यार करते ना, बहन को प्यार घर में, बेटी को ना बेटा को ज्यादा प्यार? हाँ
1: दोनों
0: को ज्यादा प्यार करते हैं। कोई भी सीजन में कोई फल आएगा, जैसे आम का सीजन में आम आता है, अंगूर का समय में अंगूर आएगा, कोई दिवाली होली में कोई नया ड्रेस आएगा तो किसके लिए आता है?
1: दोनों के
0: लिए। अरे वाह, तो बहुत अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। कभी आपको अफसोस नहीं होता है जे भाई को देता है और मुझे काम मिलता है, ऐसे कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? भाई हमारा आगे, भाई सोचेगा बहन हमारा आगे रहे और बहन सोचेगी मेरा भाई आगे बढ़े, ऐसे सोचते कि नहीं? मेरा भाई मुझे नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मेरा भाई को मिलना चाहिए। और भाई भी क्या सोचेगा, मुझे मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन मेरा बहन को मिलना सोचते ना तुम लोग भाई लोग? बोले सोचते थे लेकिन हाँ तो बोल दिया, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं उनसे एक गीत, शुरू करिए।
1: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम

0: मतलब
1: बहुत सुंदर प्रश्न। कहाँ से सीखती भावना गीत, कहाँ से सीखती?
0: प्रार्थना बोलती।
1: प्रार्थना में। और कैसे सीखती तुम, कौन सिखाता है ना तुम, खुद ऐसे प्रैक्टिस करते करते सीखती? खुद। मोबाइल से कभी, मोबाइल से कभी प्रैक्टिस किया?
0: हाँ।
1: मोबाइल में भी आता है गीत?
0: हाँ।
1: और मोबाइल देखते हैं, यूज करते हैं मोबाइल?
0: काम होता है तभी तो।
1: काम होता है,
0: स्कूल का,
1: स्कूल का काम, होमवर्क, मोबाइल से होमवर्क हो जाता है। और क्या होता है मोबाइल से? देखिए मोबाइल से क्या सहयोग मिलता है तुम बता। देखिए मोबाइल हमारे पास रहने से क्या, जैसे ये बोलता हम मोबाइल से सीख जाते गीत, और होमवर्क भी होता है, पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी हो सकता है, और बहुत कुछ फायदा मोबाइल तब तो लेते हैं। इतना रुपया खर्च कर मोबाइल लेते हैं तो उसका तो फायदा तो लेना चाहिए ना,
0: कॉल करने में और पढ़ने में।
1: पढ़ने में किससे बातचीत, संवाद करने के लिए, कोई अर्जेंट आया मैं, कोई मुसीबत में पड़ा तो भाई हमारा घर में खबर पहुंचा दो। अब तो लेटर तो नहीं, कोई जाएगा नहीं, तो मोबाइल में क्या करेगा, तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। और व्हाट्सएप में आजकल तो पूरा कितना प्लेटफॉर्म है मोबाइल के अंदर, यूट्यूब है, इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम और ईमेल है, बहुत सारा है प्लेटफॉर्म डिजिटल। आजकल तो पैसा भी तुरंत मोबाइल में, पैसा लेकर जाना नहीं पड़ता है, मोबाइल में पैसा नहीं रहता, लेकिन उसका ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है कि नहीं? कुछ खरीदना होगा तो पैसा जेब में नहीं रहेगा, तभी मोबाइल में, मोबाइल से पेटीएम कर सकते हैं, और
0: दुकान में काम आता है तो पेमेंट और वगैरह कर सकते हैं।
1: हाँ, राशन लेना होगा तो जाकर वहाँ पर पेटीएम में पैसा तुरंत एक सेकंड में जाता है, गिनना नहीं पड़ता है। ये भी अच्छा है मोबाइल का सदउपयोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे जो की सामूहिक रूप में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, खासकर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगतला का ये नन्हे मुन्ने बच्चों का आवाज़।

लिखे जोख तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे

तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी का अमृत महोत्सव से अमृत काल तक पहुंच रहे और भारत विश्व गुरु बनने में कोई देर नहीं रह गया, और बच्चे इस तरह सच्चे मन से अपना देशभक्ति गीत गाते हैं। तो दिव्या और उनका दोस्त दक्षा, बड़ा होकर क्या बनेगी तुम?
1: आईएएस।
0: हाँ, ये हुई ना बात, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा विद्यार्थी जीवन में, और 5-6 साल मेहनत करेंगे ना, कड़ी मेहनत, 20 नाखून लगाकर समय को बचत करके पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई ध्यान से पढ़ेंगे, अटेंशन होकर पढ़ेंगे, तो और 5-6 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आईएएस ऑफिसर बनते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है, सिर्फ 5 साल, बस मात्र 5 साल तुम मेहनत करेगी तो अगला 50 साल आपके पास पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, कुछ करना नहीं पड़ेगा, इतना पैसा भरमार होगा। और अभी 5 साल मेहनत नहीं करेंगे, 5 साल पूरा मजा मस्त पूरा करके दोस्त यारी पिकनिक घूमना फिरना में समय बर्बाद करेंगे, तो अगला 90 साल पूरा लेबर काम करना पड़ेगा, नरेगा में जाना पड़ेगा, 300 रुपया 200 रुपया मिलेगा, महीना में 10,000 मिलेगा तो क्या होगा, और उस समय तो 90,000 मिलेगा, एक महीना में 90,000, और ये 9,000 कौन सा पसंद करेंगे, 90,000 ना 9,000?
1: 90,000,
0: 1,10,000 कम, क्योंकि उसके लिए अभी 5 साल पूरा मेहनत मेहनत मेहनत, अभी 5 साल पूरा मेहनत कर लेंगे, इसलिए सभी बच्चे सुन रहे हैं, सभी मेहनत करेंगे तो जाकर मिलेगा, अभी जल्द मेहनत नहीं करेंगे, इधर उधर बात नहीं सुनेंगे किसी का बात, तो बर्बाद हो जाएगा लास्ट समय। देख रहे ना कितना लोग, कितना उसके पास खाने के पैसा नहीं, भिखारी बन जाते हैं, क्यों? बचपन में अपना समय को बर्बाद किया, ना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, ना बड़ों का बात माना, और खराब संगति में लग गया, तो क्या क्या उसका नाम मैंने नहीं लेना चाहता हूँ, खराब इतने हो जाते बच्चे, हो जाते है ना, तो हमें खराब नहीं बच्चे बनना चाहिए, हमें अच्छा बच्चे बनना चाहिए, उसके लिए मेहनत करना चाहिए और बड़ों का बात मानना चाहिए, जो भी होमवर्क मिलता है वो होमवर्क भी समय पर करना, दिल से लगन से मगन से, एक लगन एक मगन, बस एक ही दिखाई देगा, पढ़ाई अच्छा से करना है कि नहीं दिव्या एंड दोस्त, क्या करेंगे पक्का
1: जी?
0: हाँ, उसलिए अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा पहनना, अच्छा करना,
1: हाँ जी।
0: बोले नहीं सभी, जो से बोलो,
2: हाँ जी
0: हाँ जी हाँ जी, करेंगे तो हजूर हाजिर हो जाएंगे, हजूर कौन, भगवान हजूर है, वो हाजिर हो जाएंगे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, सभी को नाम का सा धन्यवाद देते हैं।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: अगला प्रस्तुति लेकर आए हैं हमारा और एक परी और क्या नाम है?
1: दीपिका कुमारी।
0: दीपिका, तुम्हारा नाम कौन रखा है? दीपिका
1: नाम? मेरी मम्मी ने।
0: मम्मी, क्या नाम है मम्मी का?
1: मैना देवी।
0: अच्छा, क्या करती मम्मी घर में?
1: काम करती है,
0: हाउस वाइफ। और पापा?
1: पापा काम करते हैं, फार्मर।
0: फार्मर, किसान। वाह सलाम, किसान को तो अन्नदाता कहते हैं, है ना? सबको पेट भरते कौन? हमारा किसान भाई, है ना? किसान है, शिक्षक है और सैनिक, ये तीनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। चलिए एक प्रस्तुत सुनेंगे। ओके, शुरू करो।
1: तुम सच्चे मन से याद करो, भगवान मिलेंगे।

0: पे मिले डाली पे मिलेंगे कहीं ना कहीं, तुम सच्चे मन से याद भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं, आकाश में मिले पाताल में मिले धरती पे मिलेंगे कहीं ना कहीं, तुम सच्चे मन से याद करो भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं, सूरज पे मिले चंदा पे मिले तारों पे मिलेंगे कहीं ना कहीं, सच्चे मन से याद करो भगवान ये कहीं ना कहीं, प्रभु तन में मिले प्रभु मन में प्रभु दिल में मिलेंगे कहीं ना, तुम सच्चे मन से याद करो भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं।
1: भगवान तो मिलेंगे, इसलिए तो सभी बच्चे बड़े भगवान को याद करते हैं, कहीं ना कहीं मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे पता नहीं, लेकिन मिलना जरूरी है। और भगवान तो सबके लिए बाप समान है, गॉड फादर कहते हैं, परम पिता कहते हैं, तुम्हें वो माता सब पिता तुम्हें वो कहते हैं, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को, इसलिए कहीं ना कहीं मिले, लेकिन उसके लिए प्यार चाहिए, प्यार से, दिल से, दिल से, जैसे मीरा दिल से याद किए ना, हम जब दिल से याद करेंगे, प्यार से याद करेंगे, कहीं ना कहीं हमें किसी भी रूप में मिल जाएंगे, और कहीं पर भी मिल सकते हैं, लॉटरी भगवान को मिलने का एक भाग्य, भाग्य मिलेगा तो कोई छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेंगे, भाग्य तो भगवान देते हैं, भाग्य का कलम आपका हाथ में दिया जाएगा तो आप जितना लिखना हो लिखो अपना भाग्य, आपका ऊपर में, किसका ऊपर में, खुद का ऊपर में, उसके लिए भगवान का बात मानना चाहिए, दिल से प्यार करना चाहिए, दिल से बुलाना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा, सुदामा कैसे प्यार से दोस्त को याद किया, चाहे कोई भी दोस्ती का नाम से दोस्त हिसाब से प्यार किया। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इसे हमें प्रार्थना सत्र में हो चाहे घर में हो, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वार में जाते हैं, क्यों ना कहीं हमें हमारा बात को भगवान तक पहुंच जाए, हमारा ईश्वर तक, मालिक तक पहुंच जाए, तो इसलिए हम याद करते हैं ना। दीपिका, दीपिका ऐसे भाव सोचते ना, भावना तुम्हारा, भावना तो आप इसका पहले गाए थी है ना, भावना और दीपिका दोनों दोस्ती है, दोस्ती करते नहीं, करना चाहिए सबका साथ, अच्छा वही दोस्ती है, कोई बात नहीं, जिसको भी दोस्त बना, जो अच्छा सहयोग देगा उसको दोस्ती मनाना चाहिए। और दीपिका तुम्हारा अच्छा भोजन क्या पसंद करते हैं, खाने में खाते ना अच्छा चीज, आज मिलेगा तो भरपूर, दो दिन तक नहीं मिलेगा चलेगा, ऐसे कोई भोजन आपको फेवरेट डिश क्या पसंद करते हैं, राजस्थान में तो कौन सा फेमस है, दाल बाटी,
2: दाल बाटी
1: चूरमा, और तुम्हारा वही पसंद है, कभी घर में बनाते हैं, तुमको चांस मिलेगा स्कूल में सभी बच्चों के लिए पार्टी देना पड़ेगा, सर का चाहे मैडम का जो फेयरवेल पार्टी होता है ना, तो आपको बनाने के लिए मौका मिलेगा तो आप दाल बाटी बना सकते हैं,
2: बना नहीं सकते,
1: खा सकते खा सकते लेकिन बना नहीं सकते, लेकिन कोई बन रहा होगा उसमें सीखना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक समूह गीत में ढोलक और मंजीरा का साथ इशारा आ रहा है, सभी बोल भाई ढोलक मंजीरा बहुत समय से रुका हुआ है, और बलिहारी है ना, बलिहारी में प्यार में बलिहारी जाना चाहिए, जैसे बच्चे अभी सुनाएंगे एक प्रस्तुति बारी जाऊ रे, ओके।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बहुत खुशी और हर्ष का साथ ढोलक मंजीरा और पूरा सब चीज लेकर बच्चे रेडी है और सभी साथ देंगे महिपाल को। ऐसे वो टीम लीडर है और ऐसे संगीत में तो टीम चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। कोई बोलने वाला है, कोई गीत गाने वाला है, कोई ताली बजाने वाला, कोई ढोलक बजाने वाला, सब कुछ रेडी है हमारा सभी बच्चों को, होबनहार बच्चे। क्योंकि पीएम श्री नाम ऐसे नहीं होता है भाई, पीएम श्री राजकीय विद्यालय, सभी विद्यालय तो आदर्श विद्यालय होता है, लेकिन ये पीएम श्री बच्चे तो कुछ तो श्री तो करेंगे, श्रेष्ठ काम तो करेंगे। तो श्रेष्ठ के लिए सभी बच्चों को पुनः स्वागत करते महिपाल एंडी टीम को। एक प्रस्तुति ढोलक और मंजीरा का साथ लीजिए।

0: बोलो संत गुरुदेव की।
1: जय।
0: बोलो अपने माता पिता गुरुदेव की।
1: जय। आज तो बच्चों का भी जय हो, सबका सतगुरु का जय हो, और सत पिता का जय हो, और सत शिक्षक का भी जय हो। सत शिक्षक, सत पिता, सत गुरु और सत बच्चे, बच्चे भी कम नहीं है, बच्चे है तो शिक्षक है। तो सतगुरु का जय, सत शिक्षक का जय, और सत पिता की जय, और सत बच्चों का जय। जय जय गान का साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर रुकेंगे, लेकिन हमारा साथ बड़ों का भी आशीर्वाद होना चाहिए। तो हमारा दोनों मैम को भी कौन भूल पाएंगे, जो कि सांस्कृतिक प्रभारी के साथ साथ ये कार्यक्रम को सजाए। तो सभी को भी नाम का साथ धन्यवाद देते हुए, हमारा मैम इस कार्यक्रम को सजाए, सबको नाम दिए, सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में अपना भाव और भावना को पूरा चार चांद लगा दिए। उनका इतना जो छुपी हुई प्रतिभा था, आज जो आवश्यकता था, आज वो मंच उनको मिला। उनके पास जितना था, ना ज्यादा ना कम, अचानक में प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी बच्चे बढ़ चढ़ हिस्सा लिए। तो मैम को स्वागत करते, मैडम आप अपना परिचय दीजिए।
2: मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में लगाई गई है सरकार के द्वारा। मैं बच्चों को हुनर के बारे में ज्ञान देती हूँ और ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में सिखाती हूँ, ताकि बच्चे आगे चलकर अपना रोजगार स्वयं का खोल सके। धन्यवाद।
1: तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहीं से स्कूल से बच्चे, यहाँ पर मैंने देख रहा बहुत इंस्ट्रूमेंट भी है जो कि आवश्यकता बच्चों को। पीएमसी स्कूल में इस तरह इक्विपमेंट मिलता है, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे फिटर हो, चाहे वेल्डर, सब चीज यहाँ पर अवेलेबल है। जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जरूर इस स्कूल में एडमिशन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है ना मैम, कोई शुल्क इसमें नहीं, गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है और सब फ्री है। चाहे ब्यूटी पार्लर बहन करते हैं और जो मोबाइल का भी कोर्स यहाँ पर होता है। तो जो भी सुन रहे हैं, जो भी अभिभावक सुन रहे हैं, तो बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद रोजगार सीखना है, बच्चे से ही शुरुआत होता है। और बच्चे वो सीख जाएंगे, घर में भी कोई भी नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन अपना स्व एम्प्लॉयमेंट, खुद का रोजगार क्षम बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा मैम को भी धन्यवाद देते। सुनिए मैम क्या कहेंगे, बच्चों का अंदर में इतना जो टैलेंट, बच्चे पूरा चुन चुन कर हीरा को लेकर आए, एक एक मोती को लेकर आए, एक एक रतन आपका विद्यालय के, क्योंकि कितने बच्चे है, कितने बच्चे मैम टोटल, लगभग कितने बच्चे नामांकन है?
3: 450
1: फिर भी 450 में इतने बच्चे, जो 10-12 बच्चे आए हैं, ये काम नहीं है। तो खुद के लिए ताली बजा बच्चे तुम्हारे लिए, अरे वाह, क्योंकि तुम सब होनहार, तुम्हारे पास विशेषता है। तो मैम कुछ कहेंगे, हमारा सुनीता मैम जो कि पूरा कार्यक्रम को हैंडल करते हैं, और सर आपका नाम लिए हैं।
3: सभी श्रोताओं को हार्दिक नमस्कार
1: जी,
3: और सभी प्यारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे पवित्र भाई जी जो विद्यालय के अंदर इस प्रकार की सेवाएं देने के लिए समय समय पर जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, और इस प्रकार से जमीन से जुड़ने की गीतों के माध्यम से लोग।
4: अभी बजे हैं शाम के 8, स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो कीक एंड हो। जी हाँ दोस्तों, हम फिर लौट आए हैं आपके पास। आपकी यादों ने हमें फिर से बुला लिया है और बहुत सी दिनों की छुट्टी के बाद आज फिर हम आपसे करेंगे ढेर सारी बातें, सुनेंगे आपकी फरमाइशें और बजाएंगे आपके लिए आपके मनपसंद गीत। जी हाँ दोस्तों, आज की शाम के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर खुशी के नगमे दिल की बातें। जी हाँ दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि शाम का और समय हो चला है और आपका और हमारा पसंदीदा शो, जी हाँ आज 21 जुलाई है, इस खूबसूरत और सुहानी शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपका पूरा दिन खुशियों से भरा रहा होगा और अगर दिन में थोड़ी थकान या भाग दौड़ रही है कहीं ना कहीं, तो थकान टेंशन सब भूल जाइए, बिकॉज अगला जो हमारा एक घंटा है वो हम करेंगे बहुत सारी ढेर सारी बातें और सुनेंगे आपके फरमाइशों के गीत। जी हाँ दोस्तों, आज दिल की बातों में मेरा मन एक छोटा सा ख्याल आया था। हम कई बार सोचते हैं कि सरकार की तरफ से हमें बड़ी उम्मीदें होती है ना, सभी को ऐसा लगता होगा कि सरकार की तरफ से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें क्या कहते हैं मुहैया की जाए सरकार की तरफ से, और हम सरकार पे हमेशा इस चीज़ के लिए दोष देते हैं। दोस्तों इस बारे में मुझे कई सारी बातें करनी है, आपसे भी हम आपकी राय सुनेंगे, लेकिन एक मेरे साथ का अभी हुआ हादसे के बारे में, हादसा तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ ऐसे कोई एक चीज़ हुई जो मैंने देखी अपनी आंखों से और मुझे उस चीज़ के बारे में पता चला। अभी सरकारों की तरफ से पंचायत में यहाँ वहाँ सरकार की तरफ से कुछ RCC रोड बने हैं, है ना दोस्तों, RCC रोड बने हैं और उनके पास में से बगल में से गंदे पानी की जो नालियाँ होती है, जो हम सीवेज वाटर या वेस्ट वाटर जो होता है हमारे घरों का, वो नाली में जाता है और वहाँ से वो नालियाँ बनी हैं। और दोस्तों वो सरकार की तरफ से बन करके सब कुछ रेडी करके दिया गया है। अब बात आती है हमारी, हम उसको कितना क्लीन रखते हैं या कितनी सफाई रखते हैं। दोस्तों मैंने अभी कुछ समय पहले देखा, जब पिछले समय 2-3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले जब बारिश हुई थी, यहाँ हमारे आबरोड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बारिश के पानी से वो नाली में बहते हुए बहुत सा कचरा आकर के फंस गया उस रोड पर। अब बारिश तो रुक गई लेकिन कचरा वहीं का वहीं उस नाली में फंसा हुआ, और नाली में जो पानी आ रहा है रोज़ का गंदा हमारे घरों का, वो आकर वहाँ पानी में से बाहर, नाली से बाहर निकल के रोड पे से बाहर आ रहा है। अब दोस्तों मुझे ये बताइए किसकी जिम्मेदारी है, क्या सरकार की? क्या हम सरकार को ये दोष दें कि आपने हमें ये चीज़ें मुहैया नहीं की, आपने हमारे लिए नालियाँ नहीं बनाई, आपने हमारे लिए सड़क नहीं बनाई? क्या हम सरकार को दोष दे सकते हैं इस चीज़ के लिए? नहीं ना दोस्तों, इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा नगमा जो हमारे साथ है इस वक्त। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने जो गाना सुना रिम झिम के गीत सावन गाए, जी हाँ, फिल्म थी अनजाना 1969 का ये सदाबहार गीत हिंदी सिनेमा के सबसे हसीन और रोमांटिक बारिशों के गीतों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, बारिश की बात जब हम करते हैं और बारिश इस साल पता नहीं आपके शहर में, आपके गांव में अगर कहीं ना कहीं बारिश है या आई है तो बताइए, बिकॉज हमारे यहाँ आबू रोड में तो अभी तक बारिश नहीं गिरी है। माउंट में एक सुबह सुबह हल्की हल्की सी फॉग की वजह से हल्की बारिश रहती है, लेकिन आबू रोड में अभी तक आज के दिन तक तो बारिश नहीं है। तो जो सब बात ये कर रहे थे कि सबसे हसीन और रोमांटिक बारिश के गीतों में से एक है सावन के इस मौसम में, और इस सदाबहार नगमे को अपने शो पे पेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सावन की पहली बूंद सूखी जमीन को छूती है तो सिर्फ एक मिट्टी की सौंधी खुशबू ही नहीं महकती, बल्कि दिल के किसी कोने में दबी पुरानी यादों में भी तरोताज़ा हो जाती है। बारिश का मौसम होता है ऐसा, थोड़ा नटखट, थोड़ा रोमांटिक और ढेर सारी पुरानी यादों से भरा हुआ। और जब बात सावन की हो और बैकग्राउंड में मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी का आवाज़ गूंज उठता है तो फिर क्या कहना। जी हाँ, 1969 की फिल्म अनजाना, जुबली कुमार कहे जाने वाले सुपरस्टार राजेंद्र कुमार और खूबसूरत बबीता जी पर फिल्माया गया एक ऐसा ही गाना जिसे हर किसी के दिल को सावन की फुहार से भिगो दिया। और इस बोल में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जो संगीत की मिठास घोली, वो आज इतने सालों बाद भी जब कानों में पड़ती है तो दिल झूमता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि जब शाम होती है, भीगी रात होती है, रिमझिम होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे वो दिन याद आते हैं, या कोई ऐसा खास दोस्त याद आता है, या कोई ऐसी चीज़ें याद आती जो बारिश से जुड़ी हो, है ना। आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो आप हमें ज़रूर से बताएं। कॉल कर सकते हैं 9414151415 पे, यानी कि 9414151415 पे। दोस्तों हमें आपके इंतज़ार है फ़ोन कॉल का, हम वेट कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल के लिए कि आपका फ़ोन आएगा और हम आपसे काफ़ी सारी बातें करेंगे। लेकिन बात हम जो कर रहे थे इससे पहले की, कि सरकार की, जब मैंने आपको बताया कि वो कचरा नाले में फंस गया, पानी रोड पे आने लगा, नाली में से बाहर आने लगा, रोड पे आने लगा और बीच रोड में बहने लगा, और पूरा रोड गंदे पानी से, जहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। तो मुझे बताइए दोस्तों, ये क्या हम सरकार को इसके लिए दोष दे सकते हैं कि सरकार ने ठीक से नहीं किया काम, या फिर हमारी ही वो गलती है जहाँ पे हम अपने घर के उस कचरे को सफाई नहीं कर पा रहे। अगर देख रहे हैं नाली में कचरा फंसा हुआ है तो हम अपने हाथों से उन कचरों को निकाल करके, फेंक करके, नाली को साफ करके, ताकि वो गंदा पानी फिर उसी नाली में से बहते हुए, पाइप से निकलते हुए, ड्रेनेज से निकलते हुए सीवेज तक चले जाए। काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा वहाँ पर, और हमने फिर किसी से कहा कि भाई ये ऐसा हो रहा है, आप इसे सफाई करवा दी जाए। और फिर उसे कुछ लोग आए, ट्रैक्टर लेकर के आए और जो कचरा जमा हुआ था उसको उठाया, फेंका, और फिर वो नाली को फिर से दुरुस्त किया गया पानी निकलने के लिए। लेकिन दोस्तों ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ी है, हमें इन चीज़ों का ध्यान देना था। जब हम कहीं गांव में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, शहरों में भी जाते हैं, तो अपने आसपास जब हम कोई कचरा करते हैं तो उस हमें खास ध्यान देना कि उस वक्त तो हमें लगता है कि ये कचरा तो मैंने यहाँ फेंका है या वहाँ फेंका है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब बारिश आती है वो कचरा बह करके नदी नालों में जाकर के फंसता है। चलिए दोस्तों हमारा पहला कॉल है आज के दिन का, हम बात करते हैं हमारे कॉलर से। हेलो,
1: अजय सर नमस्ते, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, बढ़िया सुरेश भाई, कैसे हैं? मैं वेट ही कर रहा था कि अभी हमारा फोन आना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा था कार्यक्रम में, थोड़ा वक्त था तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के बाद आपसे बात करूं। अभी तक हमारे कोई मित्र नहीं दिखाई दिए, क्या बताएं,
0: हो सकता है नहीं, हो सकता है हफ्ते भर की छुट्टी थी तो सोचा होगा कि अभी पता नहीं केवल कब आएगा।
1: कल कार्यक्रम था, नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैं हाजी नहीं था, चार पांच दिन में राजस्थान में ही था।
0: अच्छा,
1: यहाँ मैं चित्तौड़ में थे, सौर में थे, वहाँ मैं घूमने के लिए आया था चार पाँच दिन तक।
0: क्या बात है, कैसे रहे दर्शन सावरिया सेठ के?
1: हाँ कल ही मैं आया हूँ, और कई सारी जगह पे श्रीनाथ जी के,
0: अरे वाह,
1: और पुष्कर भी गए थे और चित्तौड़ भी गए थे, कोबा बुरा महल भी देख लिया हमारा।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: और वहाँ से हम सावरिया सेठ भी गए, वहाँ से हम खाटू श्याम भी गए,
0: क्या बात है,
1: कई सारी जगह पे हम घूमे थे। वहाँ का जो नजारा भी देखा, वो जो किला था और चित्तौड़ में पूरा देख लिया, बहुत अच्छा वहाँ का नजारा था सर।
0: अच्छा,
1: और कई सारे वहाँ का देखने लायक अच्छी चीजें थी, हमारे महाराणा प्रताप का जो स्थल था वहाँ भी गए थे।
0: ओके,
1: तो कई सारी चीजें हमने वहाँ देखी सर। तो बस कल ही मैं आया था, तो कल तो मैं नहीं जुड़ रहा था शायद कार्यक्रम में, लेकिन आज मैं सुन रहा हूँ कार्यक्रम और बहुत अच्छी बात है भी सर आपने बताई। ये जो आपने बताया कि कचरा फंस गया है, कचरा का पानी बाहर आ रहा है, पूरा नाला फिट हो गया है, तो सर सरकार ने तो बना दिया है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी होती है कि जो जो बारिश आती है पहले उसको साफ किया जाता है, बाद में पानी में सब कुछ फिट हो जाता है तो बाद में नहीं होता है, लेकिन पहले से जो हम इसको साफ सुफ कर देंगे तो पानी आपको आप अंदर चला जाता है और रोड पे नहीं आता है गंदा पानी, कई सारी जगह पे रहते हैं सर, ऐसा ही हाल होता है, पहले कुछ नहीं करते बाद में सब कुछ कचरा जमा हो जाता है, बाद में बोलते हैं कि सरकार क्या कर रही है,
0: बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल,
1: तो हम सरकार पर दोष करते हैं, देते हैं इस तरह से, सरकार पे दोष नहीं देना है, तो हमारी जिम्मेदारी है हमको करना है,
0: बिल्कुल।
1: तो सब कुछ सर देखते हुए भी हम अनदेखी करते हैं और करते सरकार पर दोष दे देते हैं, लेकिन हमको हमारी जिम्मेदारी है हमको करना ही।
0: हाँ, मतलब कहने का मेरा भी यही भाव था कि कहीं ना कहीं हम सरकार को दोष देते हैं इन सब चीज़ों के, लेकिन हमारी गलती का अगर हम दोष किसी और को देंगे तो कैसे काम चलेगा, अगर हम कचरा फेंक रहे हैं अनजाने में भी
1: जिम्मेदारी हमारी सर, खुद को हमको ही उसको भुगतना है, हम साफ सुथरा करेंगे तो कुछ ना कुछ बीमारियाँ हमारे साथ में आएगी, हमको उसको गंदा पानी में जाना पड़ेगी, तो हमारी जिम्मेदारी, हम अच्छा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी भी नहीं।
0: बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा आपने बात को छेड़ा है सर, ये बात बहुत बहुत ही समझदार की बात है, समझने की जरूरत है इसमें
0: जी,
1: और जो देखेंगे वो खाली देखते रह जाएंगे तो क्या होगा कुछ।
0: जी बिल्कुल, लेकिन ये बात जरूर से आसपास के लोगों को समझाना बहुत जरूरी है।
1: हमारे हाँ गीतकार हमारे आनंद बख्शी का भी जन्मदिन है, तो एक गाना आनंद बख्शी का जी हम सुनेंगे
0: जी, बताइए,
1: क्योंकि आज हाँ आज उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं है, ठीक, अच्छे अच्छे गाने उसने पेश किया है हमको, तो इसमें से एक गाना मैंने सुना है, बहुत अच्छा गाना है
0: जी,
1: कि है खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरे तेरा
0: चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, और सभी की तरफ से जो भी सुन रहे हैं शायद आपको और मुझे, उन सभी की तरफ से आपको जो भी हमारे सुने सभी को राम राम, और जी हाँ बहुत ही अच्छी बातें हुई, और कोशिश करते हैं ये जो गाना आपने हमें बताया है सुरेश जी हम उसको प्ले करें, और चलिए यही सब चीज़ें हैं, बातें करते रहेंगे बहुत सी बातें हैं, लेकिन चलते हैं अगला नगमा सुनते हैं और फिर करते हैं अगले नगमे के बाद की बातें। थैंक यू सो मच, रेडियो मधुबन पर बने रहिए, रेडियो मधुबन सुनते रहिए 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों। जी हाँ, अभी हम जो गाना सुना, तुम बिन जाऊँ कहाँ के दुनिया में आके, कुछ ना फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन। जी हाँ दोस्तों, आज थोड़ा गला, आज भी वैसे तो ठीक नहीं है, कल भी मैंने आपसे ज़्यादा बातें नहीं की गले ना ठीक होने की वजह से, आज भी ऐसी हालत है, गला बैठा हुआ है, नाक थोड़ा सा ज़ुकाम हो रहा है, खांसी भी साथ में है, लेकिन कुछ बोलिए आपके लिए मैंने गा दिए। दोस्तों गाना था, मूवी थी प्यार का मौसम, म्यूज़िक डायरेक्टर इसके राहुल देव बर्मन, यानी कि हमारे प्यारे आरडी बर्मन साहब, मजरूह सुल्तानपुरी जी ने इसे लिखा था और इसे गाया किशोर कुमार साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब। सोचिए, दो दिग्गज गायक जिसने इस गाने को गाया है, बहुत ही प्यारा उस समय का ये गाना, आज भी कईयों की ज़बान पे ये गीत आता है और जब ये गाना गाया जाता है तो बिल्कुल उसी मूड में, उसी फील के साथ गाया जाता है कि तुम बिन चाहूँ कहाँ। कभी कई बार ऐसा होता है कि कहीं किसी से बिछड़ करके जाना होता है, कहीं कभी किसी को दूर से देख करके जाने की इच्छा होती है, होता है कई बार, तो ये गाना सबसे पहले ज़बान पे आता है। चलिए दोस्तों, वक्त है अगला नगमा सुनने का, जो हमारे सुरेश भाई ने हमें अभी अभी जस्ट फरमाइश की थी, और कोशिश करते हैं कि हमें जो भी सुन रहे हैं हमारे भुरीलाल जी, मदनलाल जी, बुराराम जी, जो भी है, फिर हम लौट आए हैं, तो आप अपनी फरमाइशों का जो कारवा है उसे ना रोके, बजने दे, और शायद एक और कॉल है। चलिए गाने को सुनने से पहले हम सुनते हैं हमारे कॉलर को। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा
0: हूँ। नमस्कार मदनलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ।
0: जी, बड़े दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं, बातें हो रही है।
1: मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ही बहुत दिन हो गए।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: कोशिश तो की थी, मगर अब कुछ मौसम ऐसा था, कुछ बहुत सारी बातें हैं, और आपको नमस्कार करते हैं उसी के नगमे को, और हमारे सभी दोस्त सुन रहे हैं, सभी को नमस्कार करते हैं। और बच्चे आज तो पुराने गाने चल रहे होंगे, तो पुराने चला लेते हैं गाना एक।
0: बिल्कुल बताइए, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: गाना है, चलो गा लेते, जोन जानी जनादन तररम पम पम पम पम, स्वागत ने बुलवाया आज हूँ मैं आया, हम यारों का यार दुश्मनों के दुश्मन, से जनादन बन जान जानी जनादन तररम पम पम पम पम,

शोचाई शोचाई मुझे बुलाए, जिसने जो माना वो भूलाया, आज भी हम यारों का यार, दुश्मनों के दुश्मन पे दना दन दन। ये किल वो देखो कैसे निकले चमक के सारे, ओ ये किल वो निकले कैसे चमक के सारे, ये सबका दिल बहला, ये नहीं का दिल बहला, हीरोइन से टकराया हीरो।

ஜனார்தன் தரம் பம் பம் பம் பம் அங்கி ஹோயி அங்கி ஹோயே.

0: होटल में पहुंचाया हम यारो कम यार, दुश्मनों के दुश्मन पे जनादन दन चौन चानी जनादन तररम पम पम पम पम। ये गाना नसीब बिस्तर का है
1: जी,
0: और मोहम्मद रफीक साहब की आवाज है
1: जी,
0: और बस हमने गा लिया है।
1: चलिए कोशिश, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से आपने हमें ये गाना सुनाया, और कोशिश करते हैं हम आपको ये गाना भी सुनाए हमारे रेडियो के माध्यम से।
0: नहीं करते हैं जी, अगर पिक्चर में चलता है
1: जी,
0: हम नहीं ऐसा सोचते, हम तो कोई गाली भी बोले तो सुन लेते
1: हैं। चलो थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए मदन लाल जी आपका, और बहुत ही प्यारी तरीके से इन्होंने हमें ये नगमा सुनाया है। और चलिए बढ़ते हैं इस अगले गाने की ओर, और सुनते ही अगला नगमा जो हमारे सुरेश भाई ने हमें फरमाइश दी थी, और बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचे। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।

इस क्लासिक नगमे के लिए जो अभी हमने ये जो गाना देखा, ये जो था आर डी बर्मन जी के संगीतकार और आनंद बख्शी साहब इसके जो गीतकार हैं और गायक मोहम्मद रफ़ी साहब, कहते हैं हमारे पंचम दाजी यानी कि आर डी बर्मन जी, और जो अक्सर उनके पेपी और वेस्टर्न स्टाइल के गानों के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब्दुल्ला में उन्होंने ये दिखा दिया कि भक्ति और संपूर्ण से भरे संजीदा गानों में भी उनका कोई जवाब नहीं। रफ़ी साहब का जादू इस गाने में जो है, आवाज़ में जो दर्द, सादगी और रब के प्रति संपूर्णता यानी कि जो हम कह सकते झलकता है, वो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी ऐसा मोड़ आते हैं जहाँ हमारी बनाई सारी योजनाएं, हमारी सारी उम्मीदें एक तरफ, सॉरी थोड़ी सी खांसी, थोड़ी सी जुकाम चल रही है, और उम्मीदें एक तरफ धरी की धरी रह जाती है। इससे समझ नहीं पाते कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे ही लम्हों में काम आता है भरोसा, यह विश्वास कि जो ऊपर वाला कर रहा है उसमें ज़रूर हमारी कोई भलाई छिपी होगी। क्योंकि जब हम सब्र करना सीख जाते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। इसी सोच और संपूर्ण को बयां करते हुए एक बेहद खूबसूरत रूहानी गीत जो अभी हमने सुना, आनंद बख्शी साहब के लिखे लफ्ज़ पंचमदा यानी आर डी बर्मन साहब की दिल को छू लेने वाली धुन और उस पर मोहम्मद रफ़ी साहब का वो अलौकिक आवाज़। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की। और हमारा जो अगला नगमा है, हमारे मदन लाल जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे गाया हमारे लिए। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा जॉन जॉन इन जनार्दन, और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: ऐसा हो।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
2: बूढ़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए परेशान हुए रोए चिल्लाए दिल टूट गया जग छूट गया

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए
2: वेलकम बैक दोस्तों। और जो अभी हमने गाना सुना बहुत ही मजेदार, जॉन जॉनी जनार्दन तररम पम पम पम पम। दोस्तों याद है आपको ये गाना, जब भी हम गाते थे, चाहे हम अंताक्षरी खेल रहे हो चाहे कुछ हो, जब ऐसा कुछ शब्द आते थे तो सबसे पहले ये गाना मुंह पे आता था, तररम पम पम पम पम, फिर याद करते थे जॉन जॉनी जनार्दन। जी हाँ दोस्तों, ये गाना आज भी उतना ही फेमस है और हर दिल में राज कर रहा है, हर जबा पे ये राज कर रहा है, बिकॉज इसके बोल ही कुछ ऐसे है। और जब मूवी थी नसीब, आपको अगर याद हो तो ये जो मूवी थी नसीब, इसके बहुत से गाने, मैक्सिमम सारे ही गाने इस मूवी के बहुत ही सुपरहिट रहे अपने ज़माने में। जैसे आपको पता है इसके जो संगीतकार थे, म्यूज़िक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बहुत ही बेहतरीन जोड़ी, और गीतकार आनंद बख्शी साहब। आज हमने सारे आनंद बख्शी साहब के गाने खास करके सुने हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है कहा गया। और इसके जो गायक थे मोहम्मद रफ़ी साहब, सुनिए, सोचिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने इतना प्यारी जो आवाज़ इसकी दी थी जॉन जॉनी जनार्दन की। इसमें वैसे तो तीन गायक है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा साहब, अमिताभ जी और ऋषि कपूर साहब, शायद तीनों ही इसमें है जॉन जॉनी जनार्दन। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। बता दूँ भूरीलाल जी ने भी मुझे कॉल किया था, जब गाना बज रहा था उस वक्त भूरीलाल जी ने भी फ़ोन किया और उन्होंने सभी को नमस्कार कहा है, हमारे सुरेश जी, मदन लाल जी, बुराराम जी, जो भी हमें सुन रहे हैं उन सभी को उन्होंने अपनी तरफ से नमस्कार कहा है। और भूरीलाल जी आपको भी बता रहे हैं कि हमने, आपने जो आज हमें फरमाइश दी है, बहुत ही प्यारी फरमाइश दी है, मेरा बहुत ही प्यारा गाना है, तू जब जब मुझको पुकारे मैं चल जाऊँ नदिया किनारे, लेकिन माफ़ी चाहते हैं भूरीलाल जी की, ये जो गाना है मेरे प्ले लिस्ट में नहीं है क्योंकि ये कुछ नए समय का गाना है और इसे मैं अपने में नहीं प्ले बजा पाऊँगा, तो माफ़ी चाहते हैं आपसे, लेकिन कोशिश करिए अगले कल कुछ पुराने गाने, पुराने नगमे हमें फरमाइश में दे ताकि हम आपके लिए प्ले कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, क्योंकि जो अगला नगमा है ये भी बड़ा प्यारा नगमा है। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुन रहे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन,
2: वेलकम बैक दोस्तों। और वक्त है अभी आप सभी से विदाई लेने का। जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी से विदाई लेने का। हम मिलेंगे फिर आपसे कल ठीक इसी समय 8 बजे। तब तक आप बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। बिकॉज अगला जो कार्यक्रम है वो है सेहत स्वास्थ्य। हमें दीजिए छुट्टी, हम मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर। आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन।

मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा शुभ प्रेम ओम शांति।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजी श्री। यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसे कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता, उसे दरकिनार नहीं कर सकता। स्वस्थ रहने पर ही हम हर एक अपने जीवन को और जीवन के सुखों को भोग सकते हैं। जीवन में सुखी रहने का पहला तात्पर्य ही अच्छा स्वास्थ्य है। स्वस्थ रहना स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी। अगर आप कहें कि भाई, अगर एक सुखी जीवन की पहली सीढ़ी अगर हम देखें, तो वो पहला सीढ़ी, या ये कहें कि उसका बेसमेंट जो है, उसका जो पायदान है, वो अच्छा स्वास्थ्य उससे शुरू होता है। बहुत बार लोग अधिक धनोपार्जन करने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को दरकिनार करके भी, अपने भोजन पर, निद्रा पर, अपने आराम को त्याग कर भी, हम अपने दिनचर्या में उन चीजों को साइड में रख कर पैसे कमाने पर अटेंशन देते हैं। और बाद में जो हमने अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर किया होता है, उसे वापस हासिल करने के लिए पुनः उन्हीं कमाए हुए पैसों को खर्चना पड़ता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि ये तो गोल चक्कर हो गया, कि हम बैक टू स्क्वायर वन हो गए। जो हमने कमाया था वो हमने वापस खो दिया। अब ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं कि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख कर, इस स्वास्थ्य को खोकर वापस फिर से पाने का प्रयास न करके अपने स्वास्थ्य की इस कुंजी को बना के रखें। आइए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने की दिशा में हमें और क्या करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम अपने स्वास्थ्य की कुंजी को बनाए रखें, उन चीजों को आज समझते हैं। आज इन चीजों पर प्रकाश देने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य जगत से ही एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, और साथ में भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर मोदी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं इसी से शुरुआत करना चाहूंगा कि पैसे कमाने के लिए स्वास्थ्य को इग्नोर करो, फिर जो पैसे आ गए उन्हीं पैसों को खर्च करके फिर से उस स्वास्थ्य को कमाने में उन पैसों को गवाओ। ये तो बिल्कुल ऐसे बाजोली का खेल है कि हमने दाव लगाया, हम थोड़ा जीत भी गए और फिर बाद में अगले ही दाव में हम हार गए और जो जीता था वो सब कुछ दाव पे लग गया। तो क्या स्वास्थ्य के बारे में इस चीज को इस तरीके से समझने की आवश्यकता नहीं है कि स्वास्थ्य और पैसे एक दूसरे के पूरक?
1: श्री भाई, आपने बड़ी सुंदर बात की है। आजकल जो आपने बोला कि पहले अपना शरीर खर्चा करके पैसे बनाओ और फिर उसी पैसे को खर्च करके वापस अपना शरीर बनाओ। मैं बेसिक एग्जांपल्स लेता हूं आपके सामने कि पहले व्यक्ति बहुत खाता है और फिर जब उसको लगता है कि उसका वजन बढ़ गया, तब वो जिम में जाके एक्सरसाइज करना शुरू करता है, वो कोई एक खेल खेलना शुरू करता है, वो वॉकिंग करना शुरू करता है, वो चलता है, वो तैरता है, वो कोई बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, कोई भी एक फुटबॉल, बाहर जाके खेल खेलता है, जिम जाता है, योगा करता है, पिलाटिस करता है। क्यों? क्योंकि उसका वजन बढ़ गया और उस वजन को कम करना है। तो यदि हम कम खाते तो हमारा वजन ही नहीं बढ़ता। दूसरी चीज, जब हम काम करते हैं तो हम समय नहीं देखते। ये खासकर जैसे मैं, बहुत सारे मेरे डॉक्टर मित्र हैं, पुलिस में जो काम करते हैं, अधिकारी वर्ग है, इवन बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो दुकान पता चला सुबेरे 10 बजे दुकान खुली, रात में हिसाब मिलाते मिलाते 10:30 बज गया, उसके बाद वो घर आए तो इतना थक चुके होते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा खाया, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ गए, बातचीत हुई, और वो जो सोने का टाइम था वो करीब 11:30, 11:30, और वो 12 बजे सोए तो वो सीधे 8 बजे उठे, उन्होंने अच्छे से नाश्ता किया और फिर दुकान खोलने चले गए। ये एक रूटीन लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। इसमें स्पेशली जब आप 35 इयर्स को क्रॉस करते हैं या आप 40 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, तो आपका शरीर जो है वो ये मांग करने लगता है कि प्लीज मेरे ऊपर अत्याचार मत कीजिए। वो मांग करता है कि आप अपने भोजन को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, वो मांग करता है कि आप थोड़ा टहलिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, रनिंग करिए, कोई खेल खेलिए, वो चाहता है कि आप पसीना बहाएं, वो चाहता है कि आप अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं। और तब आदमी को अपने काम करने के समय में से इसको निकालना पड़ता है और अपने शरीर को देना पड़ता है। इधर बहुत सारे डॉक्टर्स, स्पेशली जो साइकेट्री या मेंटल इलनेस में काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं प्लीज गिव 1 आवर टू योर बॉडी एंड 15 मिनट्स to 30 मिनट्स टू योर ब्रेन. मतलब अब वो ये भी कह रहे हैं कि आप 1 घंटा खेलिए और आधी घंटा कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपके दिमाग को शांति मिले. इसमें मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है, गाना गाना है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है. मतलब कोई ऐसा काम करिए जिससे आपके दिमाग को खुशी मिले और शांति मिले. और 1 घंटा आप कुछ ऐसा करिए जिससे आपके शरीर में अच्छे से पसीना आए और आपका शरीर थके, आपका जो हार्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम करे, आपकी सांस फूलनी चाहिए कि आपका हृदय अच्छा काम कर रहा है, आपके फेफड़े फूलने चाहिए कि आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं और आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए. अगर आप ये कर पाते हैं तो अपने शरीर की गंदगी को आप निकाल पाएंगे. तो श्री भैया जो आपने कहा, मैं अपने सारे श्रोताओं को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने शरीर को पहले से समय दीजिए, क्योंकि अगर आप पहले से समय नहीं देंगे तो वो बीमार पड़ जाएगा. और आपको कोई क्रॉनिक बीमारी हो गई जिसमें आपको रेगुलर गोलियां और दवाइयां खानी पड़ी, तो जो आपने बोला कि आपको पैसे खर्चा करने पड़ेंगे अपने स्वास्थ्य को वापस लेने के लिए.
0: जैसे डॉक्टर साहब आपने अभी अभी क्रॉनिक बीमारियों के बारे में कहा, ऐसी बीमारियां जिसके लिए हमें हर दिन दवाई लेने की जरूरत है. आज एक ऐसी बीमारी जो लगभग हर घर में जिसके मरीज देखने को मिलते हैं या वो इस बीमारी की दवाई लेते हुए पाए जाते हैं, वो है डायबिटीज. और प्रायः हम इस चीज को एक बीमारी के रूप में देखते ही नहीं है. हमें ऐसा लगता है कि भाई आप तो जिंदगी भर दवाई खाते ही रहना है, तो दवाई खाइए और फिर आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी चीजें करते रहिए, बस ये एक एडिशन हो गया है. बट अब हम स्वस्थ हो ही नहीं सकते, अब डायबिटीज के साथ ही जीना है, ऐसा भी बहुत सारे लोग समझ लेते हैं और कहते भी हैं. अब प्रश्न उठता है कि पिछले दिनों जब हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे तो ये बात समझी कि हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, इससे हम बेहतर तरीके से निजात पा सकते हैं. ऐसे में प्रश्न उठता है कि डायबिटीज के मरीज अपने दिनचर्या के बारे में कुछ प्रश्न उठाते हैं. सबसे पहले तो वो ये बोलते हैं कि भाई हम पहले जैसे स्नैक्स खाते थे इत्यादि करते थे, अब हमें कौन से स्नैक्स खाने चाहिए.
1: डायबिटीज के मरीज को सबसे पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको सफेद चीनी, उसको एकदम छोड़ देना चाहिए. खासकर चाय में चीनी और जिन चीज में चीनी बहुत ज्यादा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, आइसक्रीम हो गई, हमारी देसी मिठाइयां हो गई, चॉकलेट्स या टॉफीज हो गई, या जो भी मीठा है जिसमें सफेद चीनी डाली जाती है, इसको सबसे पहले छोड़ देना चाहिए. अब हम ये पूछें कि क्या खा सकते हैं, तो अगर मोटा मोटी मैं बोलूं तो आप सारे फल और सारी सब्जियां खा सकते हैं, मगर थोड़ा सा कंट्रोल. ये तक कहा गया है कि आप आम, केला और चीकू, जो सबसे मीठे फल होते हैं, उसको भी सेवन कर सकते हैं, मगर उसको दिन में नहीं, 3-4 दिन में एक बार. और ये नहीं कि आप बैठ गए तो आप आज पूरा 2 किलो आम खा लेंगे, नहीं नहीं सर, एक फाग आम खाइए, वो आपके मन को शांत करेगी. और अगर आपको आम बहुत पसंद है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. जो फल एक डायबिटीज के मरीज के लिए सबसे अच्छा है वो है सेब, नाशपाती, अमरूद, संतरा, मौसमी. अच्छा, संतरा और मौसमी का रस नहीं पीना है, संतरा और मौसमी को खाना है कि उससे आपको उसका खुज्जा भी मिले. ये अब कहा जाता है कि जो भी बेरीज हैं, जैसे ब्लूबेरी हुई, स्ट्रॉबेरी हुई, ये सब भी आपके लिए बहुत अच्छी हैं. और ये सब जो बेरीज हैं या जो भी सहतूत हुआ, कॉमन इंडिया मलबेरी जिसे कहते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और ये आपके लिए बहुत अच्छा है. स्नैक्स की जैसे भैया आपने बात की, स्नैक्स में आप जितने भी नट्स हैं, जैसे वॉलनट हुआ या आलमंड हुआ, आप इसको थोड़ी मात्रा में कच्चा खा सकते हैं, भिगो के खा सकते हैं या हल्का सा भूज के खा सकते हैं. आप चने को भूज के खा सकते हैं, मूंगफली को भूज के खा सकते हैं, आप पॉपकॉर्न हुआ उसको खा सकते हैं, आप अंकुरित मूंग को खा सकते हैं, आपको जो सलाद पसंद हो भैया, आजकल तो बहुत बड़े बड़े शहरों में सैलेड काउंटर्स होते हैं होटल में, आपको जो सलाद पसंद हो आप उसमें थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के आप इसे खा सकते हैं। आप अपने घर में बहुत सारी सब्जियों का काट कर उसमें थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा नींबू डाल के कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इवनिंग स्नैक है आपके लिए। और आप फरवी हुआ या जो भी हल्की चीजें हुई जैसे पॉपकॉर्न हुआ, आप इसे रेगुलरली खा सकते हैं।
0: जब हम इन चीजों को समझते हैं कि हम स्नैक्स तो खाते ही हैं, सिर्फ हमारे स्नैक्स के खाने के तरीके, किन चीजों को हम खाते हैं स्नैक्स में, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है, जिससे हमें पता चलता है कि डायबिटीज में ये चीज खाएंगे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। बहुत सारे लोग इस बात से भयभीत हो जाते हैं, अरे अब तो डायबिटीज है, अब तो हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। नहीं खाना है के बारे में जितनी जानकारी लोगों के पास है, उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हमें क्या चीज खाना है और वो कितनी मात्रा में खाना है। अब एक और चीज जो डायबिटीज के मरीज अक्सर कहते हैं वो है फ्रूट्स के बारे में। वो कहते हैं कि भाई नहीं नहीं अब तो फ्रूट्स वगैरह हमें नहीं खा सकते, भाई हमें तो डायबिटीज है, फ्रूट्स तो बहुत मीठा होता है, तो फ्रूट्स तो हमारे लिए जैसे अब फ्रूट्स का कोटा पूरा हो गया, अब हम फ्रूट्स नहीं खा सकते, ऐसा भी लोग मानते हैं। इस विषय पर आप क्या कहें
1: भैया? आप सारे फल खा सकते हैं। एक बड़ी बेसिक बात समझिए कि डायबिटीज ग्लूकोज इंटॉलरेंस है और फलों में जो शुगर होता है वो फ्रक्टोज होता है। दूसरी चीज, फलों में नेचुरल शुगर है जो उतना नुकसान नहीं करती है जितना केन शुगर करती है या गन्ने का जो चीनी है वो करती है। मैंने जैसे अभी बोला है भैया, सेब, नाशपाती, अमरूद, पपीता, संतरा, मौसमी, विदेश के आजकल फल इंडिया में बहुत मिल रहे हैं, कीवी हुआ, ड्रैगन फ्रूट हुआ, ये अनानास हुआ जिसको पाइनएप्पल कहते हैं, ये सब आपके लिए बड़ा अच्छा है। जो चीज का ध्यान रखना है कि फलों को खाना है, न कि उनका जूस बना के पीना है। अभी भैया यूरोप में एक चीज शुरू हुई है जो दही में, मतलब फल काट कर उसमें दही ऊपर से कर्ड डाल के या दही डाल के लोग खा रहे हैं, उसका एक सूदी या बहुत थिक शेक बनाकर उसको चम्मच से खा रहे हैं कि उससे उनको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वो उसको, और नेचुरल जो फल है उसकी मिठास से उनका जो मीठा खाने की जो क्रेविंग है या जो मीठा खाने का उनका जो अंदर से उनको मीठा खाने की इच्छा हो रही है, क्रेविंग है, उसको भी वो शांत करता है। इसीलिए आप जो भी फल है जैसे अमरूद, सेब, संतरा, मौसमी, ये सब आप जरूर खाइए। और इन फलों को खाने का सबसे अच्छी बात है कि इसमें बड़ा अच्छा आपको विटामिन मिलेगा, आपको बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा और आपको इसमें ट्रेस एलिमेंट भी मिलेंगे जो आपके शरीर के लिए और अच्छा है, और आपको इंसुलिन जो डायबिटीज से होने वाले साइड इफेक्ट से उनसे भी आपको बचा के रखेगा। पुराने जमाने में भैया मैं एक फल का नाम लेना ही भूल गया जो कि सबसे ज्यादा प्रचारित किया जाता है, वो है जामुन। सब लोग कहते हैं जामुन खाओ, और अब तो जामुन के लोग छोटे छोटे चिप्स भी बना के बेच रहे हैं। बारिश के मौसम में ये आता है, इसको अच्छे से धोकर इसमें थोड़ा नमक और नींबू डाल के आप खा सकते हैं। ये आपके डायबिटीज शुगर को कम करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। बहुत सारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पद्धतियों में जामुन की जो गुठली होती है या जो बिया होता है उसको पीस कर उसका पाउडर बना के भी डायबिटीज के मरीजों को दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे भी आपकी शुगर जो है वो कम होगी।
0: फलों के बारे में ये एक बड़ी भ्रांति जो लोग समझते हैं कि हम डायबिटीज के मरीज हैं तो हमें फल नहीं खाने चाहिए, ये भ्रांति आज दूर होती भी नजर आ रही है कि फल सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक ही हैं, और हम इन बातों को समझकर सही तरीके से अगर हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें तो ये चीजें सही हो सकती है। आपने कहा फलों को खाना है, फलों के रस को नहीं पीना है, इसको जूस के फॉर्म में नहीं पीना है। ये भी एक प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जूस जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं और वो बहुत जल्दी पच भी जाते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग समझते हैं और इसलिए जूसेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं फल खाने के बजाय। ऐसे में आप क्या कहते हैं, खासकर वो लोग जो थोड़े उम्र दराज हो रहे हैं, जिनको चबाने में दिक्कत है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये फल खाना ही तो नहीं आ रहा है, हम तो पी लेते हैं उसको तो चली जाएगा, ऐसा लगता है, ये ठीक है?
1: भैया आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आपने खुद कहा कि वो जल्दी पच जाते हैं, तो डायबिटीज में इसीलिए फलों के जूस को मना किया जाता है कि अगर वो जल्दी पचेगा तो उसमें फाइबर कंटेंट कम हो जाएगा, और जहां फाइबर या खुज्जा उसमें कम हुआ वो बहुत जल्दी आपकी जो शुगर है शुगर को स्पाइक करेगा, मतलब आपके रक्त में चीनी को बढ़ाएगा। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप बहुत आराम से उस रस को पी सकते हैं, आप पाचन तंत्र आपका कमजोर है आप रस को पी सकते हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में पूरा रसाहार कराया जाता है जिसमें आदमी को सिर्फ रस पे रखा जाता है, अगर उसका पाचन तंत्र कमजोर होता है या उसको बुखार होता है या उसको सर्दी जुकाम होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ रस पिलाया जाता है, और मौसमी और संतरा तरबूज इनके रस में, और अब तो माल्टा भी मिलने लगा, इनके रस में बहुत मिठास है, बहुत अच्छा विटामिन है और ये शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। खीरे का रस निकाल के दिया जाता है लोगों को, लौकी का रस दिया जा रहा है जिससे पेठा बनता है भैया, उसका भी रस लोग निकाल के पी रहे हैं, और अब तो हम लोग तो पूरा एक लेक्चर अब बात कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ जूसेस पे, जो हम लोग शायद आगे कभी करेंगे। अगर आप छोटे बच्चे हैं, आप बीमार हैं, आपको डायबिटीज नहीं है या उम्र में बड़े हैं, तो आप किसी भी फल का मिक्सी में चला के उसका जूस बना सकते हैं और आप उसे उसका सेवन कर सकते हैं। बहुत से लोग जिनको कमजोरी होती है उनको कभी कभार भैया आम को मिक्सी में चलाकर उसका शेक बना के दिया जाता है कि जिससे उसमें ताकत आए। तो ये अगर आप बीमार नहीं है आप नॉर्मल है तो आप जूस जरूर लीजिए और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जिन लोगों को जूस पीने की भी जरूरत है या स्वास्थ्य के हिसाब से उनको वो जूसेस पीने हैं तो क्या चीजें वो बनाकर पी सकते हैं और किन फलों का उन्हें पीने की जरूरत नहीं है और डायबिटीज के लिए कौन से जूसेस नहीं पिए जाने चाहिए, ये भी बात समझ में आती है। अब हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन के बारे में भी बहुत सारे लोग डायबिटीज में ये कहते हैं कि नहीं हमें चावल नहीं खाना चाहिए, कई लोग ये कहते हैं कि भाई हम मीठा तो नहीं खाते हैं, मगर भोजन को एक समग्र आहार के रूप में हम हमेशा समझते आए हैं, एक बैलेंस डाइट के बारे में बात कही जाती है। कई लोग तो जैसे होटलों में इत्यादि में लोग खाते हैं तो लोग एक भारतीय थाली को पसंद करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये साउथ इंडियन थाली है ये नॉर्थ इंडियन थाली है। इस तरीके से थाली में बहुत सारी वैरायटी के साथ भोजन हमारे यहाँ परोसा जाता है, ऐसे में क्या डायबिटीज के मरीजों को इन थालियों से परहेज करने की जरूरत है, या इस थाली में से चावल हटा दें या ये हटा दें, क्या ऐसा कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है?
1: भैया उस थाली में सबसे पहले जो मीठा आपको मिला उसको हटाना चाहिए सबसे पहले, दूसरे नंबर पे या तो चावल को हटाइए या रोटी को हटाइए। कभी कभार ये भी देखा गया है कि आप उसमें तीन चार तरह की रोटियां मिलती हैं, जैसे आटे की रोटी, एक नान का टुकड़ा, एक मिस्सी रोटी। तो एक हम्बल मेरा एक सुझाव है कि किसी एक अन्न की रोटी खाइए या एक अन्न ही खाइए। आप कोई भी अगर थाली खाते हैं तो मैं सबको स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट्स को एक राय देता हूं, सिंगल प्रोटीन एंड सिंगल ग्रेन, मतलब आपका जो अनाज है वो एक होना चाहिए और आपकी प्लेट में जो आप प्रोटीन खा रहे हैं जैसे उसमें अगर दो तरह की दाल है, मूंग है आपका, उसमें पनीर की सब्जी है, तो कृपा करके सिर्फ एक प्रोटीन का सोर्स लीजिए, एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लीजिए, या मतलब एक अनाज लीजिए, एक प्रोटीन का चीज लीजिए, और जो भी उसमें सब्जियां हैं वो आप खा सकते हैं, सलाद आप खा सकते हैं। हाँ, ये जो जितनी मीठी चटनियां हैं प्लीज उसको इमली की हो या किसी भी चीज की अगर उस थाली में आपको मिल रही है आपको ध्यान देना चाहिए कि उस इमली में जो मिठास डाली जा रही है वो भी चीनी और गुड़ से डाली जा रही है, तो कृपा करके उसको छोड़ दें। अच्छा, एक भ्रांति और है लोगों की कि हम लोग गुड़ खा रहे हैं हम लोग चीनी नहीं खा रहे हैं, दोनों का सोर्स एक है, दोनों गन्ने के रस से बन रहा है, तो दोनों एक ही टेक्निकली एक ही चीज है। सो प्लीज सिंगल ग्रेन सिंगल प्रोटीन आप अगर उसमें करें और उस थाली में से अगर मीठा निकाल दें तो वो थाली आपके लिए परफेक्ट है।
0: बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है कि हम अपनी थाली में क्या परिवर्तन लाएं और किन चीजों को हम करें। ये बात सही है कि डायबिटीज के बारे में आज बढ़ती संख्या में लोग बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों, मगर सही चिकित्सकीय सलाह अगर हमें मिलती है और हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स के कहे अनुसार करते हैं तो फिर हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है, खासकर डायबिटीज के अगर आप मरीज हैं तो आपको किस प्रकार का स्नैक्स खाना है, किस प्रकार के फ्रूट्स कितनी मात्रा में और कैसे खाना है, और भोजन की थाली में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए, उसके विषय पर हमें डिटेल में जानकारी दी है। आशा करता हूं कि आप सभी अपने स्वजनों, मित्रों और परिवार के जनों के लिए इन जानकारियों का इस्तेमाल करेंगे और स्वास्थ्य की ये कुंजी सबकी बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएं करेंगे। आज हम सबके प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में हमने डायबिटीज के मरीज होते हुए भी स्वस्थ रहने की कुंजी क्या है, उस चीज को समझा है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में आज जो कुछ भी सुना है उस पर काम करना शुरू करें। सबसे पहले अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो अपनी थाली से मीठे को बाहर करें, चीनी हो या गुड़ हो दोनों को ना कहें। एक ही अनाज खाना शुरू करें, एक समय पर एक अनाज, एक प्रोटीन, चावल और रोटी दोनों एक साथ एक ही मील में यानी एक ही वक्त के भोजन में मिलाकर ना खाएं। साथ ही फ्रूट्स हमें कौन से खाने हैं, स्नैक्स में क्या खाना है, ये सब कुछ आज समझ में आया है। आज सेहत स्वास्थ्य में यही रुकते हैं, अगले एपिसोड में कुछ और विषयों पर चर्चा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस भेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: लटकाए हम। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, क्योंकि घड़ी ने बजा दिए हैं 9:30 और मनी दीदी और परी आ गए हैं लेके आपका फेवरेट शो
2: सपनों की सैर। तो बच्चों, बातें हो रही है बारिश की सीजन की।
1: हाँ, रिम झिम बारिश, कितना मजा आता है ना, और छतरी लेकर जाने में तो और ही मजा आता है।
2: बच्चे तो रेनकोट में कितने सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे गुड्डे और गुड्डी।
1: हाँ, वो बात तो है। तो चलो भाई, बच्चों को अब मानसून की जानकारियाँ भी तो देनी है ना।
2: बिल्कुल मनी दीदी। तो बच्चों, पता है ना, ये बारिश की सीजन मानसून कैसे बनता है?
1: हाँ बच्चों, पता है गर्मियों में भारत की भूमि बहुत गर्म हो जाती है और इससे वायु का जो दबाव है वो कम हो जाता है।
2: और बच्चों, इससे समुद्र से नमी वाली ठंडी हवाएं भूमि की ओर आती है और पहाड़ों से टकराकर वर्षा करती है।
1: हाँ, तभी तो बच्चों आपने देखा होगा ना कि गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो शुरू शुरू में तो कितना उमस हो जाता है, गर्मी और बढ़ जाती है।
2: हाँ, और जैसे ही जोरदार बारिश होती है तो फिर ठंडक हो जाती है।
1: हाँ, तो मानसून तो है ही महत्वपूर्ण ना बच्चों।
2: तो बच्चों, इसका मजा लेना, हर सीजन की हमें मजा लेनी चाहिए।
1: हाँ बच्चों, और बारिश के सीजन की तो बात ही कुछ और है, भले थोड़ा कीचड़ हो जाता है लेकिन ये भी जरूरी है।
2: हाँ, तो इसलिए बच्चों, ये थी आज के बारिश की सीजन की जानकारी। तो चलो अब कार्यक्रम को आगे भी तो बढ़ाना है।
1: हाँ बच्चों, अभी परी से कहानी भी तो सुननी है ना। तो चलो चलो भाई, सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि आज परी कौन सी कहानी लेकर आने वाली है।
2: बिल्कुल बच्चों, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सपना।

0: दुलारा।
1: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
2: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
1: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
2: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आ जाओ बच्चों, फिर से रेडियो के पास परी कहानी शुरू कर रही है। आज एक बेवकूफ शेर की कहानी सुनेंगे, बहुत ही मजा आएगा। जल्दी जल्दी बैठो रेडियो के पास। बच्चों, एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी, वो गुफा से बाहर आया और किसी जानवर की तलाश करने लगा। उसे दूर एक पेड़ के नीचे खरगोश दिखाई दिया। वो पेड़ की छाया में मजे से खेल रहा था। शेर खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। खरगोश ने शेर को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो जान बचाने के लिए भागने लगा। बच्चों, सोचो क्या हुआ होगा आगे। शेर ने उसका पीछा किया और लपक कर उसे धर कर दबोचा। शेर ने ज्यों ही खरगोश को मारने के लिए पंजा उठाया कि उसकी निगाह हिरण पर पड़ी। उसने सोचा कि इस नन्हे खरगोश से मेरा पेट तो भर नहीं सकता, इसे तो हिरण ही अच्छा रहेगा। तो शेर ने खरगोश को छोड़ दिया। वो हिरण का पीछा करने लगा। हिरण ने शेर को देखा तो जोर जोर से छलांग लगाता हुआ भाग खड़ा हुआ। शेर हिरण को नहीं पकड़ सका। बच्चों, उसके पीछे भागते भागते बेचारा शेर तो थककर चूर हो गया। अंत में उसने हिरण का पीछा करना छोड़ दिया। खरगोश भी हाथ से गया, हिरण भी उसे नहीं मिला। अब शेर खरगोश को छोड़ देने के लिए पछतावा करने लगा। आधी छोड़ सारी को धाए, आधी रहे न सारी पाए। है ना बच्चों, इसीलिए थोड़े में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। जो मिला उसमें खुश रह के उसको स्वीकार करना चाहिए। है ना बच्चों, चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे

0: दे सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
2: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
3: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: तो चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर किताब तेनाली रामा की, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं कहानी जिसका शीर्षक है मित्र की पहचान, जिसमें तेनाली राम ने एक युक्ति रची है महाराज के दोनों मित्रों में से सच्चे मित्र को पहचानने की। उन्होंने बहुत सुंदर स्वादिष्ट पकवानों से सजी हुई थाली दोनों मित्रों के कक्ष में भिजवाई और अचानक ही ये खबर फैला दी कि महाराज का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है और राज वैद्य उनकी सेवा कर रहे हैं। और तभी वज्रबाहु तो तुरंत अपनी भोजन की थाली छोड़कर ही दौड़ पड़ा महाराज से मिलने, और जो प्रसन्नजीत था उसने तो दबा के भोजन किया और रेस्ट करने के बाद में गया। फिर आगे क्या हुआ वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सुबह तक राज वैद्य भवन में रहे, सूर्योदय से पहले ही महाराज स्वस्थ हो गए। तेनाली राम महाराज के कक्ष में उन्हें देखने के बहाने पहुंचा। उसे देखकर महाराज ने पूछा, क्यों तेनाली राम, आज मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दोगे? आज नहीं महाराज, अभी। तो तेनाली राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बताओ तेनाली राम, मेरा मित्र इन दोनों में से कौन है, या दोनों ही है, या दोनों में से कोई नहीं? संशय मुक्त होकर बताओ, महाराज ने पुनः तेनाली राम से पूछा। तेनाली राम ने महाराज की ओर देखते हुए कहा, महाराज आपका सच्चा मित्र वज्रबाहु है, प्रसन्नजीत नहीं। फिर तेनाली राम ने महाराज को पूरी बात कहकर सुनाई कि कैसे आपके स्वास्थ्य खराब होने की सूचना से डर कर किस तरह वज्रबाहु भोजन छोड़कर महाराज के शयन कक्ष की ओर दौड़ पड़ा, और प्रसन्नजीत ने किस तरह भोजन के बाद विश्राम किया और तब अपने कक्ष से निकला। और फिर तेनाली राम से पूरा वृतांत जानने के बाद महाराज ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, भविष्य में भी तुम मेरे आचरण पर दृष्टि रखना, यदि कभी मैं कर्तव्य विमुख होता दिखूं तो इस बात की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो भी उचित जान पड़े करना। उस दिन से ही महाराज कृष्णदेव राय पहले की भांति दरबार में जाने लगे। महाराज को सक्रिय और सजग देखकर सभासदों में भी उत्साह पैदा हो गया और विजयनगर में पैदा हुई उदासीनता भी समाप्त हो गई। तो देखा ना तेनाली राम की युक्ति, उसने महाराज को भी उनके कर्तव्य का एहसास करा दिया। तो ऐसा था तेनाली राम। तो चलो बच्चों, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में तेनाली राम की नई कहानी। तो चलो मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, अभी तो परी का परी लोग जाने का भी टाइम हो रहा है भाई, गुड नाइट भी तो करना है ना। लेकिन उससे पहले पिछली कड़ी में परी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी तो हम परी से जानेंगे ना, उसके बाद उन्हें हम परी लोग जाने की छुट्टी देंगे। तो परी पिछली कड़ी में आपने क्या सवाल पूछा था?
3: बच्चों पिछली कड़ी में हमने पूछा था, रंग बिरंगी पंख फैलाए बारिश में नाच दिखाए, भारत का है राष्ट्र पक्षी, बताओ उसका नाम सच्ची सच्ची।
2: हाँ तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है जिसका रंग बिरंगी पंख होता है और बारिश में सुंदर सुंदर पंख फैलाकर नाचता है? तो उसका नाम है मोर, पीकॉक।
3: बिल्कुल सही बच्चों, ढेर सारे बच्चों ने सही जवाब भेजा है और आज की पहेली उसी उपलक्ष में है जिसकी बातें हो रही थी पहली कड़ी में। तो नोट कर लो, काले बादल घिराते हैं, बिजली चमका कर डराते हैं, पानी बरसता झमाझम, बताओ कौन सा मौसम है सनासन।
2: हाँ बच्चों इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, इसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। तो चलो भाई जल्दी से फोन उठाओ और 94-14-15-14-15 पर हमें वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
3: बिल्कुल बच्चों, और करना क्या है पता है ना, भगवान को लिखना मत भूलना।
2: हाँ क्या, सॉरी और थैंक यू, और फिर उनकी गोदी में सो जाना
3: जैसे हम सो जाते हैं, और करते हैं आपको गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट, गुड बाय।
3: सुनते रहो
2: मुस्कुराते रहो
3: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM पर।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर दर्द और बॉडी पेन है तो देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। और बच्चों को जैसा माहौल मिलेगा वो वैसे ही बनेंगे, तो इस पर चर्चा जरूर करेंगे। और आज बनाएंगे टमाटर पनीर पिज्जा, तो आप सभी तैयार होना बनाने के लिए, तो जरूर आप सीखेंगे और हम आपको सिखाएंगे। प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, जरूर सुनेंगे आप। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। पुनः दोहरा रही हूँ आज के विचार को कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। एक राजा की 3 लड़कियां थी। वह तीनों ही बहुत ही लाड़ प्यार से उनको पालना मिली थी। धीरे धीरे तीनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन भोजन करते समय राजा ने तीनों से पूछा कि आप किसके भाग्य का खा रही हो, किसके द्वारा आपको यह भाग्य वैभव आदि प्राप्त हो रहा है। प्रथम और द्वितीय लड़की ने कहा कि यह सब प्राप्तियां हमें आपके आधार पर ही हो रही है। लेकिन तीसरी लड़की ने उत्तर नहीं दिया। राजा ने उससे पुनः प्रश्न किया, तब उसने कहा कि मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ। मेरे भाग्य में जो सुख संतोष वैभव आदि है उन्हें ही मैं भोग रही हूँ। मेरे कर्म अच्छे हैं और मेरे जीवन में पुण्य कर्मों का फल जो निश्चित है वही मुझे प्राप्त हो रहा है, अर्थात मेरे भाग्य का फल ही मैं खा रही हूँ, ना कि अन्य किसी के भाग्य का। यह उत्तर सुनकर के राजा बड़े क्रोधित हुए। राजा ने कहा कि यदि आपकी प्राप्तियों में मेरा सहयोग नहीं है तो आपका इस राजभवन पर कोई अधिकार नहीं है। आपका विवाह एक गरीब व्यक्ति के साथ कराएंगे, तब आप क्या करेगी? लड़के ने उत्तर दिया कि मेरे भाग्य में वही है तो मैं उससे छूट नहीं सकती। यदि भाग्य श्रेष्ठ है तो झोपड़ी में भी खुशी से रह सकती हूँ। इस प्रकार का उत्तर सुनकर के राजा को और भी क्रोध बढ़ गया। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक गरीब बुढ़े व्यक्ति के साथ करवा दिया। लड़की ने राजभवन छोड़ करके जाते समय राजा से कहा कि पिताजी, मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है, किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपनी छोटी बेटी को नहीं भूलना। जिस गरीब बुढ़े व्यक्ति से राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह किया था, वास्तव में वह एक राजकुमार था। वह बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धनी एवं धैर्यवान व्यक्ति था, परंतु शापग्रस्त होने के कारण गरीब और बुढ़ा हो गया था। कुछ समय बाद राजभवन में राजा का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हुआ। चिकित्सकों ने जंगल से एक बूटी ले आने की सलाह दी। छोटी लड़की के पति ने बहुत ही कष्ट उठा करके राजा को जंगल से वह बूटी ला करके दी, जिससे राजा का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया और छोटी लड़की का पति श्राप से मुक्त हो गया एवं राजा बन करके पुनः राजा ही करने लगा तथा छोटी लड़की रानी बन गई। राजा को अपनी गलती की अनुभूति हुई और उसने अपनी छोटी लड़की से क्षमा मांगी। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए सुन लेते पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा शुभ प्रेम ओम शांति।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, अगर दर्द और बॉडी पेन हो तो क्या करेंगे, कितनी बार देखिए अभी तो दीपावली का काम चल रहा है, साफ सफाई करते हैं तो साफ सफाई करते करते बॉडी पेन होने लगता है, थकान आ जाती है, ऐसा लगता है कि अरे रे रे कब दीपावली का काम पूरा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप है ना रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पीजिए, सारी थकान भी दूर हो जाएगी, बॉडी पेन भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप रोज ही हल्दी वाला दूध पीजिए। जब तक भले आपको भाता हो चाहे नहीं भाता हो, चाहे आप पीते हो नहीं पीते हो, लेकिन जब तक आप ये जो दीपावली की साफ सफाइयाँ कर रहे हैं, भाई त्यौहार आते हैं तो त्योहारों के वेलकम, दीपावली तो ऐसा त्यौहार है कि उसके वेलकम करने के लिए पहले से हम अपने पूरे घर को चमका देते हैं, तो थकान तो आती है स्वाभाविक है। भले हम माइयों से काम लेते हैं लेकिन माइयाँ भी तो एक इंसान है ना, वो भी थक जाती है। तो सभी के लिए हल्दी वाला दूध बहुत ही फायदेमंद है, रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पी लीजिए, इससे बॉडी पेन ठीक हो जाएगा। अगला नुस्खा सुनेंगे आप ध्यान से, दांतों में सुराख हो तो क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, कपूर को महीन पीस करके दांतों पर उंगली से लगाइए, ठीक है, और उसे थोड़ा सा मलिए हल्के हल्के, सुराख हो कि आप अच्छी तरह मतलब साफ करिए पहले सुराख को, ठीक है, फिर मलिए उस पर, फिर सुराख के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबा करके रख दीजिए, दांतों का दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर दांत में सुराख है तो कपूर को महीन पीस करके दांत पर उंगली से हल्के हल्के से आप मलिए लगा करके, ठीक है, और तो इस तरह सुराख अच्छी तरह साफ हो जाएगा। फिर सुराख में कपूर को कुछ समय तक दबाइए, ठीक है, दबा करके रख दीजिए, इससे दांतों का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको और भी अगला नुस्खा सुना रही हूँ। देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं, मीठा मीठा खाना पसंद करते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे, साल भर के सवा साल के बच्चे, कोई कोई बच्चे इतना मीठा खाते हैं कि फिर कभी कभी उनको वो खरवा भी खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खरवा क्या होता है, तो गुदे की जगह पर ऐसी मीठी मीठी खुजली चलती है कि बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि बच्चे को क्या हो रहा है, क्योंकि वो बोल तो नहीं सकता है ना, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन मीठा ज़्यादा खाते हैं ना, तो इस तरह गुदे की जगह पर खुजली चलती है मीठी मीठी। तो बहुत ही सरल उपाय है इसके लिए कि आप केरोसिन का फोहा भर करके वहाँ पर लगा दीजिए, थोड़ा सा दबा करके, फोहे को नहीं लगाना है, वहाँ घिस करके फिर फोहे को हटा दीजिए, तो खुजली तुरंत ही बंद हो जाएगी। केरोसिन का फोहा भर करके गुदे पर और थोड़े से अंदर की साइड में लगा करके फोहे को निकाल दीजिए, केरोसिन लगा दीजिए, तो तुरंत ही खुजली ठीक हो जाएगी। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो धतूरे के पत्ते का रस निकाल करके उसे गर्म करके गुदा पर लगाइए, इससे भी जो चुन्नी काटते हैं ना, क्योंकि खुजली क्यों चलती है, मीठी मीठी खुजली क्यों चलती है, चुन्नट काटते हैं, है ना, मीठा ज़्यादा खाया है तो चुन्नट काटते हैं, इसलिए मीठी मीठी खुजली चलती है। तो धतूरे का पत्तों का रस निकाल करके उसे गर्म करके गुदा पर लगा दीजिए, इससे भी बच्चों को आराम मिलेगा, ठीक है। और अगर पेट के केचुए और कीड़े हैं तो एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद बराबर मात्रा में मिला करके सुबह सुबह और दिन में और शाम को पीजिए। केचुए तथा कीड़े 4-5 दिन में मर करके बाहर निकल जाएंगे। देखिए बच्चों का है ना पेट भी बड़ा दर्द होता है, अब बोल नहीं पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चों के क्या हो रहा है, तो इस तरह केचुए काटते हैं, कीड़े काटते, बच्चे चिल्लाते रहते हैं। तो एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद दोनों बराबर मात्रा में मिलाइए और सुबह दिन में और शाम को पीजिए, मतलब बच्चों को पिलाइए, ठीक है। बड़ों को काटते हो तो भी कर सकते हो आप, और बच्चों को इस तरह काटता है पेट दर्द करता है तो भी पिला सकते हो, तो इससे केचुआ कीड़े 4-5 दिन में मर करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत अच्छे हैं, आजमा सकते हो और अपने बच्चों का स्वास्थ्य, स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हो। चलिए प्रश्न पूछ लेती हूँ आज का। बहुत सुंदर प्रश्न है कि धात्री माता किस तरह का खाना खाए और अपने बच्चों को भी खिलाए। धात्री माता जिसके समझ लीजिए साल भर का बच्चा है, स्तनपान करता हो, तो स्वयं किस तरह का भोजन करे और बच्चे को किस तरह का खिलाए, ये प्रश्न है। जवाब आपको देना है। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर, बने रहिएगा आशियाना में। यूं गई और यूं आई, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।
2: जब जब तेरे पास मैं आया

यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। कुछ भी नहीं जब दरमिया

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आप खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे कि भाई बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि बहन जी।
1: जी जय माता दी, जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
2: बराबर स्वागत तो बराबर किया है, और दीपावली भी आ रही है
1: जी,
2: ऐसे मौके पे तो पटाखे छूट रहे हैं तो स्वागत तो होना ही चाहिए
1: जी। बोलिए आज के।
2: सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगा, आपने सुविचार भी बहुत सुंदर दिया आज का,
1: धन्यवाद,
2: इसके लिए थैंक्स तो बनता ही है, बहुत ही सुंदर सुविचार था
1: जी, थैंक यू।
2: और देखिए वो तो चलो विषय चला गया, अभी ये आपने बच्चों की बात रखी है ना, तो बचपन याद आ गया है बिल्कुल
1: जी।
2: देखिए घर में जैसा होता है ना, और आस पड़ोस में मतलब जैसा माहौल होता है ना, वैसे बच्चे ग्रहण करते हैं
1: जी।
2: जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले ही एक बात बताई थी, बच्चों माता पिता और बच्चों की
1: जी,
2: तो मतलब जैसा आप अपने माता पिता के साथ में कर रहे हो, वो अपने बच्चे देख रहे हैं, तो वही सलूक अपने साथ में होने वाला
1: जी,
2: क्योंकि प्रभु ने भी यही कहा है कि देखिए जैसा तुम खुद आचरण करो, जैसा तुम अपने परिवार के साथ में सलूक करोगे ना, वैसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला है
1: जी।
2: तो इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि तुम अच्छा कर्म कीजिए और अच्छा किसी के साथ में सलूक कीजिए, ताकि आपके साथ में भी बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा सब
1: जी।
2: तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा देखिए सबसे पहले बच्चों की गुरु होती है माँ
1: जी,
2: सबसे पहली गुरु वो है
1: जी।
2: तो घर में जो बच्चे सीखते हैं ना, वो ही सब कुछ करते हैं। जैसे कि एक बच्चा अपने स्कूल में जाके मतलब पढ़ने जाता था, तो पेंसिल वगैरह चुराता था
1: जी,
2: तो उस समय उसकी माँ ने नहीं रोका, तो उसको बढ़ावा मिल गया
1: जी।
2: तो धीरे धीरे बड़ा होके वो बहुत बड़ी चोरियां करने लगा
1: जी,
2: तो उस समय उसको पुलिस ने पकड़ा, और अंतिम इच्छा
1: फांसी पर
2: तो बोला
1: जी, फांसी की सजा दी गई उसको, तो उसने माँ को याद किया।
2: हाँ, तो माँ का कान उस समय काटा, किस लिए काटा वो आप समझ सकते हो ना
1: जी,
2: क्योंकि उस समय उसकी माँ ने रोक दिया होता
1: जी,
2: तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, आभार आपका।
2: बस यही मैं कहना चाहता हूँ सभी को कि अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए, ताकि वो बड़ा होके आपका नाम रोशन कर सके
1: जी। जी
2: जी, ये उसका बच्चा है
1: जी। बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत ही सुंदर विषय है, और बहुत ही अच्छे बात सुनने को मिली है कि देखिए प्रथम गुरु तो बच्चों की माँ ही होती है, घर का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप भी इस विषय में चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, बहुत ही सुंदर विषय है कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिला, जैसा माहौल मिलेगा वैसे बच्चे बनेंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है, प्रश्न का भी जवाब जरूर दीजिएगा कि धात्री माता को किस तरह का खाना खाना चाहिए और अपने बच्चे को भी खिलाना चाहिए। हमारी बहनें सुन रही हैं तो भी जरूर जुड़े, भाई लोग जो अनुभवी है वो भी जरूर जवाब देवे, और विषय बहुत अच्छा है, उसमें आप चर्चा कर सकते हो कि किस तरह बच्चों को माहौल मिलना चाहिए। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार उषा बहन जी, प्रणाम।
1: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनने को मिली।
3: काफी दिन हो चुके हैं बहन जी, जो पहले कार्यक्रम चलता था तब कॉल किया था, और अभी जो हमारे रेडियो मधुबन में कुछ तकनीकी वजह की प्रॉब्लम आई थी, उस वजह से कॉल भी नहीं लग रहा था, बात भी नहीं रही हो पाती थी, रेडियो मधुबन की कवरेज भी पूरी सही तरह से नहीं आ पा रहा था। तो 4-5 दिन से अब बिल्कुल सही रेगुलर आ रहा है, तो अब सुनाई अच्छी दे रहा है हमें।
1: क्या बात है।
3: और जी, और सवाल भी बहुत ही अच्छा किया है, और बातें भी खुशनुमा जीवन की अच्छी की है। और रेडियो मधुबन में सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई मेरे, उसको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और काफी दिनों के बाद रेडियो में आया हूँ, तो इसलिए मेरे भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ। बहन जी आपको प्रणाम, पूरे रेडियो मधुबन परिवार को।
1: थैंक यू भैया, आपको भी नमस्कार।
3: प्रश्न का जो आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं मेरे हिसाब से उसका जवाब देता हूँ।
1: जरूर,
3: जो सही है गलत है वो तो आप ही
1: कोई नहीं
3: जानते हैं।
1: अरे नहीं, ये तो जनरल बात है।
3: महिलाएं जो धात्री बच्चे जो बच्चा सुनिए से जो ऊपर का होता है, उसको दूध पिलाने वाली महिलाओं को हरी पत्तेदार सब्जियों खानी चाहिए, और पीले फल भी खाने चाहिए, और घी और तेल में जो बनाई अच्छी सी पकवान है वो भी खानी चाहिए, और बच्चे को बड़े प्यार से भी खिलानी चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया है।
1: जी जी,
3: और नमस्कार सभी श्रोताओं को। विषय
1: में आप चर्चा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि उनके ऊपर अच्छा असर पड़े, क्या कहेंगे आप?
3: बच्चों के साथ तो माता पिता और उनके घर में ऐसा कि प्यार से रहना चाहिए, बच्चों से प्यार देना चाहिए, बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी देनी चाहिए। जैसे शाम का समय जो पहले माताएं होती थी, दादी होती थी, वो अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाया करती थी, अच्छी अच्छी बातें भी, तो बच्चे उनके अच्छी वो समझ पाते थे, उनमें सोच भी अच्छी होती थी। तो अब तो क्या है, तो माता पिता जो बच्चों की तरफ को ज्यादातर तो ध्यान ही नहीं देती है, या ये मोबाइल इंटरनेट का युग आ गया है, तो वो मोबाइल लेके बच्चे बैठ जाती है, तो नहीं तो वो भी कोई ऐसी अच्छी जानकारी उसे भी मिलती है नहीं ले पाती है, तो ज्यादातर तो गेम ही खेलती है या वीडियो देखती है, तो माता पिता को और किसी रिश्तेदार का कॉल भी फोन के अंदर आता है तो वो भी नहीं उठाती है, जैसे घंटी साइलेंट कर रख देती है बच्ची। तो ऐसे माता पिता होती है, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, अच्छी से अच्छी जानकारी दें, अच्छी कोई बातें बनाए, अच्छी कहानियों उनको सुनाए, और अपने घर में और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार है तो बच्चे अपने अच्छे बनेंगे, और सुदृढ़ और संस्कारी बच्चे है तो वो स्कूल में माता पिता का और टीचर का, अपने गांव का, सभी का नाम रोशन करेंगे और अच्छा बनेगा।
1: बहुत खूब, आभार आपका दयाराम जी, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है इस विषय को, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर विषय है, और बच्चों को किस तरह का माहौल देना चाहिए ये हमारे हाथ में है। हम चलो बच्चे नहीं हुए उसके पहले आप किसी भी तरह रह रहे हो, लेकिन बच्चे होने के बाद आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप पहले की तरह झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला कर बात कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के साथ अगर झगड़ा कर रहे हैं, तो उसका असर तो बच्चे पर पड़ना ही है। हेलो
4: गुड मॉर्निंग कंचन जी।
1: वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार कंचन भाई जी। तो आज का प्रश्न है कि धात्री माता किस तरह भोजन करे और अपने बच्चे को भी कराए। साल सवा साल का बच्चा है, माँ का दूध भी पीता है और ऊपर से भी उनको देना पड़ता है, तो वो धात्री माता किस तरह का भोजन करे और कैसे अपने बच्चे को भी कराए, प्रश्न है ये, फिर विषय बाद में बता।
4: हाँ जी, तो ये हरे शाक भाजी का और प्रोटीन इसमें ज्यादा भोजन करे तो बच्चे को भी, दूध का सेवन करे, ये सब करे तो बच्चे को भी इसमें से जो ये दूध तो माता का पिलाना ही चाहिए, बाहर का खुराक लेकिन माता का दूध जरूरी है।
1: जी
4: तो ये,
1: अच्छा, और आज का विषय ये है कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि बच्चे संस्कारिक बने।
4: बच्चों के तो माता पिता के संस्कार हो गए तो बच्चों में आएंगे।
1: जी
4: जब बुरी कमाई करके घर में लाएंगे तो बच्चे बड़े बच्चे देखेंगे, उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सी कमाई आई है। और दूसरी एक बात करूँ तो मोबाइल
1: जी,
4: मोबाइल का माता पिता ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो बच्चे भी जरूर करेंगे
1: जी।
4: ये आजकल का माहौल है तो इसमें खास माता पिता को ध्यान रखना है। और जैसी बात करनी है घर में, बच्चे न सुने ऐसे कोई संस्कार इससे न आए ऐसी हमें घर में रहना है
1: जी।
4: जी बहन जी,
1: चले बहुत बहुत आभार कंचन भाई आपका।
4: जी बहन जी, सभी दोस्तों का आपका
1: जी। तो देखिए विषय बहुत ही अच्छा है कि बच्चों को किस तरह का माहौल देंगे। जरूरी नहीं कि घर का माहौल ही खराब हो, कितनी बार अड़ोस पड़ोस का माहौल भी खराब होता है। हमारे घर में अच्छा माहौल है लेकिन अड़ोस पड़ोस में अगर माहौल खराब है तो उसका भी असर बच्चों पर पड़ता है ना। क्योंकि बच्चे तो बच्चों में ही खुश रहते हैं तो कंपनी ढूंढते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं। और जब बच्चे जब उनके घर पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि झगड़े हो रहे तो भी उसका असर पड़ता है। क्योंकि बच्चे किसको कहते हैं, बच्चे तो महात्मा की उपाधि बच्चों को मिली हुई है, इनोसेंट होते हैं। उनके ऊपर जल्दी से असर होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो घर पर भी आकर के क्योंकि बात तो पूरी समझ नहीं पाता है, अधूरी बात करता है। तो माहौल सिर्फ अपने ही घर का नहीं, अड़ोस पड़ोस का भी अच्छा होना चाहिए। हेलो
5: हाँ दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो आप?
5: बहुत अच्छे दीदी, बहुत अच्छी बातें भी सुन रहे हैं
1: जी।
5: और पहले तो मैं बताऊँ दीदी, जब आपने कर्मों का विचार दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा लगा
1: जी, थैंक यू।
5: क्योंकि वो हम देखते हैं कई बार
1: जी,
5: इसी विषय पर जरूर एक बार चर्चा जरूर बताइए क्योंकि ये बहुत जरूरी है
1: जी।
5: एक बार वो विषय जरूर लीजिए
1: जी,
5: अच्छा विचार वाला।
1: जरूर जरूर।
5: और आप दो बात बहुत अच्छी बताई आज, तो बच्चों की बात बताई। तो बच्चों के तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि बच्चे जैसे पड़ोस में कई बार दीदी क्या होता है कि पड़ोस के बच्चे इतना तूफानी, मैं मतलब हमारे मोहल्ले की बात कर रहा हूँ मैं
1: जी।
5: एक बच्चा इतना दीदी तूफानी, इतना तूफानी की बहुत हमारे, तो दूसरा बच्चा बहुत सीधा था, अच्छा था, लेकिन इसके साथ मिल गया तो आज वही भी ऐसा हो गया है
1: जी।
5: तो माँ बाप बोलते हैं तो कुछ समझते नहीं है, बस ऐसे करते बोलते रहते हैं, छोटा सा बच्चा है फिर भी, तो जैसा माहौल वैसा बच्चा होता है। आज हम देखते हैं
1: जी,
5: कई परिवार ऐसा है कि अच्छे बच्चे होते हैं लेकिन जो अच्छे बच्चे को हम अच्छे बच्चे के साथ रखेंगे तो ही अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बच्चा ऐसा हो तो इसके पास रहेगा तो वो भी ऐसा हो जाएगा
1: जी जी। और आज के प्रश्न भी है कि धात्री माता को किस

0: ला दिया था। आज देखो तो इतना बॉडी का हो गया था, मैंने बोला इतना भारी की हो गया कि हमने पाउडर पीवा है।
1: जी जी,
0: ऐसा तो पाउडर तो नहीं पिलाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। जी
0: नहीं, बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, इससे शरीर भारी हो गया है बहुत।
1: जी
0: तो कभी कभी माता ऐसे पिलाती है तो, लेकिन नहीं पिलाना चाहिए उसको। अच्छा दूध पहले तो दीदी क्या था, हम तो जब छोटे थे हम तो बकरी के दूध पीते थे।
1: बहुत अच्छा है, बकरी का दूध तो सबसे बेस्ट है।
0: हमारे घर पे ही बकरियाँ थी जब हम छोटे थे, तब हमारा दो बकरियाँ थी, तो हम सभी भाई बहन बकरी का दूध पीते बड़े हुए। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बकरियाँ का दूध सभी वनस्पति के मिला हुआ आता है।
1: जी
0: तो वही अच्छा रहेगा, लेकिन आजकल वो नहीं है, तो बस जो आता है वही जो चिलाता है छेली रहता है वो खाते थे।
1: जी जी
0: बस, लेकिन हल्का खोरा खाएंगे तो बच्चा भी अच्छा रहेगा और माता पिता भी, माँ भी अच्छी रहेगी।
1: जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार जी। चलिए यहीं पर सुनेंगे एक गीत, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। जुड़िएगा, नंबर हमारे हैं 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हो। आइए सुनते हैं एक गीत।

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: बचपन में पैसा जरूर कम था, बचपन में पैसा जरूर कम था, पर यकीन मानो उस बचपन में दम था, पर यकीन मानो उस बचपन में दम था। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि जैसा माहौल होगा वैसे ही बच्चे उसमें ढलेंगे और उस अनुसार ही वो बनेंगे। क्या कहेंगे आप? आपका विचार क्या है, किस तरह का माहौल बच्चों को मिलना चाहिए? जुड़िएगा, इस विषय में चर्चा जरूर आप करिएगा। हम भी आपकी राय सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और इस सुंदर से विषय में आप भी अपनी चर्चा अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। बात चल रही थी माहौल की कि बच्चों को माहौल कैसा मिलना चाहिए। देखिए, घर की बात तो पहले ही होती है और आप सभी ने कही ही है कि भाई सबसे पहले तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, उसके बाद बाहर का। लेकिन बच्चे क्या है, या तो अपने अड़ोस पड़ोस के साथ खेलेंगे या अपने रिश्तेदार जो काका ताऊ इनके बच्चों के साथ खेलेंगे, तो कितनी बार क्या है कि भले भाई भाई है लेकिन एक भाई के घर का माहौल अलग और दूसरे भाई के घर का माहौल अलग। अब बच्चे तो खेले बिना नहीं रहेंगे, जाए बिना नहीं रहेंगे, उसका भी असर पड़ता है। जैसे कुछ शिकायतें सुनने को मिलती है कि ताऊ के बच्चे हैं, अंकल के बच्चे हैं, अब वो आपस में खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, फिर उसको अकेला कर देते हैं कि जा तू यहाँ से, हमारे घर से जा। जैसे बच्चे जाते हैं अपने बड़े पापा के यहाँ पर, तो बड़ी मम्मी है बाहर निकाल देती है, गेट बंद कर देती है कि जाओ तुम यहाँ से, अभी नहीं आओ। बच्चे मैंने देखा है, बच्चों को रोते हुए भी देखा है। अब 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे क्या समझते हैं, वो तो अपने भाई बहनों के साथ खेलेंगे। लेकिन महिलाएं पुरुष इस तरह का व्यवहार भी करते हैं, नहीं आना है अभी, जाओ यहाँ से, भले बच्चा रो रहा है लेकिन फिर भी दरवाजा बंद कर देते हैं कि नहीं आना है, जाओ यहाँ से। तो वो बाल मन पर बहुत असर पड़ता है बच्चों का। वो रोते रोते भले अपने घर में आता है, भले उसके मम्मी पापा प्यार से उसको समझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के कहीं ना कहीं अंदर से लग जाता है। फिर भी बच्चा तो बाल मन होता है ना, फिर जैसे जाने देते हैं तो खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, आज तो मुझे आने दिया घर में, क्योंकि अब एक भाई के एक ही बच्चा है, बड़े भाई के 2-3 बच्चे हैं, तो अब वो अकेला बच्चा क्या करेगा, अपने भाई बहनों के साथ ही खेलेगा ना, बड़े पापा के उधर ही जाएगा। तो इस तरह का माहौल भी बच्चों को मिलता है, इससे बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। और आजकल हर माता पिता यही चाहते कि एक बच्चा या फिर ज्यादा से ज्यादा दो, दूसरे का भी कम सोचते हैं। एक बच्चा हो गया बहुत हो गया, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, बहुत हो गया। लेकिन जब उनको कंपनी चाहिए तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बड़े जब हम बाहर जाते हैं तो हमको भी हमारे बरोबरी के चाहिए कि भाई हमारे को भी कोई कंपनी मिले तो अच्छा लगे। बच्चों का भी वही हाल है, बच्चे भी बच्चे के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि पड़ोस में हो चाहे अपने ही परिवार में हो 2-3 बच्चे हैं लेकिन उस बच्चे को आने ही नहीं देते हैं, तो क्या मतलब उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए माहौल अच्छा बना के रखना है, सिर्फ अपने बच्चे का ही नहीं सोचना है, हमारे अड़ोस पड़ोस के बच्चों का भी सोचना है कि अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे है वो भी है तो एक परमात्मा के ही संतान है ना, तो उनको भी प्यार दो और घर में उनको आने दो। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। गोपाराम जी कैसे हो?
2: बहुत अच्छे विचार आपके सुन रहे हैं
1: जी।
2: घर बैठे वो गंगा आती है
1: जी,
2: वो वाली बात है। अलग अलग भाइयों की बहनों के सुझाव आते हैं, सुनते रहते हैं
1: जी जी जी।
2: और मेरे पास एक बहन आई थी थोड़े दिन पहले
1: जी,
2: वो कुछ ये कॉफी पीने की ऐसा कोई रखते हैं
1: जी,
2: वो लोग मालूम तो पड़ ही जाता है
1: जी।
2: फिर मैंने उनको कहा मैं बाबू तुम्हारे दालदर मेरे को दूर हो जाएंगे, अब पैसों की कमी नहीं रहेगी
1: जी।
2: तो उसने क्या जवाब दिया था, नहीं नहीं एक कॉफी के पीछे के 10 रुपए मिलते हैं।
1: अच्छा
2: एक अच्छा एक बात, दूसरी बार अभी मैं एक दुकान पे बैठा, एक स्कूल ड्रेस में लड़का 10वीं 11वीं का होगा,
1: जी,
2: उसने पूछा कि भाई सिगरेट है अंदर?
1: ओहो,
2: क्या पता था, व्यापारी ने मुझे देख के मना किया, वो जाना फिर वो तो गया। मैंने कहा मार साहब के लिए लेने आया क्या? नहीं नहीं, ये तो क्या पीते है, और को मौका मिले तो वो पी भी लेते हैं क्या?
1: अरे रे,
2: अब ऐसा माहौल भी बन रहा है
1: जी।
2: और दूसरा संस्कार का आपने बात बताई, तो बच्चों में क्या होता है कि दो प्रकार के संस्कार होते हैं। अब उसके माता पिता के यहाँ का अलग संस्कार होते हैं और ननियाल मामा की माँ के अलग होते हैं
1: जी।
2: ये दोनों का तालमेल बिठा के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। पहले ऋषि जो थे ना
1: जी,
2: वो ये विचार देने का ही काम करते थे, गाँव में घूमते और जगह जगह जा करके
1: जी।
2: आज भी कई कई है, ऐसी बात नहीं है
1: जी,
2: लेकिन ये बहुत कम हो गया है
1: जी।
2: वो माँ बाप कमाने में लगे कि बच्चा पढ़ रहा है मेरा और अच्छी स्कूल में एडमिशन लेगा, और वो मालूम नहीं कि सिगरेट पी रहा है
1: जी,
2: और क्या क्या कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उसका ध्यान नहीं रखते है
1: जी।
2: थोड़ा हंसी मजाक जैसा भी बताऊँ आपको, एक भाई नया नया शादी करके आया, उसके घर वाली अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करने लगी
1: जी।
2: लोग आके उसको बोलने लगे, अरे तुम्हारी घर वाली ऐसी क्या मतलब झगड़ा करती है? तो उसने कहा भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो, मेरी सासू जी के पास में जाओ ना क्या?
1: अच्छा क्या बात है बहुत अच्छी बात है कि भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो, सास ने शिक्षा संस्कार दी है बेटी को तो उनके पास जाओ। सही है, जब कुछ बातें हो जाती है तो माँ तक, चाहे बेटा बिगड़े चाहे बेटी बिगड़े, पिता के पास कोई नहीं भेजेंगे, माँ के पास ही भेजेंगे कि जाओ अपनी माँ के पास, जबकि माँ तो अच्छी शिक्षा संस्कार ही देती है अपनी बेटियों को चाहे अपने बेटों को, लेकिन फिर भी नाम माँ का आता है। और जब कोई अच्छे नंबर से पास होता है या फिर कोई अच्छा काम करता है तो उस समय पिता बड़े फक्र से कहते कि वाह मेरा नाम रोशन कर दिया, और बिगाड़ा है तो माँ का नाम कि तुम्हारा बेटा है तुम्हारी बेटी है तुम जानो, ऐसा भी होता है। खैर बात चल रही थी बच्चों के संस्कार की, तो ऐसे देखो एक घर की बात नहीं कह रही हूँ मैं, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो चाहे परिवार वाले हो, बच्चे को आने नहीं देते हैं घर में, तो उसका भी बच्चों बाल मन पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए देखिए अपने बच्चे हैं वो ही पड़ोस के बच्चे हैं, वो ही अपने परिवार के बच्चे हैं, तो उनको भी आने दीजिए। जबकि देखिए आप दूसरा के घर में बच्चे जाएंगे ना तो बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने जो भाई बहन है अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चे उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि अरे वाह मेरे दोस्त है या मेरे भाई है, ये फीलिंग उनके अंदर आएगी। अपने घर में चाहे कितने भी मस्ती करती हो, करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है माताएं परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरों के घर में वो चुपचाप बैठे रहते हैं। हेलो
3: हेलो बहन जी, परिवार के?
1: हाँ जी कंचन भाई।
3: ऑफलाइन ऑनलाइन?
1: ऑन एयर।
3: परिवार के जो बच्चे के वो साथ अपना बच्चा खेले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहन जी क्या है कि जो परिवार के बच्चे है न वो परिवार के पड़ोसी जी हर रोज झगड़ा करते हैं, ये संस्कार बच्चों में आया है
1: जी।
3: और बच्चे भी गालियां, ये बच्चा गालियां देना शुरू कर देता है
1: जी।
3: तो ये अभी मैं ही बताऊं, मेरे बेटे का बेटा था दिव्यांशु, तो ये हमारे यहाँ आया तो कुछ गालियां देने लगा, तो मैंने बोला कि ये कहाँ से सीखा
1: जी।
3: तो ये बोले, मेरी बेटी बोली कि भाई ये पड़ोस वाला एक है वो बच्चा वो रोज खेलने के लिए आता है, इससे सीखा है
1: जी।
3: तो ये थोड़ी सावधानी रखने की थोड़ी जरूरत
1: है, बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सही बात है।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है
1: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। तो ऐसा भी होता है कि जब अपनी उम्र के बच्चे गाली गलौज करते हैं तो बच्चे सीखते ही हैं, इसलिए माताओं को पिताओं को चाहिए कि भाई अपने बच्चे को किस तरह का माहौल देवे। बहुत सारे देखो बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि माहौल अच्छा नहीं होता है ना तो माता पिता वो घर छोड़ करके दूसरे घर में भले किराए पर चले जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य देखते हुए वो लड़ाकू माहौल झगड़ा वाले माहौल में रहना पसंद नहीं करेंगे। वो यही सोचते कि हमारा तो जीवन बीत गया लेकिन हमारे बच्चों को ऐसा माहौल नहीं देंगे। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे माता पिता उस माहौल को छोड़ करके अच्छे माहौल में चले जाते हैं, चाहे भले वो किराए पर रहेंगे, खुद का घर हो फिर भी वो छोड़कर चले जाएंगे, किराए पर चढ़ा देंगे या बेच देंगे, इसलिए देखिए बच्चों को माहौल देना बहुत जरूरी है। एक अच्छा माहौल मिलेगा तो बच्चा का मन स्वस्थ रहेगा, संस्कारिक बनेंगे और उनके ऊपर सकारात्मक असर पड़ेगा और वो बच्चे भविष्य में कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, आगे बढ़ेंगे और आपका नाम भी करेंगे। इसलिए माहौल अच्छा दीजिए, घर का भी, अड़ोस पड़ोस का, साथ का, उन किस तरह के बच्चों के साथ बच्चे रह रहे हैं ये भी ध्यान देना जरूरी है। संग का रंग जरूर लगता है, बड़े होने के बाद वो कहते ना कि जब घड़ा पक जाता है फिर उस पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन कच्चा घड़ा होता है तो उसको जिधर आप मोड़ेंगे उधर वो मुड़ जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल दीजिए और हमेशा घर का माहौल अच्छा बना के रखिए, यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए सुनते हैं गीत, परंतु प्रश्न आज का है कि धात्री माता किस तरह का आहार लेवे और किस तरह का आहार अपने बच्चे को देवे। प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। और आइए सुनते हैं गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आशियाना के किचन में आज बनाएंगे टमाटर पनीर पिज्जा। भाई पिज्जा तो बच्चे बड़े पसंद करते हैं। खैर कहते हैं कि पिज्जा है, ब्रेड की कोई भी चीज है, वैसे बहुत कम खानी चाहिए, लेकिन कभी कभार खाने में कोई नुकसान नहीं। 6 महीने में 5 महीने में एक बार तो आप बना करके खा सकते हो और बच्चों को भी खिला सकते हो। और ऐसी चीजें तो बच्चे बड़े ही पसंद करते हैं। घर में नहीं मिलते तो फिर बच्चे लोग क्या करते हैं, बाहर जा करके खा लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम घर में ही बना करके खिला देवे, ताकि हमारे नजरों के सामने तो बच्चे रहे और हमें पता तो चले कि बच्चे कितना पसंद करते हैं या नहीं करते इन चीजों को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर क्या है कि माताएं कंट्रोल करती है या बनाती नहीं है, कोई कोई को आता भी नहीं है बेचारे को, कैसे बनाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चे बाहर जा करके खा लेते हैं, जो स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ जाएंगे, 5 साल के 6 साल के बच्चे भी ये चीजें बहुत पसंद करते हैं। देखते हैं बाहर तो या फिर अड़ोस पड़ोस में तो जिद करते हैं कि हमें भी पिज्जा खाना है। तो पिज्जा भी तरह तरह के बनते हैं, लेकिन आपको क्या है, पौष्टिक पिज्जा बनाना सिखा रही हूँ टमाटर और पनीर का। ठीक है, तो जरूर बना करके खाइएगा और जरूर अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। अब माताएं अक्सर क्या है कंफ्यूज हो जाती है, हर एक के घर में तो ओवन नहीं होते ना, तो माताएं कैसे बनाएगी। फिर वो यही सोचती है कि कैसे बनाऊ, ओवन ही नहीं है घर में। तो बच्चे जिद करते तो यही कहते जाओ बाहर जाकर के खा लो। लेकिन अगर ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, बाटी का कुकर तो हर एक के घर में होता है ना। भाई राजस्थान है, राजस्थान में तो दाल बाटी का ज्यादा ही क्रेज है, तो कुकर तो घर घर में रहते हैं। बस उस कुकर में भी आप बना सकते हो, ओवन की जरूरत नहीं। ठीक है, और है अगर ओवन तो फिर ओवन में बनाइए, साधन है तो यूज करिए, नहीं है तो कंफ्यूज मत होइए। अगर बाटी का कुकर भी नहीं है तो छलना तो सभी के घर में रहता है ना, बस नीचे तवा और ऊपर छलना रख दो और जो भी आप जैसे बेकरी आइटम बनाते हो उसमें बना दीजिए। तो अब मैं आपको सामग्री बता रही हूँ टमाटर पनीर पिज्जा के, कि आप लीजिए 1 बड़ा चम्मच तेल, ठीक है, 2 बड़ा चम्मच लेना है मक्खन, 6 टमाटर ले लीजिए, 200 ग्राम पनीर ले लीजिए गोल गोल कतले में कटा हुआ, ठीक है, 1 बड़ा चम्मच सोया साग की नरम पत्तियां लेनी है, और फिर स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च या लाल मिर्च जो भी आपको पसंद है ले सकते हो। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा, अगर रिफाइंड तेल है तो वो लीजिए, नहीं तो कोई सा भी जो भी तेल आप घर में खाते हो ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच। फिर 2 बड़े चम्मच ले लीजिए मक्खन, 6 टमाटर लेना है, 200 ग्राम पनीर लेना है और 1 बड़ा चम्मच सोया साग की नरम पत्तियां लेनी है, फिर स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च या फिर लाल मिर्च, वो आप पर छोड़ा है कि आप क्या पसंद करते हैं, काली मिर्च पसंद करते हैं या लाल मिर्च। ठीक है, अब बनाने का तरीका भी मैं आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, ओवन गरम करिए, अगर ओवन है तो, नहीं है तो कुकर रख दीजिए गैस पर। फिर आप पहले पिज्जा का बेस, इसके ऊपर तेल चुपड़ करके 5 मिनट इसको आप कुकर में थोड़ा सा बेक करें, ओवन है तो ओवन में बेक करें, नहीं तो कुकर में, फिर निकाल दीजिए बेक करके। ठीक है, अब टमाटर और पनीर को बेस पर सजा करके ऊपर से पिघला हुआ मक्खन फैला दीजिए, सब के ऊपर ये नमक काली मिर्च सोया साग की पत्तियां को बुरक करके पिज्जा को इतनी देर तक आप बेक करें कि पनीर पर सुनहरा पना जाए। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीका है, आप बाटी के कुकर में ये रख सकते हैं या छलने पर रख सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई चिपके नहीं और दूसरी बात है कि ये जले नहीं, आंच इस तरह आपको रखना है। ठीक है, ओवन में तो हमको पता होता है भाई 80 डिग्री में कर ले तो हो जाएगा, लेकिन गैस पर आप अगर आप बाटी के कुकर में या छलने में बना रहे हैं तो आंच हमेशा मध्यम रखिए और बीच बीच में देखते रहिए कि सुनहरा हुआ या नहीं, तैयार हुआ या नहीं, फिर इस तरह आप निकाल सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा तरीका है कुकर और छलने में बनाने का, लेकिन छलना डायरेक्ट नहीं रखना है गैस पर। ठीक है, नीचे तवा जरूर रखिएगा, तवा थोड़ा सा मोटा होता है ना, तो आग को इतना डायरेक्ट पहुंचाता नहीं है, नहीं तो फिर वो तो बनेंगे ही नहीं, जल जाएंगे। डायरेक्ट छलना रखेंगे तो डायरेक्ट आग पहुंचेगी तो जल जाएगा, और कुकर तो वैसे ही हाइट पर होता है, तो कुकर रखने के बाद तो कुछ भी रखने की जरूरत नहीं होती, स्लो कर दीजिए गैस को और आप डायरेक्ट इस तरह बेक कर सकते हो। ठीक है, फिर से दोहरा रही हूँ विधि, ध्यान दीजिएगा,
कि आपके पास कुकर है, छलना है, जो भी है रखिए गैस पर और गैस चालू करिए। अगर छलना रख रहे हैं तो नीचे तवा, फिर छलना रखिए, कुकर रख रहे हैं तो डायरेक्ट कुकर रखिए, ओवन है तो ओवन को गर्म करिए। पहले पिज्जा बेस पर आप तेल चुपड़िए और तेल चुपड़ करके 5 मिनट तक इसको बेक करिए, ठीक है। फिर निकाल करके आप टमाटर और पनीर को बेस पर सजा करके ऊपर से पिघला हुआ मक्खन फैला दीजिए। सबके ऊपर से आप नमक, काली मिर्च और सोया साग की पत्तियां भी बुरक करके पिज्जा को इतनी देर तक बेक करिए कि पनीर पर सुनहरापन आ जाए। इतनी देर आपको बेक करना है लेकिन जलाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, टमाटर पनीर पिज्जा तैयार है। तो देर किस बात की, भोग लगा देते हैं भाई, बच्चे तो भाई इंतजार कर रहे हैं और कंट्रोल नहीं होता है। तो आइए लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप टमाटर पनीर पिज्जा रखिए, और भी जो कुछ बनाया है आपने वो रखिए, और तुलसी पत्र रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो। कौन से पिज्जा का? पनीर टमाटर पिज्जा का, ठीक है। और देखिए, आपको भी अगर रेसिपी आती है सात्विक रेसिपी तो जरूर आप भी दे सकते हो, और एक दिन पहले आप बता सकते हो कि रेसिपी आप देंगे, ठीक है। आइए सुनते एक गीत, परंतु प्रश्न बड़ा अच्छा है कि धात्री माता किस तरह का भोजन करना चाहिए, धात्री माता को और अपने बच्चे को भी किस तरह का आहार देना चाहिए, जवाब जरूर देंगे। नंबर है 94-14-15-14-15 और सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: ना। अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम काफी अच्छे रहे हैं और बहुत ही सुंदर आपको विचार भी दिया है कर्मों के ऊपर, और नुस्खे भी बहुत अच्छे दिए हैं। छोटे बच्चों का अगर चुन्नट काटते हैं तो क्या करना चाहिए, तो बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, जरूर आप करिएगा। और रेसिपी भी बहुत अच्छी आपको सिखाई है, पिज्जा, पनीर टमाटर वाला पिज्जा जरूर बनाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बड़ी अच्छी हुई है कि बच्चों को माहौल अच्छा देंगे तो बच्चे संस्कारिक बनेंगे, और जरूरी भी है क्योंकि पहले के समय में तो तीन तीन चार चार बच्चे होते थे, पांच पांच छः छः बच्चे होते थे। तो चलो वो नहीं, वो कपूत निकला तो दूसरा सपूत निकल जाएगा। माता पिता निश्चिंत थे कि कोई न कोई तो हमारी सेवा कर ही लेंगे, लेकिन आज के समय को देखते हुए तो बच्चे एक या दो ही होते हैं। और पहले का और अभी के माहौल में बहुत फर्क है। पहले कैसा भी था लेकिन माहौल अच्छा मिलता था, आज हम कितने भी स्टैंडर्ड का जीवन जीते हैं फिर भी माहौल अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल देवे तभी बच्चे संस्कारिक बनेंगे, ठीक है। और आज का प्रश्न यही था कि धात्री माता किस तरह का खाना खाए और बच्चों को भी खिलाए, तो जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, दयाराम जी लाखनी से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई झोटाना से और कुपाराम जी कोजरा से। किसी ने कहा कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो उससे खून बढ़ेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। फिर किसी ने कहा है कि भाई लगभग तो सभी ने यही कहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाए। फिर किसी ने कहा कि भाई महिलाएं तो नहीं जा सकती है, पति ला करके देंगे तभी तो महिलाएं खा सकेगी। तो पतियों को चाहिए या जो भी सब्जी लेने जा रहे हैं उनको चाहिए कि वो कंजूसी ना करे और फल फ्रूट हरी पत्तेदार सब्जियां लाए। तो देखिए सभी का जवाब सही है, सभी के लिए मैं एक बार तालियां बजवाना चाहूंगी। तो बिल्कुल जरूरी है कि जो धात्री माता है, जो बच्चा स्तनपान कर रहा है और बच्चे को भी खुराक की आवश्यकता है, क्योंकि साल भर के बच्चे, 9 महीने 10 महीने के 12 महीने के बच्चे खाली माँ के दूध से अगर पेट नहीं भरता है तो उनको भी हल्का आहार देना पड़ता है। और अगर माँ के दूध से चल जाता है तो फिर तो ऊपर से कुछ नहीं देना चाहिए साल भर के बच्चों को, क्योंकि वो माँ के जो खुराक है, माँ का जो फिट करता है बच्चा, उस दूध में सारे ही पौष्टिक तत्व आ जाते हैं। इसलिए माँ को अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है धात्री माता को, कि वो हरी पत्तेदार सब्जियां खाए, थुल्ली खिचड़ी ज्यादा खाए, उसमें अच्छा सा घी डाल करके खाए, है ना, और थोड़ा सा नवसेका खाए, ठंडा होने के बाद नहीं खाए, नहीं तो सर्दी खांसी की तकलीफ होगी तो बच्चों पर भी असर होगा। और दूध जरूर पिए और फल फ्रूट भी खाते रहे। और अगर बच्चे फिर भी आपके दूध से बच्चों को पूरा नहीं पड़ता है तो बच्चों को भी आप, जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनके दांत तो नहीं है, तो आप उपमा अगर बना रही है तो उपमा में कुछ मत डालिए, खाली घी में सेक करके हल्का सा नमक और हल्दी डाल करके एकदम ढीला ढीला बनाइए। चाहे तो आप उसमें थोड़े से छाछ या नींबू डाल सकते हैं और ढीला ढीला बना करके एकदम राबड़ी की तरह, राजस्थान में राबड़ी बोलते हैं, ऐसे ढीले ढीले राबड़ी की तरह बना करके बच्चों को चम्मच से खिलाइए तो आसानी से खा लेंगे और सूजी नुकसान भी नहीं करती है। फिर आप जैसे कि फ्रूट, बच्चों को फ्रूट के जूस पिला सकते हो थोड़ा बहुत, और अगर जैसे बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे केला है तो केले को तो आप हाथ से मैश करके भी खिला सकते हो, ड्रैगन फ्रूट है उसको भी आप मैश करके खिला सकते हो, तो जो मैश हो जाते हैं हाथ से उसको आप हाथ से खिलाइए। और अगर बच्चे नहीं खा सकते जैसे अनार के दाने नहीं खा सकते क्योंकि दांत नहीं है तो चबेंगे नहीं, तो उसका जूस पिला करके आप दे सकते हो। तो इस तरह धात्री माता को भी ध्यान रखना है और अपने बच्चे का भी खाने का पूरा ध्यान रखना है, संतुलित आहार खाना है, ना कि ऐसे भारी भारी भोजन, ऐसे समय में दाल बाटी या मक्की की रोटी इस तरह भारी खाना नहीं खाना है क्योंकि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, हो सकता है उनके पेट में दर्द शुरू हो जाए। ठीक है, और अब मैं आपको एक प्यारी सी बच्चों पर ही कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। कविता का शीर्षक है झूला। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नबको छूले। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नबको छूले। हे बहार सावन की आई, हे बहार सावन की आई, देखो शाम घटा नब छाई। अब फुहार पड़ती है भाई, अब फुहार पड़ती है भाई, ठंडी ठंडी अति सुखदाई। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर के नब को छूले। कुहुक कुहुक कर गाने वाली, कुहुक कुहुक कर गाने वाली, प्यारी कोयल काली काली, बड़ी सुरीली भोली भाली, गाती फिरती है मतवाली। हम सब भी गाकर झूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले। मोर बोलता है उपवन में, मोर बोलता है उपवन में, मस्त हो रहा है नर्तन में। चालक भी चातक भी बोला वन में, चातक भी बोला वन में, आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी क्या हर पल एंजॉय की जा सकती है? क्या जिंदगी को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? कितने सारे सवाल आते हैं ना मन में, लेकिन उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे कार्यक्रम लव यू जिंदगी में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, जो कि सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू से। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से डायरेक्ट मिलकर उनसे बातें करके अपनी बातें शेयर करके। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
0: दीदी मुझे ना एक गाने की लाइन याद आ गई थी और उसमें कहते हैं कि बताना भी नहीं आता और छिपाना भी नहीं आता। कई बार भावनाओं के साथ ऐसा ही होता है कि समझ में नहीं आता कैसे एक्सप्रेस करें, और कभी कभी हमें लगता है हम बड़ा अच्छा छुपा ले रहे हैं लेकिन वो किसी और तरीके से एक्सप्रेस होके बाहर आ जाती है। और हम लोग भावनाओं के बारे में ही, इमोशनल अवेयरनेस के बारे में पिछले कुछ एपिसोड से बातचीत कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक प्रश्न आया था मेरे सामने, वो मैं आपसे पूछती हूँ। उन्होंने ये बोला कि उनको जब एक्सप्रेस करने का वक्त आता है, वैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मेरी भावनाएं अगर मैं किसी के भी सामने ले आऊंगी तो वो मुझे समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि नोबडी विल अंडरस्टैंड। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल सही समझा उन्होंने अपने आप को, कि एक तो होता है भावनाओं को समझना कि मेरी क्या फीलिंग है। मैं खुशी फील कर रही हूँ, मैं गुस्सा फील कर रही हूँ, मैं उदास फील कर रही हूँ, मैं जेलस फील कर रही हूँ, मैं कंपटीशन फील कर रही हूँ, दूसरे के साथ कंपैरिजन की फीलिंग मुझे है, मुझे क्या मेरी भावनाएं हैं, इसको पहचानना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं तब हमें एक अडल्ट होने के नाते फिल्टर लगाना होता है ना?
0: Okay.
1: हाँ, फिल्टर क्यों लगाना है कि अगर हम एज इट इज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देंगे तो लोगों को वो शायद समझ में भी नहीं आए और शायद पसंद भी ना आए। ये भी हो सकता है ना?
0: जी।
1: सो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा 9 साल का मेरे पास आता है, उसके माँ बाप उसको लेकर आए इसलिए कि आप इसे थोड़ा सुधारिए। ये जब बड़ों से बात करता है, बड़े कुछ भी पूछते हैं तो ब्लंटली जवाब देता है, जो उसकी फीलिंग है वैसी ही वो एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहन ने उससे पूछा कि कैसे हो आप, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। सो अब उसको सवाल समझ में नहीं आया, तो उसने कहा क्यों नहीं दिखाई दिया, आप इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, क्या आपको दिखाई? सो उसके जवाब बहुत ब्लंटली होते हैं, फिल्टर किए बिना वो किसी को भी जवाब दे देता है। तो उसके पेरेंट्स को ये चिंता है कि ये एज इट इज अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर देता है, जो कभी कभी सामने वाले को
0: अनकंफर्टेबल होते हैं,
1: अनकंफर्टेबल। किसी बच्चे से हम इस तरह के जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं
0: जी।
1: तो आजकल वो रोज बच्चा मेरे पास आ रहा है। सो मैंने जो ऑब्जर्व किया, ही इज वेरी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें वो समझता है, सोचता है, लेकिन छोटी छोटी व्यावहारिक बातें समझने में वो उसमें दिमाग नहीं लगाता है।
0: ओके।
1: वो जिस तरह से समझता है वैसे ही जवाब देता है, उसमें वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन अगर कोई किताब में से उसको कोई बहुत अच्छा पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ, उसका वो एज इट इज एक्सप्लेनेशन देगा, उसके बारे में बताएगा, वो बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेगा। पढ़ाई में होशियार है, हर चीज में, लेकिन उसको छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि व्यवहार में कैसे जवाब देना है। सो हम सभी ने डिस्कस किया, उसके पेरेंट्स और हम सभी ने मिलके सोचा कि अभी इसकी उम्र छोटी है, ये बिना फिल्टर के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा उसे टाइम देना चाहिए।
0: ओके।
1: जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा तो उसको समझ में आएगा कि जवाब कैसे देना है। सो वो समझ रहा है इस बात को, और उसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक कहानी मुझे याद आती है, किसी साइंटिस्ट की है। तो वो साइंटिस्ट बहुत बड़े रिसर्च करते थे, तो जिस कमरे में वो रिसर्च करते थे वहां एक बिल्ली थी और एक बिल्ली का बच्चा था, है ना। सो वो देखते थे कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के लिए आने जाने का रास्ता उनको बनाना था। तो रिसर्च में इतना बिजी रहते थे कि उस छोटी सी बात को सोचने के लिए इन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने सोचा मेरे पास दो बिल्लियां हैं तो मुझे दो होल्स बनाने हैं, एक बड़ा होल और एक छोटा होल।
0: ओके
1: तो उन्होंने दो होल बना दिए, एक बड़ा होल एक छोटा होल। सब लोग आके पूछते थे ये आपने दो होल क्यों बनाए हैं। कहा बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा होल, छोटी बिल्ली
0: के लिए छोटा होल।
1: बट वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सके कि अरे बड़े होल में से छोटी बिल्ली भी जा सकती है ना, उसके लिए अलग होल बनाने की जरूरत
0: नहीं है।
1: तो जब कई लोग एक अलग लेवल पर, एक जीनियस लेवल पर होते हैं, तो वो कभी कभी छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते
0: क्योंकि ब्रेन कहीं और ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जैसा आपने बताया वो बच्चा भी बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो और बहुत ऑनेस्ट भी है, जैसा आपने कहा अपनी फीलिंग्स के साथ, उसे वही फील हो रहा था तो उसने वही कह दिया। यहाँ मेरे पास एक और सवाल आता है।
1: नहीं, आपका सवाल में से मुझे लगता है कि मैंने एक आधा जवाब दिया।
0: जी जी,
1: जो सवाल था आपका उसमें आपने कहा कि कोई मुझे समझेगा नहीं।
0: हाँ जी, इसलिए मुझे स्ट्रेस नहीं करते हैं।
1: तो एक्सप्रेस करो या नहीं करो, लेकिन एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी।
0: ओके, कैसे?
1: मेरी किस तरह की फीलिंग है, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मेरी इस समय कौन सी भावना है, अगर मुझे अच्छी तरह से पता हो। और मैं किसी के सामने इसलिए नहीं व्यक्त करती हूँ कि वो मुझे नहीं समझेंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करना है। वो कैसे हो सकता है? आप कोई चित्र बना दो।
0: ओके,
1: हो सकता है आप कहीं किसी डायरी में लिख डालो, है ना, लिखना सबसे अच्छी एक्सप्रेशन है। हो सकता है आप गार्डनिंग करते समय पेड़ पौधों को वो बात सुना दो, जैसी है वैसी, क्योंकि वो जज नहीं करेंगे आप, है ना। या फिर हम जो करते हैं मेडिटेशन में, हम जब ईश्वर से बात करते हैं, परमात्मा से बात करते हैं या यूनिवर्स से बात करते हैं, तो हम अपनी बात एज इट इज यूनिवर्स को सुना देते हैं।
0: ओके,
1: क्योंकि
0: इंटरेस्टिंग है।
1: हाँ, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, केवल सुनेगा, है ना, और एक्सेप्ट भी करेगा। परमात्मा भी ऐसे ही है, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपको रिमार्क नहीं देते आप ऐसे हो आप ऐसे हो, जो आपको गलत नहीं समझते हैं,

0: करना बहुत जरूरी है.
1: एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट वर्ड है सप्रेस. तो क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि महिलाएं और गर्ल्स, फीमेल है, फीमेल्स है, उनको अक्सर कहा जाता है कि चुप रहो, बोलो मत. या कोई बहू है, बेटी है, या किसी भी रोल में है फीमेल्स, तो उनको दबाया जाता है, उनकी फीलिंग्स को शेयर करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो सप्रेशन में चली जाती है. और सप्रेस की हुई फीलिंग्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप अगर एक छोटी सी स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा के रखेंगे, प्रेशर दे, तो वो दबी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप हाथ उठाएंगे
0: तो एकदम से बाहर आती है,
1: उछल कर कूद कर
0: चलती है,
1: कहीं और चली जाएगी. तो वैसे ही जब हम अपनी भावनाओं को सप्रेस करते हैं, तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ते.
0: ओके.
1: उसको वेंट आउट नहीं हुई ना हमारी फीलिंग्स. उसको कई बार कहते हैं, आप बहुत अच्छा खाना खा लेते हो, पर थोड़ा ज्यादा खा लेते हो, तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है,
0: वॉमिटिंग हो जाती है,
1: वॉमिटिंग हो जाती है, या आपको वॉमिटिंग करनी पड़ती है. वो हजम भी नहीं हो रहा है और मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है. तो वो उल्टी करना एक्सप्रेशंस के साथ भी ऐसा ही होता है, फीलिंग्स के साथ भी ऐसा ही होता है. दबा दबा दबा दबा के, सप्रेस कर कर करके, फिर एक टाइम आता है कि आपको उल्टी करना पड़ता है. तो वो अगर उल्टी ना हुई, निकला नहीं आपके दिमाग से वो बातें, तो फिर वो आपको ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाए. क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं के साथ रिपीट करते रहोगे उन थॉट्स को, उन विचारों को,
0: और वो बिल्कुल भी अच्छा दृश्य नहीं होगा. जैसा आपने कहा, इट इज लाइक सब कुछ एकदम से बाहर आना, हैंडल भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त, शायद इतना कुछ एक साथ डील भी नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है. जो बहुत बार होता है, सच में हमें से बहुत लोगों के साथ होता है, एट एनी पॉइंट शायद हुआ है. यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मिलता जुलता ही था ये सवाल, लेकिन मैंने सोचा आपसे थोड़ा अलग से पूछती हूँ, क्योंकि डिफरेंट केस था. उन्होंने ये कहा कि वो एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा उनसे फाइनेंशियल स्टेटस में अलग है, एंड उसमें उनको कई बार ऐसा लगता है मैं अगर ओरिजिनली एक्सप्रेस करूंगा तो थोड़ा मजाक उड़ाया जाएगा, या ऐसा कहा जाएगा, जो उनके साथ एक दो इंसिडेंट्स हुए भी हैं. एंड उन्होंने ये कहा, आई एम ट्राइंग टू चेंज, तो मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, एंड आई विल वन डे, अभी मुझे थोड़ा सा हाइड करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को या अपनी चीजों को, मैं अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ, बट मैंने ये प्लान किया है कि मैं अपने आप को इतने समय में एक न्यू मी बना लूंगा, एक नया मैं बन जाऊंगा, जो बाकी लड़कों की तरह है, जो कॉन्फिडेंट है, जो मस्ती मजाक करता है ज्यादा. अभी वो वैसे नहीं है, बट ही सेड कि वो उनका प्लान है. तो इस बारे में क्या लगता है आपको?
1: बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी इन चीजों से गुजरी हूँ. जब स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस से बच्चे आते हैं. तो हम तो मुंबई के स्कूल में थे, तो हमने देखा हमारे स्कूल में गवर्नर के बच्चे भी थे, तो बड़े बड़े घरों से बच्चे थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके पास पैसे होते थे, वो रिसर्च में जाकर कुछ खरीद कर खा लेते थे. परंतु उनके बीच में रह के हमारे पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी. तो जो हमें उनके साथ रहते हुए भी गिल्टी फील नहीं कराता था या लो फील नहीं कराता था, वो चीज थी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट.
0: ओके.
1: हाँ, सो वो कैसे बना, तो मैं आप एक उदाहरण देना चाहूंगी, मेरे ही बचपन का उदाहरण ही. सो मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जीवन का काफी अनुभव था उन्हें, पुराने लोगों को था जीवन का अनुभव. तो एक घटना के माध्यम से उन्होंने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया. तो एक बार क्या हुआ, बहुत छोटी उम्र थी, 4-5 साल की, और सभी आसपास पड़ोस के दोस्तों ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे लेके आ जाओ, हम बहुत अच्छी चॉकलेट्स लेंगे, और हमारी वो छोटी सी चॉकलेट पार्टी होने वाली थी. दोपहर का समय था, मैं भी अपने घर में गई, देखा सब लोग सो रहे हैं. अब मुझे तो पैसे चाहिए थे, तो मैंने देखा कि टेबल पर कुछ चिल्लर पड़ी है. हमारे जमाने में 10-5 पैसे हुआ करते थे. और वो 25 पैसे का वो क्वाइन होता था. तो वो चिल्लर मैंने उठाई और मैं चॉकलेट खा के खत्म भी कर लिया, मतलब एंजॉय किया हमने वो दोपहर में. अब शाम हुई तो मम्मी पापा ने देखा कि इधर पैसे कुछ थे, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो सबको अनाउंस किया.

0: किसने लिए, क्या यहाँ कहाँ गए पैसे? तो मैंने आगे आके कहा कि ये मैंने लिए और मैंने चॉकलेट्स खाए। सो मम्मी पापा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सब लोग इधर उधर हो गए। फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा, आपने पूछा था किसी से पैसे उठाते समय? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने पहली शिक्षा दी कि देखो, चाहे आपके घर की चीज है, चाहे आप पड़ोस में खेलने जाते हो, उनके घर में कोई चीजें पड़ी है, छोटी है, बड़ी है, पैसे है, चीज वस्तु है, कोई भी चीज आपको पूछे बिना हाथ नहीं लगाना ना? किसी की भी परमिशन लिए, क्योंकि आपकी नहीं है ना, तो आपको परमिशन लिए बिना उसको यूज नहीं करना है। उसी का मौका लेकर उन्होंने दूसरी बात समझाई, देखो बच्चा, हमारी जो हैसियत है उसके अनुसार हम आपको सब कुछ देना की कोशिश करते, तो आपको उस बात की खुशी होनी चाहिए जो हम देते हैं उसमें आपको खुश रहना है। जब आप पड़ोस में देखते हो कि उनके मम्मी पापा उनको अच्छी अच्छी गुड़िया देते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी पुरानी है, थोड़ी छोटी है, आपको वही अच्छी लगनी चाहिए। आपकी नजर उनकी चीजों पर नहीं जानी चाहिए और अपने आपको कम नहीं समझना चाहिए। जो आपको मिला है वो भगवान का दिया हुआ एक बहुत सुंदर गिफ्ट है, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है, लेकिन दूसरों की चीजों को देखकर अपने आप को छोटा नहीं समझना है। ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने और एक बात कही कि इस समय हम आपको जो बता रहे हैं बातें, वो शायद आपको समझ में ना आए, पर आप इसको याद रखना और इसी को यूज करना। सो उस छोटी सी उम्र में वो बात याद रह गई कि दूसरों के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना, उनकी सोने की चैन होगी, स्टील की होगी, पीतल की होगी, लेकिन मुझे उस पर नाज होना चाहिए। उनके कपड़े बहुत ब्रांडेड होंगे, बहुत फैशनेबल होंगे, मेरे सिंपल होंगे लेकिन स्वच्छ होंगे, मुझे उस पर नाज होना चाहिए। सो वो चीज दिमाग में इतनी बैठी थी, तो इतने बड़े घरों के लोग होने के बावजूद भी हमें कभी अपने लिए गिल्टी फील नहीं हुआ या कम फील नहीं हुआ, हम उनके साथ उतना ही कॉन्फिडेंस से बात करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ रहना और अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखना, वो बहुत पैसे खर्च करते थे लेकिन हमारे पास जो थोड़े होते थे उसमें से हम थोड़ी चीज लेते थे और हम शेयर करके खाते थे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब मुझे ये पता चला कि वो बड़े घर के बच्चे मेरे टिफिन से खाना खाते थे और उनको मेरे घर का खाना अच्छा लगता था, तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात है जो आपको मेरे घर का, तो वो कहते थे आप हमारा टिफिन ले लो, आपका हमें दे दो। तो मैं अच्छा, कहती थी मेरा तो इतना सिंपल है, आपको मेरा क्यों अच्छा लगता है? वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें तुम्हारी मम्मी कितना प्यार से बना के दे रही है, उसका टेस्ट हमें पता है, इसलिए तुम्हारा टिफिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब मुझे महसूस हुआ कि हमारे छोटे से घर में उन्हें ले जाने में मुझे शर्म नहीं आई,
1: प्यार मतलब उससे भी ऊपर है। कई बार हम भावनाओं को कम रख लेते हैं, पैसों से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर जब ओरिजिनलिटी रहती है तो ओरिजिनली लोग पसंद करने लगते हैं। कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया दीदी आपने, और मुझे लगता है कितना प्रैक्टिकल है ये।
0: लोग क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज में शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं
1: जी,
0: कपड़ों से, अपनी बातों से, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों? आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही प्रेजेंट रहो, तो वो भी एक भावनाओं की सच्चाई जो है
1: जी,
0: वो सामने वाले के दिल को छू जाती है।
1: ये जो न्यू मी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने ये वाला शब्द सुना उनके मुंह से, न्यू मी, तो ये न्यू मी बनने के लिए क्या हम अपनी भावनाओं को फेक करना या फिर कुछ और बनने के लिए, अगर कहीं हमें जो चीज सही नहीं लग रही है वो भी फील करना, जैसे उन्होंने बताया ग्रुप में कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं किसी का, तो उनको इनिशियली वो नहीं होता था उनसे, क्योंकि शायद उनको गिल्टी लगता होगा, ये वर्ड तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बाद में वो कोशिश करने लगे कि मैं भी उड़ाऊं मजाक थोड़ा, मैं भी उस प्रकार से करूं। तो ये अपनी भावनाओं को खुद ही हम कुछ और समझ रहे हैं क्या, क्या कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है ऐसा लग रहा है?
0: देखिए, एक मजाक उड़ाने की जहां तक बात है
1: जी,
0: तो मुझे आप बताओ, उनको ये पूछना चाहिए हमें कि आपको किसी का मजाक उड़ाते हुए अच्छा लग रहा है क्या?
1: वो इनिशियली नहीं लग रहा था, बट उन्हें लगा कि ठीक है, नहीं लगना चाहिए मुझे गिल्टी, बिकॉज ये ऐसा ही कूल होता है या ऐसे
0: ग्रुप में अच्छा शामिल होने के लिए हम भी मजाक करना शुरू कर देते
1: जी,
0: है ना, कि मुझे उस ग्रुप में शामिल होना है। कई बार है ना, पीयर प्रेशर इस तरह का होता है कि जैसे कुछ बच्चे गलत काम करते हैं, कहीं चोरी करना, कहीं कुछ सिगरेट पी लेना, कहीं शराब का घूंट लगाना, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनको ये पसंद भी नहीं है, वो अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए उनकी जैसी आदतें डालने की कोशिश करते हैं।
1: अपनी फीलिंग्स को ही नेगलेक्ट कर देते हैं।
0: यस, ये फेक मी है,
1: इसमें न्यू मी नहीं है।
0: ये न्यू मी नहीं है, ये फेक मी है, और ये फेक मी के साथ लंबा समय जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो असली मी को समझना, न्यू मी करो बट वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। सो यहाँ हम नेगेटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स, जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं।
1: ओके,
0: हमें कि नेगेटिव फीलिंग्स क्या है, कि किसी के बारे में मुझे ईर्ष्या होना, उसको देख के मुझे अपने आप में कमी महसूस होना, ये नेगेटिव फीलिंग्स है ना।
1: मुझे अच्छा फील नहीं कर, अच्छा बुरा लग रहा है, बुरा लो लग रहा है।
0: लोग बड़े बड़े शौक रखते हैं, मुझे भी ऐसे लगता है मैं क्यों नहीं रख सकती हूँ, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सो हमें लगता है कि मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये कंपैरिजन होता है। हाँ, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, फिर हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं हूँ। तो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ फोकस जो है खुद से निकलकर दूसरों के अराउंड घूमता रहता है ना। तो अब अपने सेंटर ऑफ फोकस को जब मैं अपने पास वापस ले आती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अरे उनमें अगर ये चीज अच्छी है तो मुझ में ये चीज अच्छी है, वो ये काम कर सकते हैं तो मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करते हैं वही मैं करूँ।
1: सेम जरूरी नहीं है,
0: नहीं है। मुझे जो आता है, मेरी जो फीलिंग्स है, मैं उसके साथ चलूं, उसके साथ जिंदा रहूं, वो है रियल एंड न्यू मी।
1: बहुत सुंदर डेफिनेशन है। और कई बार हम सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स डिपेंडेंट ही रहती हैं। सेम ही बनना चाहते हैं, वैसे यूनिक बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स सेम करना चाहते हैं किसी ना किसी के साथ, ग्रुप के साथ, आइडेंटिफाई जिनके साथ हम करते हैं। बहुत सुंदर है। मेरे मन में और भी सवाल है, मुझे लगता है अभी तो हमें समय इजाजत नहीं देगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि और हम पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ कैसे जाएं, या फिर कई बार हमें रॉन्ग स्टिमुलस, यानी मान लीजिए किसी को चिढ़ा कर या गिरा कर अगर स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, तो फीलिंग तो मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बट उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, तो एक्शन और फीलिंग में क्या रिलेशन है, ये भी थोड़ा आपसे क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है दीदी कि कुछ अगर आप मेडिटेशन या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराएं जो हम अपनी पॉजिटिव फीलिंग से और अटैच हो पाए, और मी जो हम न्यू मी या रियल मी की बात कर रहे हैं उसको रियली रखें।
0: जी, सो मैं चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि वो 2 मिनट के लिए अपने आप को कहीं सेटल कर ले, किसी एक शांत स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर बैठ जाए, रिलैक्स करें अपने माइंड और बॉडी को, गहरी और लंबी सांस ले, और उस सांसों को ध्यान लगाते हुए, सांसों पर ध्यान एकाग्र करते हुए इमेजिन करें कि आप अपने आप से अलग हो रहे हैं। आई एम डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम मी। मैं थोड़ा सा दूर जाकर दूर से अपने आप को देख रही। गहरी और लंबी सांस ले और देखिए कि मुझे एक जो शरीर मिला है, इस शरीर के साथ मैं हर जगह पर एक अलग अलग रोल प्ले कर रही हूं। घर में मेरा रोल बेटी का है, बेटे का है, भाई या बहन का है। सो देखिए अपने आप को उस रोल में प्ले करते हुए, एक्ट करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए 10 सेकेंड्स के लिए देखिए अपने आप को वो रोल प्ले करते। मैं अपने हर रोल में ओरिजिनल हूँ, रियल हूँ। मैं एक बेटा या बेटी के रूप में माता पिता के साथ अपने ट्रू रियल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट हूं। माता पिता के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, शुक्रगुजार हूं। गहरी और लंबी सांस लें स्कूल कॉलेज में अपने रोल को देखें, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ अपने रोल को दूर से ऑब्जर्व करें और उसमें रियलिटी डालें। आप जो है, जैसे है, वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें। उस ओरिजिनलिटी के साथ लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए अपने आप, उस रियलिटी के साथ लोग आपकी पहचान करते हैं। चाहे आप अमीर है, गरीब है, छोटे हैं, बड़े हैं, होशियार है, कम होशियार है, एवरेज है, आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। लोग सच्चाई की, ईमानदारी की, रियलिटी की कद्र करते हैं। इसलिए गहरी और लंबी सांस लें, अपने आप से वादा करें, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे अपने आप को बहुत लाइक करती हूं। अपनी अच्छाइयां और कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती हूं। मैं अपने आप को, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे ही प्रेजेंट करती हूं। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दीदी। मुझे लगता है कि रियलिटी चेक है ये हमारे लिए, और अपने आप को वो करते देखना जैसा मैं हूँ वैसे ही पेश करना। अगर अभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कर लेंगे, पर उसके लिए मैं ना बदलूं। बहुत सुंदर आपने एग्जांपल्स के साथ हमें प्रैक्टिकल एक हमारी वर्जन की ओर लेके गए। मैं आशा करती हूँ हमारे दोस्तों को बहुत फायदा हुआ होगा इससे। दोस्तों, अगर आप कभी भी थोड़ा भी लो महसूस कर रहे हैं या परेशान लग रहा है आपको कि मैं अलग हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, तो दोस्तों हम बस ये कहना चाहेंगे कि आप अकेले रहिए और आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में, इस कार्यक्रम में। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें गाइड करने के लिए।
0: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का। मुलाकात होगी लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में। तब तक आइए, दिल खोल के कहे लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कितना खुशी लगता है अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गांव और जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि गांव को स्वर्ग कहते हैं। गांव को लेकर ही हमारा राज्य बनता और तो राज्य को लेकर ही हमारा देश विदेश बनता है। इसलिए गांव को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। और जब गांव का जो शुद्धता, जो भोलापन और जो विशेषता, जो हुनर, जो प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन आज हर दिन की तरफ आज हम भी आए हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगथला में, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास में उनका अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो भाव है, जो भावना है, जो विशेषता है, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच, एक स्टेज मिलता है। तो आज ये बच्चों को कौन भूल पाएंगे। बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, और बच्चे कुछ करने के लिए ठान लेते तो करके दिखाते हैं, और एक को देखकर दूसरे भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कदम पर कदम चढ़ते हैं तो चल जाते आगे तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए संस्था के संस्था प्रधान और सभी स्टाफ को नाम का सा धन्यवाद देते हैं। एक इशारे से हमें सहयोग दिए, कोई सूचना नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी बच्चे तुरंत अचानक में अचानक एवर रेडी रहते हैं और तुरंत भाग लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनका जो राष्ट्रीय पर्व जनवरी 26 अगस्त 15 में भाग लेते हैं, और जो कला है वो कभी भी कहीं पर भी मौका मिलता तो उसको जन जन तक पहुंचाते। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ सभी छात्राएं हैं और दो छात्र भी हैं, सभी मिलकर बारी बारी उनका आवाज सुनने को मिलेगा। जब इस आवाज को जब आकाशवाणी में सुनेंगे, रेडियो पर सुनेंगे, तो उनका मम्मी पापा हो, चाहे परिजन हो, चाहे उनका दोस्त लोग हो तो वहाँ, और उनके टीचर्स लोग सुनेंगे तो बोले अरे ये तो हमारा गुड़िया का आवाज है, हमारे बेटी का आवाज है, तो कितना खुशी होगा। रास्ता में उनको चलने नहीं देंगे, अरे वाह तुम्हारा आवाज क्या सुंदरता, और कितना सुरीली आवाज से स्वर लय और ताल का साथ भाव से आपने प्रस्तुति की। तो देर किस बात की, सभी को धन्यवाद देते हुए एक प्रस्तुति लेंगे जो कि प्रार्थना सत्र में हर विद्यालय में गाते हैं। तो शुरुआत कार्यक्रम को प्रार्थना से ही शुरू करेंगे, तत्पश्चात तो बच्चों का जो हुनर है, ढोलक मंजरा सब रेडी हुए और सभी बच्चे तत्पर हैं और उमंग उत्साह का साथ बढ़ चढ़ कर आज आए हैं। तो सब मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि सुनते रहो और मुस्कुराते रहो, ये तो हमारा टैगलाइन है, कीप लिसनिंग कीप स्माइलिंग। तो स्माइल रहेगा तो भले कुछ पैसा दे चाहे नहीं दे, लेकिन स्माइल एक बार होना चाहिए, क्योंकि जब हर्षित मुक्ता रखते हैं, हर्षित चेहरा रहता है तो लगता है कुछ प्राप्ति है, और झुका हुआ रहेगा तो कुछ लॉस, मैंने कुछ हार दिए, मैंने कुछ चला गया, ऐसे सोचते हैं। लेकिन हमारा बच्चा आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक प्रस्तुति जो कि प्रार्थना के रूप में, और सभी अपना अपना नाम और स्कूल का नाम और कौन सा क्लास में बताएंगे।
1: मेरा नाम दिव्या है और मैं बीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगथला में पढ़ती हूँ, मैं कक्षा 8वीं में हूँ।
2: मेरा नाम दक्षा है, मैं PMC राज्य का उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम दीपिका है, मैं PMC राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगथला में पढ़ती हूँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ।
0: श्रोता मित्र और ग्रामवासी, खासकर मैंने बोल दिया था राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय, लेकिन सभी जगह में राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय रहता है, लेकिन ये पीएम श्री कब से हो चुका है, और बहुत खुशी लगा ये प्रमोशन होकर यहाँ पर क्रमोन्नति हुआ, और बच्चों का जो टैलेंट है और स्टाफ का जो देन है उसको देखकर सरकार उसको पीएम श्री में कन्वर्ट किया है, तो खुशी है। तो इस तरह कार्यक्रम में हमें पीएम श्री से आज बच्चों का आवाज सुनेंगे, सभी बच्चे अपना अपना परिचय दिए। तो एक प्रस्तुति होगी जो कि प्रार्थना के रूप में, लीजिए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति की, और खासकर प्रार्थना सत्र में बच्चे अपना दिल का भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो दिव्या नाम कितना सुंदर है, दिव्या दिव्य ज्ञान जिसका दिव्यता जिसमें भरपूर है ना, दिव्यता मतलब जानते हैं ना पूरा वैल्यू है दिव्यता, आत्मा को दिव्यता कहते हैं, आत्मा में दिव्यता रहेगा तो बहुत चमकेगा सब चीज उसका ओरा जैसे, दिव्यता मतलब ओरा पूरा, कोई भी आएगा उसको वाइब्रेशन मिलेगा अच्छा चीज का। तो दिव्या हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे, उनका अच्छा दोस्त का नाम बताएंगे। दिव्या तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है?
1: दक्षा और दीपिका
0: दोनों। क्यों इतना बच्चे फिर दोनों को क्यों दोस्त बनाया? तो खास होगा राज विशेषता है कुछ गुण है
1: सर, जो पढ़ाई में अच्छा होता है उनसे ज्यादातर दोस्ती होती है। और वैसे तो दोस्त तो किसी को भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पढ़ने वाले को बनाए या फिर कम पढ़ने वाले को बनाए।
0: लेकिन खराब दोस्त को बनाएंगे तो क्या करेगा वो खराब में ले लेगा दोस्त, किसी को बना देंगे ऐसे नहीं होगा दोस्त, वो भी तो दोस्त चोर भी बोला मेरा दोस्त बनो तो बनेंगे
1: नहीं,
0: क्योंकि वो जैसे संग ऐसे रंग, उनका संग का रंग लग गया है ना, हाथी का पूछ पकड़ेंगे तो पहाड़ भी उठा देगा, देगा कि नहीं, क्योंकि उसके पास ताकत है बल है, उसको जांच करना चाहिए कि नहीं। हाथी का पूछ पकड़ेंगे उठने के लिए पर्वत वो पार करा देगा, करा देगा कि नहीं, क्योंकि उसके पास ताकत है। लेकिन जो कुत्ता को पकड़ेंगे तो क्या करेगा वो आपको दूसरा जगह में गटर में गिरा देगा। तो कैसे दोस्ती होना चाहिए, हाथी का साथ दोस्ती करना चाहिए ना सुअर का साथ दोस्त करेंगे, किसका साथ? हाथी का साथ, मतलब जिसके पास शक्ति है जो हमें फायदेमंद होगा उससे हमें संग करना चाहिए, हर चीज में हमें सहयोग मिलना चाहिए जो चीज हमें आवश्यकता है। जैसे हमें स्कूल में आते हैं, कभी स्कूल में ऑप्शन किस कारण से हम जा नहीं पाते तो आपका दोस्त बता देगा भाई आज क्या क्या पढ़ा है मुझे थोड़ा नोट्स दे दो, तो ये हो गया सहयोग, ये एक विशेषता है कि नहीं। इसलिए हम अच्छा दोस्त को जैसे श्री कृष्ण और सुदामा नाम सुने होंगे, गरीब अमीर का बात नहीं लेकिन भाव भावना दोस्ती में है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खास कर ये था पीएम श्री विद्यालय मुंगथला। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए, ब्रेक का पहले आप सब सुन पा रहे थे इस प्रार्थना का रूप में माँ सरस्वती का वंदना और बच्चों का भाव और भावना को लेकर हम पहुंचते हैं और दिव्या इस कार्यक्रम को सजाए, उनका दोस्त कौन है और क्या क्या चीज पढ़ते सब चीज बताए और आगे बढ़ते हुए, और छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं तो उनको भी स्वागत करते हैं, अपना नाम बताएंगे और ढोलक मंजीरा का साथ स्कूल के जो पीएम श्री स्कूल का आवाज, अभी तो बच्चे रेडी हो रहे हैं तो ढोलक का साथ मंजीरा और खंजन सब चीज आज सुनने को मिलेगा और हमारा तीन बच्चियां तो सुनाएंगे अपना आवाज। पहले अपना अपना नाम बताएंगे प्लीज।
1: मेरा नाम डिंपल है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम है पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुथला।
2: मेरा नाम खुशबू है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुथला है।
3: मेरा नाम अनिता है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगथला।
0: और ढोलक और मंजिरा के साथ जो है उनसे भी ले लेंगे, ये तो गीत गाएंगे तीनों छात्र और तीन गुड्डा है जो भी अपना नाम बताएंगे।
4: मेरा नाम कमलेश कुमार है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगथला है।
5: मेरा नाम महिपाल है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और हमारे स्कूल का नाम है पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगथला।
6: मेरा नाम महिपाल है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम है पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगथला।
0: वाह, क्या देखा, बच्चे रेडी है और हमारा महिपाल महिपाल दो महिपाल है और सुनेंगे सुंदर प्रस्तुति और सुर लय का साथ माँ सरस्वती को वंदना जब किए तो उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू

0: क्या बात, क्या बात सुंदर प्रस्तुति के लिए और ढोलक मंजीरा के साथ। और इस कार्यक्रम को तो चार चांद लगा दिए, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और सीख जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 7th क्लास 8th क्लास का बच्चे, लेकिन उनका अंदर में जो संगीत प्रति रुचि है सही में देखने को मिल रहा। और ऐसे संगठन में जब होते हैं तो संगठन में बल मिलता है ना, एकता का बल मिलता है, इसलिए सभी ने अपना अपना आवाज को सुना पा रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी को खुशी लग रहा है इस तरह रेडियो मधुबन में अपना आवाज को सुनाने के लिए। सभी बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, बड़े होकर क्या बनेगा तू?
1: डॉक्टर,
0: हाँ देखो, ऐसे होना चाहिए ना, ऊंचा इच्छा रखना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आईएएस ऑफिसर, जब ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो हमारा लक्षण भी ऊंचा दिखाई देगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। बढ़ पाएंगे कि नहीं? तो इसलिए सबको लक्ष्य रखना चाहिए, जैसे लक्ष्य रखेंगे उस तरह लक्षण दिखाई देगा। और आपका परिवार वाले और आपका सहयोगी, जो भी आपका दोस्त लोग भी सहयोग देंगे, और भामाशाह लोग भी है सहयोग देंगे, जो अच्छा पढ़ाई करेगा सहयोग मिलता है। सरकार तो सहयोग देता ही है, लैपटॉप देता है, साइकिल, स्कूटी, क्या क्या नहीं देता, और खाना पीना तो मिलता ही है सभी बच्चों को, चाहे पीएम श्री हो चाहे राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। तो तुम क्या बनेगा रे? तुम तो ढोलक अच्छा बजा रहा था, तो ढोलक ढोलिया बजेगा, क्या बनेगा?
1: इंजीनियर।
0: ढोलक बजाते बजाते इंजीनियर तक पहुंच जाएगा हमारा महिपाल जी, है ना। और तुम्हारे स्कूल में, विद्यालय में कितना महिपाल है? एक तो महिपाल तुम्हारा साथ दे रहा है, कितना महिपाल? कितना
1: 3 महिपाल है।
0: महिपाल है? वाह, महिमा माने पृथ्वी का जो देख रेख करते हैं, जो तुम्हारा नाम रखा ना, कौन नाम रखा?
1: भगवान ने।
0: भगवान ने रखा। अरे वाह, बहुत अच्छा, भगवान आकर नाम रखा ना। तुम्हारा चाचा हो चाहे दादा हो चाहे पापा, कौन नाम रखा है पूछना? आज पूछेंगे
1: हाँ।
0: मेरा नाम कौन रखा है? मम्मी रखा है ना, चाचा जी रखा है, कोई तो रखा होगा ना,
1: दादी ने रखा है।
0: उसका दादा, उसको याद है? तुमको याद नहीं, लेकिन याद करना, क्योंकि फिर तुमको जब अभी महिपाल नाम सुना है, महिमा पृथ्वी, पृथ्वी का पूरा रक्षा करने के लिए महिपाल भगवान का नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सिंगल एक बहन है, वो अपना आवाज को देंगी, वो भी श्री कृष्ण का भजन सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

थमी दिया तूने हमें जो जन्म, तुई झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि

की पर चले और बंदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले।

0: ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं और पुनः पुनः मिलते मिलते आज तृतीय लिंक में पहुंच चुके हैं। और इसका पहले ढोलक मंजीरा का साथ हम अच्छा से एक भजन सुने, तत्पश्चात और एक भजन के लिए हम बढ़े। तो अगला कड़ी में और एक छात्रा उपस्थित है, तो अपना परिचय देंगे और कहाँ से और बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उनका भाव और भावना, पढ़ाई में कितना रुचि है और कितना घंटा मेहनत करती है। स्कूल में 5 घंटा तो पढ़ाई, 6 घंटा पढ़ाई होती है, और जब घर जाते हैं तो कितना घंटा और मेहनत करती है वो भी बताएगी। पहले अपना परिचय देंगे।
1: मेरा नाम भावना है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ, PM सरी स्कूल में पढ़ती हूँ।
0: और बड़े होकर क्या बनेगी भावना? मान लीजिए तुमको कलेक्टर बनने के लिए मौका मिलेगा तो बनेगी? हाँ बोलो, बोलो हो कि नहीं। हाँ तो बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे?
1: हाँ
0: हाँ करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना भावना? और घर में कौन कौन है?
1: मम्मी में, पापा में, दादी में, भाई में, बहन।
0: भाई को ज्यादा प्यार करते ना, बहन को प्यार घर में, बेटी को ना बेटा को ज्यादा प्यार? हाँ
1: दोनों
0: को ज्यादा प्यार करते हैं। कोई भी सीजन में कोई फल आएगा, जैसे आम का सीजन में आम आता है, अंगूर का समय में अंगूर आएगा, कोई दिवाली होली में कोई नया ड्रेस आएगा, तो किसके लिए आता है?
1: दोनों
0: के लिए। अरे वाह, तो बहुत अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। कभी आपको अफसोस नहीं होता है जे भाई को देता है और मुझे काम मिलता है, ऐसे कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? भाई हमारा आगे, भाई सोचेगा बहन हमारा आगे रहे, और बहन सोचेगी मेरा भाई आगे बढ़े, ऐसे सोचते है कि नहीं? मेरा भाई मुझे नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मेरा भाई को मिलना चाहिए। और भाई भी क्या सोचेगा, मुझे मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन मेरा बहन को मिलना सोचते ना तुम लोग भाई लोग? बोले सोचते थे लेकिन हाँ तो बोल दिया, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद, लेते उनसे एक गीत शुरू करिए।
1: अच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण।

0: की वल्लभ।
1: बहुत सुंदर। कहाँ से सीखती भावना? गीत कहाँ से सीखती?
0: प्रार्थना बोलते।
1: प्रार्थना में। और कैसे सीखती तुम? कौन सिखाता है ना? तुम खुद ऐसे प्रैक्टिस करते करते सीख? खुद मोबाइल से? कभी मोबाइल से कभी प्रैक्टिस किया?
0: हाँ।
1: मोबाइल में भी आता है गीत?
0: हाँ।
1: और मोबाइल देखते हैं, यूज करते हैं मोबाइल?
0: काम होता है तभी।
1: काम होता है?
0: स्कूल का,
1: स्कूल का काम, होमवर्क। मोबाइल से होमवर्क हो जाता है? और क्या होता है मोबाइल से? देखिए मोबाइल से क्या सहयोग मिलता है तुम बता। देखिए मोबाइल हमारे पास रहने से क्या, जैसे ये बोलता हम मोबाइल से सीख जाते गीत, और होमवर्क भी होता है, पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी हो सकता है, और बहुत कुछ फायदा मोबाइल। तब तो लेते हैं, इतना रुपया खर्च कर मोबाइल लेते हैं तो उसका तो फायदा तो लेना चाहिए ना।
2: कॉल करने में और पढ़ने में।
1: पढ़ने में किससे बातचीत, संवाद करने के लिए, कोई अर्जेंट आया मान लीजिए कोई मुसीबत में पड़ा तो भाई हमारा घर में खबर पहुंचा दो। अब तो लेटर तो नहीं, कोई जाएगा नहीं तो मोबाइल में क्या करेगा, तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। और व्हाट्सएप में आजकल तो पूरा कितना प्लेटफॉर्म है मोबाइल के अंदर, यूट्यूब है, इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम और ईमेल है, बहुत सारा है प्लेटफॉर्म डिजिटल। आजकल तो पैसा भी तुरंत मोबाइल में, पैसा लेकर जाना नहीं पड़ता है, मोबाइल में पैसा नहीं रहता लेकिन उसका ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है कि नहीं। कुछ खरीदना होगा तो पैसा जेब में नहीं रहेगा तभी मोबाइल में, मोबाइल से पेटीएम कर सकते हैं, और
2: दुकान में काम आता है तो पेमेंट और वगैरह कर सकते हैं।
1: हाँ, राशन लेना होगा तो जाकर वहाँ पर पेटीएम में पैसा तुरंत एक सेकंड में जाता है, गिनना नहीं पड़ता है। ये भी अच्छा मोबाइल का सदउपयोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे जो कि सामूहिक रूप में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगतला का ये नन्हे मुन्ने बच्चों का आवाज़।

लिखे जोख तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे

तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए।

चलिए प्रस्तुति को और आगे बढ़ाते हुए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक प्रस्तुति सामूहिक रूप में बोलेंगे, तो पुनः स्वागत करते हैं दिव्या एंड पार्टी।

0: करने गए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी का अमृत महोत्सव से अमृत काल तक पहुंच रहे और भारत विश्व गुरु बनने में कोई देर नहीं रह गया, और बच्चे इस तरह सच्चे मन से अपना देशभक्ति गीत गाते हैं, तो दिव्या और उनका दोस्त दक्षा बड़ा होकर क्या बनेगी तुम?
0: आईएएस।
1: हाँ, ये हुई ना बात, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा विद्यार्थी जीवन में, और 5-6 साल मेहनत करेंगे ना, कड़ी मेहनत, 20 नाखून लगाकर समय को बचत करके पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई ध्यान से पढ़ेंगे, अटेंशन होकर पढ़ेंगे, तो और 5-6 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आईएएस ऑफिसर बनते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है, सिर्फ 5 साल, बस मात्र 5 साल तुम मेहनत करेगी तो अगला 50 साल आपके पास पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, कुछ करना नहीं पड़ेगा, इतना पैसा भरमार होगा। और अभी 5 साल मेहनत नहीं करेंगे, 5 साल पूरा मजा मस्त पूरा करके दोस्त यारी पिकनिक घूमना फिरना में समय बर्बाद करेंगे, तो अगला 90 साल पूरा लेबर काम करना पड़ेगा, नरेगा में जाना पड़ेगा, 300 रुपया 200 रुपया मिलेगा, महीना में 10,000 मिलेगा तो क्या होगा, और उस समय तो 90,000 मिलेगा, एक महीना में 90,000, और ये 9,000 कौन सा पसंद करेंगे, 90,000 ना 9,000?
0: 90,000,
1: 1,10,000 कम, क्योंकि उसके लिए अभी 5 साल पूरा मेहनत मेहनत मेहनत, अभी 5 साल पूरा मेहनत कर लेंगे, इसलिए सभी बच्चे सुन रहे हैं, सभी मेहनत करेंगे तो जाकर मिलेगा, अभी जल्द मेहनत नहीं करेंगे, इधर उधर बात नहीं सुनेंगे किसी का बात, तो बर्बाद हो जाएगा लास्ट समय। देख रहे ना कितना लोग, कितना उसके पास खाने के पैसा नहीं, भिखारी बन जाते हैं, क्यों? बचपन में अपना समय को बर्बाद किया, ना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, ना बड़ों का बात माना, और खराब संगति में लग गया, तो क्या क्या उसका नाम मैंने नहीं लेना चाहता हूँ, खराब इतने हो जाते बच्चे, हो जाते हैं ना, तो हमें खराब नहीं बच्चे बनना चाहिए, हमें अच्छा बच्चे बनना चाहिए, उसके लिए मेहनत करना चाहिए और बड़ों का बात मानना चाहिए, जो भी होमवर्क मिलता है वो होमवर्क भी समय पर करना, दिल से लगन से मगन से, एक लगन एक मगन, बस एक ही दिखाई देगा, पढ़ाई अच्छा से करना है कि नहीं दिव्या एंड दोस्त, क्या करेंगे पक्का
0: जी?
1: हाँ, उसलिए अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा पहनना, अच्छा करना,
0: हाँ जी।
1: बोले नहीं सभी, जोर से बोलो,
2: हाँ जी
1: हाँ जी हाँ जी, करेंगे तो हजूर हाजिर हो जाएंगे, हजूर कौन, भगवान हजूर है, वो हाजिर हो जाएंगे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, सभी को नाम का सा धन्यवाद।

0: अगला प्रस्तुति लेकर आए हैं हमारा और एक परी। और क्या नाम है?
1: दीपिका कुमारी।
0: दीपिका, तुम्हारा नाम कौन रखा है? दीपिका
1: मेरी मम्मी ने।
0: मम्मी, क्या नाम है मम्मी का?
1: मैना देवी।
0: अच्छा, क्या करती मम्मी घर में?
1: काम करती है,
0: हाउस वाइफ। और पापा?
1: पापा काम करते हैं, फार्मर।
0: फार्मर, किसान। वाह सलाम, किसान को तो अन्नदाता कहते हैं, है ना? सबको पेट भरते कौन? हमारा किसान भाई, है ना? किसान है, शिक्षक है और सैनिक, ये तीनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। चलिए एक प्रस्तुत सुनेंगे। ओके, शुरू करो।
1: तुम सच्चे मन से याद करो, भगवान मिलेंगे।

0: ना वो लिखो अपना भाग्य आपका ऊपर में, किसका ऊपर में, खुद का ऊपर में। उसके लिए भगवान का बात मानना चाहिए, दिल से प्यार करना चाहिए, दिल से बुलाना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा, सुदामा कैसे प्यार से दोस्त को याद किया, चाहे कोई भी दोस्ती का नाम से दोस्त हिसाब से प्यार किया। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ऐसे हमें प्रार्थना सत्र में हो चाहे घर में हो, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, क्यों ना कहीं हमें हमारा बात को भगवान तक पहुंच जाए, हमारा ईश्वर तक, मालिक तक पहुंच जाए, तो इसलिए हम याद करते है ना। दीपिका, दीपिका ऐसे भाव सोचते है ना, भावना तुम्हारा, भावना तो आप इसका पहले गाए थी है ना, भावना और दीपिका दोनों दोस्ती है, दोस्ती करते नहीं, करना चाहिए सबका साथ। अच्छा वही दोस्ती है, कोई बात नहीं, जिसको भी दोस्त बना, जो अच्छा सहयोग देगा उसको दोस्ती मनाना चाहिए। और दीपिका तुम्हारा अच्छा भोजन क्या पसंद करते हैं, खाने में खाते ना अच्छा चीज, आज मिलेगा तो भरपूर, दो दिन तक नहीं मिलेगा चलेगा, ऐसे कोई भोजन आपको फेवरेट डिश क्या पसंद करते हैं। राजस्थान में तो कौन सा फेमस है, दाल बाटी,
1: दाल बाटी हाँ।
0: चूरमा, और तुम्हारा वही पसंद है
1: हाँ।
0: कभी घर में बनाते हैं, तुमको चांस मिलेगा स्कूल में सभी बच्चों के लिए पार्टी देना पड़ेगा, सर का चाहे मैडम का जो फेयरवेल पार्टी होता है ना, तो आपको बनाने के लिए मौका मिलेगा, तो आप दाल बाटी बना सकते हैं,
1: बना नहीं सकते,
0: खा सकते खा सकते लेकिन बना नहीं सकते, लेकिन कोई बना रहा होगा उसमें सीखना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक समूह गीत में ढोलक और मंजीरा का साथ इशारा आ रहा है, सभी बोल भाई ढोलक मंजीरा बहुत समय से रुका हुआ है, और बलिहारी है ना, बलिहारी में प्यार में बलिहारी जाना चाहिए, जैसे बच्चे अभी सुनाएंगे एक प्रस्तुति बारी जाऊ रे। ओके

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बहुत खुशी और हर्ष का साथ ढोलक मंजीरा और पूरा सब चीज लेकर बच्चे रेडी है और सभी साथ देंगे महिपाल को। ऐसे वो टीम लीडर है और ऐसे संगीत में तो टीम चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। कोई बोलने वाला है, कोई गीत गाने वाला है, कोई ताली बजाने वाला, कोई ढोलक बजाने वाला, सब कुछ रेडी है। हमारा सभी बच्चों को होबनहार बच्चे, क्योंकि पीएम श्री नाम ऐसे नहीं होता है भाई, पीएम श्री राजकीय विद्यालय। सभी विद्यालय तो आदर्श विद्यालय होता है, लेकिन ये पीएम श्री बच्चे तो कुछ तो श्री तो करेंगे, श्रेष्ठ काम तो करेंगे। तो श्रेष्ठ के लिए सभी बच्चों को पुनः स्वागत करते हैं महिपाल एंड टीम को। एक प्रस्तुति ढोलक और मंजीरा का साथ लीजिए।

0: बोलो अपने माता पिता गुरुदेव की
1: जय। आज तो बच्चों का भी जय हो, सबका सतगुरु का जय हो और सत पिता का जय हो और सत शिक्षक का भी जय हो। सत शिक्षक, सत पिता, सत गुरु और सत बच्चे, बच्चे भी कम नहीं है, बच्चे है तो शिक्षक है। तो सतगुरु का जय, सत शिक्षक का जय और सत पिता की जय और सत बच्चों का जय जय जय। गान का साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर रुकेंगे, लेकिन हमारा साथ बड़ों का भी आशीर्वाद होना चाहिए। तो हमारा दोनों मैम को भी कौन भूल पाएंगे, जो कि सांस्कृतिक प्रभारी का साथ साथ ये कार्यक्रम को सजाए। तो सभी को भी नाम का साथ धन्यवाद देते हुए हमारा मैम इस कार्यक्रम को सजाए, सबको नाम दिए, सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में, अपना भाव और भावना को पूरा चार चांद लगा दिए। उनका इतना जो छुपी हुई प्रतिभा था, आज जो आवश्यकता था, आज वो मंच उनको मिला। उनका पास जितना था, ना ज्यादा ना कम, अचानक में प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी बच्चे बढ़ चढ़ हिस्सा लिए। तो मैम को स्वागत करते, मैडम आप अपना परिचय दीजिए।
2: मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में लगाई गई है सरकार के द्वारा। मैं बच्चों को हुनर के बारे में ज्ञान देती हूँ और ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में सिखाती हूँ, ताकि बच्चे आगे चलकर अपना रोजगार स्वयं का खोल सके। धन्यवाद।
1: तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यही से स्कूल से बच्चे यहाँ पर मैंने देख रहा, बहुत इंस्ट्रूमेंट भी है जो कि आवश्यकता बच्चों को। पीएमसी स्कूल में इस तरह इक्विपमेंट मिलता है, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे फिटर हो, चाहे वेल्डर, सब चीज यहाँ पर अवेलेबल है। जो बच्चे सीखना चाहते हैं जरूर इस स्कूल में एडमिशन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है ना मैम, कोई शुल्क इसमें नहीं, गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है और सब फ्री है। चाहे ब्यूटी पार्लर बहन करते हैं और जो ऑटोमोबाइल का भी कोर्स यहाँ पर होता है। तो जो भी सुन रहे हैं, जो भी अभिभावक सुन रहे हैं, तो बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद रोजगार सीखना है, बच्चे से ही शुरुआत होता है। और बच्चे वो सीख जाएंगे घर में भी, कोई भी नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन अपना स्व एम्प्लॉयमेंट, खुद का रोजगार क्षम बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा मैम को भी धन्यवाद देते। सुनिए मैम क्या कहेंगे, बच्चों का अंदर में इतना जो टैलेंट, बच्चे पूरा चुन चुन कर हीरा को लेकर आए, एक एक मोती को लेकर आए, एक एक रतन आपका विद्यालय के, क्योंकि कितना बच्चे है, कितना बच्चे मैम टोटल लगभग, कितना बच्चे नामांकन है?
3: 450,
1: फिर भी 450 में इतने बच्चे, जो 10-12 बच्चे आए हैं, ये कम नहीं है। तो खुद के लिए ताली बजा बच्चे तुम्हारे लिए, अरे वाह, क्योंकि तुम सब होनहार, तुम्हारे पास विशेषता है। तो मैम कुछ कहेंगे, हमारा सुनीता मैम जो कि पूरा कार्यक्रम को हैंडल करते हैं, और सर आपका नाम लिए हैं।
3: सभी श्रोताओं को हार्दिक नमस्कार
1: जी,
3: और सभी प्यारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे पवित्र भाई जी जो विद्यालय के अंदर इस प्रकार की सेवाएं देने के लिए समय समय पर जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, और इस प्रकार से जमीन से जुड़ने की गीतों के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से जो एक अवसर देते हैं, बहुत अच्छा अवसर। और आज हमारे विद्यालय में पधारे, इसके लिए आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद है इस प्रकार से बालकों के हुनर को तलाशने के लिए आप समय समय पर आते रहेंगे। और साथ ही मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं जो आप रेडियो मधुबन पर सुनते हैं। हाँ, अगर आप बता सके तो बताएं। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये है कंचन की आवाज, और जिसे आप सुनते हैं अपनों गाँव राजस्थान, उसके अंदर आप सुनते हैं। तो चलिए आज आप हमारे विद्यालय में पधारे, इसके लिए आपका पुनः तहे दिल से शुक्रिया, और सभी श्रोताओं को भी दिल से शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आरजे जो रेडियो जॉकी होते हैं, तो उसी स्टाइल में अपना मैडम सुनीता मैम बताए, और एक जैसे कांचन का जो रोल करते हैं, और हमारा मैम तो ऑलराउंडर है ये, और रेडियो में पार्ट टाइम भी जब भी समय मिलता है, अपना भाव और भावना को, अपना जो हुनर को, जो विशेषता को जन जन तक पहुंचाते हैं। ये रेडियो मधुबन के लिए खुशी का बात है, क्योंकि कम्युनिटी से उभर करके जब आते हैं, कम्युनिटी आवाज में, वो भी एक आवाज है, वो तो अपना बुलंद आवाज से सबको सुनाते हैं। और जैसे कंचन शब्द सुना है, कंचन रोल करते हैं, वो कौन सा प्रोग्राम कंचन रोल
3: आपनो राजस्थान रेडियो साबरमती में है और यहाँ पर भी
1: अहमदाबाद से प्रसारित होता है एफएम चैनल और रेडियो मधुबन जो कि 107.8 एफएम आबू रोड माउंट आबू से प्रसारित होता है और उसका आवाज आप सुने होंगे और इस आवाज आज गुलदस्ता बन गया बच्चों का आवाज का साथ मैम का आवाज कंचन का आवाज और पवित्र का आवाज और हमारा मैम का भी आवाज तो सभी एक गुलदस्ता का आवाज अब तक सुन रहे तो जरूर उनका माता पिता अभिभावक सुनेंगे तो बहुत खुशी लगेगा। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है सामुदायिक द्वारा और समुदाय के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। कहीं भी आपके अंदर में भी कोई विशेषता होगा कोई कला होगा जो आपका गांव का संस्कृति हो तो लोकगीत हो जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो भी आप बता सकते हैं इस कार्यक्रम में और हमारा जो नंबर है 8302352272 यानी 9414151415 इसमें भी आप अपना बात को बता सकते हैं। तो लेते हैं सभी से इजाजत।

0: 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। देखिए, वंदे मातरम नाम से ही मन पुलकित हो जाता है कि वंदे मातरम मात्र शक्तियाँ किसी से कम नहीं है। किसी के जीवन में

0: क्या उतार चढ़ाव आता है, किसी के जीवन में क्या प्रेरणाएं हम ले सकते हैं उनके जीवन से. बहुत सारी बातें होती है जो घर की चार दीवारी में दबी रहती है, खुल करके बाहर नहीं आ पाती है. लेकिन रेडियो मधुबन में वंदे मातरम जो कार्यक्रम चलता है, इसके जरिए आप नारी शक्ति की विशेषताओं को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. और क्या आपने जीवन में किया है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है, छोटी छोटी बातों में ही हम प्रेरणा लायक बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हमने क्या किया और हमारे से कैसे लोग प्रेरणा ले रहे हैं. तो बहुत ही ये खूबसूरत कार्यक्रम वंदे मातरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज आपको मिलवाने वाली हूँ, देखिए इसमें दो जनरेशन है, एक 85 साल के है रतन माता जी जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान कपासन से पधारे हैं, और एक आज की युवा जनरेशन मयूरी शाह जो अहमदाबाद से आई है, 32 साल की उम्र है. तो जनरेशन गैप के अनुसार काफ़ी विचारों का मतभेद भी होता है, लेकिन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है. एक तो इतरा बहू है, एक नानी सास है. तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये क्या, कहाँ तालमेल बिठाया है दीदी ने, लेकिन इसी को कहते हैं जीवन. क्योंकि देखिए उम्र के डिफरेंस के बावजूद भी कैसे रिश्तों में मधुरता आती है, कैसे प्यार से रहा जा सकता है घर परिवार में. तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम वंदे मातरम आज आप सुनने वाले हैं, जिसमें अभी हम आपको मिलवाएंगे रतन माता जी से. रतन माता जी राम राम.
1: राम राम.
0: और तबीयत अच्छी है?
1: अच्छी है.
0: अच्छा, आप भजन सुनाओगे? हाँ तो सुनाइए.
1: छोटे से है नाव अपने जादू भर पाम, मुझे डर लगे राम कैसे बेटा हूँ

0: और आप रेडियो के श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे? आप 85 साल के हैं, आप अभी भी काम कर लेते हैं, क्या क्या काम करते हैं?
1: घर पे तब सभी काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन चौकारा सब काम करते हैं। बाबा की प्रतिज्ञा बोलो
0: बोलो, सुनो, भगवान की प्रतिज्ञा भी सुनाने के इच्छुक है तो सुन लेते हैं हम। सुनाओ
1: बाबा, कह रहे देखो अब तेरी मारी मृत्यु पे चल लोगा तो ऐसा सुधार होगा, कम से कम मेरी याद मेरे ज्ञान का मनन चिंतन करके तो देख, तुझमें ज्ञान के मोती न भर दूँ तो चेना, तो मेरे राजयोग के राहों पर चल कर तो देख, तुझे राजा का महाराजा न बना दूँ तो चेना, तो मेरे ज्ञान के मनन चिंतन के जन तो वरदाता विदाता को अपना बना के देख, तेरे भाग्य द्वार न खोल दूँ तो चेना, तो मेरे लिए लोगों से कड़वे वचन सुन के देख, उसे अमृत वचन न बना दूँ तो चेना, तुम गले देने वाले को गले लगा के देख, उसे विश्व शांति का दूत न बना दूँ तो चेना, तुम मेरे लिए तन मन धन खर्च करके देख, तेरे कुबेर के भंडार न खोल दूँ तो चेना, तो कम से कम निर्बल को हिम्मत का सारा दे के देख, तेरी डूबी नया पार न लगा दूँ तो चेना, तुम प्राणी मात्र पे दया करके देख, तुझे कोड़ी से अमूल्य हीरा न बना दूँ तो चेना, तो वरदाता विदाता को अपना बना के देख, तेरे भाग का द्वार न खोल दूँ तो चेना, तो दे दुनिया से नष्टो मो बनकर देख, तुझे विदय फरिश्ता न बना दूँ तो चेना, तो मुझे खुदा दोस्त से दिल लगा देख, तेरे दिल के दर्द न मिटा दूँ तो चेना, ओम शांति, योगी बनो पवित्र बनो।
0: क्या बात है रतन माता जी, बहुत बहुत आभार आपका। रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आप पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए इसके लिए कार्यक्रम के। आपको अभी कार्यक्रम तो चल रहा है, लेकिन रतन माता जी बस इतना ही बोलेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं 85 साल की उम्र है, इतना बोल लिया वो भी बहुत कुछ है। तो इस उम्र के तकाजे से आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोता बंधु को? चलिए पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो,
2: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: हाँ जी, ओम शांति, नमस्ते फिरोज भाई, कैसे हो आप?
2: बस एकदम अच्छे। और वो जो नाव वाला गीत भी अच्छा सुनाया दीदी ने।
0: जी रतन माता जी ने। जी
2: जी जी जी। और जो अभी भी जो बात सुनाया कि जो प्राणी मात्र पे जो भी इसके ये करेगा तो उसको भी मैं धनवान बनाऊंगी।
0: जी जी जी
2: जी जी
0: जी।
2: बहुत अच्छा सुना, इतनी उम्र है 85 की, बहुत अच्छा कहवा है।
0: जी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया फिरोज भाई। बाकी बढ़िया?
2: जी जी जी, एकदम बढ़िया।
0: हाँ जी, थैंक यू। तो चलिए रतन माता जी का आभार व्यक्त करते हुए एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
4: जी आई माँ जी।
3: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
4: जी माँ जी, आ गई, चलिए।
3: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
5: नमस्ते नमस्ते, बैठिए, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है।
3: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है,
5: सोनोग्राफी। मगर क्यों?
3: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
5: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
3: जी वो ना। अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
5: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है, और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे

0: रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
1: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: नाजुक सी दिखती है वो हिम्मत में सबसे आगे है, नाजुक सी दिखती है जो वो हिम्मत में सबसे आगे है, बेटी जब ठान ले कुछ कर गुजरना तो दुनिया उसके पीछे पीछे है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में जैसा कि आप सभी ने रतन माता जी का सुना, 85 साल की उम्र, और इस उम्र में भी बहुत ही सुंदर आपने भजन भी सुनाया और भगवान की प्रतिज्ञा भी सुनाई। हमारे श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं कंचन भाई मंडाली से। नमस्ते कंचन भाई।
1: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
0: हाँ जी सुप्रभात, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, अच्छे है, दुकान पे बैठे हैं और माता जी के जो बात सुनी अभी राम की, जो पूरी सुनाया अभी, जो आदर्श जो बातें बताई तो सुन रहे थे तो बहुत अच्छा लगा थे
0: जी।
1: क्योंकि अनुभव से ये बात कर रहे हैं माता जी,
0: जी।
1: जो कही थे ना कि भाई कुआ माँ हो तो अवाड़ा माँ आवे।
0: हाँ, ये साची बात है। बिल्कुल।
1: इसी तरह माता जी का काफी अनुभव है और आध्यात्मिकता में पूरे डूबे हुए हैं
0: जी। जी,
1: ये बातें आई है, जैसे हमने भी, हमको भी बहुत आनंद हुआ, खुशी हुई
0: जी।
1: और क्या बात करो, उम्र के हिसाब से ये है न, सहारा की कोई जरूरत है
0: जी।
1: तो ये आपने रखना रहना पड़ता है
0: जी जी जी जी, बिल्कुल
1: रखना पड़ता है
0: जी। जी चले, बहुत
1: तो
0: बहुत आभार जी।
1: काफी समय के बाद आप भी आए हैं, अब क्या की सभी संभालना पड़ता है
0: जी। जी जी, अभी जैसा कि रतन माता जी का आपने सुना है, वो हमारी मम्मी है, लौकिक में माता जी है, तो उनके संभाल करना भी जरूरी है।
1: ना भी अब उम्र हुई तो सहारा की जरूरत है
0: जी।
1: जब हम छोटे थे तो हमको संभाला था माता जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो अब हमारी बारी आई।
0: बिल्कुल, वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया। जी चलिए, बहुत बहुत आभार कंचन भाई।
1: माता पिता ने जो संकल्प दिए हैं
0: जी,
1: कई तो क्या करते हैं कि भाई कोई नहीं ऐसा संभाल दे पाया
0: जी,
1: माता पिता की तो ऐसा नहीं ये करते
0: जी।
1: लेकिन
0: जी,
1: संस्कारों की जो भरपूर संस्कार दिए हैं माता जी ने, पिताजी ने, तो ये आगे जरूर आएंगे और ये हमें ये ऐसी स्थिति में हमें भी ये करना पड़ेगा
0: जी। जी जी बिल्कुल,
1: बस और
0: जी, बहुत बहुत आभार कंचन भाई।
1: हाँ जी
0: जी, थैंक
1: यू।
0: तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है, माता पिता का तो सेवा करना अपना फर्ज नहीं बोल सकते, उसको अधिकार है। जैसे माता पिता बच्चों को बड़ा करते हैं तो वो फर्ज नहीं समझते, वो अधिकार से करते हैं, ऐसे ही जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके ध्यान रखना ये बच्चों का अधिकार है, और इन अधिकारों को सभी ध्यान में रखे तो और भी अच्छा रहेगा। और चलिए वंदे मातरम कार्यक्रम की तरफ आइए, अभी रतन माता जी को सुन रहे थे, आइए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि देखिए आज बहुत ही जनरेशन गैप है, कहाँ 32-33 साल की उम्र और कहाँ अपने 85 साल की उम्र के अनुभव सुने। तो अब मयूरी शाह हमारे सामने आ चुके हैं, आपके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी आपका। आपने MBA किया हुआ है और आपको गरबा बहुत अच्छा आता है, हर स्टेप आपको आते हैं, बहुत ही सुंदर आप गरबा करते हैं, भजन कीर्तन में आपको शौक है, अध्यात्म में गहरी रुचि है और मिलनसार आपका व्यवहार है। तो चलिए और भी आपकी विशेषताएं आपके द्वारा ही सुनेंगे। मयूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: थैंक यू, थैंक यू सो मच।
0: तो थोड़ा आपके बचपन की तरफ बढ़ते हैं।
2: नमस्ते सबको।
0: हाँ जी, तो आपका बचपन के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे आपका बचपन बीता, कैसे आपने पढ़ाई की?
2: मेरा बचपन उस टाइम पे थोड़े अपने पैसे मतलब सब अपने ये क्या
0: थोड़ा टिपिकल बीता था ऐसा.
2: हाँ मतलब उस टाइम पे हमारे पास मतलब हम क्या मिट्टी से जुड़े हुए रहते थे, बाहर खेलना कूदना फ्रेंड्स बनाना. अभी आजकल तो बच्चों को फोन दे दो टीवी दिखा दो तो अच्छा है, मजा आता है उनको.
0: मतलब आपके कहने का मतलब है कि स्वच्छ वातावरण में आपका बचपन बीता, क्योंकि जहाँ टीवी मोबाइल इन सभी से जब दूर है तो एक वातावरण स्वच्छ कह सकते हैं उसका.
2: सही बात है. तो हम घूमने भी जाते थे, मजे भी करते थे. हमारा बचपन बहुत अच्छे से बीता है. फिर पढ़ाई करी.
0: पढ़ाई में कैसे थे आप?
2: पढ़ाई में पहले तो मैं थोड़ी वीक थी, उसके बाद धीरे धीरे अच्छी हो गई और फिर नंबर भी आने लग गए, पेपर में फोटो भी आया.
0: और क्या बात है,
2: कॉलेज में भी मैं टॉपर रही थी.
0: तो बहुत बढ़िया.
2: और उसके बाद मुझे बस एक है कि मुझे मेरे माता पिता ने कभी बाहर नहीं भेजा पढ़ने के लिए कि ये ऐसे ही शादी करके.
0: तो आपको शिकायत है आज भी कि मुझे बाहर भेजते तो शायद मैं और भी आगे,
2: और
0: जा,
2: भी
0: सकती.
2: आगे जा सकती थी
0: जी. तो हमारे श्रोता बंधु पहले बात करना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे. हेलो जय श्री हरि. नमस्कार, कैसे हैं सुरेश भाई आप?
3: हम अच्छे हैं
0: जी.
3: नाम नहीं बताना था.
0: अच्छा. आपकी आवाज सभी जानते हैं कि आप ही है, पहचानते हैं आपकी आवाज को?
3: सभी जानते हैं मगर हमारे गेस्ट हैं ना, उनको प्रश्न रखना चाहता.
0: अच्छा.
3: नमस्कार
2: नमस्कार नमस्कार.
3: पहचाना?
2: हाँ पहचान लिया ना आपको.
0: हाँ पहचान लिया, ऐसे बोल रहे पहचान लिया आपको.
3: पहचान लिया?
2: हाँ पहचान लिया आपको.
3: नहीं पहचाना.
2: सुरेश भाई जी.
3: ओ दीदी ओम शांति. कैसे हो?
2: ओम शांति ओम शांति.
3: कैसे हो?
2: अच्छे हैं, आप कैसे हो?
3: बस हम अच्छे हैं. और सब बच्चे वगैरह सब अच्छे
2: हैं? हाँ सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है.
3: और आप रेडियो मधुबन में आए तो बाहर आ गए.
2: थैंक यू
3: चार चांद लग गए ना, दो और दो चार.
2: ये सब उषा माता जी की मेहरबानी है.
0: ऊपर वाले की.
3: आपको लेके आए है ना?
2: हाँ ये हमको लेके आए, हमको मौका दिया.
3: तो बोल रहा हूँ दो भी दो और दो चार जान लग गए ना, नहीं तो दो ही लगते थे.
2: हाँ सही बात है.
3: और बस बहुत अच्छी बातें भी हो रही है तो हमें भी बहुत अच्छा लगा सुन के.
2: अच्छा.
3: और बस आप यूँ कभी कभी आते रहिए.
2: पक्का पक्का आएंगे, हम आते ही रहते हैं इधर. और माता जी मौका भी देते रहते हैं हमको.
3: हाँ माता जी तो माता जी है.
2: सही बात है.
3: ये इनसे माता जी को मौका देती है.
2: हाँ
3: आपको भी तो आपके माता जी.
2: सही बात है.
3: सही है ना?
2: हाँ सही बात है, सही है.
3: और माता पिता का तो बच्चों के हाथ हो तो बच्चों को और कोई जरूरत.
2: सही है सही है, ये तो सही बात है. उनके आशीर्वाद से ही सब है.
3: आजी?
2: उनके आशीर्वाद से ही, माता पिता के आशीर्वाद से ही हम इतना कर पा रहे हैं सब.
3: वो लोग जो मूर्ख होते हैं जो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ के आते हैं या तकलीफ देते हैं.
2: सही बात है सही बात है.
3: क्योंकि वही दिन कल अपने भी आने वाले.
2: हाँ वो तो है ही है.
3: हाँ क्योंकि सुई के पीछे ही धागा तो निकलने वाला है.
2: हाँ सही बात है, वो तो है ही है.
3: इतना सोच के चले तो जिंदगी है.
2: अच्छा वही आज जब अपन को जरूरत थी तब वो खड़े थे, तो जब उनको जरूरत होती है तो अपन को भी खड़ा रहना है.
3: बस वही तो बोलो, इतना सोचे तो जिंदगी है, वरना तो जिंदगी तो है ही है.
2: हाँ सही है सही बात.
3: हेलो दीदी आप आए, बहुत खुशी हुई.
2: धन्यवाद धन्यवाद.
3: बाकी सब ठीक है?
0: हाँ जी बिल्कुल, आप सभी की दुआएं.
3: दुआएं ऊपर वाला की, बाबा की.
0: बिल्कुल, कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मेहरबानी और परिवार की दुआएं मिल जाए, बस इससे बढ़कर और कुछ चाहिए ही नहीं।
3: नहीं, बाबा का सर से हाथ हो ना, तो बस बाकी तो सब अपने पीछे पीछे आएंगे
0: जी।
3: बस उनका साथ चाहिए, बाकी उनके लिए तो पूरी जिंदगी से लड़ सकते हैं, कभी परिवार से लड़ सकते हैं, बाकी उनका उनका अगर साथ नहीं मिलेगा ना तो सब काम का नहीं है।
0: जी जी जी जी बिल्कुल,
3: चलो ठीक है। हाँ
0: जी, चलिए, बहुत बहुत आभार। तो मयूरी जी, आप अपने बचपन की बातें बता रहे थे कि पढ़ाई में आपको थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से शिकायत है कि उन्होंने आपको बाहर नहीं भेजा।
2: बाहर नहीं,
0: अगर बाहर भेजते तो आप क्या करते?
2: मेरे को इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना था।
0: अच्छा,
2: तो वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि उसमें क्या है कि उस टाइम उन्होंने, उनका भी रीज़न सही लगा मुझे कि थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे कि फिर तो वैसे भी शादी करके तू चली जाएगी, तो फिर अभी हमारे साथ रह ले, तुझे यहाँ से जो करना है तू कर ले। उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया।
0: अच्छा,
2: और शादी के बाद तो मैंने थोड़ा बहुत मेरे चेंजेस आए, जैसे मुझे ये
0: शादी की बात तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी आपके बचपन की बातें चल रही है, तो कभी ऐसी कोई बात आज भी आपको याद आती हो कि बेटे बेटे हंसी आ जाती, क्योंकि बचपन हमारा इतना इनोसेंट होता है कि कभी हम कुछ ऐसी बात कर बैठते हैं उसका मीनिंग बाद में पता चलता है जब हम मैच्योर होते हैं।
2: हाँ,
0: तो अपने आप हंसी आती है कि ये क्या हो गया।
2: ये ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, पर एक जो है वो मेरा फेवरेट है, वो ये है कि जब मेरे और मेरे भाई के बीच में 5 साल का गैप है, तो जब मेरा भाई हुआ तब मुझे खुशी हुई कि चलो मेरा भाई हुआ, मेरे घर में एक मतलब बच्चे आए हैं, छोटा सा ये वो। फिर 2 दिन मैंने देखा, उसके होने के बाद 2 दिन मैंने देखा सब उसको ही ले रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, ये कर, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो मैंने फिर मेरी बुआ को बोला, तू इसको ले जा, हमको नहीं चाहिए ये, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, सब उससे ही प्यार करते हैं, सब उसी को पूछ रहे। मैं बहुत रोई उस टाइम पे।
0: अच्छा,
2: तो वो आज भी हमको हंसी आती है कि उस टाइम मैंने ऐसा रिएक्शन दिया था। तो वो एक बहुत
0: जी, जी।
2: होना भी जरूरी है। आज भाई बहन एक, आज पहले तो चलो इतने सारे होते थे, अभी एक ही भाई एक ही बहन है, तो आज सपोर्ट भी रहता है, तो वो थोड़ा फनी है पर जरूरी भी है।
0: जी जी जी, तो इस तरह की नादानियां हो जाया करती है क्योंकि छोटा बच्चा है, तो स्वाभाविक है केयर उसके ज्यादा करेंगे और हर कोई गोदी में लेंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो गोदी में तो नहीं लेंगे, बोल सकते हैं उसके साथ, बात कर सकते हैं, तो ऐसा एक के साथ नहीं बहुतों के साथ होता है, और अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग बातें होती है,
2: सही
0: है ना। लेकिन आज भी जब सोचते हैं तो अपने आप ही हंसी आती है कि कैसे हम मूर्ख थे।
2: और मैं एक और किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि मैं 10 महीने की थी, तो मेरी मम्मी मुझे खिड़की पे लेकर खड़ी थी, मतलब खिड़की के पास। हाँ, वो क्या है कि उसकी तबीयत भी थोड़ी नरम थी, बहुत फीवर था उसको भी और वीकनेस भी थी, तो हम 3rd फ्लोर पे रहते थे, तो मैं क्या एकदम उनसे, मतलब मैं क्या कूद रही थी उनकी गोद में ही, तो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं 3rd फ्लोर से नीचे गिर गई।
0: ओहो,
2: तो और तब मैं 10 महीने की थी।
0: 10 महीने के बच्चे जब 3rd फ्लोर से नीचे गिरते हैं तो क्या हालत हो जाती है, बचना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने आपको मतलब बचाया है। हाँ, तो उस समय फिर क्या कंडीशन रही आप?
2: उस समय जैसे ही मैं गिरी तो मेरे मुंह से फीन निकल गए और बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद पूरे मतलब 2-3 दिन सुबह, मतलब मैं अगर दिन में गिरी थी तो मुझे रात को 12 बजे होश आया। उसके बाद मेरी 2-3 बार MRI करी, सब करा, पर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई।
0: क्या बात है,
2: तो ये
0: है?
2: बस भगवान की और बाबा की मेहरबानी है।
0: वो गुजराती में कहावत है, राम राखे ने कौन चाखे, तो वो ईश्वर को बचाना था। इसलिए आप सुरक्षित रहे, नहीं तो 10 महीने के बच्चा जब 3rd फ्लोर से नीचे गिरता है तो आप सोचिए कि क्या हालत होती होगी। 1st फ्लोर से गिरने पर ही हड्डियां टूट जाती है।
2: और उस टाइम पे मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि बोलने वाले ये भी बोल रहे थे कि लड़की है तो उसको ऊपर से उन्होंने फेंक दिया, एक दो जने ने मम्मी को ये भी बोल दिया, तो वो मैं बच गई, तो उनका नसीब अच्छा है और मेरा भी अच्छा है कि मुझे इतना अच्छा जीने का मौका मिला, इतना अच्छा सब देखने का मौका मिला.
0: बिल्कुल. वो कहते हैं कि आप लिखा हुआ था और चलिए अच्छा रहा कि आप बचे हैं तो आज रेडियो में भी बोल पा रहे हैं. बिल्कुल. तो कभी कभी इस तरह के हादसे हो जाते हैं, बड़े हादसे भी. वो कहते हैं ना कि पहाड़ सुई की तरह हो जाता है वो हिसाब किताब, और कभी कभी छोटी परिस्थितियों में भी बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती है. जी, तो चलिए मयूरी जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का. तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं. मयूरी जी के अनुभव बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सुनने बाकी है. तो बने रहिएगा इस कार्यक्रम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो. रेडियो मधुबन 107.8 FM.
4: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार.
5: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया. वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है. अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
4: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: बेटी की हंसी में ईश्वर बसता है, बेटी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो बेटी का मान रखे, जो बेटी का मान रखे, उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी, भाई कहते हैं ना कि किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, तो किसी की बीवी है, तो किसी की माँ है, लेकिन नारी आखिर नारी ही है। और ऐसी नारी शक्ति हमारे साथ बनी हुई है मयूरी शाह, जो आप अहमदाबाद गुजरात से पधारे हैं और आपके अनुभव हमने सुने हैं बचपन के। पुनः स्वागत करते हैं मयूरी जी आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद आपका
0: जी। तो आज आप मतलब हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही रहते हैं या आज विशेष खुश है आप?
1: नहीं, ऐसे ही रहते हैं हम ज्यादातर।
0: जी जी जी। और यहाँ पर देखिए मयूरी जी का बेटा जो 6 साल का है, नन्ना मुन्ना बच्चा, तो वो भी उतावला हो रहा है बोलने के लिए। तो ये आप कहते हैं ना कि ये सब गॉडली गिफ्ट है, बोलने का भी हर किसी के अंदर नहीं होता है, लेकिन ये बच्चा कभी का कह रहा है हमें तो अवसर दीजिए, हमें तो अवसर दीजिए। तो चलिए पहले कहते हैं ना बच्चे फर्स्ट, आ जाइए। नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: आपका शुभ नाम बताएंगे?
2: हाँ
0: बोलिए।
2: टेंगरी।
0: अभी पोयम नहीं, आपका नाम बताइए।
2: मेरा नाम है ध्रुवांश।
0: आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं?
2: सीनियर केजी ओल्ड।
0: ओके। और आपको रेडियो मधुबन में आकर के कैसा लग रहा है? आप पहले भी बोल चुके हैं यहाँ पर पोयम, कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत बढ़िया।
0: बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप अपने मम्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके मम्मी आपसे प्यार करते हैं?
2: बहुत।
0: और क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं आपको? होमवर्क कराते हैं?
2: हाँ।
0: और आप क्या करते हैं?
2: और ड्राइंग सिखाती है, ABCD भी सिखाई, सब मम्मी सिखाती है मुझे।
0: अच्छा, फिर आपके टीचर क्या करते हैं?
2: मुझे पढ़ाई करवाते हैं।
0: अच्छा, पढ़ाई करवाते हैं। और आपने पोयम कहाँ से सीखी?
2: मेरी मम्मा ने सिखाई, मेरे स्कूल में से नई राइम्स बुक आई थी ना, इसलिए मेरी मम्मी ने सिखाई राइम।
0: अच्छा, तो आप सुनाइए, कौन सी पोयम सुनाएंगे?
2: टेन ग्रीन वाटर्स।
0: सुना दीजिए।
2: टेन ग्रीन वाटर्स हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, नाइन ग्रीन वाटर हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, एट ग्रीन वाटर हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, सेवन ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, सिक्स ग्रीन वाटर हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल,
0: नाइन
2: फाइव ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, फोर ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, थ्री ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल, टू ग्रीन वाटर टू हैंगिंग ऑन द वॉल, वन ग्रीन वाटर टू एक्सीडेंटली फॉल।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, ताली बजानी चाहिए आपके तो, बहुत सुंदर। इसका अर्थ बताएंगे, क्या अर्थ है? चलिए हमारे श्रोता बंधु पहले जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, ओम शांति।
3: बच्चे ने बहुत अच्छा सुनाया ये
0: पोयम। थैंक यू बोलिए।
3: ग्रीन बोल सुनाया
0: जी।
3: और आवाज भी अच्छी थी बच्चे की
0: जी।
3: और माँ के लिए मेरे को एक गीत बोलने का है
0: जी। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा सुनाइए।
3: नहीं छोटा सा, बस एक बोल थी।
0: हाँ जी सुनाइए।
3: माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो के आज मेरा कोई नहीं।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया है। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, और ध्रुवांश हमारे समक्ष बैठा है। अच्छा ध्रुवांश, आप हमारे सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अच्छी सी पोएम बोल के सुनाई है, आपके जैसे बच्चे बहुत सारे जुड़ते हैं, सुनते भी है कार्यक्रम, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे फ्रेंडशिप करोगे?
2: हाँ।
0: और उनको क्या कहना चाहोगे? जैसे बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, और आपने अच्छी सी बोल के सुनाई, अभी फिरोज भाई भी बता रहे थे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? वो उनको भी सीखना चाहिए ना। हेलो। हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप? ओम शांति। अच्छा जी जी, आप सफर में है ना?
4: हाँ नहीं सफर में नहीं, हम देख रहे हैं सभी, अभी हम पूरा किला देख के आए हैं, और अभी अच्छा
0: जी चलिए है, बहुत अच्छी बात तो है।
4: हाँ ये दुकान में हम खड़े हैं अभी, और सालिया है, सालिया है, यहाँ पे वो देखे जो चद्दर आती है
0: जी,
4: तो वहाँ है, और वहाँ सभी ये जो चद्दर लेती जाती है ये सबको समझा रहे हैं, तो इस दुकान में हम खड़े अभी
0: जी जी।
4: पूरा देख के आए, हल्दी घाटी भी देख के आए, वहाँ के लोग भी देख के आए।
0: अरे वाह क्या बात है, वहाँ की मिट्टी आपने ली हल्दी जैसा कलर की है?
4: हाँ हल्दी जैसा कलर की है दीदी
0: जी।
4: तो ये सब देख लिया, हमारे पास गाइड था, तो गाइड ने पूरा समझा दिया हमको।
0: अच्छा
4: तो अभी चित्तौड़गढ़ में ही है, अभी हम पहली अभी खड़े रहे हैं दुकान पे।
0: अरे वाह क्या बात है, आप हमारे एरिया में पहुँच गए।
4: चित्तौड़गढ़ में तो बहुत सारे मशहूर देखने के लिए लायक है
0: जी,
4: महाराणा प्रताप का जो जगह थी वो भी देख ली
0: जी जी जी जी,
4: वहाँ भी देख लिया
0: जी जी जी।
4: तो अभी हम
0: चित्तौड़गढ़
4: में जी, और बीच में नहीं सुना दे रहे हैं
0: जी। चलिए बहुत बहुत आभार सुरेश भाई आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे, जो नहीं बोल पाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों को? आपने कैसे सीखी कविताएं?
2: मेरी मम्मी ने सिखाई।
0: ऐसे हर एक की मम्मी को सिखाना चाहिए है ना?
2: हाँ।
0: और कहीं नहीं बोले तो रेडियो मधुबन में आना चाहिए। एक रेडियो मधुबन के मंच से शुरुआत करनी चाहिए, तो फिर वो बड़े मंच पर पहुंच सकते हैं, है ना?
2: हाँ।
0: आप भी बड़े मंच पर रेडियो मधुबन के जरिए पहुंचे हैं ना, स्कूल में बोलते हैं?
2: हाँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही सुंदर पोयम सबको सुनाई इसके लिए।
2: मुझे मिलने का मौका मिला।
0: क्या बात है, बोलने का मौका मिला तो बहुत खुशी हो रही है आपको?
2: हाँ।
0: तो ऐसे मौके मिलेंगे तो आप आएंगे बोलेंगे?
2: हाँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और अब देखिए कार्यक्रम भी समाप्ति की तरफ है, मयूरी जी से हम जरूर बात करना चाहेंगे। मयूरी जी बता रहे थे कि शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, तो अब आप बता सकते हैं आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आए।
1: पहले तो क्या है, शादी के बाद अपने जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। पहले तो क्या है, निकल जाओ ऐसे ही, कोई टेंशन ही नहीं है पीछे का, अभी तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है
0: जी।
1: तो फिर भी मैंने पहले तो एक साल जॉब करी
0: जी,
1: क्योंकि मैं अकेले जॉइंट फैमिली से आई थी, इधर अकेली हो गई थी, तो आते ही तो मैंने जॉब करी। उसके बाद लगा कि जॉब में इतना मज़ा है नहीं, इसीलिए फिर मैंने मेरा छोटा मोटा घर पे ही सब स्टार्ट कर दिया
0: जी।
1: जैसे मैं सेंटर कैंडल्स बनाने लग गई, छोटे छोटे हैम्पर्स बनाने लग गई
0: जी।
1: तो अब जैसे ऑर्डर्स आते हैं वैसे सब चीज़ें बना के
0: जी जी सेल करते,
1: छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं
0: जी।
1: पेंटिंग का भी बहुत शौक है, पेंटिंग्स भी करते हैं
0: जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को व्यस्त कर दिया थोड़ा।
1: हाँ,
0: इधर सिंगल फैमिली है तो जॉइंट फैमिली और सिंगल में तो बहुत फर्क पड़ता है। जॉइंट में तो चलिए बातचीत और काम में समय बीत जाता है, लेकिन सिंगल फैमिली में करे क्या, बातचीत किससे करे, और काम भी इतना नहीं रहता है। तो अपने आप को व्यस्त करने के लिए जो आपके अंदर हॉबीज थी, जो आप बनाते हैं, उस पर फोकस डालना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा। और आपको गरबा बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ा सा आप गरबा खैर सिखा तो नहीं सकते क्योंकि तो रेडियो मधुबन है, यहाँ से ऑडियो ही जाता है, लेकिन आप अपने पसंद के चंद लाइनें सुना सकते हैं कि कौन सा गरबा आपको सबसे ज्यादा पसंद है।
1: वैसे तो बहुत सारे पसंद है, पर ये मेरा फेवरेट वाला है। इसके इस पे गरबा करने का बहुत मजा आता है।

0: रे बहुत सुंदर ये गीत है. तो आजकल ये भजन भी गरबा के रूप में चलने लग गया.
1: हाँ,
0: तो इसमें दो ताल होती है या फिर एक ताल, क्या होता है इसमें?
1: इसमें तीन ताली खेलते हैं लोग.
0: तीन ताल होते हैं.
1: हाँ,
0: अच्छा, और आप गरबा सिखाते भी है, तो थोड़ा सा इसकी प्रोसेस बताएंगे कि हमारे कोई श्रोता बंधु अगर गरबा सीखना चाहे तो क्या प्रोसेस है इसमें?
1: पहले तो अपन पैर के स्टेप्स सीखते हैं,
0: जी
1: उसके बाद थोड़े हाथ के पैर के साथ हाथ के तालमेल बिठाने का होता है, तो वही पहले दो ताली, फिर तीन ताली, फिर डांडिया. तो और गरबा तो मेरा स्ट्रेस बस्टर है. अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं गरबा सुन लेती हूँ या एक राउंड खेल भी लेती हूँ.
0: हाँ जी, तो वो इससे स्ट्रेस दूर हो जाता है.
1: हाँ, मैं मतलब स्कूल टाइम से ही मेरे हर बार मुझे गरबा में प्राइज मिलता है, अभी तक मिलता आया है, लास्ट ईयर तक.
0: जी
1: अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि दो बच्चे हो गए हैं, तो
0: जी जी
1: शरीर में
0: तो
1: इतनी ताकत नहीं, पर फिर भी खेल लेते हैं.
0: जी,
1: फेवरेट है गरबा
0: और
1: तो
0: खुद के
1: मेरा.
0: एंजॉय के लिए भी जरूरी है, चाहे हमें प्राइज मिले या ना मिले, खुद की खुशी के लिए भी करना बहुत जरूरी है. तो बहुत सुंदर. और कार्यक्रम के अंत में हमारी जो बहनें सुन रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी बहनें, जैसे जैसे आप बता रहे कि दो बच्चे हो गए हैं, अब शरीर की ताकत भी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी उमंग उत्साह वही है. और हमारी बहुत सारी बहनें क्या है कि बच्चे होने के बाद जिम्मेदारियों में इतनी उलझ जाती है कि फिर वो अपनी एंजॉय, जो अपने आनंद के लिए क्या करना है वो छोड़ देते हैं. परिवार के लिए भले वो दिन रात लगी रहेगी, लेकिन खुद के लिए नहीं. तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
1: चाहती हूँ कि खुद के लिए भी थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर अपन अपन अपन खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तो बच्चे भी देखेंगे और अपन से सीखेंगे कि अपन को भी खुद मतलब मम्मी की भी वैल्यू करनी चाहिए. नहीं तो आज जो होम मेकर है, जो घर पे बैठी रहती है, हाउस वाइफ है, बच्चों को लगता है मेरी मम्मी करती क्या है. तो आज आप घर बैठे भी खुद के लिए अगर कुछ टाइम निकाल ले तो बच्चों को भी लगेगा कि हाँ, मेरी मम्मी कुछ कर रही है. उनके लिए भी आप एक मोटिवेशन बन सकते हो कि इतनी जिम्मेदारियां है फिर भी मेरी मम्मी मेरे उसके लिए टाइम निकाल लेती है, कुछ क्रिएटिव कर रही है. जो आपको पसंद हो, जो आपकी हॉबी हो, वो आपको करना ही चाहिए, मेरा तो यही मानना है. तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप एक बार आप खुद के भी फोकस करो और जिम्मेदारियां भी निभाओ. उससे तो अपन
0: नहीं सकते
1: छूट
0: हैं.
1: भी नहीं सकते और पीछे भी नहीं हट सकते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो
0: जी,
1: उनको भी मत छोड़ो और खुद को भी पकड़ के रखो, खुद की भी इतनी रिस्पेक्ट करो.
0: जी चलिए मयूरी जी, बहुत बहुत आभार. आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने शॉर्ट रूप में अनुभव सुनाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सभी का लिया, इसलिए समय तो कैसे बीत जाता है पता ही
1: पता
0: नहीं
1: ही नहीं
0: चलता है.
1: चलता है. सही है.
0: तो और भी आपके कोई इच्छा हो या कोई संकल्प हो या कोई बात हो तो आप रख सकते हो जाते जाते.
1: बस इतना ही के और सभी श्रोताओं को थैंक यू सुनने के लिए, रिस्पांस देने के लिए, और सबसे बड़ा थैंक यू उषा माता जी को जिन्होंने हमको मौका दिया बोलने का और हमारी बात रखने का, हमारे अनुभव सुनाने का.
0: जी,
1: उसके
0: हम
1: लिए
0: तो सबसे बड़ा श्रेय ईश्वर को ही देंगे कि ये सब बना बनाया ड्रामा था, बस वो खाली रिपीट करना बाकी था जो हो गया. कहते हैं ना कि हम क्या सोचते और वो क्या सोचता है वो बात ही अलग है. खैर,
1: सही.
0: बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़े, उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और आपने भी अनुभव अच्छे सुनाए हैं. बच्चे ने भी बहुत ही सुंदर पोएम सुनाई है, आपने बहुत ही अच्छा सिखाया. तो इसी तरह हर माताएं अपने बच्चों को इस तरह एक्टिव रखे और आगे बढ़ाते रहे. और आइए, अब मैं भी उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM. और आज की नारी शक्ति मयूरी बहन आपको और रतन माता जी को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है.

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

the one who knows me deeper

this eternal relationship. Allowing it

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

शांति। आज 22 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे एक है देही अभिमानी होकर बाप को याद करना, लेकिन दूसरा है कर्म योगी बनना, अर्थात देह की कर्मेंद्रिय को मालिक बनकर के प्रयोग करना, कर्म कराना। आत्मा मालिक है, करावनहार है, और ये कर्मेंद्रिय करनहार है। तो मालिक बनने की स्मृति में रहकर कर्म करना। और तीसरा है देह अभिमान। तो देह अभिमान से बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनाते और यथार्थ रूप में कर्म योगी बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम बाप की श्रीमत पर चलकर देह अभिमान को मिटाए देही अभिमानी बन। कर्म भी जब करते हो तो बाबा की याद में रहकर कर्म करते हो तो हर कर्म तुम्हारा श्रेष्ठ सुखदाई बन जाता है। बाबा हम बच्चों को जगाते भी है और धीरज भी देते हैं। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया रे। तो नव युग आ रहा है जहां जाने के हम योग्य बन रहे हैं, लेकिन बाबा कहते, बच्चे धीरज भी धरना है, अभी सुख के दिन आए कि आए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। देह की स्मृति तो जरूर रहेंगे, तो देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, अब नव युग आया रे। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना, इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है, तुम आत्माएं अब जाग गई हो। जाग सजनिया जाग, तो बाबा कहते, तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। जागना अर्थात बाबा कहते ज्ञान नेत्र खुलना, और जिस ज्ञान नेत्र खुलने से ड्रामा के राज को अच्छी तरह से जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना, जो कुछ बीता वो तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्म की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्म की कहानी सुनाई है, यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। बाबा बच्चों को धीरज देते हुए कहते हैं, अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी दुनिया की बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये सब खत्म होनी है, क्योंकि वहां तो

की प्रलब्ध होगी। भक्ति का फल है ज्ञान, और फिर ज्ञान की प्रलब्ध होगी तो वहां तो भक्ति होगी नहीं, वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता, वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा उच्च पद पाएंगे। अज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है, हमारा पुरुषार्थ है ही ज्ञान योग का। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। देह की स्मृति में आएंगे तभी तो कर्मेंद्रिय को यूज कर सकेंगे। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगर तो हम कर्म कर न सके, यह तो ठीक है, बाप को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। बाबा कहते ये तो ठीक है कि कर्मेंद्रिय से कर्म करना है, बाप को याद करना है, और उस समय अपने को आत्मा समझे। देह को भुला देने से काम नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। बाबा हमें कर्म सन्यासी थोड़ी बनाते, कर्म योगी बनाते हैं। तो बाबा कहते देह को भुला देने से काम नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं है कैसे देही अभिमानी बनना है। भल अपने को आत्मा भी समझे परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी है पुण्यात्मा पतितात्मा, मैं आत्मा हूं, मेरा यह शरीर है, ये तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है, देह बिगर तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो, कर्म करते हुए भी अपने माशुक को याद रखना है। उस माशुक का किसी को पूरा पता ही नहीं है, परमात्मा माशुक का किसी को पूरा पता ही नहीं है। उस माशुक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उसकी याद से विकर्म विनाश होंगे, ये कोई नहीं समझाते हैं। तुम बच्चे अभी नई बातें सुनते हो, इस ज्ञान मार्ग में हम सभी नई बातें सुनते हैं। तुम जानते हो अभी हमें घर जाने का रास्ता मिला है, अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते, इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, यह भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्य की बुद्धि काम ही नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो, कल की बात है। भारत तो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। बाबा कहते भारत जितना सुख कोई भी पा नहीं सकता, स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को
हो न सके। कितना भी प्रयत्न करे, धन खर्च करे, फिर भी स्वर्ग में तो जो सुख है, बाबा कहते भले धन खर्च करे, कितना भी प्रयत्न करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल न सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी, यह है ही दुख की दुनिया। बाबा कहते स्वर्ग में, स्वर्ग को कहेंगे सुख की दुनिया और यह है दुख की दुनिया। क्यों? क्योंकि सुख चार प्रकार के होते हैं, तन मन धन जन। तो सतयुग के अंदर चारों प्रकार के सुख है, तन भी निरोगी है, स्वस्थ है, मन भी सदा प्रसन्न खुश है, धन भी अक्की चार है, इतना देवी देवताओं को सजाते हैं धन आभूषण से, वहां कोई बात का भय तो है नहीं। तो सजी सजाई मूरत, उससे पता चलता है कितना अक्की चार धन होगा। और जन भी बहुत अच्छे हैं, परिवार के सदस्य सभी सुख देने वाले। और यहाँ कलयुग के अंदर चारों प्रकार का दुख है, या तो कोई ना कोई एक दो प्रकार का दुख तो जरूर होगा, या किसी एक प्रकार का सुख होगा, बाकी तीनों प्रकार के दुख होंगे। तन स्वस्थ नहीं है, रोगी है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, मन सदा टेंशन वाला है या डिप्रेशन वाला है, धन होते हुए भी धन के न आभूषण पहन सकते हैं, अगर यूज भी कर लिया तो भी एक भय बना रहता है कहीं कोई पीछे लग न जाए। और जन तो है ही एक दूसरे को दुख देने वाले, ईर्ष्या करने वाले। तो बाबा कहते ये चारों प्रकार के सुख सिर्फ सतयुग में है, कलयुग के अंदर कोई एक प्रकार का सुख होगा, बाकी तीनों प्रकार के दुख होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी, यह ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है, तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहां तक पवित्र रहते हैं, कहां तक बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठ करूं, हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अब अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है, इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है, देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है, अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो, देवताओं को तो शंख आदि है नहीं, ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं, तुम भी ये ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो, तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं, मधुबन में लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं, टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे, मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है, क्या सुनाना है, कि मौत सामने खड़ा है, अभी सबको वापस जाना है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए
तो फिर भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं है। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं, बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है, भारत भूमि भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए इस बात की, बाबा सर्व का सदगति दाता सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए, आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आई रही है? बाबा पूछते हैं आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना, घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाए, तो हमें भी शांति धाम की याद आए। अब बहुत खेल लिया, अब घर तो याद आएगा ना। ये अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सदगति दाता दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए, अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है उनका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांति रहती है, सुख धाम में सुख, शांति धाम की जगह अलग सुख धाम की जगह अलग। यह तो है ही दुख धाम, सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहां 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम, इतना मीठा नाम है। बाप कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे, इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे ना सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं, हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूं, साजन भी हूं, गुरुओं का गुरु भी हूं, सुप्रीम टीचर हूं, सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सतगुरु हूं। कहते बच्चे मैं सर्व की सदगति करता हूं, गति के बाद सदगति होती है। बाप ने समझाया है हरेक की आत्मा को वापस जाना है, हरेक को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए। जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। जो आए और गए वो बाबा से वर्षा नहीं लेते, बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं, बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं, हमेशा ऊंचे स्थान पर बहुत ऊंचे बनाते, कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितना प्रबंध आदि रचने पड़ते हैं, तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चे को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते हैं।
मानसरोवर की यात्रा आदि पर जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, तो बच्चों को नहीं ले जाते हैं, 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहां तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है, छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहां तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे। अपने साथ बातें करनी होती है, बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथों से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी, तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहां आते हो किस लिए? बाबा कहते तुम यहां आते हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती है, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि यहाँ शरीर छोड़कर क्या बनेंगे। परमात्मा ही आकर के बताते हैं कि ये ब्रह्मा सरस्वती ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है, अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती, वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी साथ है, वह भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो, देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं, देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगत अम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स है, फिर नाम रख दिए हैं कुमारी कन्या या कन्या कुमारी, अदर कुमारी। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के भी फीचर्स है, फिर नाम रख दिए हैं कन्या कुमारी या अदर कुमारी। तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं, हम सब है ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ ये नॉलेज देते हो, अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है, पूरा अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर के बैठना है, कर्म योगी भी बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, महान और मेहमान। इन दो स्मृतियों द्वारा
सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले वो प्राम व साक्षी भव। महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले वो प्राम व साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूं, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। आज का व्यक्ति इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा ओ